गुरमुख सदा त्याई है अंदर हर प्रीति जिनको पोते पुन है इन वात सुपीति नानक नाम त्याई है सच सिफत सुनाई सलोक महला पहला सती पाप कर सत कमाही गुरु दीखिया घर देवन जाहि स्त्री पुरख है खटिया भाव भावे आवो भावे जाओ शास्त्र वेद न मान कोई आपो आपे पूजा होए काजी होए कै बह न्याई फेरे तस्बी करे खुदाई बड्डी लै कै हक गवाए जे को पुछे ता पढ़ सुनाई तुरक मंत्र कन हृदय समाहे लोक महावे चाड़ी खाए चौका दे कै सुचा होए ऐसा हिंदू वेखो कोए जोगी गिरही जटा बेपूत आगे पाछे रोवह पूत जोग न पाया जुगत गवाई कित कारण सिर शाही पाई।

कै घर हिंदू आवै सूत जनेऊ पर गल पावै सूत पाए करे बुरियाई नाता धूता थाए ना पाई मुसलमान करे वडियाई बिन गुर पीरै को थाए ना पाई राह दसाए उथे को जाए करनी बाजो किस्त ना पाए जोगी कै घर जुगत दसाई।

सो जाए सियाण होर पकड़ हिंदू मुसलमान सबना का दर लेखा होए करनी बाज हो तरे ना कोई सचो सच बखाने कोई नानक अगै पुछ ना होए पौड़ी हर का मंदिर आखिए काया कोटगढ़ अंदर लाल जवेरी गुरमुख हर नाम पढ़ हर का मंदिर शरीर अत सोहना हर हर नाम देड़ मनमुख आप खुआयन माया मोह नित काढ़ सबना साहिब एक है पूरे भाग पाया जाई श्लोक महला पहला ना सत दुखिया ना सत सुखिया ना सत पानी जंत फिरह ना सत मूंड मडाई केसी ना सत पढ़िया देश फिरह ना सत रुखी बिरखी पत्थर आप तशाव है दुख सह ना सत हस्ती बदे संगल ना सत गाई काहु चरह जिस हथ सिद्ध देवै जे सोई जिसनो दे तिसे आए मिले नानक ताको मिले बड़ाई जिस घट भीतर शब्द रवै सब घट मेरे हो सब ना अंदर जिसे खवाई तिस कौन कह जिसे दिखाला वाटड़ी तिसे पलावै कौन जिसे पलाई पंध सिर किसे दिखावे कौन महला पहला सो गिरही जो निग्रह करे जप तप संयम भीख्या करे।

संताप औ हट पट्टण मह भीख्या करै सो अवतूती शिवपुर चढ़ै बोले गोरख सत स्वरूप परम तंत मह रेख नारूप महला पहला सो उदासी जे पाले उदास अर्ध उर्ध करे निरंजन वास चंद सूरज की पाए गंड जिस उदासी का पड़े ना कंद बोले गोपी चंद सत स्वरूप परम तंत मह रेख नारूप महला पहला सो पाखंडी जे काया पखाले काया की अगन ब्रह्म पर जाले सुपने बिंद न दे झरना तिस पाखंडी जरा न मरना।

क्यों जीवै जुग कन पड़ाई क्या खाजै भुगत आसत नास्त एको नाऊ कौन सो अखर जित रह आऊ।

पौड़ी, हर मंदिर सोई आखिया जिथों हर जाता, मानस दे गुरबचनी पाया सब आत्म राम पछाता, बाहर मूल ना खोजिया कर माहे बधाता, मनमुख हर मंदिर की सार ना।

मूर्ख के क्या लक्षण है, क्या मूर्ख का करना। मूर्ख ओह जे मुग्ध है अहंकारे मरना, एत कमाण सदा दुख दुख ही मह रहना। अत प्यारा पवे खूह केहो संयम करना, गुरमुख हो सो करे विचार उस अलिप्तो रहना। हर नाम जपे आप उधरे उस पिछे डुब दे पी करना, नानक ज्योत पावे सो करे जो दे सो सहना। महला पहला नानक आखे रे मना, सुनिए सिख सही लेखा रब मगेसिया, बैठा कड वही तलबा पौसन आकिया बाकी जिना रही। अजराइल फरिश्ता होसी आए तई, आवन जान ना सुजई पीड़ी गली फही। कूड़न खुटे नानका ओड़क सच रही, पौड़ी हर का सब शरीर है हर रब रहे आ सब आपै। हर की कीमत ना पवे किस कहन ना जापै, गुर प्रसादी सलाही है हर भगती रापै। सब मन तन हरिया होया अहंकार गुआपै,

आया। परशुराम रूवे घर आया, अजय सुरूवे भीख्या खाई, ऐसी दरगाह मिले सजाई। रूवे राम निकाला पया, सीता लक्ष्मण बिछड़ गया। रूवे दह सिर लंक गवाई, जिन सीता आंधी डौरू वाई। रूवे है पांडव भये मजूर, जिनकै स्वामी रहत हदूर। रूवे जनमेजा खोए गया, एकी कारण पापी भया। रोवे है सेख मसाइक पीर, अंतकाल मत लागे पीड़। रोवे है राजे कन पड़ाए, कर कर मांग है भीख्या जाए। रोवे है किरपन संच है धन जाए, पंडित रोवे है ज्ञान गवाए। बाली रोवे नाहे पतार, नानक दुखिया सब संसार। मन्ने नाओ सोई जन जाए, औरी कर्म ना लेख लाए। महला दूजा जप तप सब किश मन्ने है, अवर कारा सब बाद। नानक मन्या मन्नी है, बुझिए गुर प्रसाद पौड़ी। काया हंस तुर मेल करतै लिख पाया, सब मैं गुप्त वर्तदा गुरमुख प्रगटाया। गुण गावे गुण उच्चरै, गुण माहि समाया। सच्ची बाणी सच है, सच मेल मलाया। सब किछ आपे आप है, आपे दे वडियाई। श्लोक महला दूजा, नानक अंधा होए कै, रत्ना

है दूजे भाए बोले दूजे भाए सदा दुख है नित नीर बरोले गुरमुख नाम त्याई है मत तत कडोले अंतर परगास घट चानना।

नानक जो मर जीव्या सहला आया सोए महला तीजा। ना किस आसा हथ है क्यों निराशा होए, क्या करे एह बपड़ी जा भलाए सोए पौड़ी। त्रिग जीवन संसार सच्चे नाम बिन, प्रभ दाता दा तार निचल एहो धन। सास सास अराधे निर्मल सोए जन, अंतर जामी अगम रसना एक पन। रव रहे आसरबत नानक बल जाई, श्लोक महला पहला। सरवर हंस तुरे ही मेला, खसमै वै पाणा। सरवर अंदर हीरा मोती, सो हंसा का खाना। बगला काग ना रही सरवर,

आपे रंग रटिया कुदरत कीम ना पाए अलख ब्रह्म टिया अगम अथाह बेअंत परे परटिया आपे वड पातशाह आप वजीर टिया कोए ना जाने कीम केवड मटिया सच्चा साहिब आप गुरमुख प्रगटिया सलोक महला पंजवा सुन सज्जन प्रीतम मेरिया मैं सतगुर देहो देखाल हौं तिस देवां मन आपना नित हिरदै रखां संभाल इकस सतगुर बाहरा त्रिग जीवन संसार जन नानक सतगुर तिना मलायुन

प्रभ सेविया, तिस जेवड़ अवर ना कोई पौड़ी, देवन हार दतार कित मुख सलाहिया, जिस रखै कृपा तार रिजक समाहिया, कोई ना किस ही वस सबना एक तार, पाले बालक वांग दे कै आप कर, करदा अनद बनोद किशु ना जानिए, सर्ब धार समरथ हो तिस कुरबाणीए, गाइए रात दिनंत गावन जोगिया, जो गुर की पैरी पाहे तिन्नी हर रस भोगिया। श्लोक महला पंजवां, भीड़ो मोक लाई कीतियन, सब रखे कटंबे नाल कारज आप सवारियन, सो प्रभ सदा संभाल, प्रभ मात पिता कंठ लाईंदा, लहुड़े बालक पाल, दयाल हुए सब जी जंतर, हर नानक नदर निहाल। महला पंजवां, विण तुद होर जे मंगना, सिर दुखां कै दुख, देह नाम संतोखिया, उतरै मन की भुख, गुरवण तिन हरिया कीतिया, नानक क्या मनुख। पौड़ी, सो ऐसा दातार मनो ना विसरै, घड़ी ना मोत चसा तिस बिन ना सरै, अंतर बाहर संग क्या को लुक करै, जिस पत रखै आप सो भवजल तरै, भगत ज्ञानी तपा जिस कृपा करै, सो पूरा प्रधान जिसनो बल धरै, जिसै जराए आप सोई अजर जरै, तिस ही मिलिया सच मंत्र गुरमन धरै। श्लोक महला पंजवां, धन सुराग सुरंगड़े अलापत सब तिख जाय, धन सो जंत सुहावड़े जो गुरमुख जप दे नाउ, जिन्नी एक मन एक अरादिया तिन सद बलिहारै जाउ, तिन की धूड़ हम बाछ दे करमी पल्लै पाए, जो रते रंग गोविंद कै हों तिन बलिहारै।

जन नानक पाया अगम रूप अनत ना काहू जाय महला पंजवा तन सो वेला घड़ी तन तन मूरत पल सार तन सो दिन ससंजोगड़ा जित डिठा गुर दरसार मन किया इच्छा पूरिया हर पाया अगम अपार हम मैं टुटा मोहड़ा एक सच नाम आधार जन नानक लगा सेव हर उदरिया सगल संसार पौड़ी सिफत सलाहन भगत विरले दितियन सौंपे जिस भंडार फिर पुछ ना लीतियन जिसनो लगा रंग से रंग रत्या ओना इको नाम आधार इका उन पत्या ओना पिछे जग पुंचे भू गई ओना प्यारा रब ओना हां जो गई जिस मिलया गुर आए तिन प्रभ जानिया हौ बलिहारी तिन जे खसम पाणिया सलोक महला पंजवा हर इक सह नाल मैं दोस्ती हर इक सह नाल मैं रंग हर इको मेरा सजनो हर इक सह नाल मैं संग हर इक सह नाल मैं गोसते मुह मैला करै ना भंग जाने बिरता जी की कदे ना मोड़ै रंग हर इको मेरा मसलती पन्नन करन समरथ हर इको मेरा दातार है सिर दात्या जग हाथ हर इक सह दी मैं टेक है जो सिर सबना समरथ सतगुर संत मलाया।

जगत मन किया इच्छा पूरिया पाया तुर संजोग नानक पाया सच नाम सद ही भोगे भोग।

जाने तिचर रखण गांड जित दिन किछ ना होवई तित दिन बोलण गंद जी की सार ना जाननी मनमुख ज्ञानी अंद कूड़ा गंड ना चलई।

साहि सब सैलो कृपाल संभाली साहे साहे बिरथा कोई न जाय जे आवे तुदे आहि। सलोक महला पंजवा दूजा तिस ना बजायो हो पार ब्रह्म नाम देहो आधार अगम अगोचर साहिबो समरथ सच दा तार तू निश्चल निर्वैर सच सच्चा।

ਤੂੰ ਵਹਿ ਵਸ ਬਹੁਤ ਕਢਾਵਣੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵਹਿ ਵਸ ਵੇਦ ਪੜਾਵਣੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵਹਿ ਵਸ

होगा हरक आनंद। हुक्मे जपे निरोधर गुरमंत, हुक्मे आवन जान रहाय। नानक जाको भगती लाई पौड़ी, हों तिस ढाडी कुर्बान। जे तेरा सेवदार, हों तिस ढाडी बलिहार। जे गावे गुण अपार, सो ढाडी धन धन। जिस लोड़े निरंकार, सो ढाडी भागठ। जिस सत्या द्वार बार, वो ढाडी तुद त्याई। कलाने दिन रैनार, मंगै अमृत नाम। ना आवे कदे हार, कपड़ भोजन सच। रहंदा लिवै तार, सो ढाडी गुणवंत।

मन तन हृदय सिमर हर आठ पहर गुण गाओ। उपदेश सुनो तुम गुर सिखो हो, सच्चा यह सुआउ। जन्म पदार्थ सफल होए, मन में लायो पाओ। सुख सहज आनंद घना, प्रभ जपत्या दुख जाए। नानक नाम जपत सुख उपजे, दरगाह पाईए थाउ। महला पंजवा, नानक नाम ते आई है, गुरपूरा मत दे। भाणे जप तप संयम, भाणे ही काढ ले। भाणे जून पवाई है, भाणे बख्श करे। भाणे दुख सुख भोगी है, भाणे कर्म करे। भाणे मिट्टी साज कै, भाणे जोत तरे। भाणे

जिस भगती लाए नानक विरले पौड़ी वड्याई सच्चे नाम की हौ जीवा सुन सुने पशु प्रेत अज्ञान उधारे एक खणे दिन सरहण तेरा नाउ सदा सद जापी है तृष्णा भुख विकराल नाए तेरे त्रापी है रोग सोग दुख वंजै जिस नाउ मन वसै तिसह प्राप्त लाल जो गुर शब्दी रसै खंड ब्रह्मांड बेअंत उदाहरण हारिया तेरी शोभा तुद सच्चे मेरे प्यारिया। श्लोक महला पंजवां मित्र प्यारा नानक जी मैं छड गवाया रंग कसुंबै भुली तौ सज्जन की मैं कीम ना पाउंदी हौ तुद बिन अड ना लहंदी। महला पंजवां सस वरायण नानक जीओ ससुरा वादी जेठो पौ पोलू है हबे भस पुणेंदे वतन जा मैं सज्जन तू है पौड़ी जिस तू बुठा चित तिस दर्द निवारण जिस तू बुठा चित तिस कदे ना हारण जिस मिलया पूरा गुरु सो सर पर

सीलवंत प्रदान हृदय सचाविया अंतर बाहर एक एक रीताविया मन दर्शन की प्यास चरण दसाविया शोभा बनी सिंगार खसम जा राविया मिलिया आए संजोग जा तिस पाविया।

जुगत साई सहकाया फेर पलटी है चुल्लै सो छत निरंजनी मल तख्त बैठा गुर हटी है करह जे गुर फरमाया सिल जोग अलूणी चटी है लंगर चलै गुर शब्द हर टूट ना आवी खटी है खर्चे दित खसम दी आप कहंदी खैर दबटी है होवै सिफत खसम दी नूर अरसो कुरसो झटी है तुद दिथे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सच जे गुर फुरमाया क्यों एदू बोलो हटी है पुत्री कौल ना पालियो कर पीरो कन मुरती है दिल खोटे आकी फिरन बन भार उचाइन सती है जिन आखी सोई करे जिन कीती तिन थटी है।

उस मन में है शब्द प्रमाण आवागमन निवारियो कर नगर निशान अवतरिया अवतार ले सो पुरख सो जान।

मेलो गुर का शब्द गुड़ की नरे तृष्णा काम क्रोध मद मत्सर काट काट कस दीन रे कोई है रे संत सहज सुख अंतर जाको जप तप देव दलाली रे एक बूंद भर तन मन देवो जो मद दे कलाली रे रहाओ पवन चतर दस पाठी कीनी ब्रह्म यगन तन जारी रे मुंदरा मदक सहज धुन लागी सुखमन पोचन हारी रे तीर्थ बरत नेम सुच संयम रव सस गहन देओ रे सुरत प्याल सुधा रस अमृत एहो महारस प्यो रे निचार धार चोवै अत निर्मल एह रस मनुआ रातो रे कह कबीर सगले मद छूछै एह महारस साचो रे गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर महुआ पौ पाठी मन धारा सुख मन नारी सहज समानी पीवै पीवन हारा औदू मेरा मन मतवारा उन्मद चढ़ा मदन रस चाखिया त्रे भवन भया उजियारा रहाउ दोए पुर जोर रसाई पाठी पियो महारस भारी काम क्रोध द्वे किए जलेता छूट गई संसारी प्रगट प्रगास ज्ञान गुर गम्मत सतगुर ते सुध पाई दास कबीर तास मत माता उचक ना कबहू जाई तू मेरो मेर पर्वत स्वामी।

बलाते नरके घोर पचाई कवन नरक क्या सुर्ग बिचारा संतन दूरा दे हम काहू की कान ना कटते अपने गुर पर सादे अब तो जाए चढ़े सिंहासन।

सो रन मैं जूझ बिन दागे भग जाई साधु होए सो भगत पछान हर लए खजाने पाई कोठरे मह कोठरे परम कोठी बीचार गुरदीनी बस्त कबीर को लेव हो बस्त समार कबीर दी संसार को लीनी जिस मस्तक भाग अमृत रस जिन पाया फिर का सुहाग जेहे मुख वेद गायत्री निकसै सो क्यों ब्राह्मण बिसर करै।

उलह पांडे दोजक पर है रहाव आपने ऊंच नीच कर पूजन हठे कर्म कर उदर पर है चौदस अमावस रच रच मांग है कर दीपक लै कूप पर है तू ब्राह्मण मैं कांसिक जुल्हा मोहे तोहे बराबरी कैसे कै बन है हमरे राम नाम कह उबरे वेद परोसे पांडे डूब मर है तरवर एक अनंत डार साखा पोहप पत्र रस भरिया ए अमृत की बाड़ी है रे तिन हर पूरे करिया जानी जानी रे राजा राम की कहानी अंतर ज्योत राम परगासा गुरमुख बिरले जानी रहाव पवर एक पोह परस बीदा बारह ले उर तरिया सोरह मदे पवन च कोरिया आकाशे फर फरिया सहज सुन एक बिरवा उपजिया धरती जल हर

जप तप संयम गुरमुख भोगी रहाव बुद्ध बेभूत चढ़ावो अपनी सिंगी सुरत मलाई कर बैराग फिरो तन नगरी।

जग भीतर जन्म कवन फल पाया भावनित तरन तारन चिंतामन एक निमुख नायो मन लाया गोविंद हम ऐसे अपराधी जिन प्रभ जियो पिंड था दिया तिसकी भाव भगत नहीं साधी रहा पर तन पर तन पर ती निंदा पर अपवाद ना छूटै आवागमन होत है फुन फुन एहो प्रसंग ना टूटै जे घर कथा होत हर संतन एक निमख ना कीनो मैं फेरा लंपट चोर दूत मतवारी।

जाहि पलाई जे सिमरन तुझ पूहै ना माई। सिमर सिमर हर हर मन गाइए, एहो सिमरन सतगुर ते पाइए। सदा सदा सिमर दिन रात, उठत बैठत सास ग्रास। जाग सोए सिमरन रस भोग, हर सिमरन पाइए संयोग। जेहे सिमरन नाही तुझ भार,

कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद बंदच बंदन पाया मुक्त गुर अनल बुझाया जब नक सिख इहो मन चीना तब अंतर मज्जन कीना पवन पत उन मन रहन खरा नहीं मृत ना जन्म जरा रहा उल्टी ले सकत सहारं पैसी ले गगन मजारं बेदियले चक्र पुंगा पेटियले रायन संगा चूकियले मोह मै आसा सस कीनो सूर ग्रासा जब कुंभक पर फुल नीना तह बाजे अनहद बीना बकत बक शब्द सुनाया सुनत सुन मन बसाया।

बंद रहाऊगो। चंद सूरज दोए सम कर राखो, ब्रह्म ज्योत मिल जाऊगो। तीर्थ देख ना जल मह पैसो, जी जंत ना सतावोगो। अठ सठ तीर्थ गुरु दिखाए, घट ही भीतर नाओगो। पंच सहाई जन की सोबा, पलो पलो ना कहावोगो। नामा कह चित हर सिंह राता, सुन समाद समाओगो। माए ना होती बाप ना होता, कर्म ना होती काया। हम नहीं होते तुम नहीं होते, कवन कहां ते आया। राम कोई ना किसी केरा, जैसे तरवर पंख बसे।

घर दूजा बनारसी तप करै उल्ट तीर्थ मरै अग्न दह काया कल्प कीजै असमेध जग कीजै सोना गर्भ दान दीजै राम नाम सर तऊ ना पूजै छोड़ छोड़ रे पा।

साखी जागी गुरमुख जानी उपजै ज्ञान दुर्मत सीजै अमृत रस गगनंतर पीजै एस कला जो जाने प्यो भेटै तास परम गुरदेव दसम द्वारा अगम अपारा परम पुरख की घाटी ऊपर हाट हाट पर आला आले पीतर खाती जागत रहै सो कबहो ना सोवै तीन तलोक समाध पलोवै बीज मंत्र ले

धारी असुर नदी का बंदे मूल पच्छम फेर चढ़ावे सूर अजार जरे सो निचार चरे जगन्नाथ स्यो गोष्ट करे चौमुख जीवा ज्योत द्वार पल्लू अनत मूल बिचकार सर्व कला ले आपे रह मन मानक रत्ना मह गुह मस्तक पदम द्वाले मणि माही निरंजन त्रे पवन धनी पंच शब्द निर्मायल बाजे तुलके चवर शंख कन गाजे।

जप अहल सुनाम हरि कोट कोट दुख बहु कीने सब पर हर पास तरी रहाउ हर हर नाम जप है आराध है सेवक भाई खरे किल बिख दुख गए सब नीकर ज्यों पानी मैल हरे खिन खिन नर नारायण गाव है मुख बोल है नर नर हरे पंच दुख असाध नगर मह एक खिन पल दूर करे वड भागी हर नाम त्याव है हर के भगत हरे तिनकी संगत देहे प्रभ जाच्यों मैं मूड मुग्ध निस्तरे किरपा किरपा तार जग जीवन रख ले वो सरन परे नानक जन तुमरी सरनाई हर राख हो लाज हरे नट महला चौथा राम जप जन राम नाम रले राम नाम जपियो गुरबचनी हर धारी हर कृपले रहाउ हर हर अगम अगोचर स्वामी जन जप मिल सलल सलले हर के संत मिल राम रस पाया हम जन कै बल बलले पुरखोत्तम हर नाम जन गायु सब दालद दुख दलले विच देही दोख असाध पंच धातु हर किए खिन परले हर के संत मन प्रीत लगाई ज्यों देखै सस कमले उनवै कन कन कन हर गरजै मन बिगसै मोर मुरले हमरे स्वामी लोच हम लाई हम जीव है देख हर मिले जन नानक हर अमल हर लाई हर मेल हो आनंद भले नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम सखे गुर प्रसादी हर नाम त्यायु हम सतगुर चरण पखे रहाउ उत्तम जगन्ना जगदीश्वर हम पापी सरन रखे तुम वड पुरख दीन दुख भंजन हर दियो नाम मुखे हर गुण ऊच नीच हम गाए गुर सतगुर संग।

बालक स्वामी हम राखो वड पाप गे, तुमरी संगत हर को ना उधरियो। प्रभ किए पतत पवगे, गुण गावत शीपा दुष्टारियो। प्रभ राखी पैज जनगे, जो तुमरे गुण गाव है स्वामी। हम बाल बाल बाल तिनगे, पवन पवन पवित्र सब किए। जह तूर परी जन पगे, तुमरे गुण प्रभ कह ना सकह हम। तुम वड वड पुरख वडगे।

प्रभ तारी मत गुरमत नाम बने रहाउ हर जन हर जस हर हर गायु अपदेश गुरु गुर सुने किल बिख पाप नाम हर काटे जिव खेत किरसान लुने तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानहु हम कह ना सकह हर गुने जैसे तुम तैसे प्रभ तुम ही गुण जानहु प्रभ अपने माया पास बंद बहु बंदे हर जप्यो खुल खुलने ज्यों जल कुंचर तंदुए बांधियो हर चेत्यो मोख मुखने स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम खोजो हो जुग जुगने तुमरी था पाई नहीं पावे जन नानक के प्रभ वडने नट महला चौथा मेरे मन काल कीर्त हर प्रवणे हर हर दयाल दया प्रभ तारी लग सतगुर हर जपने रहाउ हर तुम वड अगम अगोचर स्वामी सब त्यावह हर रुड़ने जिनको तुमरे वड कटाख है ते गुरमुख हर सिमरने इहो प्रपंच किया प्रभ स्वामी सब जग जीवन जुगने ज्यो सलल सलल उठह बहु लहरी मिल सलल सलल समणे जो प्रभ किया सो तुम ही जानो हम नह जानी हर गहने हम बारक कौर दे उस्तत तार हो हम करह प्रभु सिमरणे तुम जल निद हर मान सरोवर जो सेवे सब फलने जन नानक हर हर हर हर पंचह हर देव हो कर कृपणे नट नारायण महला चौथा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन सेव सफल हर काल ले गुर पगरे नरवाल सब दाल पंज दुख दाल हर हो नदर निहाल रहाउ हर का ग्रह हर आप सवारियु हर रंग रंग महल बेअंत लाल लाल हर लाल हर अपनी कृपा करी आप ग्रह आयु हम हर की गुर की है बसीठी हम हर देखे भई निहाल निहाल निहाल निहाल हर आवते की खबर गुर पाई मन तन आनंद आनंद भय हर आवते सुने मेरे लाल हर लाल जन नानक हर हर मिले भय गलतान हाल निहाल निहाल नट महला चौथा मन मिल संत संगत शुभवंती सुन कथ कथा सुखवंती सब किल बिख पाप लहंती हर हो लिखत लखंती रहाउ हर कीरत कलयुग विच उत्तम मत गुरमत कथा पजंती जिन जन सुनी मनी है जिन जन तिस जन कै हो कुर्बानंती हर कथ कथा का जिन रस चाखिया तिस जन सब भूख लहंती नानक जन हर कथा सुन तृप्ति जप हर हर हर होवंती नट महला चौथा कोई आन सुनावे हर की हर गाल तिस को हो बल बल बाल सो हर जन है पल पाल हर हो मेल निहाल रहाउ हर का मार्ग गुर संत बतायु गुर चाल दिखाई हर चाल अंतर कपट चकाव हो मेरे गुर सिख हो निह कपट कमाव हो हर की हर काल निहाल निहाल निहाल ते गुर के सिख मेरे हर प्रभ पाई जिन्ना हर प्रभ जानियो मेरा नाल जन नानक को मत हर प्रभ दीनी हर देख निकट हदूर निहाल निहाल निहाल निहाल राग नट नारायण।

मन प्यास बहुत दरसावे रहाउ। सोई ज्ञानी सोई जन तेरा जिस ऊपर रुचि आवे, कृपा करहु जिस पुरख बधाते सो सदा सदा तुद त्यावे। कमन योग कमन ज्ञान ते

सुख पायो, हर गुण सद ही गावे। देखियो अचरज महामंगल रूप, किस आन नहीं दिसटावे। कहो नानक मोर्चा गुर लाहियो, तह गर्भ जोन कह आवे। नट नारायण महला पंजवां दुपदे,

जम की त्रास मिटी सुख पाया, निकसी हम मैं पीर रहाऊ। तप्त बुझानी अमृत बानी, तृप्ते ज्यो बारक खीर। मात पिता साजन संत मेरे, संत सहाई बीर। खुले ब्रह्म पीत में।

कै संग बसेउ मन ते नाही बसारेउ रहाउ वर्ण चेहन नाही किश पेखेउ दास का कुल ना बेचारेउ कर कृपा नाम हर दियो सहज सुपाए सवारेउ महा बिखम अग्न का सागर तिस ते पार उतारेउ पेख पेख नानक बिगसानो पुनः पुनः बलिहारेउ नट महला पंजवां हर हर मन में नाम कहेउ कोट अपराध मिटह खिन भीतर ताका दुख न रहेउ रहाउ खोजत खोजत भयो बैरागी साधु संग लहेउ सगल त्याग एक लिव लागी हर हर चरण गहेउ कहत मुकत सुनते निस्तारी जो जो शरण पयो।

अंचला गहायो जाने अपने को मन भी दो प्रेम की खोरे जस गावत भगत रासे उपजेओ माया की जाली तोरी पूर्ण पूर रहे कृपा निद आना पेखो होरी नानक मेल लियो दास अपना।

रेते आठ पहर गुण गायन रहाऊ साधु तूर करो नित मज्जन सब किल बिख पाप गवायन पूर्ण पूर रहे कृपा निद घट घट दिष्ट समायन जाप ताप कोट लख पूजा हर सिमरन तुल न लायन दुए कर जोड़ नानक दान मांगै तेरे दासन दास दसायन नट महला पंजवा मेरा सर्बस नाम निदान कर कृपा साधु संग मिलियो।

बिनसियो मूड अभमान क्या गुण तेरे आख बखाना प्रभ अंतर जामी जान चरण कमल सरन सुख सागर नानक सद कुर्बान।

काल उठत बैठत सोवत जागत जी प्राण धन माल दर्शन प्यास बहुत मन मेरे नानक दर्शन हाल।

हर हर नाम उरतारी, हर हर कथा बनी अत मीठी, ज्यों गूंगा गटक संहारी, रसना साध चखे पाए दूजे, हत फीके लोभ बिकारी, जो गुरमुख साध चखे है राम नामा, सब अनरस साध विसारी, गुरमत राम नाम धन पाया।

का नदर निहारी हर प्रभ ठाकुर रविया सब ठाई सब चेरी जगत समारी आप दयाल दया दान देवे विच पाथर कीरे कारी अंतरवास बहुत मुशकाई भ्रम भूला मिर्ग सिंघारी।

जन माने प्रतख गुरु निस्तारी सब है ब्रह्म ब्रह्म है पसरिया मन बीजिया खवारी ज्यों जन चंद्र हांस दुखिया त्रिष्ट बुद्धि अपना घर लूकी जारी प्रभ को जन अंतर रिद लोचे प्रभ जन के सास निहारी कृपा कृपा कर भगत दृढ़ाए जन पीछे जग निस्तारे अपने आप आप प्रभ ठाकुर प्रभ आपे सिष्ट सवारी जन नानक आपे आप सब वरते कर कृपा आप निस्तारी नट महला चौथा राम कर कृपा लेहो उभारी जो पकर द्रौपदी दुष्टायानी हर हर लाज निवारी रहाउ कर कृपा जाचक जन तेरे एक मांगो दान प्यारे सतगुर की नित श्रद्धा लागी मोह को हर गुर मेल सवारी साकत कर्म पानी ज्यो मथी है नित पानी झोल चुलारे मिल सत संगत परम पद पाया कड माखन के गटकारी नित नित काया मजन किया नित मल मल दे सवारी मेरे सतगुर के मन बचन ना पाए सब फोकट चार शिंगारी मटक मटक चल सखी सहेली मेरे ठाकुर के गुण सारी गुरमुख सेवा मेरे प्रभ पाई मैं सतगुर अलख लखारी नारी पुरख पुरख सब नारी सब एको पुरख मरारी संत जना की रेन मन पाई मिल हर जन हर निस्तारी ग्राम ग्राम नगर सब फिरिया हृदय अंतर हर जन पारी श्रद्धा श्रद्धा अपाई मलाई मोको हर गुर गुर निस्तारी पवन सूत सब नीका करिया सतगुर शब्द विचारी निज कर जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारी तौ गुण ईस वर्ण नहीं साको तुम मंदर हम निक कीरे नानक कृपा करो गुर मेलो मैं राम जपत मन धीरे नट महला चौथा मेरे मन भज ठाकुर अगम अपारी हम पापी बहु निर्गुण यारे कर कृपा गुर निस्तारे रहाउ साधु पुरख साध जन पाए एक बिनो करो गुर प्यारे राम नाम धन पूंजी देव हो सब तिसना भूख निवारे पचै पतंग मृग भृंग कुंचर मीन एक इंद्री पकर संघारे पंच भूत सबल है देही गुर सतगुर पाप निवारे शास्त्र वेद सोध सोध देखे मुन नारद बचन पुकारे राम नाम पढ़ो गत पाव हो सत संगत गुर निस्तारे प्रीतम प्रीत लगी प्रभ केरी जिव सूरज कमल निहारे मेर सुमेर मोर बहु नाचै।

जब उनमें कन कनहारी साकत को अमृत बहु सिंचो हो सब डाल फूल विस्कारी ज्यो ज्यो निवह साकत नर सेती छेड़ छेड़ कड्डे बिख खारी संतन संत साध मिल रही है गुण बोले है पर उपकारी संत संत मिले मन बिगसै ज्यो जल मिल कमल सवारी लोभ लहर सब सुवान हलक है हलकियो सबह बिगारी मेरे ठाकुर कह दिबान खबर हुई गुर ज्ञान खड़ग लै मारी राख राख राख प्रभ मेरे मैं राखो कृपा तारी नानक मैं तारे।

प्रसाद अनक जतन कर रहे हर अंत नाही पाया हर अघम अगम अगाध बोध अदेश हर प्रबराया रहाउ काम क्रोध लोभ मोह नित झगरते झगराया हम राख राख दीन तेरे हर शरण हर प्रभ आया शरणागति प्रभ पालते हर भगत वचल नाया प्रहलाद जन हर नाख पकरियो हर

ठाकुर हर गुरमति प्रभ पाया हर पतत पावन नाम स्वामी पौ भगत भंजन गाया हर हार।

राम नाम सुख दाता, सत संगत मिल हर साध आया, गुरमुख ब्रह्म पछाता रहाउ, वड भागी गुर दर्शन पाया, गुर मिलिया हर प्रभ जाता, दुर्मत मैल गई सब नीकर, हर अमृत हर सरनाता, तन तन साध जिन्नी हर प्रभ पाया, किन पूछो हर की बाता, पाए लगो नित करो जो दरिया, हर मेलो कर्म बधाता, ललाट लिखे पाया गुर साधु, गुर बचनी मन तन राता, हर प्रभ आए मिले सुख पाया, सब किल विख पाप गवाता, राम रसायन जिन गुरमत पाया, इनकी उत्तम बाता, इनकी पंक पाई बड़भागी, जन नानक चरण पराता, माली गौड़ा महला चौथा, सब सिद्ध साधक मुन जना, मन भावनी हर त्यायो, अपरंपरु पार ब्रह्म स्वामी, हर अलख गुरु लखायो रहाओ, हम नीच मध्यम कर्म किए, नहीं चेतेओ हर रायो, हर आन मेलेओ सतगुरु, खिन बंद मुक्त करायो, प्रभ मस्त के तुर लिखिया, गुरमति हर लिव लायो, पंच शब्द दरगाह बाजिया, हर मिलेओ मंगल गायो, पतत पावन नाम नरहर, मंद भागियां नहीं पायो, ते गर्भ जोनी गालिय है, ज्यो लोन जलह गलायो, मत देहे हर प्रभ अगम ठाकुर, गुर चरण मन मैं लायो।

माली घोड़ा मोहल्ला चौथा मेरे मन भज हर हर नाम गोपाला मेरा मन तन लीन भया राम नामे मत गुरमत राम रसाला रहाउ गुरमत नाम त्याई हर हर मन जपिए हर जपमाला जिनकै मस्तक लिखिया हर मिलिया हर बनमाला जिन हर नाम त्याया तिन चूके सर्ब जंजाला तिन जम नेड़ ना आवई गुर राखे हर रखवाला हम बारक किशु ना जानहू हर मात पिता प्रतपाला पर माया अगन नित मेलते गुर राखे दीन दयाला बहु मैले निर्मल होया सब किल बिखार जस जाला मन अंध भया गुर पाया जन नानक शब्द निहाला माली गौड़ा महला चौथा मेरे मन हर भज सब किल बिख काट हर हर उरतार्यो गुर पूरै मेरा सीस कीजै गुरवाट रहाउ मेरे हर प्रभ की मैं बात सुनावै तिस मन देवो कट काट हर साजन मेलियो गुरपूरै गुर बचन बिकानो हट हाट मकर पराग दान बहु किया शरीर दियो अध काट बिन हर नाम को मुक्त ना पावै बहु कंचन दीजै कट काट हर कीरत गुरमत जस गायो मन उगरे कपट कपाट त्रिकुटी फोर परम पौ भागा लज पानी मटकी माट कल युग गुर पूरा तिन पाया जिन तुर मस्तक लिखे ललाट जन नानक रस अमृत पिया सबलाथी भूख तिखाट छका एक माली गौड़ा महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद रे मन टहल हर सुख सार अवर टहलां झूठियां नित करै जम सिर मार रहाउ जिन्ना मस्तक लिखिया ते मिले संगार संसार भौजल तारिया हर संत पुरख अपार नित चरण से वोह साधके ताज लोभ मोह बेकार सब तजहो दूजी आसड़ी रख आस एक निरंकार एक भरम भूले साकता बिन गुर अंध अंधार तुर होवना सो होया को ना मेटन हार अगम रूप गोबिंद का अनक नाम अपार तन तन ते जन नानका जिन हर नामा उरतार माली गौड़ा महला पंजवा राम नाम को नमस्कार जास जपत होवत उधार रहाउ जा कै सिमरन मिट है तंद जा कै सिमरन छूट है बंद जा कै सिमरन मूर्ख चतर जा कै सिमरन कुल है उधर।

पतत पावन नाम हरि कोट भगत उधार करी हरदास दासा दीन सरन नानक माथा संत चरण माली गौड़ा महला पंजवा ऐसो सहाई हर को नाम साध संगत भज पूर्ण काम रहाउ बूढ़त कौ जैसे बेड़ी मिलत बूजत दीपक मिलत तिलक जलत अग्नि मिलत नीर जैसे बारक मुख है खीर जैसे रण मह सखा प्रात जैसे भूखे भोजन मात जैसे किरख है बरस मेघ जैसे पालन सरन सेंग गर्ण मुख नहीं सरपत रास सुआ पिंजर नहीं खाए बिलास जैसो आंडो हिरदे माहे जैसो दानो चकी दराहे बहुत उपमा थोर कही हर अगम अगम अगाध तुही ऊच मूचो बहु अपार सिमरत नानक तरे सार माली गौड़ा महला पंजवा यही हमारे सफल काज अपने दास को लेहो निवाज रहाओ चरण संत है माथ मोर नैन दर्श पेखो निसपोर हस्त हमरे संत टहल प्राण मन तन संत बहल संत संग मेरे मन की प्रीत संत गुण बस है मेरे चीत संत आ गया मन है मीत मेरा कमल बिकसे संत डीत संत संग मेरा होए निवास संतन की मोहे बहुत प्यास।

धार, चरण संतन के मेरे हृदय मजार, माली गौड़ा महला पंजवा, सब कै संगी नाही दूर, करन करावन हाजरा हजूर, रहाउ सुनत जियो जास नाम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम, सगल निद हर हर हरे, मुन जनता की सेव करे, जां कै घर सगले समाहे, तिस्ते बिरथा कोए नाहे, जी जंतर करे प्रतपाल, सदा सदा सेवो कृपाल, सदा धर्म जाकै दीवान, बे मोहताज नहीं किश कान, सब किश करना अपने आप, रे मन मेरे तू तां को जाप, साध संगत को हों बलिहार, जास मिल हुए उधार।

सदा सुख पाइए जीवन का मूल रव रहे सरबत ठाई सुख मोह असथूल आल जाल बेकार तज सब

सलाहिया जिन कर देखिया खेल संजोगी मेलावड़ा इन तन कीते भोग वे जोगी मिल विछड़े नानक भी संजोग मारू महला पहला मिल मात पिता पिंड कमाया तिन करता लेख लिखाया लिख दात जोत वड़ियाई मिल माया सुरत गवाई मूर्ख मन काहे कर सहमाना उठ चलना खसमै पाना रहाउ तज साध सहज सुख होई घर छड़ने रह ना कोई किस खाजै किस धर जाइयै जे बहुड़ दुनिया आइयै सज काया पट हंडाई

काल दिन हुआ जेती कड़ी फाही तेती रस रस चोग चुग है नित फस है सूटस मूड़े कमन गुणी काया आरन मन विच लोहा पंच अगन पित लाग रही कोले पाप पड़े तिस ऊपर मन जलिया सन्नी चिंत भई।

हर बसस निर्मल जल पद्मन जावल रे पद्मन जावल जल रस संगत संग दुख नहीं रे दादर तू कबह न जानस रे पक्षस बाल बसस निर्मल जल अमृत ना लक्ष रे रहाव बस जल नित ना वस्त अलियल मेर चचा गुण रे चंद कुमुंदनी दूरों निवसस

का पतत पनीत असंख होहे हर चरनी मन लाग अठसठ तीरथ नाम प्रभ नानक जिस मस्तक भाग। शब्द सखी सहेली गर्भ गहेली सुन सह की एक बात सहेली जो मैं बेदन सा किसे आखा माई हर बिन जियो न रह कैसे राखा माई रहाओ हौ दुहागन खरी रजानी गया सो जोबन तन पछताणी।

दर ढोई झूठा आवण जान साचा नाम सलाही है साचे ते तृप्त होए ज्ञान रतन मन मांझी है बहुड़ न मैला होए जब लग साहिब मन वसै तब लग बिघन न होए नानक सिर दे छुटी है मन तन साचा सोए।

नाम अजाची एको हाट साहो सबना सिर बनजारी एक भांति दोए सिरे सतगुरु नबेड़े सो बूझै जिस एक लिव लागी जियो रह ने परांती।

तोड़े परम चुकाए, सहजे सिफती तनख चढ़ाए, गुर कै शब्द मरे मन मारी, सुंदर जोगा तारी जियो, हम है जलिया मनो विसारी।

मारू महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जह बसाल है तह बैसा स्वामी जह भेज

सच सोहे। एक भगती सार ना जाननी मनमुख भरम भुलाए। ओना विच आप वरतदा करना किशु ना जाए। जिस नाल जोर ना चले खले की चै अरदास नानक गुरु।

आनंद आए हर नाओ सतगुर कै बचन अराध तू अन दिन गुण गाओ रहाओ गुरमुख को जानिए जा सतगुर।

जपियो नाम सुख जनक गुर बचनी, हर हर सरन परे दालद पंज सुदामे मिलियो, भगती पाए तरे भगत वच्छल हर नाम किरतारथ, गुरमुख कृपा करे मेरे मन नाम जपत उदरे, ध्रुव प्रहलाद बिदर दासी सोता, गुरमुख नाम तरे रहाओ, कलयुग नाम प्रधान पदारथ, भगत जना उदरे नामा जय देव कबीर त्रिलोचन, सब दुख गए चमरे, गुरमुख नाम लगे से उदरे, सब किल विख पाप टरे, जो जो नाम जपै अपराधी, सब तिनके दुख पर हरे, बेसवा रवत अजामल उदरेओ, मुख बोले नारायण नर हरे, नाम जपत उगर सैन गत पाई, तोड़ बंधन मुक्त करे, जन को आप अनुग्रह किया, हरे अंगीकार करे, सेवक पैज रखै मेरा गोविंद, सरल परे उदरे, जन नानक हर कृपा तारी, उर धरयो नाम हरे, मारु महला चौथा, सिद्ध समाध जपियो लिवलाई, साधक मुन जपया, जति सती संतोखी त्याया, मुख इंद्रादक रविया, सरन परे जपयो ते पाई।

गण गंधर भी जपियो रिख बपरै हर गाया शंकर ब्रह्म देवी जपियो मुख हर हर नाम जपिया हर हर नाम जिन्ना मन पीना ते गुरमुख पार पया कोट कोट ते तीस त्यायो हर जपत्या अंत ना पाया वेद पुराण सिमरत हर जपिया मुख पंडित हर गाया नाम रसाल जिन्ना मन वसिया ते गुरमुख पार पया अंत तरंगी नाम जिन जपिया मैं गणत ना कर सकिया गोविंद कृपा करे थाए पाए जो हर प्रभ मन पाया।

घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर नाम निदान लै गुरमत हर पत पाए हलत पलत नाल चलदा हर अंते लए छडाए जिथे अवकट गलियां पीड़ियां जिथे हर हर मुक्त कराए मेरे सतगुरा मैं हर हर नाम दृढ़ाए मेरा मात पिता सुत बंद पो

सुगुण सुजानी जन नानक शरणागती कर कृपा नाम सुमानी। मारू महला चौथा हर भाव लगा बैरागिया वडभागी हर मन राख मिल संगत शरदा उपजै गुर शब्दी हर रस चाख सब मन तन हरिया होया गुरबाणी हर गुण पाख।

पाग हर हर भगत परे पंडहारा गुरमुख राम करे निसतारा जिसनो कृपा करे मेरा स्वामी सो हर के गुण गावे जियो हर हर कृपा करे बनवाली हर हृदय सदा सदा सम

नाऊ। मंगत जन जाचा हर देव पसाऊ। हर सत सत सदा हर सत मेरे मन पावे जीओ। नवे सिदर सर्वह अपवित्रा, बोल हर नाम पवित्र सब किता। जे हर सो प्रसन्न होवै मेरा स्वामी, हर सिमरत मन लह जावै जीओ। माया मोह भिकम है भारी, क्यों तरियै दुत्तर संसारी। सतगुरु बोहित दे प्रभ साचा, जप हर हर पार लगावै जीओ।

बात सुनी सो सुखिया सो सदा सुहेला जो गुर मिल गाए गुनी रहाओ देह धार अर देवा दर्पह सिद्ध साधक डर मोया लख चौरासी ही मर मर जन्मे फिर जो नी जोया राजस सातक तामस डरपह केते रूप उपाया छल बपरी ये कौला डरपै आत डरपै धर्म राया सगल समगरी डरह ब्यापी बिन डर करने हारा कहो नानक भगतन का संगी भगत सोह है दरबारा मारू महला पंजवा पांच बरख को अनाथ ध्रुव बारक हर सिमरत अमरे अटारी पुत्र हेत नारायण कहो जम कंकर मार बदारी मेरे ठाकुर केते अगणत उधारी मोहे दीन अल्प मत निर्गुण परयो सरद द्वारी रहाओ वाल्मीक सुपचारो तरयो वदक तरे बेचारी एक निमख मन माहे अरादेव गजपत पार उतारी कीनी रखिया भगत प्रहलाद हरनाखस नखह बेदारी विदर दासी सुत भयो पनीता।

ठाकुर सेवक को सबरे हलत पलाता, धन सेवक सफल ओ आया, जिन नानक खसम पछाता।

सर्व गुण नायक तिस को कबहु ना गाव सरी छोड़ जाए खिन पीतर ताको वाको फिर ताव सरी अपने प्रभ को क्यों ना समार सरी बैरी संग रंग रस रचिया।

सुनत भव तरी तां स्यो रंग ना लाभ सरी थोरी बात अल्प सुपने की बहुर बहुर अटका।

तुम बावर दलाब जन्म अकारथ रे नार ऐसी करह यानथ ताज सारंग थार भ्रम तू भूला मोहे लपट्यो दासी संग सानथ रहाओ धरनी तर त्याग नीच कुल सेव है हौ हौ करत बेहावथ हो कट कर्म करह अज्ञानी मन मुख अंध कहावत सत होता असत कर मानिया जो बिन सत सो निचल जानत पर की को अपनी कर पकरी ऐसे भूल पलानत खतरी।

भोगह तपत थम गल लाय रे नर काए पर ग्रह जाय कुचल कठोर काम गर्धब तुम नहीं सुनियो धर्म राय रहाओ विकार पात्र गलह बांदी नींद पोट सिराय महासागर समुंड लंघना पार न परना जाय काम क्रोध लोभ मोह व्यापियो नेत्र रखे फिराय शीस उठावन न कबहू मिलई महादुत्तर माय सूर मुक्ता शशि मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी अलिपाय स्वभावत जैसे बैसंतर अलिप्त सदा निर्मलाय जिस कर्म खुलिया तिस लहया पड़दा जिन गुर पह मने

पगहते गुर कीनी बंद खलास आवन जान रहे हो। तपत कड़ाहा बुझ गया गुर शीतल नाम दियो रहाओ। जब ते साधु संग भया तो

सब किस जाने मेरे जी का प्रीतम बिसर गए बकबाया रहाउ दूजा मारू महला पंजवा कोट लाख सर्ब को राजा जिस हृदय नाम तुम्हारा जाको नाम ना दिया मेरे सतगुर से मर जन्म है गावारा मेरे सतगुर ही पत राख चीत आवह तब ही पत पूरी बिसरत रलिए खाक रहाउ रूप रंग खुशियां मन।

हर हर गाया, ऊच मूच अपार स्वामी अगम दरबारा, नामो वड्याई सुबा नानक खसम प्यारा, मारू

मात गर्भ में जिन प्रित पारिया, जियो पिंड दे साज सवारिया, सोई बधाता खिन खिन जपिया, जिस सिमरत अवगुण सब टकिया, चरण कमल उरे अंतर तारू, बिठिया बन ते जियो उधारू।

सत करमानी, हित लायो सठ मूड अज्ञानी। काम क्रोध लोभ मद माता, कौडी बदलै जन्म गवाता। अपना छोड़ पराया राता, माया मद मन तन संग जाता। तृष्ण ना बूझै करत कलोला, ऊनी आस मिथ्या सब बोला। आवत अकेला जात अकेला, हम तुम संग झूठे सब बोला। पाए ठगौरी आप पलायो, नानक किरत न जाए मटायो। पास पंखी

न उठ उठ फिर तावे मन तन बासना बहुत बिस्थारा अहम में मूठो बेचारा अनक दुख अर बहुत सजाई ता की कीमत कहन ना जा।

प्रमत प्रमत प्रवसरनी आया दीनानाथ जगत पित माया प्रव दयाल दुख दर्द बदारन जिस पावे तिस ही निस्तारन अंधकूप ते काडन हारा प्रेम भगत होवत निस्तारा साध रूप अपना तन तारिया महा अग्न ते आप उबारिया।

मेरा मारू महला पंजवां कत कौ डहकावो लोगा मोहन दीन किरपाई ऐसी जान पाई सरन सूरो गुरदाता राखे आप बढ़ाई रहाओ भगतां का आज्ञा का।

पंजवा पतत उदाहरण तारन बल बल बले बल जाइए ऐसा कोई भेटै संत जित हर हरे हर त्याइए।

मोहन अलख अपारा दान पावो संता संग नानक रेन दसारा मारू महला पंजवा त्रिपत अगाए संता गुर जाने जिन मंता ताकी किछ कहन ना जाई जाको नाम बड़ाई लाल अमोला लालो अगह अतोला।

सगल ते आनो तजियो मन ते अभमानो निचल तिनका ठाणा गुर ते महल पछाणा अन दिन गुर मिल जागी हर की सेवा लागी पूरन त्रिपत अगहाई सहज समाध सुपहाई हर भंडार हाथ।

महाभौजन माहे तुलोहो जाको लिखियो माथ डूबे नाम बिन कन साथ करन कारण चेतना आवे दे कर राखे हाथ रहाउ साध संगत गुण उचा।

पछताई, छूटत नाहिन भाग्यो, एह चिंता उपजी घट मह, जब गुर चरणन अनुराग्यो, सफल जन्म नानक तब हुआ, जो प्रभ जस मह पा

साहिब निर्मलो मन माने एका तू अजरावर अमर तू सब चालन हारी नाम रसायन पाए ले पर हर दुख भारी रहाओ हर पढ़िए हर बुझिए

दिया समुंद मझार कंदी देसना आवई ना उरवार ना पार वंजी हाथ ना खेवटू जल सागर असराल बाबा जग पाथा महाजाल गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम संभाल रहाउ सतगुरु है बोहिथा शब्द लंघावन हार तिथै पवन ना पावको

अवगण सुपार गुण नहीं, बिन गुण क्यों कर जाओ। सहज शब्द सुख उपजै, बिन भागा तन नाही। जिनकै नाम ना मन वसै,

सुख नहीं गाडे लादे शार विछड़िया मेला नहीं दुख कणो जम द्वार अगे क्या जाना नाही मैं भूले तू समझाए भूले मार्ग जो दसे

लालह गर्भ छोड़िया गुर कै पै सहज सुपाई लालह खसम पछाणिया वड्डी वड्याई खसम मिलिया सुख पाया।

चलना मुखे अमृत नाव मेरे ठाकुर हथ वडियाइया मेल है मन चाओ कीता क्या सलाही है कर देख सोई जिन की आसो मन वसै मैं अवर ना कोई सो साचा सलाही है साची पत होई पंडित पढ़ना पहुंचई बहुआल जंजाला पाप पुन दोए संग में खुदिया जमका।

थीयै पारस संग पीजै वन्नी साचे लाल की किन कीमत कीजै पेखी हाथ न लभई तीरथ नहीं दाने पूछो बेद पढ़ंतिया मूठी बिन माने नानक कीमत

फिरै, ग्रह धर्म गवाए सतगुर ना पेटै, दुर्मत कुमन केरै, दसंतर भवै पाठ पढ़ थाका, तृष्णा हुए बधेरै, काची पिंडी शब्द ना चीनै, उदर भरै जैसे ढूरै, बाबा ऐसी रवत रवै सन्यासी, गुर कै शब्द एक लिब लागी, तेरे नाम रते त्रिपतासी रहाओ, कोली गेरू रंग चढ़ाया, वस्त्र पेख पेखारी, कापड़ फार बनाई खिंथा, चोली माया तारी, घर घर मांगे जग प्रबुद्ध, मन अंधे पतहारी, परम पलाना शब्द ना चीनै, जुए बाजी हारी, अंतर अगन ना गुर बिन बूजै, बाहर कुवर तापै, गुर सेवा बिन भगत ना होवी, क्यों कर कीन से आपै, निंदा कर कर नरक निवासी, अंतर आत्म जापै, अठ सठ तीरथ परम बगूचै, क्यों मल धोपै पापै, छाणी खाक बेभूत चढ़ाई, माया का मग जो है, अंतर बाहर एक ना जाने, साच कहे ते शो है, पाठ पढ़े मुख झूठो बोले, निगुरे की मत ओ है, नाम ना जपई क्यों सुख पावे।

सतावै बिन रत आत्म ज्ञाना अमृत छोड़ महाबिख पीवै माया का देवाना कीर्तना मिटई हुक्म ना बूजै पशुआ माहे समाना हाथ कमंडल कापड़िया मन तृष्णा उपजी भारी स्त्री तज कर काम व्यापिया चित

गगन पताली जनता जोत तुम्हारी सब सुख मुकत नाम धुन बाणी सच नाम उरतारी।

हो हम मैं कर भूले मेरी मेरी करते शीन खरे अन्न धन बिन सह सह सह सहसा फिर पछतावे मुख तूर परे बिरद पया जो बन तन खिसिया कप कंठ बरु दोह नैन ओह नीर धरे चरण रहे कर कंपन लागे साकत राम नारिदय हरे सुरत गई काली हूं तौले किसे न पावे रखियो करे बिसरत नाम ऐसे दुख लागे है जम मार समारे नरक खरे पूरब जन्म को लेख न मितई जन्म मरे का कहो दोष तरे बिन गुर बाद जीवन होर मरना बिन गुर शब्द जन्म जरे खुशी खुआर पए रस भोगण फोकट कर्म विक

सोई। सतगुर मिले मरे मंदा होवे ज्ञान बिचारी जियो। एहो शब्द सार जिसनो लाए गुरमुख कृष्णा भुख गवाए। आपन लिया किशु ना पाईए कर कृपा कल तारी जियो। अगम निगम सतगुरु दिखाया कर कृपा अपने घर आया। अंजन माहि निरंजन जाता जिनको नदर तुम्हारी जियो। गुरमुख होवे सो तत पाए अपना आप विचो गवाए। सतगुर बाजो सब धंद कमावे वेखो मन विचारी जियो। एक भ्रम भूले फिर अहंकारी

तीजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद लाख चौरासी भ्रमते द्राब जन्म अब पायो रे मुड़े तू हो छह रस लपटायो अमृत संग बस्त है तेरे बिख्या स्यो उरजायो रहाओ रत्न जवे हर बन जन आयो कालर लाद चलायो जे कर्म है तुद रहना बसना सो कर कीत न आयो अटल अखंड प्राण सुखदाई एक निमुख नहीं तुझ गायो जहां जाना सो थान वसारियो एक निमुख नहीं मन लायो उत्तर कलत्तर ग्रह देख समग्री इस ही मैं उर जायो जित को लायो तित ही लागा तैसे कर्म कमायो जो भयो कृपाल ता साध संग पाया जन नानक ब्रह्म ते आयो मारु महला पंजवा कर अनुग्रह राख लीनो भयो साधु संग हर नाम

अगम अगाह सिद्ध साधक देव मुन जान वेद करह ओचार सिमर स्वामी सुख सहज पुंचह नहीं अंत पारावार अनक परासत मिटह खिन मह हृदय जप भगवान पावना ते महापावन कोट दान इशनान बाल बुद्ध शुद्ध पुराण।

मित्र सत्धर ना कछु जान सर्ब जी समत कर परगास प्रचंड प्रगट्यो अंधकार बनास पवित्र अपवित्र है किरण लागी।

सुपाए अपाए जो निकट आवे, सीत ता का जाए आप पर का कस न जाने, सदा सहज सुपाई चरण सरन सनाथ इहु मन, रंग राते लाल गोपाल गुण नित गाऊ नानक, पए प्रभ कृपाल मारू महला पंजवा, घर चौथा अष्टपदियां।

का हर जस गुर ते मांगना जागना जागन नीका हर कीर्तन मह जागना लागना लागन नीका गुर चरणी मन लागना एह बिदत सह प्राप्ति जा कह मस्तक भागना कहो नानक तिस सब

हर जस श्रवण सुनावना रहाउ तुद आवत मेरा मन तन हरिया हर जस तुम संग गावना संत कृपा ते हृदय वासै दूजा पाओ मिटावना भगत दया ते बुद्ध परगासै दुर्मत दुख तजावना दर्शन भेट तो होत पनीता पुनरप गर्भ ना पावना नौ निद रिद सिद्ध पाई जो तुमरै मन पावना संत बिना मैं थाओ ना कोई अवर ना सूजै जावना मोहे निर्गुण को कोई ना राखै संता संग सुमावना कहो नानक गुर चलत दिखाया मन मदे हर हर रावना मारू महला पंजवा जीवना सफल जीवन सुन हर जप जप सद जीवना रहाउ पीवना जित मन आगावे नाम अमृत रस पीवना खावना जित भूख ना लागे संतोख सदा।

रख पत परमेश्वर फिर नांगे नहीं थीवना भोगना मन मदे हर रस संत संगत महलीवना बिन तागे बिन सोई आनी मन हर भगती संग सीवना मातिया हर रस महराते तिस बहुड़ना कबहू औखीवना मिलो तिस सर्ब निदाना प्रभ कृपा।

तृथ स ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोरी सो फिर परमंता, दुहु व्यवस्था तेजो मुक्ता, सोई सोहेला पाली है, ग्रह राज मह नरक उदास करोदा, बहु विद वेद पाठ सब सोदा, देही मैं जो रह अलिपता, जिस जन की पूरन काली है, जागत सूता परम भगूता, बिन गुर मुक्त न होइए मीता, साध संग टुटह हो बंधन, एको एक निहाली है, कर्म करे ता बंदा, नह करे ता निंदा, मोह मगन मन व्यापिया चिंदा, गुर प्रसाद सुख दुख सम जाने।

ओ मन माही इस ही मह जिसकी पत राख है तिस साधु चौर टाली है जो सूरा तिस ही होए मरना जो भागे तिस जो नी फिरना जो वरताए सोई पल माने बुझ हुक्म दुरमत जाली है जित जित लाव है तित तित लगना।

हेठ सब जनते इकट्ठे एक तत्ते एक बोलन मिठे हस्त अधोत पया उठ चले ज्यों ज्यों औध विहानिया पाप करेंदड़ सर पर मुठे।

काल जोबन तन छोड़ वंजेसा करन करीम ना जातो करता तिल पीड़े ज्यो कहानिया खुश खुश लैंदा वस्त पराई वेखै सुने तेरे नाल खुदाई दुनिया लभ पया खात अंदर

वानी, शब्द सहज रस अंतर मानी, आपे मुकत तृप्त वरदाता, भगत भाए मन भाई, आप निरालम गुर गम ज्ञाना।

तन जलै पड़कारी मनमुख तके कुंडा चारी बिन सतगुर सेवे क्यों सुख पाई साचे हाथ वडाई हे काम क्रोध अहंकार निवारी तस्कर पंच शब्द संघारी ज्ञान खड़गलै मन स्यों लूजै मनसा मन है समाई हे मां की रकत पिता बिद धारा मूरत सूरत कर अपारा जोत दात जेती सब तेरी तू करता सब ठाई हे तुझी ही किया जम्मन मरना गुर ते समझ पड़ी क्या डरना तू दयाल दया कर देख है दुख दर्द शरीर हो जाई हे निज कर बैस रहे पहु खाया तावत राखे ठाक रहाया कमल विगास हरे सर सुपार आ

चारी खेल तमाशा तुंदू कारी बाजी खेल गए बाजीगर ज्यो निस सुपन पखलाई है तिनको तख्त मिली बड़ियाई निरपो मन वस्या लिवलाई खंडी ब्रह्मंडी पताली पुरी त्रे भवन ताड़ी लाई है साची नगरी तख्त सचावा गुरमुख साच मिले सुख पावा साचे साचे तख्त वडाई हम मैं गणत गवाई है गणत गणिये सहसा जिये।

कह राती। हर प्रभ संगी पहो ना प्रांति, श्रवण स्रोत रज्जे गुरबाणी, ज्योति जोत मलाई है। रख रख पैर तरे पहु तरना।

साच परम पौ पंजन गुरमुख साच सखाई त्रेतै धर्म कला एक चूकी तीन चरण एक दुबदा सूकी गुरमुख हो सो साच पछाने मनमुख पचै अवाई हे मनमुख कदे ना दरगाह सीजै बिन शब्द क्यों अंतर रीजै बांधे आवह बांधे जावह सोजी बूझ ना काई हे दया दुआ परे अद्धि होई गुरमुख विरला चीन कोई दोए पग धर्म धरे तरन।

ठाके कर्म कमाई है। कर्म धर्म कर मुक्त मंगाही, मुक्त पदार्थ शब्द सलाही, बिन गुर शब्द मुक्त न हुई, परपंच कर परमाई है। माया ममता छोड़ी न जाई, से छूटे सचकार कमाई, अहनस भगत रते भी।

हठ निग्रह अपतीज ना पीजै बिन हर गुर किन पत पाई कली काल मह एक कल राखी बिन गुर पूरे किन ना पाखी मन

तारी गुरमुख कोट असंख्य उधारी सर्ब जिया जग जीवन दाता निरपह मैल ना काई हे सगली जाचह गुर पंडारी आप निरंजन अलख अपारी।

शब्द मलाई जांत से पाना सहज समाए त्रे पवन जोत तरी परमेश्वर अवर न दूजा पाई है जिसके चाकर तिसकी सेवा शब्द पतीजै अलख अपेवा भगतां का गुण।

गुरमुख सुरत समाई है, कूड़ मुट्ठी ठगी ठगवाड़ी, ज्यों वाड़ी ओजाड़ उजाड़ी, नाम बिना किस साधना लागे, हर बिसरे दुख पाई है, भोजन साच मिले।

मन तन अर्प मिलै जग जीवन हर सिउं बणत बनाई हे। प्रभु की गत मित कोई ना पावै जे को वड्डा कहाए वडाई खावै साके साहेब तोट ना दाती।

प्राणी हर जप जप हृदय त्याई हे छोड़ो प्राणी कूड़ कबाड़ा कूड़ मारे काल उशाहाड़ा साकत कूड़ पचह मन हउमे दोह मार्ग पचह पचाई हे छोड़ो हो निंदा तात पराई पड़ पड़ दज है शांत न आई मिल सत संगत नाम सलाहो आत्म राम सखाई हे छोड़ हो काम क्रोध बुरे आई हो मैं तंद छोड़ हो लंपटाई सतगुर सरन पर हो ता उबर हो यो तरिय पव जल पाई हे आगे बिमल नदी अगन बिख झेला तिथे अवर न को

एकहु कर नंदर विघ्न नाही गुरमुख तर तारी इउं पव जल पार लंघाई हे देही अंदर नाम नवासी आपे करता है अबनासी ना जियो मरे ना मारिया जाई कर देखे शब्द रजाई हे ओह निर्मल है नाही अंधियारा ओह आपे तख्त बह सत्यारा साकत कूड़े बंद पवाई है मर जन्म है आई जाई हे गुर के सेवक सत गुर प्यारे वही वैसह तखत सो शब्द विचारे तत लह।

शब्द कर जाने किसे ही मंदा आख न चले सच खरा सचियारा ही साच बिना दर सिजे ना कोई साच शब्द पेंज है पत होई आपे बख्श लए किस भावे हम मैं गर्भ निवारा ही गुर कृपा ते हुक्म पछाणे।

जिन तन मन दिया सुरत समोई सर्व जिया प्रतपाल संभाले सो अंतर दाना बीना है गुर सरवर हम हंस प्यारे सागर मह रतन लाल बहु सारी मोती माणक हीरा हर जस गावत मन तन पीना है हर अगम अगाह अगाध निराला हर अंत न पाइय गुरु गोपाला सतगुर मत तारे तार नहारा मेल लए रंग लीना है सतगुर बाजहु।

पाए अमृत रस पाए जम जगात नाही कर लागे जिस अग्न बुझी ठर सीना है काया हंस प्रीत बहुतारी ओह जोगी पुरख ओह सुंदर नारी अहनस भोगै चोज विनोदी उठ चलतै मता ना कीना है श्रिष्ट अपाए रहे प्रभ साजै पौन पानी बह संतर गाजै मनुआ डोलै दूत संगत मिल सो पाए जो किछ कीना है नाम विसार दोख दुख सही है हुक्म भया चलना क्यों रही है नरक कूप मह गोते खावे ज्यों जलते बाहर मीना है चौरासी नरक साकत पोगाई है जैसा की कहतै सो पाई है सतगुर बाजो मुक्त ना होई किरत बांधा ग्रस दीना है खंडे धार गली अत पीड़ी लेखा लीजै तिल ज्यों पीड़ी मात पिता कलत्तर सुत बेली नाही बिन हर रस मुक्त ना की नाही मीत सखे केते जग माही बिन गुर परमेश्वर।

अखर लह चलुहु दर्शन पावहु सहज महलुहु गुरमुख खोज लह जन पूरे इयों समदर्शी चीना ही प्रभ बेअंत गुरमत को पावह गुर कै शब्द मन कौ समझावह सतगुर की बाणी सत सत कर मानुहु इयों आत्म रामै लीना ही नारद सारद सेवक तेरे

नाही। एक दर सेव है दर्द बुझाई, कोई दरगाह पैंदे सतगुरु छडाई। हौ मैं बंधन सतगुरु तोड़े, चित चंचल चलन ना दीनाही। सतगुरु मिलहो चीनहो बेदसाई, जित प्रभ पावहो गणत ना काई। हौ मैं मार करहो गुर सेवा, जन नानक हर रंग पीनाही। मारू महला पहला, असुर संघारण राम हमारा।

शरण तुम्हारी, कर कृपा प्रभ पार उतारी। अगन पानी सागर अत गहरा, गुर सतगुर पार उतारा ही। मन मुख अंदले सो जी नाही, आवह जाहे मरह मर जाही। पूर्व लिखिया लेख न मिटई, जम दारे अंध खुआरा ही। एक आवह जावह कर वास न पावह, किरत के बांधे पाप कमावह। अंदले सोजी बूझ न काई, लोभ बुरा अहंकारा ही। पिर बिन क्या तिस धन सिंगारा, पर पिर राती खसम बसारा। ज्यो बेसवा पूत बाप को कही है, त्यों फोकट कार विकारा ही। प्रेत पिंजर मह दुख कनेरे, नरक पचह।

अगन बेख चाला अपत पशु मन मुख बेताला आसा मनसा कूड कमावह रोग बुरा पुरिया राही मस्तक पहार कलर सिर पहारा क्यों कर भवजल लंगस पारा।

मनमुख दाजै पढ़ पढ़ पाही अमृत नाम गुरु वद जाना नाम जपो सुख साराही सतगुर तुठा सच दृढ़ाई सब दुख मेटे मार्ग पाए कंडा पाए न गढ़ई मूले जिस सतगुर राखन हाराही खेहू खेह रलै तन सीजै मनमुख पाथर सैल न पीजै करन पलाव करे बहुतेरे नरक सुरग अवताराही माया बिख पोए अंगम नाले इन दुबदा कर बहुते गाले सतगुर बाजो प्रीत ना उपजै भगत रत्ते पतिया राही साकत माया कौ बहुतावै है।

राम जपहु अंतरगत ध्यानी, लालच छोड़ रचहु अपरंपर। यूं पावहु मुक्त द्वारा ही, जिस बिसरै जम जोहन लागै। सब सुख जाहे दुखां पुन आगै, राम नाम जप गुरमुख जी अड़ी।

खोज लहो घर अपना बहुड़ ना गर्भ मझारा ही सच तीर्थ लावहु हर गुण गावहु तत्व विचारहु हर लिव लावहु।

जिस को सतगुर मेल मलाई तिस चूका जम पै पाराही पंच तत् मिल काया कीनी तिस महराम रतन लै चीनी आत्म राम राम है आत्म हर पाइय शब्द विचाराही सत संतोख रहो जन पाई।

ताकत कूड़ कपट महतेका अहनस निंदा करह अनेका बिन सिमरन आवह फुन जावह गर्भ जोनी नरक मजा राही।

सिर अपरे हो पार अपाराही, बिन गुर साकत कहो को तरया, हम मैं करता पवजल परया, बिन गुर पार न पावे कोई, हर

ना आवे मनसो प्रभ अपरे अपारा ही गुरते भूले आवो जावो जन्म मरहो फुल पाप कमावो साकत मूड अचेत ना चेत है दुख लागे ता राम पकारा ही सुख दुख पूर्व जन्म के किए सो जाने जिन दाता दिए किसको दोष दे तू प्राणी सहु अपना किया करारा ही हम मैं ममता कर दाया आसा मनसा बंद चलाया मेरी मेरी करत क्या ले चाली बिखला दे शार बिकारा ही हर की भगत करो जन पाई अकथ कथो मन मन समाई उठ चलता ठाक रखो घर अपने दुख काटे काटन हारा ही हर गुरपूरे की ओट पराती गुरमुख हर लेव गुरमुख जाती नानक राम नाम माते उत्तम।

तप्त रहा ताही, चार नदी अग्नि असराला, कोई गुरमुख बूझै शब्द नराला, साकत दुर्मत डूब बहता जह, गुर राखे हर लिवराता ही, अप तेज वाए पृथ्वी आकाशा, दिन मह पांच तत् घर वासा, सतगुर शब्द रह रंग राता, तज माया हूं मैं प्रांता ही, इह मन पीजै शब्द पतीजै, बिन नावै क्या टेक टकीजै, अंतर चोर मोह घर मंदर, इन साकत दूत ना जाता ही, दुंदर दूत पूत पिहाले, खिंचो तान करह बेताले, शब्द सुरत बिन आवै जावै,

बैरागी मन मनसा मार समाता ही सतगुर सेवह से परदाना तिन घट घट अंतर ब्रह्म पछाना नानक हर जस हर जन की संगत दीजै जिन सतगुर हर प्रभ जाता ही मारू महला पहला साचे साहेब सिरजनहारी जिन तार चक्कर

अंत ना जानी जां को अलख लखाए आपी अकथ कथा बुद्ध ताहाए जन्मे को वाजह वाधाए सोहे लड़े अज्ञानी गाए जो जन्म है तिस सर पर मरना किरत पया सिर साहाए संजोग वजोग मेरे प्रभ किए।

जिस तन पल्ले शब्द सच्चे ओ माहाही काची सौदी टोटा आवे गुरमुख वणज करे प्रभ पावे पूंजी साबत रास सलामत चूका जम का फाही सबको बोले आपन पाणे मनमुख दूजे बोल ना जाने अंदले की मत अंदली बोली आई गया दुख ताही दुख में जन्मे दुख में मरना।

राम नाम घट अंतर पूजा अवरना दूजा काहा हे ओढ़ना कथन है सिफत सजाई ज्यों तुद भाव है रह रजाई दरगाह पैंदे जान सुहेले हुक्म सच्चे पातशाह हे क्या कहिए गुण कथ है कनेरे अंत ना पाव है वड्डे वडेरे नानक साच मिले पत राख हो तू सिर शाह पातशाह हे मारू महला पहला दखनी काया नगर नगर गाड़े अंदर।

अनहद वाजै ब्रह्म पौ भाजै सगल व्याप रहया प्रभ साजै सब तेरी तू गुरमुख जाता दरसो है गुण गाएं दा आद निरंजन निर्मल सोई।

जाने जो किछ करे सो आपन पाने लख चौरासी जी अपाई पाने सहा लवाई दा जो तिस पावे सो

कोई, गुर बिन सो जी किना ना होई, साच मिले सो साचे पाई, ना विछड़ दुख पाईंदा, तुरह विछुन्ने ताही रुन्ने, मर मर जन्म है मोहलत पुन्ने, जिस बख्शे तिस

आया हुक्म समाया हुक्मे दीसै जगते उपाया हुक्मे सुर्ग मच पहे आला हुक्मे कला रहाएंदा हुक्मे धरती तौल सिर भारन हुक्मे पौन पानी गहनारन हुक्मे शिव शक्ति घर वासा हुक्मे खेल खलाएंदा हुक्मे आडाणे आगासी हुक्मे जल थल त्रे पवन वासी हुक्मे साहस ग्रास सदा फुन

सुन्नो ब्रह्मा विष्णु महेश उपाई, सुन्ने वर्ते जुग सबाई, इस पद विचारे सो जन पूरा, तिस मिलिए परम चुकाएंदा। सुन्नो सप्त सरोवर थापे, जिन साजे विचारे आपे, इत सत सर मनुआ गुरमुख नावे, फिर बहुड़ जोन ना पाएंदा। सुन्नो चंद सूरज गहनारी, तिसकी जोत त्रे पवन सारी, सुन्ने लख पार नरालम, सुन्ने ताड़ी लाएंदा। सुन्नो धरत आकाश पाई, बिन थम्मा राखे सच कल पाई, त्रे पवन साज में खुली माया, आप उपाय खपाएंदा। सुन्नो खाणी सुन्नो बाणी, सुन्नो उपजी सुन्न समाणी, उत्पुज चलत किया सिर करतै, विस्माद शब्द देखाएंदा। सुन्नो रात दिन सदोह किए, ओपत खपत सुखा दुख दिए, सुख दुख ही ते अमर हतीता, गुरमुख निज कर पाएंदा। शाम वेद रिग जुजर अथर बन, ब्रह्मे मुख माया है।

दुख पाया जिसनो कृपा करे हर गुरमुख गुण चौथा मुक्त कराईंदा सुनो उपजे दास अवतारा शिष्ट उपाय किया पासारा देव दानव गण गंधर्व साजी सब लिखिया कर्म कमाईंदा गुरमुख समझै रोग ना होई ए गुर की पौड़ी जाने जन कोई जुगा जगंतर मुक्त परायण सो मुक्त भया पत पाईंदा पंच तत् सुनो परगासा देह संजोग।

की कर्म अभ्यासा बुरा भला दोए मस्त कलीखे पाप पुन भी जाएंदा उत्तम सतगुर पुरख निराले शब्द रत्ते हर रस मत वाले रिद बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाईए पूरा भाग मलाएंदा इस मन माया को नेहो कनेरा कोई बूझो ज्ञानी करहो नबेरा आसा मनसा हो मैं सहसा नर लोभे कूड़ कमाएंदा सतगुर ते पाए विचारा सुन समाद सच्चे घर बारा नानक निर्मल नाद शब्द धुन सच रामै नाम समाएंदा मारू महला पहला जह देखा तह दीन दयाला आए न जाई प्रभ कृपाला जिया अंदर जुगत समाई रहो निराल मराया जग तिसकी छाया जिस बाप ना माया ना तिस भैन ना भ्राऊ कमाया ना तिसे उपत खपत कुल जाती ओह अज रावर मन पाया।

शब्द अत शीतल सहज पाए लिवलाया त्रै वरताए चौथे घर वासा काल बिकाल किए एक ग्रासा निर्मल ज्योत सर्व जग जीवन गुर अनहद शब्द दिखाया उत्तम जन संत भले हर प्यारी हर रस माते पार उतारी नानक रेण संत जन संगत

अलख लखाया पुरख अलेख सच्चे दीवाना हुक्म चलाए सच निशाना नानक खोज लहो घर अपना।

निरंजन राया, दुख भय भंजन प्रभ अविनाशी, रोग कटे काटी जम फासी, नानक हर प्रभ सो पौ भंजन, गुर मिले हर प्रभ पाया, काल कवल निरंजन जाने, बूझे कर्म सो शब्द पछाण, आपे जाने आप पछाण, सब तिसका चोज सबाया, आपे साहु आपे वणजारा, आपे परखे परखण हारा, आपे कस कस वट्टी लाए, आपे कीमत पाया, आप दयाल दया प्रभ तारी, घट

निरंजन गाया हूं मैं अमित शब्द सुख होई आप विचारे ज्ञानी सोई नानक हर जस हर गुण लाहा सत संगत सच फल पाया मारू महला पहला सच कहो सच्चे कर रहना जीवत मरहो भवजल जग तरना गुर बोहित गुर बेड़ी तुलहा मन हर जप पार लंघाया हूं मैं ममता लोभ बनासन नौ दर मुक्ते दसवै आसन ऊपर परे परे अपरंपर जिने आपे आपे उपाया गुरमत लेव हर लिव तरिया

सरना सच गुर शब्द जित लग तरना कथ कथ देख अपरंपर हुन गर्भ ना जोनी जाया सच बिन सत संतोख ना पावे बिन गुर मुक्त न आवे जावे मूल मंत्र हर नाम रसायन कहो नानक पूरा पाया सच बिन पव जल जाए ना तरिया यो समुंद अथाह महा बिख भरिया।

गुरमुख बूजै शब्द पतीजै उस्तत निंदा किस की कीजै तीनों आप जपो जगदीसर हर जगन्नाथ मन पाया जो ब्रह्मांड खंड सो जानो गुरमुख बूजो शब्द पछाणो कट कट भोगे भोगण हारा रह अतीत सबाया गुरमत बोलो हर जस सूचा गुरमत आखी देखो ऊचा सरवणी नाम सुने हर बाणी नानक हर रंग रंग।

हरे अंतर हर रस पाया, निस दामन ज्यो चमक चंदायन देखै, एहन सजोत निरंतर पेखै, आनंद रूप अनूप स्वरूपा, गुरपूरै देखाया। सतगुर मिलो आपे प्रभ तारी, सस कर सूर दीपक गहनारी, देख अदिष्ट रहो निव लागी, सब त्रे पवन ब्रह्म सबाया। अमृत रस पाए तृष्णा भव जाए, अनुभव पद पावे आप गुआए, ऊंची पदवी ऊंचो ऊंचा, निर्मल शब्द कमाया। अदृष्ट अगोचर नाम अपारा, अतरस मीठा नाम प्यारा, नानक को जुग जुग हर जस दीजै, हर जपियै अंत ना पाया। अंतर नाम परापत हीरा, हर जपते मन मन ते धीरा, दुखट घट पौ भंजन पाईऐ, बहुड़ जन्म ना जाया। भगत हेत गुर शब्द तरंगा, हर जस नाम पदार्थ मंगा, हर पावै गुर मेल मलाए, हर तारे जगत सबाया। जिन जप जपयो सतगुर मतवा के, जम कंकर काल सेवक पगता के, उत्तम संगत गत मित उत्तम, जग पौजल भारत राया। एहो पौजल जगत शब्द गुर तरीय, अंतर की दुबदा अंतर जरीय, पांच बाण ले जम को मारै, गगनंतर तनख चढ़ाया। साकत नर शब्द सुरत क्यों पाईऐ, शब्द सुरत बिन आईऐ जाईऐ, नानक गुरमुख मुक्त परायण, हर पूरे पहाग मलाया। निरपो सतगुर है रखवाला, भगत परापत गुर गोपाला, तुन आनंद अनाहद वाजै, गुर शब्द निरंजन पाया।

नानक गुरमत सो पाया। अंतर की गत सत गुर जाने, सो निरभउ गुर शब्द पछाने। अंतर देख निरंतर बूझे, अनत ना मन डोलाया। निरपौ सो आबे अंतर वसिया, अहनस नाम निरंजन रसिया। नानक हर जस संगत पाई है, हर

आपे सिर सिर हुक्म चलाया, हुक्म चलाए रहया पर पूरे, किस नेड़े किस आखा दूरे, गुपत प्रगट हर कट कट देखो, वरतै ताक सुबाया, जिस को मेले सुरत समाए, गुर शब्दी हर नाम ते आए, आनंद रूप अनूप अगोचर, गुर मिले है परम जाया, मन तन तन ते नाम प्यारा, अंत सखाए चलन वारा, मोह पसार नहीं संग बेली, बिन हर गुर किन सुख पाया, जिसको नदर करे गुर पूरा, शब्द मलाए गुरमत सूरा, नानक गुर के चरण सरेव हो, जिन पूला मार्ग पाया, संत जना हर तन जस प्यारा, गुरमत पाया नाम तुम्हारा, जाचक सेव करे दर हर कै, हर दरगाह जस गाया, सतगुर मिले त महल बुलाए, साची दरगाह गत पत पाए, साकत ठोर नाही हर मंदर, जन्म मरे दुख पाया, सेवहु सतगुर समुंद अथाहा, पावहु नाम रतन तन लाहा, बिखिया मल जाए अमृत सर नाभु, गुर सर संतोख पाया, सतगुर सेवहु संक ना कीजै,

तिस जोहे ना साकै साचे स्यों बने आई हे। तृष्णा अग्न जलै संसारा जल जल खपै बहुत विकारा। मन मुख ठौर न पाए कबहू सतगुर बूझ बुझाई हे। सतगुर सेवन से वडभागी साचै नाम सदा लिब लागी। अंतर नाम रव्या नेह केवल तृष्णा शब्द बुझाई हे। सच्चा शब्द सच्ची है बाणी गुरमुख विरलै किने पछाणी। सच्चा शब्द रत्ते बैरागी आवण जान रहाई हे। शब्द बुझै सो मैल चुकाई निर्मल नाम वसै मन आई। सतगुर अपना सद ही सेवह हम मैं विचों जाई हे। गुर ते बूझै तां दर सूझै नाम मिहूणा कथ कथ लूझै।

ना किशु ना सूजै गुर की दात सदा मन अंतर बाणी शब्द बजाई है जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया कोई ना मेटै तुर फुरमाया सत संगत मह तिन्ही वासा जिनको तुर लिख पाई।

सब सोई गुरमुख विरला बूझै कोई एको रब रहया सब अंतर तिस बिन अवर ना कोई है। लख चौरासी जी उपाय ज्ञानी ध्यानी आख सुनाए सबना रिजक समाहे आपे कीमत होर ना होई है। माया मोह अंध अंधारा हम मैं मेरा पसरिया पासारा अन दिन जलत रह दिन राती गुरबिन शांत ना होई है।

मैं मार तृष्णा अग्न निवारी शब्द चीन सुख होई है काया कुटंब मोह ना बुझै गुरमुख होवै ता आखी सूझै अन दिन नाम रवै दिन राती मिल प्रीतम सुख होई है मनमुख तात दूजै है लागा जनमत की नाम वो अभागा।

हंस बैरागी निज कर ताड़ी लाई हे शब्द मरे सोई जन पूरा सतगुर आख सुनाए सूरा काया अंदर अमृत सर साचा मन पीवे पाए सुपाई हे पढ़ पंडित अवरा समझाए घर जलते की खबर ना पाई बिन सतगुर सेवे नाम ना पाई है पढ़ था के शांत ना आई हे एक भस्म लगाए फिर भेख तारी बिन शब्द है किन मारी अन दिन जलत रह दिन राती परम पेख परमाई हे एक ग्रह कटम मह सदा उदासी शब्द मोए हर नाम निवासी हर दिन सदा रह रंग राती पै पाए भगत चित लाई हे मन मुख निंदा कर कर विगुत्ता अंतर लोभ भौंकै जिस कुत्ता।

पावे कोई, बिन सतगुरु को नाव ना पाए, रब ऐसी बणत बनाई है। एक सिद्ध साधक बहुत विचारी, एक अहनस नाम रते निरंकारी, जिसनो आप मलाए सो बूझै, भगत पाए पहु जाई है। इशनान दान करह नहीं बूझ, एक मनुआ मार मन स्यो लूझ, साचे शब्द रते एक रंगी, साचे शब्द मलाई है। आपे सिरजे दे वड्याई, आपे भाणे दे मलाई, आपे नदर करे मन वस्या, मेरे प्रभ यों फरमाई है। सतगुर सेवह से जन साचे, मनमुख सेव न जानन काचे, आपे करता कर कर वेखै, ज्यों पावै त्यों लाई है। जुग जुग साचा इको दाता, पूरै भाग गुर शब्द पछाता, शब्द मिले से विछड़े नाही, नदरी सहज मलाई है। हम मैं माया मैल कमाया, मर मर जमह दूजा पाया, बिन सतगुर सेवे मुक्त ना होई, मन देखो निवलाई है। जोत सुभावै सोई करसी, आपो हो आ ना किस होसी।

सो सब को जासी दूजे भाए बहदा जम फासी सतगुर राखे से जन उबरे साचे साच समाई है आपे करता कर कर वेख जिसनो नदर करे सोई जन लेख गुरमुख ज्ञान तिस सब किस सूजे अग्ञान।

लए सुख पाए पूरा शब्द मलाई है। दुर्मत झूठी बुरी बुरियार अवगणे यारी अवगणे यार कच्ची मत फीका मुख बोले दुर्मत नाम ना पाई है। अवगण यारी कंत ना पावे मन की झूठी झूठ कमावे फिर का साहु ना जाने मूरख दिन गुर बूझ ना पाई है। दुर्मत खोटी खोट कमावे सिंगार करे फिर खसम ना पावे

न पाई, बिन सतगुर सुख ना पाई। किसनो कहिए जा आप कराई, जित पावे तित राह चलाई। आपे मेहरवान सुखदाता, जो पा

विद्वान मधुसूदन जिसदा हुक्म ना मेटिया जाई है। सेवड भागी जिनी एको जाता घट घट वस रहा जग जीवन दाता। एक थै गुप्त प्रगट है आपे गुरमुख ब्रह्म पौ जाई है। गुरमुख हर जियो एको जाता अंतर नाम शब्द पछाता। जिस तू देह सोई जन पाए नानक नाम वडाई है। मारू महला तीजा सच सलाही गैर गंभीर है। सब जग है तिस ही कह चीर है। सब कट भोग वै सदा दिन राती आपे सुख नवासी है। सच्चा साहेब सच्ची नाई गुर प्रसादी मन वसाई आपे आए वस्या।

बिनसै तहत न लागे बारा, कंचन काया गुरमुख बूझै, जिस अंतर नाम नवासी है। सच्चा चौका सुरत की कारा, हर नाम पूजन सच आधारा। सदा त्रिपत पवित्र है पावन, जित घट हर नाम नवासी है। हौ तिन बलिहारी जो साचै लागे, हर गुण गावे अन दिन जागे। साचा सूख सदा तिन अंतर, रसना

सब सच दिखाया, सच्चै नाम निवासी हे, ब्रह्म ब्रह्म जोनी फिर फिर आया, आप भूला जा खसम भुलाया, हर जियो मिलै ता गुरमुख बूजै, चीनै शब्द अबनासी हे, काम क्रोध भरे हमें अपराधी, क्या मुँह लै बोल है, ना हम गुण ना सेवा साधी, डुब

होएगा। आपे बख्श लह सुख पाई सद ही नाम नवासी है। एहो तन धरती शब्द बीज अपारा हर साचे सेती वणज वापारा।

माया सूते, अपना घर ना संभाल है अंत बगूते, पर निंदा कर है बहु चिंता जल, दुखे दुख नवासी, आपे करत कार कराई, आपे गुरमुख दे बुझाई, नानक नाम रते मन निर्मल।

जम काल घड़ी मोहत निहाली अन दिन हार जासी जाय अंतर लोभ करे नहीं बूझे श्री ऊपर जम काल ना सूझे ऐसे कमाणा सो अगे आया अंत काल क्या की जाय जो सच लागे तिन साची सोए दूजे लागे मन मुख रोए दोहा सिरिया का खसम है आपे आपे गुण मह पी जय ही गुर कै शब्द सदा जन सो है नाम रसायन इहो मन मोह है माया मोह मैल पतंग ना लागे गुरमति हर नाम पी जय ही सबना विच वरतै इक सोई गुर प्रसादी प्रगट होई हौं मैं मार सदा सुख पाया नाए साचै अमृत पी जाहि किल बिख दुख निवारण हारा गुरमुख सेविया शब्द विचारा संकच आपे आप वरतै गुरमुख तन मन पी जाहि माया अग्न जलै संसारी गुरमुख निवारै शब्द विचारी अंतर शांत सदा सुख पाया गुरमति नाम लीजै ही इंद्र इंद्रासन बैठे जम का भौ पावे है जम ना छोड़ै बहु कर्म कमावे है सतगुर भेटै ता मुक्त पाईऐ हर हर रसना पीजै ही मनमुख अंतर भगत ना होई गुरमुख भगत

सारा सच्चा तन खटिया कदे टोट न आवे बूझै को विचारी सच्चै लाए से जन लागे अंतर शब्द मस्तक वड भागे।

सच कमावे साची करनी सारी है। कार कमाई जो मेरे प्रभ भाई हम मैं तृष्णा शब्द बुझाई गुरमत सद ही अंतर शीतल हम मैं मार निवारी है। सच लगे तिन सब किछ पावे सच्चे शब्दे सच सुहावे एथे साचे ते दर साचे नदरी नदर सवारी है। बिन साचे जो दूजे लाया माया मोह दुख सबाया बिन गुर दुख सुख जापे नाही माया मोह दुख भारी है। साचा शब्द जिन्ना मन पाया पूरब लिखिया तिनी कमाया सचो सेव है सच त्याव है सच रते विचारी है। गुर की सेवा मीठी लागी अन दिन सूख सहज समाधि हर हर करत्या मन निर्मल होआ गुर की सेव प्यारी है। सेजन सुखिए सतगुर सच्चे लाए आपे भाणे आप मलाए सतगुर राखे सेजन उबरे होर माया मोह खुआरी है। गुरमुख साचा शब्द पछाता ना तिस कटंब ना तिस माता एको एक रव्या सब अंतर सबना जिया काया धारी है। हम मैं मेरा दूजा पाया किशना चल तुर खसम लिख पाया।

मन तन साचा भगत परे भंडारी हे आपे वेखै हुक्म चलाए अपना भाणा आप कराए नानक नाम रते बैरागी मन तन रसना।

जिन अपनाया तो पछाता ही, जिन ब्रह्मा विष्णु महेश उपाई, सिर सिर तंदै आपे लाई, जिस पावै

ना कोई। गुरमुख ज्ञान सदा सलाही, जुग जुग को जाता ही। मनमुख कार करे सब दुख सबाई, अंतर शब्द नाही क्यों दर जाई। गुरमुख शब्द वसै मन साचा, सद सेवे सुख दाता ही। जह देखा तू सबनी थाई, पूरै गुर सब सोजी पाई। नामो नाम त्याई है सदा सा।

पाई, सच्ची भगति आपे लाई, साची बाणी सदा गुण गावे, इस जन्म में काला हाही, गुरमुख वणज करह पर आप पछाण है, एक सबिन को अवर ना जान है, सच्चा साहु सच्चे वणजारी, पूंजी नाम वसाहाही, आपे साजे सेठ अपाई, विरले को गुर शब्द बुझाई, सतगुर सेव है से जन साची, काते जम का पाही, पन्ने कड़े सवारे साजी, माया मोहे दूजे जंत पाजी, मन मुख फिर है सदा अंध कमाव है, जम का जेवड़ा गल फाही, आपे बख्शे गुर सेवा लाई।

सच्ची नाई, गुरमुख देवै मन वसाई, जिन मन वसया से जन सो है, तिन सिर चूका काहाई, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, गुर प्रसादी मन वसाई, सदा शब्द सलाई।

मनमुख हुक्म न जाने सारा, हुक्मे मन्ने हुक्मे वड़ियाई, हुक्मे वे परवाहाई, गुर प्रसादी हुक्म पछाणे, तावत राखे इकत कर आणे, नामे राता सदा बैरागी, नाम रतन मन ताहाई, सब जग में वरतै इको सोई, गुर प्रसादी प्रगट होई, शब्द सलाह है से जन निर्मल, निज करवासा ताहाई, सदा भगत तेरी सरनाई, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, ज्यों तुद भावै त्यों त्यों राख है, गुरमुख नाम त्याहाई।

गुरमुख पसरिया सब पासारा, गुरमुख होवे सो सच बूझे, शब्द सच्चे सुख ताहाई, गुरमुख जाता कर्म विधाता, जुग चारी गुर शब्द पछाता, गुरमुख मरे ना जन्मे गुरमुख, गुरमुख शब्द समाहाई, गुरमुख नाम शब्द सलाही, अगम अगोचर वे परवाही, एक नाम जुग चार उधारी, शब्दे नाम वसाहाई, गुरमुख शांत सदा सुख पाई, गुरमुख हृदय नाम वसाई, गुरमुख होए सो नाम बूझे, काटे दुर्मत फाहाई, गुरमुख उपजे साच समावे, ना मर जम्मे ना जूनी पावे, गुरमुख सदा रह रंग राती, अन दिन लेंदे लाहाई, गुरमुख

सतगुरु पूरा शब्द सुनाई, अन दिन भगत करहो लिवलाई। हर गुण गावे है सद ही निर्मल, निर्मल गुण पातशाही। गुण का दाता सच्चा सोई, गुरमुख विरला बूझै कोई। नानक जन नाम सलाहे बिगसै, सो नाम बेपरवाहि। मारू महला तीजा, हर जियो सेवे हो अगम अपारा। तिसदा अंत न पाईऐ पारा वारा, गुर प्रसाद रविया घट अंतर। तित घट

पूरै सतगुर बूझ बुझाया, हुक्मे ही सब जगत पाया, हुक्म मन्ने सोई सुख पाए, हुक्म सिर चाह पात चाहाई, सच्चा सतगुर शब्द अपारा।

संसारा सब जग बिन सह नाम वसारा बिन सतगुर सेवे नाम ना पाई नाम सच्चा जग लाही सच्चा अमर शब्द सुहाया पंच शब्द मिलवा जावाया सदा कारज सच नाम सुहेला

महा दुख पारी बिस्ता माहे समाहाई वेद पढ़े पढ़ बाद बखान है काट मह ब्रह्म तिस शब्द ना पछाण है गुरमुख हो वैसो तत् बलोवे रसना हर रस ताहाई तर वत छोड़ है बाहर तावे है मन मुख अंधे साधना पावे है अन रस राती रसना फीकी बोले हर रस मूल ना ताहाई मन मुख देही परम पतारू दुर्मत मरै।

हर पाया, हर जप जाप समाही, मारू महला तीजा। गुरमुख नाद वेद विचार, गुरमुख ज्ञान ध्यान अपार, गुरमुख कार कर

बैरागी निज करवासा पाएंदा गुर की साखी अमृत पाखी सच्चा शब्दे सच सुपाखी सदा सच रंग राता मन मेरा सच्चे सच सुमाएंदा गुरमुख मन निर्मल सत सर नावे मैल न लागे सच सुमावे सचो सच कमावे सद ही सच्ची भगत दिरड़ाएंदा गुरमुख सच बैणी गुरमुख सच नैणी गुरमुख सच कमावे करनी सद ही सच कह दिन राती अवरा सच कहाएंदा गुरमुख सच्ची उत्तम बाणी गुरमुख सचो सच बखाणी गुरमुख सद सेव है सचो सच्चा गुरमुख शब्द सुनाएंदा गुरमुख होवै सो सोजी पाए हम मैं माया परम गवाए गुर की पौड़ी उत्तम उची दर सच्चा हर गुण गाएंदा गुरमुख सच संयम करनी सार गुरमुख पाए मोख द्वार पाए भगत सदा रंग राता आप गवाए समाएंदा गुरमुख होवै मन खोज सुनाए सच्चा नाम सदा निभलाए जो तिस भावै सोई करसी जो सच्चे मन पाएंदा जां तिस भावै सतगुरु मलाए जां तिस भावै ता मन वसाए अपने भाणे सदा रंग राता भाणे मन वसाएंदा मन हथ कर्म करे सो सीजै बहुते भेख करे नहीं पीजै भिखिया राते दुख कमावे दुखे दुख समाएंदा गुरमुख होवै सो सुख कमाए मरण जीवन की सोजी पाए मरण जीवन

दुख पाई, मन ही मन समाएंदा। सेवड भागी जिन्नी सतगुर पाया, हम मैं विचो मोह चुकाया। मन निर्मल फिर मैल ना लागे, दर सच्चै सोभा पाएंदा। आपे करे कराए आपे, आपे वेख थाप उथापे। गुरमुख सेवा मेरे प्रभ पावे, सच सुन लेख पाएंदा। गुरमुख सचो सच कमावे,

खबर न पाई अंत गया पछताएंदा जिन अपाए सो बिद जाने गुरमुख देवे शब्द पछाणे।

मानस जन्म गुर भगत दृढ़ाई बिन भगती बिस्ता विच वासा बिस्ता विच फिर पाईंदा कर्म होवै गुर भगत दृढ़ाई विण कर्मा क्यों पाया जाई आपे करे कराए करता ज्यो भावै तिवै चलाईंदा सिमरत सास्ते अंत न जाने मूर्ख अंधा तत ना पछाने आपे करे कराए करता आपे परम पलाईंदा।

अपाई, सब खेल तमाशा तेरी वडियाई, आपे वेक करे सब साचा, आपे पन कढ़ाएंदा, बाजी गर एक बाजी पाई, पूरे गुरते नदरी आई, सदा अलिपत रह गुर शब्दी, साचे स्यों चित लाएंदा, बाजह बाजे तुन अकारा, आप बजाए बजावन हारा, कट कट पौन वह एक रंगी, मिल पवन सब बजाएंदा, करता करे सो निश्चो होवे, गुर कै शब्दे हो मैं खोवे, गुर प्रसादी किसे दे वडियाई, नामो नाम त्याएंदा।

सेवह क्यों सुख पाइय बिन नावह दुख पाइंदा आप करे तै आप कराई गुर प्रसादी किसै बुझाई गुरमुख होवह से बंधन तोड़ह।

गणत चुकाए सच सच समाएंदा जे सच दे ता पाए कोई गुर प्रसादी प्रगट होई सच नाम सलाहे रंग राता गुर कृपा ते सुख पाएंदा जप तप संयम नाम प्यारा

गुर कै पाणे चलै दिन राती नाम चेत सुख पाएंदा आप सिरंदा सच्चा सोई आप अपाए खपाए सोई गुरमुख होवै सो सदा सलाही मिल साचे सुख पाएंदा नेक जतन करे इंद्री वस न हुई काम क्रोध जलै सब कोई।

हृदय आए बुट्ठा गोविंदा, सहजे भगत करे दिन राती, आपे भगत कराएंदा। सतगुरु ते विछड़े तिन्नी दुख पाया, आन दिन मारिय है दुख सबाया। मत्थे काले महल ना पावे, दुख ही विच दुख पाएंदा। सतगुर सेव है सेवद भागी, सहज पाए सच्ची लिव लागी। सचो सच कमावे सद ही, सच्चा मेल मलाएंदा। जिसनो सच्चा दे सो पाए, अंतर साच भरम चुकाए। सच सच्चा

आप बुझाए बूझै कोई, आपे बख्शे दे वड्याई, आपे मेल मलाएंदा। हम मैं कर दिया जन्म गवाया, आग्या मोह ना चूकै माया, अग्गै जम काल लेखा लेवै, ज्यो तिन कहानी पीड़ाएंदा। पूरै भाग गुर सेवा होई, नदर करे ता सेवे कोई, जम काल तिस नेड़ ना आवै, महल सच्चै सुख पाएंदा। तिन सुख पाया जो तुद पाई,

सदा घट चानन अज्ञान अंधेर गवाएंदा अज्ञानी अंधे दूजे लागे बिन पानी डुब मुए अभागे चल दिया घर दर नजर ना आवे।

जय गुर कृपा ते मन तन पीजै रसना नाम त्याए रस पीजै रस ही ते रस पाएंदा महल अंदर महल को पाए गुर कै शब्द सच चित लाए जिसनो सच दे सोई सच पाए सच्चे सच मलाएंदा नाम वसार मन तन दुख पाया माया मोह सब रोग कमाया बिन नावे मन तन है कुश्ती नरके वासा पाएंदा नाम रते तिन निर्मल देहा निर्मल हंसा सदा सुख नेहा नाम सलाहे सदा सुख पाया निज करवासा पाएंदा सब

अनदिन हर सेव्यो सच्ची बाणी हर जियो शब्द मलाएंदा हर चेत है तिन बलिहार जाऊ गुर कै शब्द तिन मेल मलाऊ तिनकी धूर लाई मुख मस्तक सत संगत बह गुण गाएंदा हर के गुण गावा जे हर प्रभ पावा अंतर हर नाम शब्द सुहावा गुरबाणी चहो कुंडी सुनिए साचे नाम समाएंदा सो जन साचा जे अंतर पाले गुर कै शब्द हर नदर निहाले ज्ञान अंजन पाए गुर शब्दी नदनी नदर मलाएंदा वड्डे भाग इहो शरीर पाया मानस जन्म शब्द चित लाया बिन शब्द है सब अंध अंधेरा गुरमुख किसह बुझाएंदा एक केत आए जन्म गवाए मनमुख लागे दूजे पाए एह वेला फिर हाथ न आवे पग खिसे पछताएंदा गुर कै शब्द पवित्र शरीरा किस विच वसे सच गुणी गहीरा सचो सच विख सब थाई सच सुन मन वसाएंदा हौ मैं गणत गुर शब्द निवारी हर जियो हिरदय रखो उरतारी गुर कै शब्द सदा सलाई मिल साचे सुख पाएंदा सो चेते जिस आप चिताई गुर कै शब्द वसे मन आई आपे वेख आपे बूजे आपे आप समाएंदा जिन मन विच वत पाई सोई जाने गुर कै शब्दे आप पछाणे सोई जन निर्मल बाणी शब्द सुनाएंदा एह काया पवित्र है शरीर

दूजे पाए परम पलाया, हर ना चेते सदा दुख पाए, बिन हर चेते दुख पाएंदा, जे सतगुर सेवे सो परवान, काया हंस निर्मल दर सच्चे जान, हर सेवे हर मन वसाए, सो है हर गुण गाएंदा, बिन भागा गुर सेविया न जाए, मन मुख भूले मोए बिल लाए, जिन को नदर होवे गुर केरी, हर जियो आप मलाएंदा, काया कोट पक्के हट नाले, गुरमुख लेवे वस्त संभाले, हर का नाम त्याए दिन राती, उत्तम पदवी पाएंदा, आपे सच्चा है सुखदाता, पूरे गुर कै शब्द पछाता, नानक नाम सलाए साचा, पूरे भाग को पाएंदा, मारू महला तीजा, निरंकार आकार उपाया, माया मोह हुक्म बनाया, आपे खेल करे सब करता, सुन साचा मन वसाएंदा, माया माई त्रै गुण परसूत जमाया, चारी वेद ब्रह्मे नू फरमाया, वरे महावार तिथि कर, इस जग मह सोजी पाएंदा, गुर सेवा ते करनी सार, राम नाम राखो उरतार, गुरबाणी वर्ती जागे अंतर, इस बाणी ते हर नाम पाएंदा, वेद पढ़े अनदिन वाद समाले, नाम ना चेते बद्दा जम काले, दूजे पाए सदा दुख पाए, त्रै गुण परम पलाएंदा, गुरमुख एकस स्यों लिवलाए, त्रिविध मनसा मन है।

हित रंग साचे माहे समाए, पूरे भाग को एहो रंग पाए, गुरमति रंग चढ़ाईंदा, मनमुख बहुत करे अपमान।

गुरमुख वणज सदा सुख पाई सहजी सहज मलाईंदा सच्चा महल सच्चे भंडारा।

मेल मलाए आपी शब्दे सहज समाइंदा आपे सच्चा शब्द मलाई शब्दे विच्चो परम चुकाई।

रस लह हर रस पाया, शब्द मरह से मरन सवार है, हर के गुण हृदय उरतार है, जन्म सफल हर चरणी लागी, दूजा भाव चुकाया, हर जियो मेले आप मलाई, गुर कै शब्द आप गुआई, अन दिन सदा हर भगती राती, इस जग महला पाया।

सारा, मनमुख अग्या नींद अंधारा, धंदे धावत जन्म गवाया, बिन नाव है दुख पाया, कर्म हुए ता सतगुर पाए, हम मैं महल शब्द जलाई, मन निर्मल ज्ञान रतन चानन, अज्ञान अंधेर गवाया, तेरे नाम अनेक कीमत नहीं पाई।

भगत सुहाई अंतर सुख तेरे मन पाई मन तन सच्ची भगती राता सच्चे सिहो चित लाया हउ मैं विच सद जलै शरीरा कर्म होवै भेटे गुरपूरा अंतर अज्ञान शब्द बुझाई सतगुर ते सुख पाया।

दुख पाया। आवण जाना शब्द निवारे, सच नाम रखे उरतारी। गुर कै शब्द मरे मन मारी, हो मैं जाहि समाया। आवण जाने परज बिगोई, बिन सतगुर थिर कोई ना होई। अंतर जोत शब्द सुख वसिया, ज्योति जोत मलाया। पंच दूत चितवह वेकारा, माया मोह कायो पसारा। सतगुर सेवे ता मुक्त होवै, पंच दूत वस आया। बाज गुरु है मोह गुबारा, फिर डुबे वारू वारा। सतगुर भेटे सच दृढ़ाई, सच नाम मन पाया।

सच्चे माही समाया, घरै अंदर को घर पाई, गुर कै शब्दे सहज सुपाई, उथै सोग वियोग न व्यापै, सहजे सहज समाया। दूजै पाए दुष्टा का वासा, पौंदे फिरह बहु मोह प्यासा, कुसंगत बह सदा दुख पावह, दुखो दुख कमाया। सतगुर बाजो संगत ना हुई, बिन शब्दे पार ना पाए कोई, सहजे गुण रवह दिन राती, ज्योति ज्योत मलाया। काया बिरख पंखी विच वासा, अमृत चुगह गुर शब्द निवासा, उड़ह ना मूले ना आवह ना जाई, निज कर वासा

नाम रतन धन पाया सतगुर की सेवा पाई बिन सतगुर जो दूजे लागे आवह जाहे भ्रम मरह अभागे नानक तिनकी फिर गत होवे जे गुरमुख रह सरनाई गुरमुख प्रीत सदा है साची।

अमृत रास सतगुरु चवाया, दसवें द्वार प्रगट होए आया। तह अनहद शब्द बजह धुन बाणी, सहज सहज समाई है। जिनको करतै तुर लिख पाई, अन दिन गुर गुर करत बेहाई। बिन सतगुर को सीजै नाही, गुर चरनी चित लाई है। जिस भावै तिसे

ज्ञान रतन मन परगट भया नाम पदार्थ सहजे लया ए वडे आई गुरते पाई सतगुरु को सद बल जाई हे प्रगटया सूर निस मिटया अंधियारा अज्ञान मिटया गुर रतन अपारा सतगुर ज्ञान रतन अत भारी

सोवे, गुरमुख नाम समाए समावे, नानक नाम त्याई है। भगता मुख अमृत है बाणी, गुरमुख हर नाम आखव काणी। हर हर करत सदा मन बिगसै, हर चरणी मन लाई है। हम मूर्ख अज्ञान ज्ञान किश नाही, सतगुर ते समझ पड़ी मन माही। हो दयाल कृपा कर हर जीओ, सतगुर की सेवा लाई है। जिन सतगुर जाता तिनेक पछाता, सर्वे राव रहया सुख दाता।

आई सतगुर मन वस्या लिवलाई आप मिलिया जग जीवन दाता नानक अंक समाई है। मारू महला चौथा हर अगम अगोचर सदा अबनासी सर्वे रव रहिया तटवासी तिस बिन अवर न कोई दाता हर तिस ऐसरे वो प्राणी है। जां को राखै हर राखन हारा ताको कोई ना साख।

ता भरपूर समाही सूके ते फुल हरिया की तन हर त्याव हो चोज वडाणी है जो जिया की वेदन जाने तिस साहिब कै हों कुर्बान तिस आगे जन कर बेनंती जो सर्व सुखा का दानी है जो जिये की सार न जाने तिस स्यों किछ न कहिए अजाने मूर्ख स्यों नह लूज पराणी हर जपिए पद निर्वाणी है ना कर चिंत चिंता है करते हर देवे जल थल जनता सबते अचिंत दान दे प्रभ मेरा विच पाथर कीट पखानी है ना करे आस मीत सुत पाई ना करे आस किसे सहा व्यवहार की पराई बिन हर नावे को बेली नाही हर जपिए सारंग पानी है अन दिन नाम जप हो बनवारी सब आसा मनसा पूरे थारी जन नानक नाम जप हो भव खंडन सुख सहजे रैन विहानी है जिन हर सेव्या तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया जो शरण परे तिसकी पत राखे जाए पूछो वेद पुराणी है जिस हर सेवा लाए सोई जन लागे गुर कै शब्द परम भव भागे विचे ग्रह सदा रह उदासी ज्यों कमल रह विच पानी है।

तुझै तह करते हर अन देन नाम बखाणी हे। किस ही जोर अहंकार बोलन का किस ही जोर देबान माया का। मैं हर बिन टेक तारे अवन ना काई तू करते राख मैं निमाणी हे। निमाणे माण करह तुद पावे होर केती चक चक आवे जा।

गुर पद साद परम पद पाया, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, बिन सेवा पछो तानी हे। तू सब मह वर्त है हर जगन्नाथ, सो हर जपै जिस गुर मस्त कहाथ, हर की शरण पया हर जापी, जन नानक दास दसाणी हे। मारू सोले महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कला उपाय तरी जिन धरना, गगन रहाया हुक्मे चरना, अगन उपाय ईंधन मैं बांदी, सो प्रव राख पाई है, जी जंत को रिजक संबाहे, करण कारण समरथ अपाहे, थिन मह थाप यथापन हारा, सोई तेरा सहाई है। मात गर्भ में जिन प्रित पालिया, सास ग्रास होए संग संभालिया, सदा सदा जपिया सो प्रीतम, वड्डी जिस वड्याई हे। सुल्तान खान करे खिन कीरे, गरीब नवाज करे प्रभ मीरे, गर्भ निवारण सर्ब सुधारण, किस कीमत कही ना जाई हे। सो पतवंता सो तनवंता, जिस मन वस्या हर भगवंता, मात पिता सुत बंधप पाई, जिन एह सृष्ट उपाई हे। प्रभ आए सरना पौ नहीं करना, साध संगत निश्चो है तरना, मन बच कर्म अरादी करता, तिस नाही कदे सजाई हे। गुण निदान मन तन महरव्या, जन्म मरण की जोन ना पव्या, दुख बनास किया सुख डेरा, ज्ञान तृप्त रहे आगाई हे।

चमटाई है। हर का नाम कोट लख बाहा, हर जस कीर्तन संग धन ताहा। ज्ञान खड़ग कर कृपा दीना, दूत मारे कर ताई है। हर का जाप जपो जप जपने, जीत आव हो वस हो घर अपने। लख चौरासी नरक ना देखो, रसक रसक गुण गाई है। खंड ब्रह्मांड उधार नहारा, ऊच अथाह अगम अपारा। जिसनो कृपा करे प्रभ अपनी, सो जन तिसह त्याई है। बंधन तोड़ लिए प्रभ मोले, करके

ऐसा वणज करहो ग्रह पीतर जित उतरे भूख प्यासा ही सगले कर्म धर्म जुग साधा बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा पई कृपा।

तुम संग रहना, जा सदे ता ऊठ सदा साहे, जो प्रिय बचन कहे धन साचे, तन कशु न समझे चंचल काचे, बहोर बहोर फिर ही संग मांगे, ओह बात जाने करहा साहे, आई आ गया फिर हो बुलाया, ना तन पुछी ना मता पकाया, ऊठ सदायो शूटर माटी, देख नानक मिथन मुहासाहे, रे मन लोभी सुन मन मेरे, सतगुर सेव दिन रात सदेरे, बिन सतगुर पचमुए साकत, नगुरे गाल जम फासाहे, मन मुख आवे मन मुख जावे, मन मुख फिर चोटा खावे, जितने नरक से मन मुख भोगे, गुरमुख लेप ना मासाहे, गुरमुख सोए जे हर जियो पाया, जिस कौन मिटावे जे प्रभ पहराया, सदा आनंद करे आनंदी, जिस सिर पाओ पया गल खासा ही, हों बलिहारी सतगुर पूरे, शरण के दाते बचन के सूरे, ऐसा प्रभ मिलिया सुखदाता, विचरना कत ही जासा ही, गुण निदान किश कीम ना पाई, कट कट पूर रहयो सब ठाई, नानक सरन दीन दुख भंजन, हों रेण तेरे जो दासा ही, मारू सोलह महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, करे आनंद आनंदी मेरा, कट कट पूरन सिर सिर नबेरा, सिर साहा कै सच्चा साहिब, अवर नाही को दूजा ही, हर कवंत आनंत दयाला, प्रगट रहो प्रभ सर्ब उजाला, रूप करे कर देख बिगसै, आपे ही आप पूजा ही।

तू है वड राजा, हुक्म सच्ची कह पूरे काजा, अंतर बाहर सब किस जाने, आपे ही आप पति जाहे।

सहज घर तेरे अम्यो तेरी दृष्टि जाहे तेरी दात तुझे ते होवे देह दान सबसे जंत लोवे टूट न आवे पूर भंडारे तृप्त रहे आगी जाहे जाचे है सिद्ध साधक बनवासी जाचे है जति सती सुखवासी एक दातार सगल है जाचिक देह दान सृष्टि जाहे करह भगत अर रंग अपारा खिन मह थापयो थापनहारा भारू तोल बेअंत स्वामी हुक्म मन भगती जाहे जिस देह दर्स सोई तुद जाने ओह गुर कै शब्द सदा रंग माणे।

जिस कीते आवह तिस पौ केहा, अवर कहा किस की जाहे। तृष्णा बूझी अंतर ठंडा, गुरपूरे लै टूटा गंडा। सुरत शब्द हृदय अंतर जागी, हमयो चोल चोल पी जाहे। मरे नाही सद सद ही जीवे, अमर भया अबनासी।

सद खट कर्मा गुर पवित्र अस्थान नाही। गुर सिमरत सब किल विख नास है, गुर सिमरत जम संग ना फास है। गुर सिमरत मन निर्मल होवै, गुर काटे अपमान नाही। गुर का सेवक नरक ना जाई, गुर का सेवक पार ब्रह्म त्याई। गुर का सेवक साध संग पाई, गुर करता नित जी दाना है। गुरुद्वारे हर कीर्तन सुनिए, सतगुर भेट हर जस मुख भणिए। कल कलेश मटाए सतगुर, हर दरगाह देवै माना है। अगम अगोचर गुरु दिखाया, भूला मार्ग सतगुर पाया। गुर सेवक को बिघन ना भगती, हर पूर दरड़ाया ज्ञाना है। गुर दृष्टाया सबनी ठाई, जल थल पूर रहया गोसाई। ऊच ऊन सब एक समाना, मन लागा सहज ध्याना है। गुर मिले सब तृष्ण बुझाई, गुर मिले नह जो है माई। सत संतोख दिया गुर पूरे, नाम अमृत पी पाना है। गुर की बाणी सब माहे समाणी, आप सुनी ते आप बखानी। जिन जिन जपी तेई सब निस्तरे, तिन पाया निचल थाना है। सतगुर की महिमा सतगुर जाने, जो किस करे सो आपन पाने। साधु तूर जाचे हैं जन तेरे, नानक सद कुर्बाना है। मारू सोले महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आद निरंजन प्रव निरंकारा, सब मह वरतै आप नरारा। वर्ण जात चिन्ह नहीं कोई, सब हुक्मे सृष्ट उपाएंदा। लख चौरासी जोन सबाई, मानस कहो प्रभ दी वड्याई। इस पौड़ी ते जो नर चूकै, सो आए जाए दुख पाएंदा। कीता होवै तिस क्या कहिए, गुरमुख नाम पदार्थ लहिए। जिस आप भुलाए सोई भूलै, सो बूझै जिसह बुझाएंदा। हरख सोग का नगर एहु किया, से उभरे जो सतगुर सरनिया। त्रिहां गुणा ते रह निरारा, सो गुर

मंत्र दरड़ाए औखद सच नाम रिद गायना। जिस नामे को तरसह बहु देवा सगल भगत जाकी कर दे सेवा। अनाथा नाथ दीन दुख भंजन सो गुर पूरे ते पायना। होर द्वारा कोई ना सूजै त्रे पवन तावै ता किशु ना बूजै। सतगुर साह भंडार नाम जिस एह रतन तिसै ते पायना। जाकी धूर करे पुनीता सुर नर देव ना पावह मीता। सत पुरख सतगुर परमेश्वर जिस भेट तपार परायना। पार जात लोड़ है मन प्यारे काम तेन सोही दरबारे। तृप्त संतोख सेवा गुरपूरे नाम कमाए रसायना। गुर कै शब्द मरह पंच धातु भय पार ब्रह्म होवह निर्मला तू। पारस जब भेट है गुरपूरा ता पारस परस दखायना। कई बैकुंठ नाही लवै लागे मुक्त बपड़ी पी ज्ञानी त्यागे। एक अंकार सतगुर ते पाई है हौ बल बल गुर दरसायना। गुर की सेव न जाने कोई गुर पार ब्रह्म अगोचर सोई। जिसनो लाए लए सो सेवक जिस वड भाग मथायना। गुर की महिमा वेद न जाने है तो शमात सुन सुन वाखाण है। पार ब्रह्म अपरंपर सतगुर जिस सिमरत मन सीत लायना। जाकी सोए सुनी मन जीवै हृदय वसै ता ठंडा थीवै। गुरमुखो अलाए ता सोभा पाए किस जम कै पंथ ना पायना। संतन की सरनाई पड़िया जियो प्राण धन आगै धरिया। सेवा सुरत ना जाना काई तुम करो दया किरमायना। निर्गुण को संग लेहो रलाए कर कृपा मोहे टहले लाए। पक्का फिरो पीसो संत आगे चरण धोए सुख पायना। बहुत द्वारी भ्रम भ्रम आया तुमरी कृपा ते तुम सरनाया। सदा सदा संत है संग राखो एहो नाम दान देवायना। भये कृपाल गुसाई मेरे दर्शन पाया सतगुर पूरे। सुख सहज सदा आनंदा नानक दास दसायना। मारू सोलहे महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सिमरह धरती अर आकाशा सिमरह चंद सूरज गुणतासा। पौन पानी बैसंतर सिमरह सिमरह सगले पार जना। सिमरह खंड दीप सब लोवा सिमरह पाताल पुरियां सच सोवा। सिमरह खानी सिमरह बाणी सिमरह सगले हर जना। सिमरह ब्रह्मे विष्णु महेशा सिमरह देवते कोड़ ते तीसा। सिमरह जाख दैत सब सिमरह अगंत न जाई जस गना। सिमरह पास पंखी सब भूता सिमरह बन पर्वत अवतूता। लता बली साख सब सिमरह रव रहे आस्वामी सब मना। सिमरह थूल सूखम सब जनता सिमरह सिद्ध साधक हर मनता। गुप्त प्रगट सिमरह प्रभ मेरे सगल पवन का प्रभ तना। सिमरह नर नारी आश्रमा सिमरह जात जोत सब वरना। सिमरह गुणी चतुर सब बेते सिमरह रैणी अर दिना। सिमरह घड़ी मूरत पल निमखा सिमरह काल अकाल सोच सोचा। सिमरह सौन शास्त्र संजोगा अलख ना लखिए एक खिना। कर्ण कराम नहार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी। कर कृपा जिस भगती लाव हो जन्म पदार्थ सो जिना। जान कै मन बूठा प्रभ अपना पूरे कर्म गुर का जप जपना। सर्व निरंतर सो प्रभ जाता बहुड़ना जो नी भरमुरुना। गुर का शब्द वसै मन जाके
दुख दर्द प्रमता का भाग है, सुख सहज आनंद नाम रस, अनहद बाणी सहज तुना, सोतनवंता जिन प्रभ त्याया, सोपतवंता जिन साध संग पाया, पार ब्रह्म जाकै मन बूठा, सोपूर कर्मा नाशिना, जल पल महियल स्वामी सोई, अवर्मा कहिय दूजा कोई, गुर ज्ञान अंजन काटे ओ ब्रह्म सगला, अवर्णा दिसै एक बिना, ऊचे ते ऊचा दरबारा, कहन न जाई अंत न पारा, गहर गंभीर अथाह स्वामी, अतुल न जाई क्या मिना, तू करता तेरा सब किया, तुझ बिन अवरना कोई बिया, आद मद अंत प्रव तू है, सगल पसारा तुम तना, जम दूत तिस निकट न आवै, साध संग हर कीर्तन गावै, सगल मनोरथ ताके पूरन, जो सर्वणी प्रभ का जस सुना।

का कर्ण करामन सब तू है नाही किस असाड़ा तुम है पठाए ता जग मह आई जो तुझ पाणा से कर्म कमाई तुझ ते बाहर किशु ना हुआ ता भी नाही किस काड़ा ऊहा हुक्म तुम्हारा सुनिए ईहा हर जस तेरा भणिए आपे लेख अलेख है आपे तुम सियो नाही किस झाड़ा तू पिता सब बार कथारे ज्यो खिलावे है त्यो खेलन हारे उजड़ मार्ग सब तुम ही कीना चले नाही कोवे पाड़ा एक बसाए रखे ग्रह अंतर एक पठाए देश दसंतर एक ही को कास एक ही को राजा इन मैं कही है क्या कूड़ा कमन सो मुक्ति कमन सो नरका कमन संसारी कमन सो भगता कमन सो दाना कमन सो होछा कमन सो सुरता कमन जड़ा हुक्मे मुक्ति हुक्मे नरका हुक्म संसारी हुक्मे भगता हुक्मे होछा हुक्मे दाना दूजा नाही अवर धड़ा सागर कीना आत तुम पारा एक खड़े रसातल कर मनमुख गावारा एक ना पार लंघावे है आपे सतगुर जिनका सच बेड़ा कौतक काल एहो हुक्म पठाया जी जंत उपाय समाया वेखै विगसै सब रंग माणी रचन कीना एक अखाड़ा वड्डा साहिब वड्डी नाई वड दा तार वड्डी जिस जाई अगम अगोचर बे अंत अतोला है नाही किस आहाड़ा कीमत कोई ना जाने दूजा आपे आप निरंजन पूजा आप सो ज्ञानी आप त्यानी आप सतवंता अत गाड़ा केतड़िया दिन गुप्त कहाया केतड़िया दिन सुन समाया केतड़िया दिन धुंधू कारा आपे करता प्रगटड़ा आपे शक्ति सबल कहाया आपे सूरा अमर चलाया आपे शिव वरताई नियंतर आपे शीतल ठार गड़ा जिसह नवाजे गुरमुख साजे नाम वसै तिस अनहद वाजे तिस ही सुख तिस ही ठकुराई तिसह न आवै जम नेड़ा कीमत कागद कही ना जाई कहो नानक बे अंत गुसाई आद मद अंत प्रभ सोई हाथ तिसै कह निबेड़ा तिसै शरीक ना ही रे कोई किस ही बुतै जवाब ना होई नानक का प्रभ आपे आपे कर कर वेखै चोज खड़ा मारू महला पंजवा अचुत पार ब्रह्म परमेश्वर अंतर जामी मध सूदर दामोदर स्वामी रिखी केस गोवर्धन तारी मुरली मनोहर हर रंगा मोहन माधव कृष्ण मरारे जगदीश्वर हर जियो असुर संघारे जग जीवन अबनासी ठाकुर घट घट वासी है संगा धरनी तर ईस नरसिंह नारायण दाड़ा अगरे प्रथम तरायण बावन रूप किया तुद करते सब ही सेती है चंगा श्री राम चंद जिस रूप नारे किया बनवाली चक्र पान दर्श अनूपिया सहस नेतर मूर्त है सहसा एक दाता सब है मंगा भगत वचल अनाथ है नाथे गोपी नाथ सगल है साथे वासुदेव नरंजन दाते वर्ण ना साकों गुण अंगा मकंद मनोहर लक्ष्मी नारायण द्रौपदी लज्जा निवार उदाहरण कमला कंत करह कंतूहल आनंद बनोदी निसंगा मोग दर्शन आजूनी संभव अकाल मूरत जिस कदे नाही खो अवनासी अवगत अगोचर सब किस तुझ ही है लगा श्री रंग बैकुंठ के वासी माश काश कूरम आग्या अवतरासी केशव चलत करह निराले कीता लोड़ है सो होएगा
निराहारी निरवैर समाया, धार खेल चतुर पुज कहाया, सावन सुंदर रूप बनावह, देण सुनत सब मोहैगा, बनमाला बेभूखन कमल नैन, सुंदर कुंडल मुकुट बैन, शंख चक्र गदा है तारी, महासारथी सतसंगा, पीत पितंबर त्रिपवन तनी, जगन्नाथ गोपाल मुख पणी, सारंग धर भगवान बीठला, मैं गणत न आवै सरबंगा, निह कंटक निह केवल कही है, तनंजय जल थल है मही है, मृत लोक पयाल समीपत, अस्तर थान जिस है अपगा, पतत पावन दुख पै पंजन, हंकार निवारण है पव खंडन, भगति तोखत दीन कृपाला, गुणे न कित ही है पिगा, निरंकार अशल अडोलो, ज्योत स्वरूपी सब जग मौलो।

परम पद पावो जिस प्राप्त सो पावेगा जिनको कृपा करी सुख दाती तिन साधु चरण लै हृदय पराती सगल नाम निधान तिन पाया अनहद शब्द मन वाजंगा कीर्तम नाम कथे तेरे जिहवा सत नाम तेरा परा पूर्वला कहो नानक भगत पये सरनाई देहो दर्श मन रंग लगा तेरी गत मित तू है जान है तू आपे कथ है तै आप बखान है नानक दास दासन को करियो हर भाव है दासा राख संगा मारू महला पंजवा अल्लाह अगम खुदाई बंदे छोड़ ख्याल दुनिया के तंदे हुए पै खाक फकीर मुसाफर एहो दरवेश कबूल दरा सच निवाज यकीन मसल्ला मनसा बार निवार हुआसा देह मसीत मन मौलाना कलम खदाई पाक खरा सरासरयत लेक मावहु तरीकत तर्क खोज टलावहु मारपत मन मारहु अबदाला मिलहु हकीकत जित फिर न मरा करान कतेब दिल माहे कमाही दस औरात रखो बदराही पंच मर्द सिदकले बंद हो खैर सबूरी कबूल परा मक्का मेहर रोजा पै खाका पिसत पीर लफज कमाए अंदाजा पूर नूर मुस्क खुदाया बंदगी अल्लह आला हुजरा सच कमावे सोई काजी जो दिल सोदै सोई हाजी सो मुल्ला मलऊन निवारे सो दरवेश जिस सिफत धरा सबे वक्त सबे कर वेला खालक याद दिले महमौला तस्बी याद करहु दस मर्दन सुन्नत सील बंधान बरा दिल मह जानहु सब फिलहाला खिलखाना बिरादर हमू जंजाला मीर मलक उमरे फानाया एक मुकाम खुदाए दरा अवल सिफत दूजी साबूरी तीजै हलेमी चौथे खैरी पंजवे पंजे इकत मकामे एह पांच वक्त तेरे अपर परा सगली जान करो मौदीफा बद अमल छोड़ करो हाथ पूजा खुदाए एक बुझ देव हो बांगा बुरगु बर खुरदार खरा हक हलाल बखोर हो खाना गिल करे आओ तो वो मैं लाना पीर पछाणे पिस्ती सोई अजराइल ना दोज ठरा काया किरदार औरत यकीना रंग तमाशे मान हकीना नपाक पाक कर हदूर हदीसा साबत सूरत दस्तार सिरा मुसलमान मोम दिल होवे अंतर की मल दिल ते धोवे दुनिया रंग ना आवे नेड़े ज्यों कुसम पाट घ्यो पाक हरा जाको मेहर मेहर मेहरवाना सोई मर्द मर्द मर्दाना सोई सेख मसाय कहाजी सो बंदा जिस नजर नरा कुदरत कादर करन करीमा सिफत मोहब्बत अथाह रहीमा हक हुकम सच खुदाया बुझ नानक बंद खलास तरा मारू महला पंजवा पार ब्रह्म सब ऊच बराजी आपे थापे उथापे साजे रब की सरण गहत सुख पाईए किस भौ न व्यापै बालका गर्भ अगन मह जिन्ह उभारिया रक्त किरम मह नहीं संघारिया अपना सिमरन दे प्रतपालिया ओहो सगल कटां का मालका चरण कमल सरण आई आया साध संग है हर जस गाया जन्म मरण सब दुख नवारे जप हर हर भौ नहीं काल का समरथ अकथ अगोचर देवा जी जंत सब तां की सेवा अंडज जेरज सेतज उत्पुज बहु परकारी पालका किसह प्राप्त।

आदि अंत मद प्रभ सोई, आपे करता करे सो होई। ब्रह्म पो मिटिया साध संगते, दालत ना कोई काल का। उत्तम बाणी गाओ गोपाला, साध संगत की मंगो होर वाला। बासन मेट न बासन होई है, कल मल सगले जाल का। संतां की एह रीत नराली, पार ब्रह्म कर देखह नाली। सास सास आराधन हर हर, क्यों सिमरत की जय आल का। जह देखा तह अंतर जामी, निमख न विसरहो प्रभ मेरे स्वामी। सिमर सिमर जीव है तेरे दासा, बन जाल पूर्ण थाल का। तत्ती वाओ ना ताको लागे, सिमरत नाम अन दिन जागे। अनद बनोद करे हर सिमरन, तिस माया संग ना ताल का। रोग सोग दुख तिस नाही, साध संग हर कीर्तन गाही। अपना नाम देहे प्रभ प्रीतम, सुन बेनंती खालका। नाम रतन तेरा है प्यारे, रंग

जिन विसरह नाही काहू बेरा, तिन कै संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई, एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अहंकार जाए, किस जन को उपदेश निर्माल का, तुद विण नाही कोई मेरा, गुर पकड़ाए प्रभ के पैरा, हौ बलिहारी सतगुर पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का, सास सास प्रभ बिसरै नाही, आठ पहर हर हर कौ त्याई, नानक संत तेरै रंग राती, तू समरथ वडाल का, मारू महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, चरण कमल हिरदय नित तारी, गुरपूरा खिन खिन नमचकारी, तन मन अर्प धरी सब आगे, जग मह नाम सुहावना, सो ठाकर क्यों मनहु वसारी, जियो पिंड दे साज सवारी, सास ग्रास संभाले करता, कीता अपना पावना, जाते बिरथा को नाही, आठ पहर हर रख मन माही, साध संग पाजे चुत स्वामी, दरगाह सोभा पावना, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सहज सुख नौ निद,

पदार्थ जीत पराणी, काम क्रोध निंदा पर हरिय, हर रसना नानक गावना, जिस रूप ना रेखिया कुन नहीं जाती, पूर्ण पूर रहे दिन राती, जो जो जपै सोई बड़ भागी, बहुड़ना जोनी पावना, जिसनो बिसरै पुरख बधाता, जलता फिरै रह नित ताता, किरत कण को रखै ना कोई, नरक कोर मह पावना, जियो प्राण तन धन जिन साजिया, मात गर्भ मह राख निवाजिया, किस स्यो प्रीत छाड़िया नराता, काहू सिरै ना लावना, तार अनग्रहो स्वामी मेरे, कट कट वस है सबन कै नेरे, हाथ हमारे कछु है नाही, जिस जनाए है किसे जनावना, जा कै मस्तक तुर लिख पाया, किस ही पुरख ना व्यापै माया, नानक दास सदा सरनाई, दूसर लवै ना लावना, आग्या दुख सुख सब कीने, अमृत नाम बिरलै ही कीने, ताकी कीमत कहन ना जाई, जत कत ओही समावना, सोई भगत सोई वडदाता, सोई पूर्ण पुरख बधाता, बाल सहाय सोई तेरा, जो तेरे मन पावना, मृत दुख सुख लिख पाए, तिल नहीं बध कट है ना कटाए, सोई होए जे करते पावे, कह कह आप मनावना, अंध कूप ते से ही काडे, जन्म जन्म के टूटे गांडे, कृपा तार रखे करे अपने, मिल साधु गोविंद त्यावना।

एक बांधे एक ढीलिया एक सुखिए हर प्रीता नानक सच्चा मन ले सच करनी सच रीत पौड़ी गुरते ज्ञान पाया अत खड़ग करारा दूजा भ्रम गढ़ कटिया मोह लोभ अहंकारा हर का नाम मन वसिया गुर शब्द विचारा सच संजम मत उत्तम हर लगा प्यारा सब सचो सच वर्तदा सच सिरजनहारा। सलोक महला तीजा केदारा रागा विच जानिए पाई शब्दे करे प्यार सत संगत स्यों मिल दूर है सच्चे तरे प्यार विच्चों मल कटे अपनी कुल्ला का करे उदार गुणा की रास संग्रह अवगण कड्डै वडार नानक मिलिया सो

आवण जावण दुख घना कदे ना चूकै चिंद कापड़ जिवै पछोड़ी है कड़ी मोहत कड़ियाल नानक सच्चे नाम बिन सिरों ना चुकै जंजाल महला तीजा त्रे पवन ढूंढी सजना हम मैं बुरी जगत ना चुर ही अड़े सच चो नानक सचो सच पौड़ी गुरमुख आपे बख्शियोन हर नाम समाने आपे भगती लायोन गुर शब्द निशाने सनमुख सदा सोहणे सच्चै दर जाने ऐथै उथै मुक्त है जिन राम पछाणे तन तन से जन जिन हर सेविया तिन हौं कुरबाणी सलोक महला पहला महल कुचजी मड़बड़ी काली मनहु कसुद जे गुण होवन ता फिर रवै नानक अवगुण मुंद महला पहला साच सील सच संजमी सा पूरी परवार नानक अहलस सदा भली फिर कै हेत प्यार पौड़ी अपना आप पछाणिया नाम निधान पाया किरपा करके अपनी गुर शब्द मलाया गुर की बाणी निर्मली हर रस पी आया हर रस जिन्नी चाखिया अन रस ठाक रहाया हर रस पी सदा तृप्त भये फिर तृष्णा भुख गवाया सलोक महला तीजा फिर खुशिये तन रावीए तन उर नाम शिंगार नानक तन आगे खड़ी सोभा बंती नार महला पहला ससुरह पई है कंत की कंत अगम अथाह नानक तन सुहागणी जो भाव है वे परवाह पौड़ी तख्त राजा सोबह जे तख्त लायक होई जिन्नी सच पछाणिया सच राजे से एह भूपत राजे ना आखी है दूजे पाए दुख होई कीता क्या सलाही है जिस जांदे बिलम ना होई निश्चल सच्चा एक है गुरमुख बूझै सो निश्चल होई सलोक महला तीजा सबना का फिर एक है फिर बिन खाली नाही नानक से सुहागणी जे सतगुर माहे समाहे महला तीजा मन के अधिक तरंग त्यों दर साहिब छुट्टी है जे राचै सच रंग गूढ़ै रंग अपार कै नानक गुर प्रसादी छुट्टी है जे चित लगै सच पौड़ी हर का नाम अमोल है त्यों कीमत कीजै आपे सिष्ट सब साजियन आपे वरतीजै गुरमुख सदा सलाही है सच कीमत कीजै गुर शब्दी कमल बेगासिया एव हर रस पीजै आवण जाना ठाकिया सुख सहज सवीजै सलोक महला पहला।

होए सेव गति गए, मर जन्म है फिर आवे है। सलोक महला तीजा, कागो होए न उजला लोहे नाव ना पार, पिरम पदार्थ मन ले धन सवार नहार। हुक्म पछाण उजला सिर काष्ट लोहा पार, कृष्णा छोड़े भय वसे नानक करनी सार। महला तीजा, मारू मारन जो गए मार ना सकह गवार, नानक जे उह मारी है गुर शब्दी विचार। इहो मन मारिया ना मरे जे लोचे सब कोई, नानक मन ही कहो मन मारसी जे सतगुर भेटे सोई। पौड़ी, दोए तरफा उपायन विच सख्त शिव वासा, शक्ति किने ना पायो फिर जन्म बनासा। गुर सेवे शांत पाई है जप सास ग्रासा, सिमरत सास्त सोध देख उत्तम हरदासा। नानक नाम बिना को थिर नहीं, नामे बल जासा। सलोक महला तीजा, हुआ पंडित जोत की वेद पढ़ा मुख चार, नव खन मदे पूजिया अपने चज विचार। मत सच्चा अखर भुल जाए चौके पिटे ना कोए, झूठे चौके नानका सच्चा एको सोए। महला तीजा, आप उपाय करे आप आपे नदर करे, आपे देवड़िया कहो नानक सच्चा सोए। पौड़ी, कंटक काल एक है होर कंटक ना सूजै, अफर्यो जग मह वर्तदा पापी स्यों लूजै। गुर शब्दी हर पेदी है हर जप हर बूजै, सो हर सरनाई छुट्टी है जो मन स्यों जूजै। मन विचार हर जप करे हर दरगाह सीजै। सलोक महला पहला, हुक्म रजाई साखती दरगाह सच कबूल, साहिब लेखा मंगसी दुनिया देख ना भूल। दिल दरवानी जो करे दरवेसी दिल रास, इश्क महबत नानका लेखा करते पास। महला पहला, अलगो जोए मधुकड़ो सारंग पान सबाई, हीरे हीरा बेदिया नानक कंठ सुपाए। पौड़ी, मनमुख काल वे आपदा मोहे माया लागे, खिन मह मार पछाड़सी पाए दूजे ठागे। फिर वेला हाथ न आवई जम का डंड लागे, तिन जम डंड न लगई जो हर लिव जागे। सब तेरी तुद छामणी सब तुदे लागे। सलोक महला पहला, सर्बे जोए अगश्मी दुख कनेरो आत, कालर लादस सर लांगनो लाभ ना पूंजी साथ। महला पहला, पूंजी साचो नाम तू अखुटो दर्ब अपार, नानक वखर निर्मलो धन साहा वापार। महला पहला, पूरब प्रीत प्राण ले मोटो ठाकुर मान, माथे उभे जम मारसी नानक मेलण नाम। पौड़ी, आपे पिंड सवारियों विच नव निद नाम, एक आपे परम पलायन तिन निफल काम। इकनी गुरमुख बुझिया हर आत्म राम, इकनी सुनकै मन्या हर उत्तम काम। अंतर हर रंग उपजिया गाया हर गुण नाम। सलोक महला पहला, पोल तन पै मन वसै हेकै पद रहीड, अत डाहपन दुख कणु तीने थाम परीड। महला पहला, मांडल भेद से बाजणु कणो धड़िय जोए, नानक नाम संभाल तू बीजो अवर ना कोए। महला पहला, सागर गुणी अथाह किन हथाला देखिए, वड्डा वे परवाह सतगुर मिले ता पार पवा,
ਮਜ ਭਰ ਦੁਖ ਬਦੁਖ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਸੈ ਨਾ ਲੱਥੀ ਭੁੱਖ ਪੌੜੀ ਜਿਨੀ ਅੰਦਰ ਭਾਲਿਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵੈ ਜੋ ਇੱਛਣ ਸੋ ਪਾਏ ਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਨਕਾ ਮਿਟ ਹੈ ਜਮ ਮਗ ਨਾ ਪਾਵੈ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਵੈ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣੀਐ ਏਕ ਵਖਾਣੀਐ ਸੁਰਗ ਮਿਰਤ ਪਿਆਲ ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਈ ਮਿਟਿਆ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਨਾਲ ਕੌਣ ਮੂਆ ਕੌਣ ਮਾਰਸੀ ਕੌਣ ਆਵੈ ਕੌਣ ਜਾਏ ਕੌਣ ਰਹਿਸੀ ਨਾਨਕਾ ਕਿਸ ਕੀ ਸੁਰਤ ਸਮਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਉ ਮੂਆ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਪੌਣ ਵਹਿ ਦਰਿਆਓ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਥਕੀ ਨਾਨਕਾ ਜਾਂ ਮਨ ਰੱਤਾ ਨਾਏ।

अंदर मुश्क चुकोलिया कीमत कही ना जाय। पौड़ी इस जुग मह नाम निदान है नामो नाल चल है एहो अखुट कदे नान खुटई खाए खर्चे पल हर जन नेड़ ना आवई जम कंकर जम कल से साहा सच्चे बन जा रहा जिन हर धन पल हर कृपा ते हर पाई है जा आप हर कल। सलोक महला तीजा मनमुख व्यापार है सार ना जाननी बिक विहाज है बिक संग्रह बिक स्यों तरह प्यार बाहर हो पंडित सदाई दे मनहो मूर्ख गावार हर स्यों चेतना लाइनी वादी धर्म प्यार।

जय परम पलाया हौ मैं दुख पाई बिन कर्मा किछु ना पाईए जे बहुत लुचाही आवे जाए जम्मे मरे गुर शब्द छुटाही आप करे किसे आखिए दूजा को नाही श्लोक महला तीजा इस जग मह संती धन खटिया जिन्ना सतगुर मिलया प्रभु आई सतगुर सच दृढ़ाया इस धन की कीमत कही ना जाय इत धन पाए भुख लखी सुख वस्या मन आय जिन्ना को तुर लिखिया तिन्नी पाया आय मनमुख जगत निर्धन है माया नो बिल लाय अन दिन फिरदा सदा रह भुख ना कदे जाय शांत ना कदे आवई नह सुख वसै मन आय सदा चिंत चित वधार है सहसा कदे ना जाय नानक बिन सतगुर मत पवी सतगुर नो मिले ता शब्द कमाय सदा सदा सुख मह रह सच्चे माहे समाय महला तीजा जिन उपाई मेदनी सोई सार करे एको सिमरहु पाई रहो किस बिन अवर ना कोई खाना शब्द चंगियाईया जित खादे सदा तृप्त होए पैनन सिफत सुनाए है सदा सदा ओह ऊजला मैला कदे ना होए सहजे सच धन खटिया थोड़ा कदे ना होए देही नो शब्द शिंगार है जित सदा सदा सुख होए नानक गुरमुख बुझिया जिसनो आप बखाले सोए पौड़ी अंतर जप तप संजमो गुर शब्दी जापै हर हर नाम त्याईए हौ मैं अज्ञान गुआपै अंदर अमृत भरपूर है चाखिया साध जापै जिन चाखिया से निरपो भए से हर रस त्रापै हर कृपा तार पी आया फिर काल ना व्यापै सलोक महला तीजा लोक अवगणा की बन्ने गंठड़ी गुण ना व्या जय कोए गुण का गाहक नानका विरला कोई होए गुर प्रसादी गुण पाईन जिसनो नदर करे महला तीजा गुण अवगुण समान है जे आप कीते करतार नानक हुक्म मन्ने है सुख पाईए गुर शब्दी विचार पौड़ी अंदर राजा तख्त है आपे करे न्याय गुर शब्दी दर जानिए अंदर महल असराव खरे परख खजाने पाईन खोटिया नाही थाव सब सचो सच वर्तदा सदा सच न्याय अमृत का रस आया मन वसिया नाहु सलोक महला पहला हौ मैं करी ता तू नाही तू होवे हौ नाही बूझो ज्ञानी बूझना ए अकथ कथा मन माहे बिन गुर तत ना पाईए अलख वसै सब माहे सतगुर मिले ता जानिए जा शब्द वसै मन माहे आप गया भ्रम पहो गया जन्म मरण दुख जाहे गुरमत अलख लखाईए उत्तम मत तराए नानक सोहंग हंसा जप जापहु त्रे भवन तिसै समाहे महला तीजा मन माणक जिन

मार निवाड़ा गुर पौ जल पार लंघाया जिता पावाड़ा गुरमति सब रस भोगदा वड्डा आखाड़ा सब इंद्रियां वस कर दित्तियो सतवंता साड़ा जित लायन पितै लग दिया नह खिंचो ताड़ा जो इच्छी सो फल पाएंदा गुरे अंदर वाड़ा गुरु नानक तुठा पाई रहो हर वस दा नेड़ा दखणे महला पंजवा जा मूह आवह चित तू ता हब्बे सुख लहाओ नानक मन ही मंज रंगावला प्री तिहिं जा नाओ महला पंजवा कप्पड़ भोग वकार ए हब्बे ही शार खाक लड़ेंदा तन के जो रत्ते दीदार महला पंजवा क्या तक है ब्यापास कर ही अड़े एक आधार थियो संतन की रेण जित लब्बी सुख दा तार पौड़ी बिन कर्मा हर जियो ना पाईए बिन सतगुर मनुआ ना लगे धर्म तीरा कल अंदरे एहो पापी मूल ना तगे एह कर करे सो एह कर पाए एक घड़ी मोहत ना लगे चारे युग मैं सोदिया बिन संगत अहंकार ना भगे हों मैं मूल ना छुटई बिन साधु सत संग टिचर था ना पावई जिचर साहिब स्यो मन भंगे जिन जन गुरमुख सेविया तिस घर दी बाण अपगे हर किरपा ते सुख पाया गुर सतगुर चरणी लगे दखणे महला पंजवा लोड़ींदो हब जाए सो मीरा मेरा नसिर हठ मंजाहू सो तनी चौंदो मुख अलाए महला पंजवा माणकू मोहे माओ दिन्ना तनी अपाए ह्याओ मिंजा ठंडड़ा मुख हो सच अलाए महला पंजवा।

पौड़ी। मन लोचै हर मिलन कौ क्यों दर्शन पाइया, मैं लख विड़ते साहेबा जे बिंद बुलाइया। मैं चारे कुंडा पालिया तुद जेवड़ ना साइया, मैं दस्यो हो मार्ग संत हो क्यों प्रभु मिलाइया। मन अर्प्य हो हौ मैं तजो हो इत पंत जलाइया, नित सेवे हो साहेब अपना सतसंग मलाइया। सबे आसा पूरिया गुरमहल बुलाइया, तुद जेवड़ होर ना सुजई मेरे मित्र गुसाइया। दखणे महला पंजवा मूथिया तख्त प्री महिंजे पातशाह, पाव मलावे कोल कमल जिवै बिगसाम दो महला पंजवा। प्रिया संदड़ी भुख मूलावण थी वितरा, जान मठाई इख बे पीड़े ना हुटै महला पंजवा। ठगा नीहो मतरोड़ जान गंधर्वा नगरी, सुख कटाऊ डुए इस पंधाणु घर कणी पौड़ी। अकल कला नह पाईऐ प्रभ अलख अलेखं, खट दर्शन भ्रमते फिरह नह मिलियै भेखं। वर्त करह चंद्रायणा से कितै ना लेखं, वेद पढ़ह संपूर्णा तत सार ना पेखं। तिलक कढ़ह इशनान कर अंतर का लेखं, भेखी प्रभु ना लभई बिन सची सिखं। भूला मार्ग सो पवै जिस तुर मस्तक लेखं, तिन जन्म सवारिया अपना जिन गुर अखी देखं। दखणे महला पंजवा सो निवाहू गड जो चलाऊ ना थीऐ, कार कूड़ा भी छड संभल सच धनी महला पंजवा। हब समाणी जोत ज्यो जल कटाऊ चंद्रमा, प्रगट थी आयाप नानक मस्तक लिखिया महला पंजवा। मुख सहावे नाम चौ आठ पहर गुण गाओ, नानक दरगाह मनी है मिली न थावे थाओ पौड़ी। बाहर भेख ना पाई है प्रभ अंतर जामी, इक सहार जियो बाहरी सब फिरै निकामी। मन रता कटंब स्यो नित गर्भ फिरामी, फिर है गमानी जग मह क्या गर्भ है दामी। चलदिया नाल ना चलई खिन जाए बिलामी, विचरदे फिर है संसार मह हर जी हो कामी। कर्म खुला गुर पाया हर मिलिया स्वामी, जो जन हर का सेव को हर तिस की कामी। दखणे महला पंजवा मुखों अलाए हब मरण पछाणन दो कोहे, नानक तिन्ना खाक जिन्ना यकीना हिक सियो। महला पंजवा जान वसंदो मांझ पछाणु को हिकड़ो, तैं तन पड़दा नाही नानक जय गुर भेटिया। महला पंजवा मतड़ी कांडक आह पाव तवंदो पीवसा, मूह तन प्रेम अथाह पसन कु सच्चा धनी पौड़ी। निरपो नाम वसारिया नाल माया रचा, आवै जाए पवाईऐ बहु जोनी नचा। बचन करे तै खिसक जाए बोले सब कच्चा, अंदरो हो थोथा कूड़ियार कूड़ी सब खचा। वैर करे निरवैर नाल झूठे लालचा, मारिया सच्चै पातशाह वेख तुर कर मचा। जम दूती है हेरिया दुख ही मह पचा, हुआ तपावस धर्म का नानक दर सच्चा। दखणे महला पंजवा प्रभाते प्रभ नाम जप गुर के चरण त्याय, जन्म मरण मले उतरै सच्चे के गुण गाए। महला पंजवा देह अंधारी अंध सुन्नी नाम विहूनिया, नानक सफल जन्म जय कट बुठा सच तनी। महला पंजवा लोइन लोई डिठ प्यास ना बुझै मूह घणी, नानक से अखणिया बयान जिन्नी दसंदो माफिरी पौड़ी। जिन जन गुरमुख सेवया
तिन सब सुख पाई, ओह आप तरिया कटंब सियो सब जगत तराई। ओ न हर नामा धन संचया, सब तिखा बुझाई। ओन छड़े लालच दुनी के, अंतर लिव लाई। ओस सदा सदा कर आनंद है, हर सखा सहाई। ओन वैरी मित्र सम कीतिया, सब नाल सुपहाई। होआ ओही अल जग मह, गुर ज्ञान जपाई। पूर्व लिखिया पाया, हर स्यों बन आई। दखणे महला पंजवा, सच सुहावा कांडी है। कूड़ै कूड़ी सोए, नानक विरले जानी है। जिन सच पल्लै होए महला पंजवा, सज्जन मुख अनूप अठे पैर निहाल सा। सुतड़ी सो सहो डिठ, तै सुपने हों खन्नीए महला पंजवा। सज्जन सच परख मुख अलावन थोथरा, मन मजाहू लख तुदहों दूर ना सो पिरी पौड़ी। तरत आकाश पताल है, चंद सूर बिनासी। बादशाह सहा उमराव खान, ताहे डेरे जासी। रंग तुंग गरीब मस्त, सब लोक सदासी। ताजी सेक मसाए का, सबे उठ जासी। पीर पै कांबर औलिए, को थिर ना रहासी। रोजा बांग नवाज कतेब, बिन बुझे सब जासी। लख चौरासी मेदनी, सब आवै जासी। निश्चल सच खुदाए एक, खुदाए बंदा अवनासी। दखणे महला पंजवा, दिथी हब टंडोल। हिक सबाज ना कोई, आओ सज्जन तू मुख लग। मेरा तन मन ठंडा होए महला पंजवा। आशक आसा बारा, मूह मन वड्डी आस। आस निराशा हिक तू, हों बल बल बल गई आस। महला पंजवा, विछोड़ा सुने दुख, बिन जिथे मरियोद। बाज प्यारे अपने, बिरही ना तिरोध पौड़ी। तट तीरथ देव देवालिया, केदार मथुरा कांसी। कोट ते तीसा देवते, सन इंद्रै जासी। सिमरत शास्त्र वेद चार, खट दर्श समासी। पोथी पंडित गीत कवित, कवते पी जासी। जति सती सन्यासिया, सब कालै वासी। मुन जोगी दिगंबरा, जमै सन जासी। जो दीसै सो बिनसना, सब बिनस बनासी। फिर पार ब्रह्म परमेश्वरो, सेवक थिर होसी। सलोक दखणे महला पंजवा, सह नंगे नह नंग। भुखे लख ना भुखिया, दुखे कोड़ ना दुख। नानक प्रीप खंदो शुभ दिष्ट महला पंजवा। सुख समूहा भोग, भूम सबाई को तनी। नानक हब्बो रोग, मृतक नाम विहूणिया महला पंजवा। हिक सकूं तू आहे, पाशाणु पी हिक कर। नानक आसड़ी निबाहे, मनुख परथाई लजीवंदो पौड़ी। निश्चल एक नारायण, हर अगम अगादा। निश्चल नाम ननान है, जिस सिमरत हर लादा। निश्चल कीर्तन गुण गोबिंद, गुरमुख गावादा। सच धर्म तप निश्चलो, दिन रहन अरादा। दया धर्म तप निश्चलो, जिस कर्म लखादा। निश्चल मस्तक लेख लिखिया, सो टलै ना टलादा। निश्चल संगत साध जन, बचन निश्चल गुरसादा। जिनको पूर्व लिखिया, तिन सदा सदा आराधा। सलोक दखणे महला पंजवा, जोड़ बंदे आप। सोत राए किनखे, तारेंदड़ो पी तार। नानक पिर स्यों रत्या महला पंजवा। जिथै कोई कथन, नाउ सुनंदो मां पिरे। मूं जलाऊ तत्, नानक प्री पसंद।

जिन्ना महबत एक से हो ते मानस प्रधान महला पंजवा जिस मन वसै पार ब्रह्म निकट न आवे पीर भुख तिख तिस न व्यापई जम नहीं आवे नीर पौड़ी कीमत कहण ना जाई है सच साह अडोले सिद्ध साधक ज्ञानी ध्यानिया कौन खुद नो तोले पन्नण करन समरत है ओपत सब परले करन कारण समरत है घट घट सब बोले रिजक समाहे।

मावना किया तुर मौल तुदहो बार किस नहीं नानक गुण बोले राग मारू बाणी कबीर जीओ की एक ओंकार सतगुर प्रसाद पंडिया कवन कमत तुम लागे बुड हो गे परवार सकल सिउ राम ना जपो अपागे रहाओ वेद पुराण पढ़े का क्या गुण खर चंदन जस पारा राम नाम की गत नहीं जानी कैसे उतरस पारा जी बद हो सो धर्म कर थापो अधर्म कहो कत पाई आपस को मुनवर कर थापो का को कहो कसाई मन के अंधे आप ना बूझो काहे बुझावो पाई माया कारण विद्या बेचो जन्म अभिथा जाई नारद बचन व्यास कहत है सुख को पूछो जाई कह कबीर रामै राम छूटो नाहे ता बूढ़े पहाई बनह बसे क्यों पाई है जौलो मनो ना तजह बेकार जेह घर बन समसर किया ते पूरे संसार सार सुख पाई है रामा रंग रवो आत्मै राम रहाओ जटा भस्म लेपन किया कहां गुफा महबास मन जीते जग जीतिया जाते बिखिया ते हुए उदास अंजन दे सबै कोई टुक चाहन माहे बिडान ज्ञान अंजन जेह पाया ते लोइन परवान कह कबीर अब जानिया गुर ज्ञान दिया समझाए अंतरगत हर पेटिया अब मेरा मन कतहु ना जाए रिद सिद जा को फुरी।

प्रसाद अनभव किन ना देखिया बैरागी अड़ी बिन पै अनभव होए बना हम्बै सहो हदूर देखै ता पौ पवै बैरागी अड़ी हुक्मै बूझै ता निरपो होए बना हम्बै हर पाखंड ना कीजई बैरागी अड़े पाखंड रत्ता

मूर्ख मुग्ध ग्वार, राम नाम जान्यो नहीं कैसे उतरस पार। राग मारू बाणी जय देओ जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चंद सत भेदया, नाद सत पूरिया, सूर सत खोड़ सा दत किया। अबाल बाल तोड़िया, अचल चल थपिया, अकड़ घड़िया तहां अपियो पिया। मन आदि गुण आदि विखाणिया, तेरी दुबदा दृष्ट समानिया। रहाओ अर्ध को अर्धया, सर्द को सर्दया, सलल को सलल सम्मान आया। बदत जय देव को रम्या, ब्रह्म निर्वाण लिवलीन पाया। कबीर मारू राम से।

आस जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे गरीब नवाज।

कबीर तलोचन सदना सैन तरै कहरव दास सुनो रे संत हो हर जियो ते सबै सरै मारू सुख सागर सुर तर चिंता मन काम धीन बस जा कीरी चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध नव निध कर तल ताकै हर हर हर ना जपस रसना अवर सब छाड बचन रचना रहाउ नाना ख्यान प्राण वेद विद चौतीस अक्षर माही व्यास बीचार कहो परमार्थ राम नाम सर नाही सहज समाद अपाद रहत होए बड़े भाग लिव लागी कह रवदास उदास दास मत जन्म मरन पै भागी तुखारी संत महला पहला बारह माहा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तू सुन किरत करमा पुरब कमाया सिर सिर सुख सहमा देह सो तू भला हर रचना तेरी क्या गत मेरी हर बिन घड़ी ना

पैर भया दौत बिहागै राम तिन कर राखियड़ा जो अन दिन जागै राम गुरपूछ जागे नाम लागे तिन्ना रैन सुहेलिया गुर शब्द कमावह जन्म ना आवह तिन्ना हर प्रभ बेलिया कर कंप चरण शरीर कंपै नैन अंधले तन भस्म से नानक दुखिया जोग चारे बिन नाम हर के मन वसे खुली गंठ उठो लिखिया आया राम रस कस सुख ठाके बंद चलाया राम बंद चलाया जा प्रभ पाया ना दिसै ना सुनिए आपन वारी सब सह आवे पक्की खेती लुनिए घड़ी चसे का लेखा लीजै बुरा भला सहो जिया नानक सुर नर शब्द मलाए तिन प्रभ कारण किया तुखारी महला पहला तारा चढ़िया लम्मा क्यों नदर निहालिया राम सेवक पूर करम्मा सतगुर शब्द दिखा लिया राम गुर शब्द दिखा लिया सच संभालिया एहन सदेख बिचारिया धावत पंच रहे।

दे मन मानिया। जिन जल थल त्रे भवन घट घट थापिया, सो प्रभ गुरमुख जानिया। करन कारण समरथ अपारा, त्रे बिद मेट समाई, नानक अवगुण गुण।

होई प्रगट हुई चूके सोग संतापै ज्योति अंदर ज्योत समाणी आप पछाता आपै पेयड़ै घर शब्द पतीनी सहुरड़ै पिर पाणी नानक सतगुर मेल मलाई चूकी कान लोकानी तुखारी महला पहला पुलावड़ै भुली पुल पुल पछो ताणी फिर छोडियाड़ी सुती फिर की सार ना जानी फिर छोडी सुती अवगुण मुत्ती तिस तन विदन राती काम क्रोध अहंकार विगुत्ती हो मैं लगी ताते उडर हंस चलिया।

घर जाइए साची सच मत तेरी साजन देश वदेसी अड़े सनेहड़े देंदी सार संभाले तिन सजना मुंद नैन परेंदी मुंद नैन परेंदी गुण सारेंदी क्यों प्रभ मिला प्यारी मार्ग पंथ ना जानो विखड़ा क्यों पाईए फिर पारे सतगुर शब्दी मिले विछुनी तन मन आगे राख नानक अमृत बिरख महारस फलिया मिल प्रीतम रस चाख महल बुलाएड़िए बिलम ना कीजे अनदिन रतड़िए सहज मलीजे सुख सहज मलीजे रोस ना कीजे गर्भ निवार समाणी साचे राती मिले मलाई मनमुख आवन जानी जब नाची तब घूंघट कैसा मटकी फोड़ नरारी नानक आपे आप पछाणे गुरमुख तत बीचारी तुखारी महला पहला मेरे लाल रंगीले हम लालन के लाले गुर अलख लखाया अवर ना दूजा भाले गुर अलख लखाया जां तिस पाया जां प्रभ कृपा धारी जग जीवन दाता पुरख बधाता सहज मिले बनवारी नदर करह तू तार है तरिये सच देव हो दीन दयाला प्रणवत नानक दासन दासा तू सर्ब जिया प्रतपाला भरपुर धार रहे अत प्यारे शब्दे रव रहिया गुर रूप मरारे त्रे भवन धारी

थाप उथापी तिस भावै सो होवै नानक हीरा हीरे बेदिया गुण कै हार परोवै गुण गुण है समाणी मस्तक नाम निशानु सच साच समाया चूका आवन जानु सच साच पछाता साच राता साच मिले मन भावै।

बोल नरारे नानक ज्योति ज्योत समाणी जा मिलिया अत प्यारे सच कर खोज लहे साचा गुर थानो मनमुख नह पाईए गुरमुख ज्ञानो देवै सच दानो सो परवानो सद दाता वड दाना अमर अजोनी अस्थिर जापै साचा महल चिराणा दोत उचापत लेख न लिखिए प्रगटी ज्योत मरारी नानक साचा साचै राचा गुरमुख तरिए तारी तुखारी महला पहला ए मन मेरिया तू समझ अचेत अयाणिया राम ए मन मेरिया छड अवगण गुणी समाणिया राम बहु साध लुभाणी किरत कमाणी विछड़िया नहीं मेला क्यों दुत्तर तरिए जम डर मरिए जम का पंथ दहेला मन राम नहीं जाता सांझ पर भाता अब कट रुदा क्या करी बंधन बांधिया इन विद छूटे गुरमुख सेवै नर हरि ए मन मेरिया तू छोड़ आल जंजाला राम ए मन मेरिया हर सेव हो पुरख निराला राम हर सिमर एकंकार साचा सब जगत जिन उपाया पौन पानी अग्न भांदे गुर खेल जगत दिखाया आचार तू विचार आपे हर नाम संयम जप तपो सखा सहन प्यार प्रीतम

गुण गाए राम रसाए रसिया है, गुर ज्ञान अंजन सारे, त्रैलोक दीपक शब्द चानन, पंच दूत संघारहे।

गुर शब्द सुरत लंघावे मिल साध संगत करह रलिया फिर ना पछोतावे कर दया दान दयाल साचा हर नाम संगत पावो नानक पयम पै सुनो प्रीतम गुर शब्द मन समझावो।

जब लग दर्शना होए क्यों अमृत पीवी है राम क्यों अमृत पीवी है हर बिर जीवी है तिस बिन रहन ना जाए अन दिन प्रियो प्रियो करे दिन राती फिर बिन प्यास ना जाए अपनी कृपा करो हर प्यारी हर हर नाम सद सारिया गुर कै शब्द मिलिया मैं प्रीतम हों सतगुर विकट हों।

अन दिन गुरु गोपाल त्याई, हम सतगुर बिटो कुमाए, हम पाथर गुर नाव, बिख भवजन तारिए राम, गुरदेव हो शब्द सुपाए, मैं मूड़ निस्तारिए राम, हम मूड़ मुगद किशमित नहीं पाई, तू अगम वड जानिया, तू आप दयाल दया कर मिल है, हम निर्गुणी निमाणिया, अनेक जन्म पाप कर भरमी, हुण तौ शरणागत आई।

मिल कंचन हो आराम, ज्योति ज्योत मलाई, काया गढ़ सोहया राम, काया गढ़ सोहया मेरे प्रभ मोहया, क्यों सास ग्रास बसारी है, अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर शब्दी, हों सतगुर कै बलिहारी है, सतगुर आगे सीस भेट देउ, जे सतगुर साचे पावे आपे दया करहु प्रभ दाती, नानक अंक समावे तुखारी महला चौथा, हर हर अगम अगाध अपरंपर अपर परा, जो तुम प्यावे जगदीश ते जन पौ बिखम तरा, बिखम पौ तिन तरिया सुहिला, जिन हर हर नाम त्याया, गुरवाक सतगुर जो पाए चले, तिन हर हर आप मलाया, ज्योति ज्योत मिल ज्योत समाणी, हर कृपा कर धरनी धरा, हर हर अगम अगाध अपरंपर अपर परा, तुम स्वामी अगम अथाह, तू घट घट पूर रहया, तू अलख अपेओ अगम, गुर सतगुर बचन लहया, धन धन ते जन पुरख पूरे, जिन गुर संत संगत मिल गुण रवे, विवेक बुद्ध विचार गुरमुख, गुर शब्द खिन खिन हर नित चवे, जां बह गुरमुख हर नाम बोले, जां खड़े गुरमुख हर हर कहया, तुम स्वामी अगम अथाह, तू घट घट पूर रहया, सेवक जन सेवह ते प्रवान, जिन सेविया गुरमत हरे, तिनके कोट सब पाप खिन पर हर हर दूर करे, तिनके पाप दुख सब बिनसे, जिन मन चित एक अराध्या, तिनका जन्म सफलियो सब किया करते, जिन गुरबचनी सच भाखिया, ते धन जन वड पुरख पूरे, जो गुरमत हर जप पौ बिखम तरे, सेवक जन सेवह ते प्रवान, जिन सेविया गुरमत हरे, तू अंतर जामी हरियात, ज्यों तू चलावह प्यारे हो तिवें चला, हमरे हाथ किश नाहि, जां तू मेलह ता हो आए मिला, जिनको तू हर मेलह स्वामी, सब तिनका लेखा छुटक गया, तिनकी गणत ना करे ओहो को पाई, जो गुरबचनी हर मेल लया, नानक दयाल हुआ तनी ऊपर, जिन गुर का पाणा मन्या पर।

तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलत भया मिल आए नगर महाजना गुर सतगुरु ओट गही गुर सतगुरु गुर गोविंद पुछ सिमरत कीता सही सिमरत शास्त्र सबनी सही कीता सुख प्रहलाद श्री राम कर गुर गोविंद त्याया देही नगर कोट पंच चोर बटवारी तिनका थाउ थे हो गुवाया कीर्तन पुराण नित पुन हो वह गुरबचन नानक हर भगत लही मिल आए नगर महाजना।

प्रभु मेरे निमक दृष्ट पेख जीवा अमृत नाम सुनी जय तेरा कृपा करह ता पीवा आस प्यासी पिरकै ताई।

हित चिता प्राण सुख दाता गुरमुख जाता सगल रंग बन आए सोई कर्म कमावे प्राणी जेहा तू फरमाए जा को कृपा करी जगदीश्वर किन साध संग मन जिता कहो नानक जीअड़ा बलिहारी जियो पिंड तौ दिता निर्गुण राख लिया संतन का सदका सतगुर ताक लिया मोहे पापी पड़दा ताक नहारे प्रभु हमारे जी प्राण सुख दाते अवनासी अवगत स्वामी पूर्ण पुरख विधाते उस्तत कहन न जाए तुम्हारी कौन कह तू कद का नानक दास ता कह बलिहारी मिले नाम हर निमका केदा।

राम रमहु रे, अंतर का अवमान जोर तू किस किस किस जानता, ए दूर करहो आपन गहोरे, जन नानक को हर दयाल हो स्वामी।

माई संत संग जागी प्रिय रंग देखै जपती नाम निधानी रहाउ दर्शन प्यास लोचन तार लागी बिसरी त्यास बडानी अव गुर पायो है सहज सुखदायक दर्शन पेखत मन लपटानी देखत मोदर रहस मन उपजेउ नानक प्रिय अम

तीन दोखी एक मन अनाथ नाथ रात हो कृपाल रहाओ अनक जतन गवन करूं खट कर्म जुगत ध्यान धरूं अपाव सगल कर हारियो नह नह हुटह बिकराल शरण बंधन करना पति भाव हरन हर हर हर हरि।

अहम बुद्ध तजावहु अपनी भगत देह दयाला वड भागी नानक हर पावहु किदारा महला पंजवा हर बिन जन्म अकारथ जात ताज गोपाल आन रंग राचत मिथ्या पहरत खात रहाउ धन जोबन संपै सुख भोगवै संग

हरन समराथ अकाथ अगोचर हर सिमरत दुख लाथ नानक दीन तूर जन बाचत मिले लिखत तुर माथ किदारा महला पंजवां घर पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद बिसरत नाही मन ते हरी अब ए प्रीत महा प्रबल भई आन बिखै जरी रहाउ बूंद कहां त्याग चात्र मीन रहत न करी गुण गोपाल उचार रसना टेव एहे परी महानाद करंक मोहयो वेद तीखन सरी प्रभ चरण कमल रसाल नानक गांठ बांध धरी केदारा मोहल्ला पंजवां प्रीतम बसत रिद मह खोर परम भीत नवार ठाकुर गहल हो अपनी ओर रहाओ अधिक गर्त संसार सागर कर दया चारुह तूर संत संग हर चरण बोहित उदर ते लै मोर गर्भ कुंट मह जिनह तारियो नहीं बिखै बन मह होर हर सकत सरन समरत नानक।

रहाउ। त्याग चलना सगल संपत काल सिर पर जान, मिथन मोह दुरंत आसा झूठ सर पर मान। सतपुरख अकाल मूरत हृदय धारो ध्यान, नाम निधान लाभ।

जीवन रूप बसार जीव है, तेहे कत जीवन होत रहाउ। खात पीत अनेक बिंजन, जैसे भार बाहक खोत। आठ पहर महाश्रम पाया, जैसे बिरख जंती जोत। ताज गोपाल जे आन लागे, से

तै मुख मली गुणा अचुत सदा पूरन नह दुख व्यापह कली रहाउ गुर बचन कार्य सर्व पूरन ईत ऊत ना हली प्रभ एक अनक सर्वत पूरन बिखै अग्न ना जली गह पुजा लीनो दास अपनो जोत ज्योति रली प्रभ चरण सरन अनाथ आयो नानक हर संग चली किदारा महला पंजवा हर के नाम की मन रुचै कोट शांत आनंद पूरन जलत छाती बुझै रहाउ संत मार्ग चलत प्राणी पतत उदरे मुचै रेन जन की लगी मस्तक अनक तीर्थ सुचै चरण कमल ध्यान पीतर कट कटै स्वामी सुजै सरन देव अपार नानक बहुर जम नहीं लुजै।

आउ पूर रहया सर्वतन में सो पुरख बधाता मार्ग प्रभ का हर किया संतन संग जाता संतन संग जाता पुरख बधाता घट घट नदर निहालिया जो सरनी आवे सर्ब सुख पावे किल नहीं भन्ने घालिया हर गुण निध गाई।

पुरख बधाता हर प्रेम भगत जन बेदया सियान कत जाही मीन बशोहा ना सह जल बिन मर पाही हर बिन क्यों रही है दुख किन सही है चातरक बूंद प्यासिया कबरैन बिहावे चकवी सुख पावे सूरज किरण परगासिया हर दर्श मन लागा दिन सुसभागा अन दिन हर गुण गाही नानक दास कह बेनंती कत हर बिन प्राण टकाही सास बिना ज्यो देहुरी कत सोभा पावे दर्श बिहूना साध जन खिन टिकन ना आवे हर बिन जो रहना नरक सो सहना चरण कमल मन बेदया हर रसक बैरागी नाम लिव लागी कतोह ना जाए न खेदया हर स्यो जाए मिलना साध संग रहना सो सुख अंक ना मावे ओहो कृपाल नानक के स्वामी हर चरण है संग समावे खोजत खोजत प्रभ मिले हर करुणा धारे निर्गुण नीच अनाथ में नहीं दोख बिचारे नहीं दोख बिचारे पूर्ण सुख सारे पावन बिरद बखानिया भगत वशल सुन अंचलो गहया कट कट पूर समानिया सुख सागरो पाया सहज सुपाया जन्म मरण दुख हारे कर गह लीने नानक दास अपने।

पड़िया निर्मोलक छूट गई संसारी रहाव साचे लाए तो सच लागे साचे के व्यवहारी साची बस्त के पार चलाए पहुंचे जाए भंडारी आपै रतन जवाहर मानक आपै है पासारी आपै दह दिस आप चलावे निश्चल है व्यापारी मन कर बैल सुरत कर पेंडा ज्ञान गुण भर डारी कहत कबीर सुनहो रे संत हो निभही खेप हमारी री कलवार ग्वार मूड मत उल्टो पवन फरावो मन मतवार मेर सर पाठी अमृत धार चुआवो बोलो भैया राम की दोहाई पीवो संत सदा मत दुर्लभ सहजे प्यास बुझाई रहाओ पै बिच पाओ पाए को बूझ हर रस पावे पाई जेते घट अमृत सब ही मह पावे तिसह प्याई नगरी एकै नौ दरवाजे तावत बरज रहाई त्रिकुटी छूटै दसवां दर खूलै ता मन खीवा पाई अपै

बिन पानी चलत कत टेडे टेडे टेडे हस्त चरम बिस्टा के मुंडे दुर्गंध ही के बेटे रहाओ राम ना जप हो कमन भ्रम भूले तुम ते काल ना दूरे अनक जतन कर एहो तन राख हो रह अवस्था पूरे आपन किया कछु ना होवै क्या को करे प्राणी जा तिस भावै सतगुर भेटै एको नाम बखानी बलुआ के करुआ मह बसते फुलवत देह आया।

खान, पाऊ भगत सिंह काज न कछु है, मेरो काम दीवान, राम बसारियो है अभमान, कनक कामनी महासुंदरी, पेख पेख सच मान, रहाव लालच झूठ बिकार महामद, एह बिद औद बिहान, कह कबीर अंत की बेर, आई लागो काल निदान। चार दिन अपनी नौबत चले बजाए, इतनक खटिया गठिया मतिया, संग ना कछ लै जाए रहाउ, गहरी बैठी मेहरी रोवे, द्वारे लो संग माए, मरहट लग सब लोग कटंब मिल, हंस अकेला जाए, वै सुत वै बित वै पुर पाटन, बहुर ना देखे आए, कहत कबीर राम की ना सिमर हो, जन्म अकारथ जाए, राग के दारा बाणी रविदास जीओ की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, खट कर्म कुल संयुगत है, हर भगत हृदय नाही, चरनार बिंद ना कथा भावे, सुपच तुल

रूप रंग रहस नहीं साचा, क्यों छोड़े जम जालू प्राणी, हर जप जन्म गयो साच, शब्द बिन कभू ना छूटस, बिरथा जन्म भयो रहाओ, तन मह काम क्रोध हौ ममता, कठन पीर अत भारी, गुरमुख राम जपो रस रसना, इन बिद तर तू तारी, बहरे करन अकल पई होशी, शब्द सहज नहीं बूझिया, जन्म पदार्थ मन मुख हारिया, बिन गुर अंध ना सूझिया, रह उदास आस नरासा, सहज ध्यान बैरागी, प्रणवत नानक गुरमुख छूटस, राम नाम लिव लागी, भैरों महला पहला, पूंदी चाल चरण कर खिसरे, तुचा देह कुमलानी, नेत्री धुंद करन पए बहरे, मनमुख नाम ना

गेहवा रंग नहीं हर राती, जब बोले तब फीके। संत जना की निंदा व्यापस, पशु भये कदे होहे ना नीके। अमृत का रस विरली पाया, सतगुर मेल मलाए। जब लग शब्द भेद नहीं आया, तब लग काल संताए। अन को दर कर कबहू ना जानस, एक को दर सचियारा। गुर प्रसाद परम पद पाया, नानक कह विचारा। भैरू महला पहला, सगली रैन सोवत गल पाही। दिन सजन जाल गुआया, खिन पल घड़ी नहीं प्रभ जानिया। जिन एहो जगते उपाया, मन रे क्यों छूटस दुख भारी। क्या ले आवस क्या ले जावस, राम जपहु गुणकारी। रहाउ ऊंदो कवल मनमुख मत होशी, मन अंधै सिर धंधा। काल बकाल सदा सिर तेरै, बिन नावै गल फंदा। डगरी चाल नेत्र फुन अंधले, शब्द सुरत नहीं पाई। शास्त्र वेद त्रै गुण है माया, अंध लो धंध कमाई। खोयो मूल लाभ कह पावस, दुर्मत ज्ञान विहूणे। शब्द बीचार राम रस चाखिया, नानक साच पतीने। भैरू महला पहला, गुर कै संग रह दिन राती। राम रसल रंग राता, अवर ना जानस शब्द पछाणस। अंतर जान पछाता, सो जाने ऐसा मैं मन भावे। आप मार अपरंपर राता, गुर की कार कमावे। रहाउ अंतर बाहर पुरख निरंजन, आद पुरख आदेशो। घट घट अंतर सर्ब निरंतर, रव रहिया सच वेसो। साच रते सच अमृत जिहवा, मिथ्या मैल न राई। निर्मल नाम अमृत रस चाखिया, शब्द रते पत पाई। गुणी गुणी मिल लाहा पावस, गुरमुख नाम वडाई। सगले दुख मिट है गुर सेवा, नानक नाम सखाई। भैरो महला पहला, हृदय नाम सर्ब धन धारण। गुर प्रसादी पाई, अमर पदार्थ ते किरतार्थ। सहज ध्यान लिवलाई है, मन रे राम भगत चित लाई है। गुरमुख राम नाम जप हृदय, सहज सेती घर जाइय। रहाउ परम भेद पौ कबहु ना छूटस, आवत जात ना जानी। बिन हर नाम को मुक्त ना पावस, डूब मुए बिन पानी। धंधा करत सगली पत खोवस, भरम ना मिट सगवारा। बिन गुर शब्द मुक्त नहीं कब ही, अंधले धंध पसारा। अकुल निरंजन।

ए जग जन्मा बिख खावे बिख बोली बोले बिन नावे निफल मर भ्रम ना रहाऊ। पुस्तक पाठ व्याकरण वखाणे संध्या कर्म तिकाल करे बिन गुर शब्द मुक्त कहां प्राणी। राम नाम बिन उर्ज मरे दंडक मंडल सिखा सूत धोती तीर्थ गमन अत भ्रमण करे। राम नाम बिन शांत ना आवे जप हर हर नाम सो पार परे। जटा मुकट तन भस्म लगाई वस्त्र छोड़ तन नग्न भया। राम नाम बिन तृप्त ना आवे किरत कै बांधे भीख भया। जेते जी जंत जल थल महियल जतर कतर तू सर्ब जिया। गुर प्रसाद राख ले जन को हर रस नानक झोल पिया। राग भैरो महला तीजा चौपदे घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जात का गर्भ ना करियो कोई ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई। जात का गर्भ ना कर मूर्ख गवारा इस गर्भ पे चल है बहुत बेकारा रहाउ। चारी वर्ण आख सब कोई ब्रह्म बिंद ते सब उपत होई। माटी एक सगल संसारा बहु विद भांडे घड़े कुमारा। पंच तत् मिल देही का अकारा घट वद को करे बीचारा। कहत नानक एहो जियो कर्म बंद होई बिन सतगुर भेटे मुक्त ना होई। भैरो महला तीजा जोगी गिरही पंडित भेख धारी ए सूते अपने अहंकारी। माया मद माता रहया सोई जागत रह ना मूसे कोई रहाउ। सो जागे जिस सतगुर मिले पंच दूत ओह वसगत करे। सो जागे जो तत बीचारे आप मरे अवरा नह मारे। सो जागे जो एको जाने परकिरत छोड़े तत पछाणे। चहो वरना विच जागे कोई जमे काले ते छूटे सोई। कहत नानक जन जागे सोए ज्ञान अंजन जाकी नेत्री होए। भैरो महला तीजा जाको राखे।

रहाउ। एहो आकार तेरा है तारा, खिन मैं बिनसै करत न लागै बारा। कर प्रसाद एक खेल दिखाया, गुर कृपा ते परम पद पाया।

जे मन की दुबदा मारे दुबदा मार ब्रह्म बिचारे इस मन को कोई खोजो हो पाई मन खोजत नाम नौ निध पाई रहाओ मूल मोह कर करते जगते पाया ममता लाए भरम भुलाया इस मन ते सब पिंड पराणा मन कै विचार हुक्म बुझ समाणा कर्म होवै गुर कृपा करै एहो मन जागै इस मन की दुबदा मरै मन का सुभाओ सदा बैरागी सब मह वसै अतीत अनरागी।

और ना पावे है बिरथा जन्म गवाई। मेरे प्रीतम कर कृपा देहो बुझाई, हउ मैं रोगी जगत उपाया, बिन शब्द रोग न जाई रहा। सिमरत शास्त्र पढ़े मुन केते, बिन शब्द सुरत ना पाई।

हर का नाम निधानो पाया सुख वसिया मन आई। चौथी पदवी गुरमुख वरत है तिन निज घर वासा पाया। पूरे सतगुर कृपा कीनी विचो आप गवाया। एक सकी सिरकार एक जिन ब्रह्मा विष्णु रुद्र उपाया। नानक निहचल साचा इको ना ओह मरे ना जाया। पैरू महला तीजा मनमुख दुबदा सदा है रोगी रोगी सगल संसारा। गुरमुख बूझे है रोग गवाव है गुर शब्दी विचारा। हर जियो सत संगत मेलाए नानक तिसनो दे वडियाई। जो राम नाम चित लाए रहाउ ममता काल सब रोग व्यापे। तिन जम की है सिरकारा गुरमुख प्राणी जम नेड़ ना आवै। जिन हर राखिया उर तारा जिन हर का नाम न गुरमुख जाता। से जग मह काहे आया गुर की सेवा कदे ना कीनी बिरथा जन्म गवाया। नानक से पूरे वडभागी सतगुर सेवा लाए। जो इच्छ सोई फल पावे गुरबाणी सुख पाए। भैरों महला तीजा दुख विच जम्मे दुख मरे दुख विच कार कमाए। गर्भ जोनी विच कदे ना निकले बिस्टा माहे समाए। त्रिग त्रिग मन मुख जन्म गवाया पूरे गुर की सेवना कीनी। हर का नाम ना पाया रहाउ गुर का शब्द सब रोग गवाए। जिसनो हर जियो लाए नामे नाम मिले वडियाई। जिसनो मन वसाए सतगुर भेटे तां फल पाए। सच करनी सुख सार से जन निर्मल जो हर लागे। हर नामे तरह प्यार तिनकी रेण मिले तां मस्तक लाई। जिन सतगुर पूरा त्याया नानक तिनकी रेण पूरे भाग पाई है। जिन्नी राम नाम चित लाया भैरों महला तीजा। शब्द बीचारी सो जन साचा जिनकै हृदय साचा सोई। साची भगत करै दिन राती तां तन दुख ना होई। भगत भगत कह सब कोई बिन सतगुर सेवे भगत ना पाई है। पूरे भाग मिले प्राप्त।

राम ना पछाता। सतयुग परमहंस विचारी, द्वापर त्रेतै मानस वरतै, विरलै होमै मारी। कल मह राम नाम वडियाई,

मनुख मन वसाई आप तरे सगले कुल तारी जिन्नी राम नाम लिवलाई मेरा प्रभ है गुण का दाता अवगुण शब्द जलाई जिन मन वसिया से जन सोहे हृदय नाम वसाई घर दर महल सतगुरु दिखाया रंग सोरलिया माण जो किश कह सो भला कर मान नानक नाम बखाण भैरों महला तीजा मनसा मन है समाए लै गुर शब्दी विचार गुर पूरे ते सोजी पवे फिर मरे ना वारो वार मन मेरे राम नाम आधार गुर प्रसाद परम पद पाया सब इच्छ पजामन हार रहाऊ सब मह इको रव रहिया गुर बिन बूझ ना पाई गुरमुख प्रगट हुआ मेरा हर प्रभ अन दिन हर गुण गाई सुख दाता हर एक है होर थै सुख ना पाए सतगुर जिनी ना सेव्या दाता से अंत गए पछताए सतगुर सेव सदा सुख पाया फिर दुख ना लागे ताए नानक हर भगत प्राप्त होई ज्योति ज्योत समाई भैरों महला तीजा बाज गुरु जगत बौराना भूला चोटा खाई मर मर जमे सदा दुख पाई डर की खबर ना पाई मेरे मन सदा रहो सतगुर की सरना हृदय हर नाम मीठा सद लागा गुर शब्दे भवजल तरना रहाउ पेख करे बहुत चित डोले अंतर काम क्रोध अहंकार अंतर तिसा भूख अत बहुती भौंकत फिरे दरबार गुर कै शब्द मरह फिर जीव है तिनको मुक्त द्वार अंतर शांत सदा सुख होवे हर राखिया पुरतार ज्यों तिस भावे तिवें चलावे करना किछु ना जाई नानक गुरमुख शब्द संभाले राम नाम वडियाई भैरों महला तीजा हम मैं माया मोहे खोआया दुख खटे दुख खाई अंतर लोभ हलक दुख भारी बिन विवेक परमहाय मन मुख त्रिक जीवन संसार राम नाम सुपने नहीं चेतिया हर स्यों कदे न लागे प्यार रहाऊ पशुआ कर्म करे नहीं बूझै

नारायण मद भाग हर प्रेम रसायन प्रभु हमारे शास्त्र सोण सुख सहज आनंद ग्रह पौण रहाउ रसना नाम करण सुन जीवे प्रभ सिमर सिमर अमर थिर थीवे जन्म जन्म के दुख निवारी अनहद शब्द बजे दरबारी कर कृपा प्रभ लिए मलाई नानक प्रभ शरणागत आई भैरो महला पंजवा कोट मनोरथ आवह हाथ जम मार्ग कै संगी पाक गंगा जल गुरु गोविंद नाम जो सिमरै तिसकी गत होवै।

रस मंगल गुण गाय रहाउ जोग पेख सन्यासै पेखियो जत जंगम कापड़ाए तपी तपी सर मुन मह पेखियो नट नाटक निरताई चहो मह पेखियो खट मह पेखियो दस अष्टी।

जिन सेविया निरपहो सुखदाता, तिन पहो दूर किया एक प्राता, जो तू करह सोई फुन होए, मारे न राखे दूजा कोई। क्या तू सोचे है मानस बाण, अंतर जामी पुरख सुजान, एक टेक एको आधार, सब किस जाने सिरजनहार, जिसे ऊपर नदर करे करतार, तिस जन के सब काज सुवार, तिसका राखा एको सोए, जन नानक अपड़ ना साके कोए। पहरों महला पंजवा, तव कड़िया जे हुए बाहर, तव कड़िया जे विसरे नरहर, तव कड़िया जे दूजा भाई, क्या कड़िया जा रहया समाई, माया मोहे कड़े कड़ पचिया, बिन नामे प्रम प्रम प्रम खपिया रहाओ, तव कड़िया जे दूजा करता, तव कड़िया जे अन्याय को मरता, तव कड़िया जे किस जाने नाही, क्या कड़िया जा भरपूर समाही, तव कड़िया जे किस होए तिंगाने, तव कड़िया जे फूल रिंजाने, गुर कहया जो हुए सब प्रभते, तब काड़ा छोड़ अचिंत हम सोते, प्रभ तू है ठाकुर सब को तेरा, ज्यों पावे त्यों करह निबेरा, द्वितीया नास्त इक रहया समाए, राखो पैज नानक सरनाई, भैरू महला पंजवां।

बिरथे सब काज, नाम बिना कहो को तरिया, बिन सतगुर कैसे पार परिया, रहाओ बिन जिहवा कहाँ को बकता।

कहा कोई पंडित बिन अमरै कैसे राज मंडत, बिन बूझे कहा मन ठहराना, नाम बिना सब जग बोराना, बिन बैराग कहा बैरागी, बिन हों त्याग कहा को त्यागी, बिन बस पंच कहा मन चूरे, नाम बिना सद सद ही चूरे, बिन गुर दीख्या कैसे ज्ञान, बिन पेखे कहो कैसो ध्यान।

रोग पच मोए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा, जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी, रहाओ जिहवा रोग मीन ग्रसियानू, बासन रोग भवर बिनसानू।

फिर फिर जोनी परम रोग बंद रहन रत्ती ना पावे बिन सतगुरु रोग कत है ना जावे पार ब्रह्म जिस कीनी दया बाहां पकड़ रोग हो काज लया टूटे बंधन साध संग पाया कहो नानक गुर रोग मटाया पैरों महला पंजवा चीत आवे ता महा आनंद चीत आवे ता सब दुख भंज चीत आवे ता श्रद्धा पूरी चीत आवे ता कबह ना झूरी अंतर राम राय प्रगटे आए गुरपुरै दियो रंग लाए रहाउ चीत आवे ता सर्ब को राजा चीत आवे ता पूरे काजा चीत आवे ता रंग गुलाल चीत आवे ता सदा निहाल चीत आवे ता सद तनवंता चीत आवे ता सद निपरंता चीत आवे ता सब रंग माणी चीत आवे ता चूकी काणी चीत आवे ता सहज घर पाया चीत आवे ता सुन समाया चीत आवे सद कीर्तन करता मन मानिया नानक भगवंता पैरों महला पंजवा बाप हमारा सद चिरंजीवी भाई हमारे सद ही जीवी नीत हमारे सदा अविनाशी कुटुंब हमारा निज घरवासी हम सुख पाया।

अंत अपूछे। राज हमारा सद ही निश्चल, माल हमारा अखूट अबेचल। शोभा मेरी सब जोगे अंतर, बाज हमारी थान थनंतर। कीरत हमारी कर कर होई, भगत हमारी सबनी लोई। पिता हमारे प्रगटे माज, पिता पूत रल कीनी सांझ। कहो नानक जो पिता पतीने, पिता पूत एक रंग लीने। भैरो महला पंजवा, निर्वैर पुरख सतगुर प्रभदाते। हम अपराधी तुम बख्शाते, जिस पापी को मिले ना ढोई। शरण आवे ता निर्मल होई, सुख पाया सतगुरु मनाए। सब फल पाए गुरु त्याए रहाओ, पार ब्रह्म सतगुर आदेश। मन तन तेरा सब तेरा देश, चूका पड़दा ता नदरी आया। खसम तू है सबना केराया, तिस भाणा सूके काष्ट हरिया। तिस भाणा ता थल सिर सरिया, तिस भाणा ता सब फल पाए। चिंत गई लग सतगुर पाए, हराम खोर निर्गुण कौ तूठा। मन तन सीतल मन अमृत बूठा, पार ब्रह्म गुर भये दयाला। नानक दास देख भये निहाला, भैरो महला पंजवा। सतगुर मेरा बेमोहताज, सतगुर मेरे सच्चा साज। सतगुर मेरा सब सका दाता, सतगुर मेरा पुरख बधाता। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव रहाउ। सतगुर मेरा सर्व प्रतपाल है, सतगुर मेरा मार जीवाल है। सतगुर मेरे की वडियाई, प्रगट पई है सबनी थाई। सतगुर मेरा तान नितान, सतगुर मेरा कर दीवान। सतगुर कह हो सद बल जाया, प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया। जिन गुर सेवया तिस पौ ना व्यापै, जिन गुर सेवया तिस दुख ना संतापै। नानक सोधे सिमरत बेद, पार ब्रह्म गुर नाही भेद। भैरो महला पंजवा, नाम लैत मन प्रगट भया। नाम लैत पाप तन ते गया, नाम लैत सगल पुरबाया। नाम लैत अठसठ मजनाया, तीर्थ हमरा हर को नाम। गुर उपदेसिया तत् ज्ञान रहाउ। नाम लैत दुख दूर पराना, नाम लैत अत मूड सो ज्ञाना। नाम लैत

रहत दरगाह सुख पावे। नाम लैत प्रभ कह साबास, नाम हमारी साची रास। गुर अपदेश कहो इहो सार, हर कीरत मन नाम आधार। नानक उदरे नाम पुनः चार, अवर कर्म लोकह पतियार। भैरू महला पंजवा, नमस्कार ता को लख बार। इहो मन दीजै ता को वार, सिमरन ता कै मिटह संताप। होए आनंद न व्यापह ताप, ऐसो हीरा निर्मल नाम। जास जपत पूर्ण सब काम, रहाउ जाकी दृष्ट दुख डेरा तह। अमृत नाम शीतल मन गह, अनक भगत जाके चरण पुजारी। सगल मनोरथ पूरन हारी, खिन मै ऊने सुपर भरिया। खिन मह सूके कीने हरिया, खिन मह न थावे को दीनो थान। खिन मह न माने को दीनो मान, सब मह एक रहिया पर पूरा। सो जापै जिस सतगुर पूरा। हर

मोहे दुहागने आप शिंगारी रूप रंग दे नाम सवारी मिटयो दुख अर सगल संताप गुर होए मेरे माई बाप सखी सहेरी मेरा ग्रस्त आनंद कर कृपा भेटे मोहे कंत रहाउ तपत बुझी पूर्ण सब आसा मिटे अंधेर भये परगासा अनहद शब्द अचरज बिस्माद गुर पूरा पूरा प्रसाद जाको प्रगट भये गोपाल ताकै दर्शन सदा निहाल सर्ब गुणा ताकै बहुत निदान जाको सतगुर दियो नाम जाको भेट्यो ठाकुर अपना मन तन शीतल हर हर जपना कहो नानक जो

आवे बेसवा भजत किस नह शर्मावे सारो दिन समजूरी करे हर सिमरन की वेला बजर सिर पर माया लग भूलो संसार आप भलाया भलावन हार राज रहया बिरथा व्यवहार रहाउ देखत माया रंग बिहाई गड़बड़ करे कौडी रंग लाए अंध व्यवहार बंद मन तावे करने हार न जी मह आवे करत करत इव ही दुख पाया पूर्ण होत न कारज माया काम क्रोध लोभ मन लीना तड़फ मुआ ज्यो जल बिन मीना जिसके राखे होए हर आप हर हर नाम सदा जप जाप साध संग हर के गुण गाया नानक सतगुर पूरा पाया भैरों महला पंजवा अपनी दया करे सो पाए हर का नाम मन वसाए साच शब्द हिरदे मन माहे जन्म जन्म के किल विख जाए राम नाम जी को आधार गुर प्रसाद जप हो नित पाई तार लए सागर संसार रहाउ जिनको लिखिया हर एहो निदान सीजन दरगाह पावह मान सुख सहज आनंद गुण गाओ आगे मिले न थावी थाओ जुगह जगंतर एहो तत सार हर सिमरन साचा विचार जिस लड़ लाए लए सो लागे जन्म जन्म का सोया।

रोम रोम रव्या हर नाम, सतगुर पूरे की नो दान, नाम रतन मेरे पंडार, अगम अमोला अपर अपार, रहाओ नाम हमारे निश्चल तनी, नाम की महिमा सब मह बनी, नाम हमारे पूरा साह, नाम हमारे बेपरवाह, नाम हमारे

नाद। प्रभ कृपा ते नाम नौ निध पाई, गुर कृपा ते नाम स्यों बन आई। तनवंते से ही प्रधान,

तुझ बिन अवर नहीं को मेरा, कर कृपा करो प्रभ दात, तुमरी उस्तत करो दिन रात रहाओ, हम तेरे जंत तू बजावन हारा, हम तेरे पिखारी दान दे दतारा, तौ प्रसाद रंग रस माने, घट घट अंतर

आसा, दुख सुख हमरा तिसही पासा, राख लीनो सब जन का पड़दा, नानक तिसकी उस्तत करदा, पैरू महला पंजवा, रोवन हारी रोज बनाया, बलन बर्तन को संबंध चेते आया, बूझ बैराग करे जे कोई, जन्म मरण फिर सोग ना होए, बिख्या का सब तंद पसार, विरले कीनो नाम आधार रहाउ, त्रिविध माया रही व्याप, जो लपटानो तिस दुख संताप, सुख नाही बिन नाम त्याए, नाम निदान बड़ भागी पाए, स्वांगी स्यों जो मन री जावे, स्वांग उतारे है फिर पछतावे, मेघ की छाया जैसे बर्तन हार, तैसो परपंच मोह बेकार, एक वस्त जे पावे कोई, पूर्ण काज ताही का होई।

का मन तन नानक हर गुण गाओ साध संग जिस देवै नाओ भैरू महला पंजवा निर्धन को तुम देव हो तना अनक पाप जाहे निर्मल मना।

उतर गई सब मन की चिंता, लोभ मोह सब कीनो दूर, परम वैष्णो प्रभ देख हजूर, ऐसो त्यागी बिरला कोए, हर हर नाम जपै जन सोए रहाउ। अहम बुद्ध का छोड़िया संग, काम क्रोध का उतरिया रंग, नाम ते आए हर हर हरे, साध जना कै संग निस्तरे, बैरी मीत होए सम्मान, सर्व मह पूर्ण भगवान।

पई पैरू महला पंजवा सुख नाही बहुते तन खाते सुख नाही पेखे निरत नाते सुख नाही बहु देश कमाए सर्व सुखा हर हर गुण गाए सुख सहज आनंद लहो साध संग पाइय वडभागी गुरमुख हर हर नाम कहो रहाउ बंधन मात पिता सुत बनता बंधन कर्म धर्म हो करता बंधन काटन हार मन वसै तौ सुख पावै निज कर बसै सब जाचक प्रभ देवन हार गुण निदान बेअंत अपार जिसनो कर्म करे प्रभ अपना हर हर नाम तिने जन जपना गुर अपने आगे अरदास कर कृपा पुरख गुणतास कहो नानक तुमरी सरनाई ज्यों पावै त्यों रखो गुसाई पैरों महला पंजवा गुर मिल त्यागियो दूजा पाओ गुरमुख जपियो हर का नाओ बिसरी चिंत नाम रंग लागा जन्म जन्म का सोया जागा कर कृपा अपनी सेवा लाए साधु संग सर्व सुख पाए रहाउ रोग दुख गुर शब्द निवारे नाम औखद मन पीतर सारे गुर पेटत मन पया आनंद सर्व निदान नाम भगवंत।

परवान सफल होई जप हर हर नाम कहो नानक प्रभ कृपा करी सास ग्रास जपो हर हरी।

आवण जान रहे हर त्याई, भगत पाए प्रभ की लिव लाए, बिनसे काम क्रोध अहंकार, टूटे माया मोह प्यार, प्रभ की तेक रह दिन रात, पार ब्रह्म करे जिस दात, कर्ण करावन हार स्वामी, सगल कटां के

बंधन का मूल हर के भजन बिन बिरथा पूल बिन खाए दूजे नहीं भूख रोग जाए ता उतरह दुख काम क्रोध लोभ मोह व्यापिया जिन प्रभ कीना सो प्रभ नहीं जापिया तन तन साध तन हर नाओ आठ पहर कीर्तन गुण गाओ तन हर भगत तन करनै हार शरण नानक प्रभ पुरख अपार भैरों महला पंजवां गुरसो पर

नानक पाया नाम निदान पैरो महला पंजवां करन कारण समरथ गुर मेरा जी प्राण सुखदाता नेरा पै भंजन अवनासी राए दर्शन देखे है सब दुख जाए जत तत पेखो तेरी सरना बल बल जाई सत

पैरोग सब किस तेरा तू करने हार पार ब्रह्म गुरे अगम अपार निर्मल सोभा आचर्ज बाणी पार ब्रह्म पूर्ण मन पाणी जल थल महियल रव्या सोए नानक सब किस प्रभ ते होए पैरो महला पंजवा मन तन राता राम रंग चरने सर्ब मनोरथ पूरन करने आठ पहर गावत भगवंत।

सूजन आया प्रभ की सरना, आप पवित्र पावन सब कीने, राम रसायन रसना कीने। भैरो महला पंजवा, नाम लैत किस बिघन ना लागै, नाम सुनत जम दूर हो भागै, नाम लैत सब दुख नास, नाम जपत हर चरण निवास, निर्विघ्न भगत भज हर हर नाम, रसक रसक

आपे शिव शक्ति संजोगी, आप निर्वाणी आपे भोगी, जत कत पेखो तत तत सोए, तिस बिन दूजा नाही कोई, सागर तरिया नाम कै रंग।

बिंद अस्थित पय बिनसी सब चिंद तै ब्रह्म बिनस गए खिन माहे पार ब्रह्म वस्या मन आई राम राम संत सदा सहाई।

नित सुख प्रतपाल, अपने दास कहो दे राखै हाथ, निमख न छोड़ै सद ही साथ, हर सा प्रीतम अवर न कोए, सार संभाले साचा सोए, मात पिता सुत बंद नारायण, आद जुगाद भगत गुण गायन, तिसकी धार प्रभ का मन जोर, एक बिना दूजा नहीं होर, नानक कै मन एहो परखारथ, प्रभु हमारा सार

त्रिहो गुण की दास के हुए पूर्ण काम रहाओ। हर के लोक सदा गुण गावे तिनको मिलिया पूर्ण ताम। जन का दर्श बांछे दिन राती

कुदरत नहीं जानै, लीपै थाए ना सोच हर मानै, अंतर मैला बाहर नित धोवै, साची दरगह अपनी पत खोवै, माया कारण करै उपाऊ, कबह न

जाकै ग्रह में सगल निदान, जाकी सेवा पाई है मान, सगल मनोरथ पूरन हार, जी प्राण भगतन आधार, कट कट अंतर सगल परगास, जप जप जीव है।

सब लगरी मह भगत दिरड़ाई, दुष्ट सभा का किसना वसाई, संडै मरकै की पुकार, सभे दैत रहे चख मार, भगत जना की पत राखै सोई, कीते कै कहे क्या होई, किरत संजोगी दैत राज चलाया, हर ना बूझै तिने आप पुलाया, पुत्र प्रहलाद स्यो वाद रचाया, अंधा ना बूझै काल नेड़ै आया, प्रहलाद कोठे विच राखिया, बार दिया ताला, निरपो बालक।

जो तुर लिखिया सो आए पौता जन सिंह वाद रचाया पिता प्रहलाद सिंह गुरज उठाई कहां तुम्हारा जगदीश गुसाई जग जीवन दा

माता नरसिंह का रूप निवार। लक्ष्मी भौ करै ना साकै जाए, प्रहलाद जन चरणी लागा आए। सतगुर नाम निदान बिरडाया, राज माल झूठी सब माया। लोभी नर रहे लपटाए।

गुर सेवा ते अमृत फल पाया, हौ मैं तृष्ण बुझाई, हर का नाम हृदय मन बसिया, मनसा मन है समाई, हर जियो कृपा करो मेरे प्यारे, अन दिन हर गुण दीन जन मांगे, गुर कै शब्द उधारे रहाओ, संत जना को जम जोहे ना साके, रत्ती

वढ़ियाई। जन्म जन्म के किल विख दुख काट है, दुबदा रती नाराई। हम मूड मुगद किस बूझ नाही, तू आपे देहे बुझाई। जो तुद पावै सोई करसी, अवर न करना जाई। जगत अपाए तुद

ना सूझै, दुर्मत अज्ञान अंधारा, भवजल पार ना पावह कभी, डूब मुए बिन गुर सिर पारा, साचे शब्द रते जन साचे, हर प्रभ आप मलाई, गुर की वाणी शब्द पछाती, साच रहे निवलाई, तू आप निर्मल, तेरे जन है निर्मल, गुर कै शब्द विचारे, नानक तिन कै सद बलिहारे, राम नाम उर तारे, भैरो महला पंजवां अष्टपदियां घर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जिस नाम हृदय सोई वड राजा, जिस नाम हृदय तिस पूरे काजा, जिस नाम हृदय तिन कोट धन पाए, नाम बिना जन्म बिरथा जाए, इस सलाही जिस हर तन रास, सो वड भागी जिस गुर मस्तक हाथ रहाव, जिस नाम हृदय तिस कोट कई सैना, जिस नाम हृदय तिस सहज सुखैना, जिस नाम हृदय सो शीतल हुआ, नाम बिना त्रिग जीवन मुआ, जिस नाम हृदय सो जीवन मुक्ता, जिस नाम हृदय तिस सब ही जुगता, जिस नाम हृदय इन नौ निध पाई, नाम बिना भ्रम आवै जाई, जिस नाम हृदय सो वे परवाहा, जिस नाम हृदय तिस सद ही लाहा, जिस नाम हृदय तिस वड परवारा, नाम बिना मन मुख गवारा, जिस नाम हृदय तिस निहचल आसन, जिस नाम हृदय तिस तख्त निवासन, जिस नाम हृदय सो साचा साह, नाम हीन नाही पत विसाह, जिस नाम हृदय सो सब मह जाता, जिस नाम हृदय सो पुरख बधाता, जिस नाम हृदय सो सब ते ऊंचा, नाम बिना भ्रम जोनी मूचा, जिस नाम हृदय तिस प्रगट पहारा, जिस नाम हृदय तिस मिटिया अंधारा, जिस नाम हृदय सो पुरख परवान, नाम बिना फिर आवन जान, तिन नाम पाया जिस भयो किरपाल, साध संगत मह लखे गोपाल।

कोट ब्रह्मांड जाके धर्मशाल, कोट महेश उपाय समाए, कोट ब्रह्मे जग साजन लाए, ऐसो धनी गोविंद।

नाम चार कोट पूजारी करते पूजा कोट विस्थारन अवरना दूजा कोट महमा जाकी निर्मल हंस कोट उस्तत जाकी करत ब्रह्मंस कोट परलो ओपत निमख माहे कोट गुणा तेरे गणे ना जाहे कोट ज्ञानी कथह ज्ञान कोट त्यानी तरत त्यान कोट तपीसर तप ही करते कोट मनीसर मोन मह रहते अवगत नाथ अगोचर स्वामी पूर रहया घट अंतर जामी।

विनोद चोज अनंता, नानक को प्रभ मिलियो अचिंता। कहो नानक कीरत हर साची, बहुर बहुर पिस संग मन राची। रहाओ अचिंत हमारे भोजन पाओ, अचिंत हमारे लीचे नाओ। अचिंत हमारे शब्द उदार, अचिंत हमारे परे पंडार। अचिंत हमारे कार्य पूरे, अचिंत हमारे लथे वसूरे। अचिंत हमारे बैरी मीता, अचिंतो ही एहो मन वस कीता। अचिंत प्रभु हम किया दलासा, अचिंत हमारी पूर्ण आसा। अचिंत हमा को सगल सिद्धांत, अचिंत हम को गुर दीनो मंत। अचिंत हमारे बिन से बैर, अचिंत हमारे मिटे अंधेर। अचिंतो ही मन कीर्तन मीठा, अचिंतो ही प्रभ घट घट दीठा। अचिंत मिट्यो है सगलो परमा, अचिंत वस्यो मन सुख बिसरामा। अचिंत हमारे अनहत वाजे, अचिंत हमारे गोविंद गाजे। अचिंत हमारे मन पतियाना, निश्चल तनी अचिंत पछाना। अचिंतो उपजियो सगल बिबेका, अचिंत चरी हाथ हर हर टेका। अचिंत प्रभु तुर लिखिया लेख, अचिंत मिलियो प्रभ ठाकुर एक। चिंत अचिंता सगली गई, प्रभ नानक नानक नानक मई। भैरों बाणी भगतां की, कबीर जियो घर पहला।

राम राजा नौ निध मेरे संपहित कलत धन तेरे रहाऊ आवत संग न जात संगाती।

कह कबीर किस गुण बिचार, चले जुआरी दोए हाथ चार। मैला ब्रह्मा मैला इंद, राव मैला मैला है चंद। मैला मलता एहो संसार, एक

कह कबीर हो भया दीवाना, मुस मुस मनुआ सहज समाना, गंगा कै संग सलता बिगरी, सो सलता गंगा हुए निबरी, बिगरियो कबीरा राम दोहाई, साच पयो अन कतह ना जाई, रहाउ चंदन कै संग तरवर बिगरियो, सो तरवर चंदन हुए निबरियो, पारस कै संग तांबा बिगरियो, सो तांबा कंचन हुए निबरियो।

पंडित मुल्ला जो लिख दिया छाड़ चले हम कछु ना लिया। हृदय इखलास निरखले मीरा आप खोज खोज मिले कबीरा। निरतन आदर कोई ना दे लाख जतन करे ओहो चेतना तरे रहाऊ। जो निरतन सर धन कह जाए आगे बैठा पीठ फुराए। जो सर धन निर्धन कह जाए दिया आदर लिया बुलाए। निर्धन सर धन दो

रावी ऊपर गहरा ख्या चंद पच्छम द्वारे सूरज तपे मेर डंड सिर ऊपर बसे पश्चिम द्वारे।

करे आने गगन मंडल मह लश्कर करे सो सुरतान सत्तर सिर तरे जोगी गोरख गोरख करे हिंदू राम नाम उच्चरे मुसलमान का एक खुदाई कबीर का स्वामी रहे आसमाई।

फंद ना पात्र बोले ना किश दे फूकट कर्म निफल है सेव जे मृतक को चंदन चढ़ावे उसते कहो कमन फल पावे जे मृतक को बिस्टा माही रुलाई ता मृतक का क्या काट जाई कहत कबीर हो कहो पकार समझ देख साकत गावार दूजे पाए बहुत कर गाले राम भगत है सदा सुखाले जल मह मीन माया के बेदे दीपक पतंग माया के छेदे काम माया कुंचर को व्यापे भुयंगम प्रिंग माया मह खापे।

ति साकरमाखी अधिक संतापी तुरे उष्ट माया मह पीला सिद्ध चौरासी ही माया मह खीला शे जति माया के बंदा नवे नाथ सूरज अरचंदा तपे रखी सर माया मह सूता माया मह काल अर पंच दूता स्वान स्याल माया मह राता बंतर चीते अर सिंगाता माजार गाडर अर लूंभरा बिरख मूल माया मह परा माया अंतर पीने देव सागर इंद्रा।

हार उतरे गुर प्रसादी पारी उतरे दास कबीर कह समझाए केवल राम रहो लिव लाए सतर साई सलार है जाकी सवा लाख पैगंबर ताकी सेख जो कही है कोट अठासी छप्पन कोट जाके खेल खासी मो गरीब की को गुजरावे मजलस दूर महल को पावे रहाउ तेतीस करोड़ी है खेल खाना चौरासी लख फिरे दीवाना बाबा आदम को किस नदर दिख।

सदा पिखारी, देऊं जवाब हुए बजगारी। दास कबीर तेरी पनाह समाना, पिसत नजीक राख रहमाना। सब

गढ़ बंका पाई, दोवर कोट अर तेवर खाई, रहाउ पांच पचीस मोह मद मत्सर, आडी पर बल माया, जन गरीब को जोर ना पहुंचे, कहां करो रघुराया, काम कवारी दुख सुख दरवानी, पाप पुन दरवाजा, क्रोध प्रधान महाबड़ दुंदर, तह मन मावासी राजा, स्वाद सनाहा टोप ममता को, कबुद्ध कमान चढ़ाई, तिसना तीर रहे काट पीतर, यों गाड़ लियो ना जाई, प्रेम पलीता सुरत हवाई, गोला ज्ञान चलाया, ब्रह्म अगन सहजे पर जाली, एक है चोट सजाया, सत संतोख ले लरने लागा, तोरे दुए दरवाजा, साध संगत अर गुर की कृपा ते, पकरे ओ गढ़ को राजा, भगवत पी

अनहद शब्द होत चुनकार जिह पौड़े प्रभ श्री गोपाल खंडल मंडल मंडल मंडा त्रय स्थान तीन त्रय खंडा अगम अगोचर रहया अभ्यंत पार न पावे को धरनी तर मंत कदली पोहप धूप परगास रस पंकज महलियो निवास द्वादश दल अब अंतर मंत जह पौड़े श्री कमला कंत अर्ध उर्द मुख लागो कास सुन मंडल मह कर परगास ऊहा सूरज नाही चंद आद निरंजन करै आनंद जो ब्रह्मांड पिंड सो जान मान सरोवर कर इशनान सोहं सो जाको है जाप जाको

पासक कोट सेज बिस्थर है, समुंद कोट जाके पानी हार, रमावल कोट अठारह पार, कोट कमेर परह पंडार, कोटक लक्ष्मी करै श्रृंगार, कोटक पाप पुन बहो हिरै, इंदर कोट जाके सेवा करै, छप्पन कोट जाके प्रतिहार, नगरी नगरी खेत अपार, लट छूटी वरतै बिकराल, कोट कला खेलै गोपाल, कोट जग जाके दरबार, गंधर्व कोट करह जयकार, विद्या कोट सब...

मेरो मन पतियाए, नाहीं ता घर को बाप रसाए रहाओ। सोइन कटोरी अमृत भरी, लैना मैं हरिया गै तरी। एक भगत मेरे हृदय बसे, नामे देख नारायण हसे। दूध पियाए भगत घर गया, नामे हर का दर्शन पया। मैं बौरी मेरा राम पतार, रच रच ता को करो शिंगार। भले निंदो लोग, तन मन राम प्यारे जोग रहाओ।

भगत जना को देहरा फिरे, भैरो नाम देव जियो कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद

नहीं हम ही पाचहारी। राम कह करताल बुझावे चटिया सब बिगारी। राम नामा जप भो करे हृदय हर जी को सिमरन तरे रहाउ। बसदा बस कीनी सब राजी बिनती करे पटराणी। पूत प्रहलाद कहया नहीं माने तिन तो औरे ठानी। दुष्ट सभा मिल मंत्र उपाया कर सह औध कनेरी। गिर तर जल ज्वाला पै राखियु राजा राम माया फेरी। काड खड़ग काल पै कूपियो मोहि बताओ जो तुहे राखे। पीत पितांबर त्रे पवन तनी थंब माहे हर पाख है। हर नाखश जिन नखह बुदारे हो सुर नर किए सनाता। कह नाम देहो हम नर हर त्याव है। राम अपै पद दा।

पाई ना तर गर्दन मारो ठाई बादशाह ऐसी क्यों हुए बिस्मिल किया न जीवै कोई मेरा किया कछु न होए कर है राम हुए है सोए बादशाह चढ़ो अहंकार गज हस्ती दीनो चमकार रुदन करे नामे की माए छोड़ राम की ना भजै खुदाए ना हो तेरा पूंगड़ा ना तू मेरी माए पिंड पड़े तो हर गुण गाए।

गोपाल गंग जमन जो उल्टी बह तो नामा हर करता रह सात घड़ी जब बीती सुनी अजो ना आयो त्रे पवन धनी पाखंतन बाज बुझाएला गरुड़ चढ़े गोविंद आएला अपने भगत पर की प्रतपाल गरुड़ चढ़े आए गोपाल कह।

मोहे जब मटकी भरी, ले बादशाह के आगे तरी, बादशाह महल में जाई, औकट की कट लागी आई, काजी मुल्ला बिनती फरमाए, बख्शी हिंदू मैं तेरी गाय, नामा कह सुनो बादशाह, एहो

मिले मरार, जो गुर देव ता उतरै पार, जो गुर देव ता वैकुंठ तरै, जो गुर देव ता जीवत मरै, सत सत सत सत सत गुर देव, झूठ झूठ झूठ झूठ।

कोई, पारस परसै दुबदा ना हुई रहाउ। सो मुन मन की दुबदा खाई, बिन द्वारे त्रै लोक सुमाई। मन का स्वभाव सब कोई करे, करता हुए सो अन पै रह। फल कारण फूली बन राई, फल लागा तब फूल बुलाई। ज्ञान कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान भया तह कर्म है नास। कृत कारण दद मतै सयान, जीवत मुकत सदा निर्वाण। कह रविदास परम बैराग, हृदय राम की ना जपस अपाग। नाम देव आओ कलंदर केसवा, कर अबदाली भेसवा रहाउ। जिन आकाश कुलह सिर कीनी, कौसै सपत पयाला। चमर कोस का मंदर तेरा, एह बिद बने गोपाला। छप्पन कोट

पहला घर पहला चौपदे दो तुके एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह भंगुर प्रसाद महा महाम मारखी चढ़िया सदा बसंत परपड़ चित संभाल सोए सदा सदा गोबिंद भोलिया हऊ मैं सुरत वसार हऊ मैं मार बिचार मन गुण विच गुण लै सार रहा कर्म पेड़ साखा हरी धर्म फुल फल ज्ञान पत परापत शाम घनी चूका मन अभमान अखी कुदरत कन्नी बाणी मुख आखण सच नाम पत का धन पूरा हुआ लागा सहज ध्यान महारुति आवना वेखो कर्म कमाए नानक हरे ना सूकहे जे गुरमुख रहे समाए महला पहला बसंत रुत आई ले सरस बसंत माए रंग राते रंग है से तेरे चाए किस पूज चढ़ावो लगो पाए तेरे दासन दासा कहो राए जग जीवन जुगत ना मिले काए रहाओ तेरी मूर्त एका बहुत रूप किस पूज चढ़ावो देओ धूप तेरा अंत ना पाया कहां पाए तेरा दासन दा

आनंद बिन बूझे सब खड़ी अस बंद जेते जी लिखी सरकार करनी ऊपर हो वग सार हुक्म कर है मूर्ख गावार नानक साचे के सिफत भंडार बसंत महला तीजा बस्तर उतार दिगंबर होग जटा धार क्या कमावै जोग मन निर्मल नहीं दसवै द्वार प्रम प्रम आवै मूड़ा वारो वार एक त्यागो मूड मना पार उतर जाहे एक खिना रहाउ सिमरत शास्त्र करह वख्यान नादी बेदी पढ़ै पुराण पाखंड दृष्ट मन कपट कमाहे तिनकै रमैया नेड़ नाई जे को ऐसा संजमी होए क्रिया वसेख पूजा करे

बिन साधना पाई है हर का संग, बिन गुर महल मलीन अंग, बिन हर नाम ना शुद्ध होवे, गुर शब्द सलाहे साच सोए। जाको तू राख है रखन हार, सतगुरु मलावह करह सार, बिकहु मैं ममता पर हराई, सब

अपरंपरे अगमे अगोचर गुरमुख हर आप तलाए अतुल तोल रहाउ गुर चरण सरे वह गुर सिख तोर गुर सेव तरे तज मेर तोर नर निंदक लोभी मन कठोर गुर सेव ना पाई से चोर चोर गुर तुठा बख्शे भगत पाओ गुर तुठे पाइए हर महल ठाऊ पर हर निंदा हर भगत जाग हर भगत सुहावी कर्म भाग गुर मेल मलावे करे दात गुर सिख प्यारे दिन सरात फल नाम प्राप्त गुर तुस दे कहो नानक पावे बिरले के बसंत।

रहाउ। भीतर अगन बनास्पत मौली सागर पंडै पाया, चंद सूरज दुए कर ही भीतर

न खाया मन है तिना ही सेती वासा प्रणवत नानक दासन दासा खिन तोला खिन मासा बसंत हंडोल महला पहला साचा साहो गुरु सुख दाता हर मेले भुख गवाई कर कृपा हर भगत दरडाई अन दिन हर गुण गाई मत भूलह रे मन चेत हरी बिन गुरमुक्त नाही त्रै लोई गुरमुख पाईऐ नाम हरी रहाओ बिन भगती नहीं सतगुर पाईऐ बिन भागा नहीं भगत हरी बिन भागा सतसंग न पाईऐ कर्म मिलै हर नाम हरी घट घट गुप्त अपाए वेखै प्रगट गुरमुख संत जना हर हर करहै सो हर रंग पीने हर जल अमृत नाम मना जिनको तख्त मिलै वडियाई गुरमुख से प्रधान किए पारस भेट भये से पारस नानक हर गुर संग थीए बसंत महला तीजा कर पहला दो तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद महारुति मह सद बसंत जित हरे।

सेव परम सुख पावह आत्म देव रहाउ कर्म हुए ता सेवा करे गुर प्रसादी जीवत मरे अन दिन साच नाम उचरे इन विद प्राणी दुत्तर तरे देखे अमृत करतार पाई संसार बिरख को दोए फल लाई आपे करता करे कराई जो तिस पावे तिसे खुआई नानक जिसनो नदर करे अमृत नाम आपे दे विख्या की बासना मन है करे अपना पाणा आप करे बसंत महला तीजा राते साच हर नाम निहाला दया करो प्रभ दीन दयाला तिस बिन अवर नहीं मैं कोई

लोभ लोभाना राम विसार बहुर पछताना विसरत मलाए गुर सेव रांगी हर नाम दियो मस्तक वड भागे पौन पानी की एह दे सरीरा हौ मैं रोग कठन तन पीरा।

ब्रह्मचारी तृष्णा जलत जले अहंकारी गुर राखे वडभागी तारे जन नानक उर हरि अमृत तारी।

हर मन माही, मर मर जम्मह पी मर जाहि। से जन जीवे जिन हर मन माही, साच सुमालह साच सुमाहि रहाउ। हर ना सेवह ते हर ते दूर, दसंतर भवह सिर पावह धूर। हर आपे जन लिए लाए, तिस सदा सुख है तिल ना तमाए। नदर करे चूकै अभमान, साची दरगाह पावै मान। हर जियो वेखै सद हजूर, गुर कै शब्द रहया परपूर। जी जंत की करे प्रतपाल, गुर प्रसादी सद संभाल। दर साचै पत स्यों घर जाए, नानक नाम वडाई पाए। बसंत महला तीजा, अंतर पूजा मन ते होए। एको वेखै और ना कोई, दूजै लोकी बहुत दुख पाया।

पाई, तौ जग जीवन वसै मन आए, भगत करे सद वेखै हजूर, मेरा प्रभ सद रहया भरपूर, इस भगती का कोई जाने पियो, सब मेरा प्रभ आत्म देव, आपे सतगुर मेल मलाए, जग जीवन स्यो आप चित लाए, मन तन हरिया सहज सुपाए, नानक नाम रहे लिव लाए, बसंत महला तीजा, भगत वच्छल हर वसै मन आए, गुर कृपा ते सहज सुपाए, भगत करे विचों आप खोए, तद ही साच मलावा होए, भगत सोह है सदा हर प्रभ द्वार, गुर कै हित साचे प्रेम प्यार रहाउ, भगत करे सो जन निर्मल होए, गुर शब्दी विचों

मन तन हरिया रव गुण गोविंद बिन नावे सूका संसार अग्नि तृष्णा जले वारो वार सोई करे जे हर जियो पावे।

मन आई बसंत महला तीजा माया मोह शब्द जलाई मन तन हरिया सतगुरु पाई सफलो बिरख हर कै द्वार साची बाणी नाम प्यार ए मन हरिया सहज सुपाई सच फल लागे सतगुरु पाई रहाउ आपे नेड़ आपे दूर गुर कै शब्द वेखै सद हजूर शाम घनी फूली बन राए गुरमुख बिबसै सहज सुपाए अन दिन कीर्तन करह दिन रात सतगुर गवाई विचो जूठ परांत परपंच वेख रहया विस्माद गुरमुख पाई नाम प्रसाद आपे करता सब रस भोग जो किछ करे सोई पर होग वड्डा दाता तिन नात माई नानक मिलिए शब्द कमाई बसंत महला तीजा पूरे भाग सचकार कमावे एको चेता फिर जोन ना आवे सफल जन्म इस जग में आया।

नाम रता जन प्रगट हुए, एक साचा शब्द रहे लिव लाए, से जन साचे साचे पाए, साच त्याइन देख हजूर, संत जना की पग पंकज तूर, एको करता अवर न कोए, गुर शब्दी में लावा हुए, जिन साच सेव्या तिन रस पाया, नानक सहजे नाम समाया, बसंत महला तीजा, पगत करह जन देख हजूर, संत जना की पग पंकज तूर, हर सेती सद रह लिव लाई।

बहु अभिमान अपनी पत खोए, सेवड भागी जिन शब्द पछाणिया, बाहर जांदा घर मह आणिया, घर मह वस्त अगमे अपारा, गुरमत खोजह शब्द बीचारा, नाम नव निद पाई घर ही माही, सदा रंग राते सच समाए, आप करे किस करण ना जाए।

तीजा बनस्पत मौली चढ़िया बसंत इहो मन मौलिया सतगुरु संग तुम साच त्यावो मुग्ध मना ता सुख पावो मेरे मना रहाओ इत मन मौलिया पया आनंद अमृत फल पाय।

पंच चोर मिल लागे नगरिया, राम नाम तन हिरिया, गुरमत खोज परे तब पकरे, तन साबत रास उबरिया, पाखंड भरम अपाव कर थाके, हृदय अंतर माया माया, साधु पुरख पुरख पत पाया।

नानक शांत होवै मन अंतर। नित हिरदय हर गुण गावे, बसंत महला चौथा हिंडोल। तुम वड पुरख वड अगम गुसाई, हम कीरे किरम तुमन से। हर दीन दयाल करहो प्रभ कृपा, गुर सत गुर चरण हम बनसे। गोविंद जीओ सत संगत मेल कर कृप से। जन्म जन्म के किल विक मन भरिया, मिल संगत कर प्रभ हमसे रहाओ। तुमरा जन जात अव जाता, हर जपियो पतत पवीसे। हर कियो सगल भवन ते ऊपर, हर सोभा हर प्रभ दिन से। जात अजात कोई प्रभ ते आवे, सब पूरे मानस तिन से। धन वड्डे वड पूरे हर जन, जिन हर धारियो हर उरसे। हम ढींदे ढीम बहुत अत पारी, हर धार कृपा प्रभ मिलसे। जन नानक गुर पाया हर तूठे, हम किए पतत पवीसे। बसंत हंडोल महला चौथा, मेरा एक खिन मनुआ रह ना सकै। नित हर हर नाम रस गीदे, ज्यो बारक रसक पर्यो थन माता। थन काढे बिलल बलीदे, गोविंद जीओ मेरे मन तन नाम हर बीदे। वड्डा भाग गुर सत गुर पाया, विच काया नगर हर सीधे रहाउ। जन के सास सास है जेते, हर बिरह प्रभु हर बीदे। ज्यों जल कमल प्रीत अत पारी, बिन जल देखे सुख लीदे। जन जपयो नाम निरंजन नर हर, अपदेश गुरु हर प्रीदे। जन्म जन्म की हौ मैं मल निकसी, हर अमृत हर जल नीदे। हमरे कर्म ना बिचरहो ठाकुर, तुम पैज रखो अपनी दे। हर भावै सुन बिनो बेनती, जन नानक सरण पवीदे। बसंत हंडोल महला चौथा, मन खिन खिन परम परम बहुत आवै। तिल घर नहीं वासा पाईऐ, गुरे अंकस शब्द दारू सिर धारियो। घर मंदर आन वसाईऐ, गोविंद जीओ सत संगत मेल हर त्याईऐ। हौ मैं रोग गया सुख पाया, हर सहज समाज लगाईऐ रहाउ। कर रतन लाल बहुमानक लादी, मन भ्रमिया लह ना सकाईऐ। ज्यो ओडा कूप गोहज खिन काढ़ै, त्यो सतगुर वस्त लहाईऐ। जिने ऐसा सतगुर साधना पाया, ते त्रिग त्रिग नर जीवाईऐ। जन्म पदार्थ पुन फल पाया, कौडी बदलै जाईऐ। मद सूदन हर धार प्रभ कृपा, कर कृपा गुरु मिलाईऐ। जन नानक निर्वाण पद पाया, मिल साधु हर गुण गाईऐ। बसंत हंडोल महला चौथा, आवन जान भया दुख बिखिया।

पानी हर उस्तत धारु हो रे दे अंतर स्वामी सत संगत मिल बुद्ध लानी हर नामे हम प्रीत लगानी हम हर विटो घुम वानी जन के पूर मनोरथ हर प्रभ हर नाम देव हो हर लानी जन नानक मन तन आनंद भया है गुरमंत्र दियो हर भानी।

तम प्राण आधार मन जियो प्राण सब तेरो धन रहाउ जा को खोजह सुर नर देव मुन जन सेख ना लह भेव जा की गतमित कही ना जाए घट घट घट घट रहे आसमाए जा के भगत आनंद मै जा के भगत को नाही खै जा के

जुग जुगत नेतर संतोखे दर्श पेख रसना गाए गुण अनेक तृष्णा बूजी गुर प्रसाद मन अगानार रसह स्वाद सेवक लागो चरण सेव आदि पुरख अपरंपर देव सगल उदाहरण तेरो नाम नानक पायो एहो निदान बसंत महला पंजवां तुम बड दाते दे रहे जी प्राण मह रव रहे दीने सगले भोजन खान मोहे निर्गुण एक गुण ना जान हौ।

मीन अगम अगम ऊंचा ते ऊंचा हम तोरे तुम बहुत मूच जिन तू त्याया से गनी जिन तू पाया से तनी जिन तू सेव्या सुखी से संत सरण नानक परे बसंत महला पंजवा तिस तू सेव जिन तू किया तिस अराध जिन जियो दिया तिसका चाकर होहे फिर डान ना लागे तिसकी कर पोत दारी फिर दुख ना लागे एवड भाग होहे जिस प्राणी सो पाए एहो पद निर्वाणी रहाउ दूजी सेवा जीवन बिरथा कछु न होई है पूर्ण अर्था मानस सेवा खरी दोहेली साध की सेवा सदा सुहेली जे लोड़ है सदा सुख पाई।

जिस के धारे तरन आकाश घट घट जिसका है परगास जिस सिमरत पतत पनीत होए अंतकाल फिर ना रोए सगल धर्म मह उत्तम धर्म कर्म करतूत कै ऊपर कर्म जिसको चाह है सुर नर देव संत सभा की लग हो सेव आद पुरख जिसकी आदान तिसको मिलिया हर निधान तिसकी गत मिट कही ना जाए नानक जन हर हर त्याय बसंत महला पंजवा मन तन भीतर लागी प्यास गुरदयाल पूरी मेरी आस किल विख काटे साध संग नाम जपियो हर नाम रंग गुर प्रसाद बसंत बना चरण कमल हृदय उरतारी सदा सदा हर जस सुना।

देस, जह गोविंद भगत सो धन देस, हर भगत हीन उदयान थान, गुर प्रसाद घट घट पहचान, हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाप करत तू सदा संग, निकट पेख प्रभ करनहार, ईत ऊत प्रभ कार्ज सार, चरण कमल स्यों लगो।

प्रभु आप रखे, दुष्ट दूत सब भ्रम थके, बिन गुर साचे नहीं जाए, दुख देश दसंतर रहे ताए, किरत ओना का मिटस नाही, वे अपना बीजिया आप खाए, जन का रखवाला आप सोए, जन को पहुँच ना सकस कोए, प्रभ दास रखे कर जतने आप।

पंजवां गुर चरण सरे वत दुख गया पार ब्रह्म प्रभ करी मया सर्व मनोरथ पूर्ण काम जप जीवै नानक राम नाम सारुत सुहावी जित हर चेते आवै बिन सतगुर दीसै बिल लांती साकत फिर आवै जावै रहाउ से तनवंत जिन हर प्रभ रास काम क्रोध गुर शब्द नास पै बिन से निरपै पद पाया गुर मिल नानक खसम त्याया साध संगत प्रभ कियो निवास हर जप जप होई पूर्ण आस जल तल मही अल रव रहिया गुर मिल नानक हर हर कहिया अष्ट सिद्ध नव निध एह कर्म परापत जिस नाम दे प्रभ जप जप जीव है तेरे दास गुर मिल नानक कमल परगास बसंत महला पंजवां घर पहला एक तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद सगल इच्छा जप पुनिया प्रभ मेले चिरी वछुनिया तुम रवहु गोविंद रमण योग जित रवे सुख सहज भोग रहाउ कर कृपा नदर निहालिया अपना दास आप संभालिया सेज सुहावी रस बनी आए मिले प्रभ सुख धनी मेरा गुण अवगुण ना बिचारिया प्रभ नानक चरण पूजारिया बसंत महला पंजवां किल बिख बिन से गाए गुना अन दिन उपजी सहज धुना मन मौले ओ हर चरण संग कर कृपा साधु जन भेटे नित रातो हर नाम रंग रहाउ कर कृपा प्रगटे गोपाल लड़ लाए उधारे।

कल्याण रूप जप हर हर मंत्र रहाउ, सोग संताप कटे प्रभ आप, गुरे अपने को नित नित जाप, जो जन तेरा जपे नाउ, सब फल पाए निश्चल गुण गाओ, नानक भगतां।

फूल फूले, अहं त्याग त्यागी चरण कमल पागी, तुम मिलो हो प्रभ सुभागी, हर चेत मन मेरे रहाओ, सगन बास कूले, एक रहे सूख कठूले, बसंत रुत आई पर फूल ता रहे, अब कलू आयो रे, एक नाम बोव हो, अन रूत नाही नाही, मत परम भूलो हो, गुर मिले हर पाई, जिस मस्तक है लेखा, मान रुत नाम रे, गुण कहे नानक हर हरे, बसंत महला पंजवा, घर दूजा हिंडोल, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, होए इकत्तर मिलो मेरे भाई, दुबदा दूर करहो लिवलाई, हर नामे के होवो जोड़ी, गुरमुख बैसो सफा विछाई, इन बिद

कर्म धर्म तुम चौपड़ साजो, सत करहो तुम सारी, काम क्रोध लोभ मोह जीतो, ऐसी खेल हर प्यारी, उठ इशनान करहो प्रभाते, सोए हर अरादे, बिखड़े दाओ लंघावे मेरा सतगुर, सुख सहज सेती घर जाते, हर आपे खेलै आपे देखै, हर आपे रचन रचाया, जन नानक गुरमुख जो नर खेलै, सो जिन बाजी घर आया।

बसंत हंडोल महला पंजवां। मूल ना बूझै आप ना सूझै, भरम व्यापी अहं मनी। पिता पार ब्रह्म प्रभ धनी, मोहे निस्तार हो निर्गुणी। रहाउ ओपत परलो प्रभ ते होवै, एहे बिचारी हर जनी। नाम प्रभु के जो रंग राते, कलम है सुखिये से जनी। अवर अपाओ न कोई सूझै, नानक तरियै गुर बचनी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग बसंत हंडोल महला नौवा। साधो ए तन मिथ्या जानो, जा भीतर जो राम बसत है। साचो ताहे पछानो रहाओ, एहो जग है संपत सुपने की। देख कहां ऐडानो, संग तिहारै कछु ना चालै। ताहे कहां लपटानो, उस्तत निंदा दो पर हर। हर कीरत उरियानो, जन नानक सब ही मैं पूरन। एक पुरख भगवानो, बसंत महला नौवा। पापी ही है मैं काम बसाए, मन चंचल याते गहयो ना जाए। रहाउ जोगी जंगम अर सन्यास, सब ही पर डारी एह फास। जेह देह हर को नाम समार, ते भव सागर उतरे पार। जन नानक हर की सरनाए, दीजै नाम रह गुण गाए।

भागी उपजियो निर्मल ज्ञान लोग मोह एह परसना साकै गही भगत भगवान जन्म जन्म का संसार चूका रतन नाम जब पाया तृष्णा सकल बनासी मनते निज सुख माहि समाया जा को होत दयाल कृपा निद।

सब दुख सखाई गुण है बीन, मन चले न जाई ठाक राख, बिन हर रस राते पत ना साख, तू आपे सुरता आप राख, तर धारण देखे जाने आप। आप

मन नानक मानिया सच सलाही, बसंत महला पहला, दर्शन की प्यास जिस नर हुई, एकत राचे पर हर दुई, दूर दर्द माथे अमृत खाई, गुरमुख बूझै एक समाई, तेरे दर्शन को केती बिल लाई,

पारा आवत जात न लागे बारा दुख घणो मरिए करतारा बिन प्रीतम को करे ना सारा सब उत्तम किसे आखो ही ना हर भगती सच नाम पतीना रहाउ औखद कर थाकी बहु तेरे क्यों दुख चूकै बिन गुर मेरे बिन हर भगती दुख कनेरे दुख सुख दाते।

थाप आपे बशरू गऊ खीर आपे मंदर थम शरीर आपे करनी करणहार आपे गुरमुख कर विचार तू कर कर देख करणहार जोत जी असंख दे आधार तू सर सागर गुण गहीर तू अकुल निरंजन परम हीर तू आपे करता करण जोग नेह केवल राजन सुखी लोग नानक त्रापे हर नाम स्वाद बिन हर गुरु प्रीतम जन्म वाद बसंत हंडोल महला पहला कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद नौ सत चौदह तीन चार कर महलत चार बहाली चारे दीवे चौ हथ दिए एकाएका वारी मेहरवान मधुसूदन माधो ऐसी सकत तुम्हारी रहाओ कर कर लश्कर पावक तेरा धर्म करे सिखदारी।

पार पवै नित मुदगर पाप करे कोटवारी पावे चंगा पावे मंदा जैसी नदर तुम्हारी आद पुरख को अल्लाह कही है सिखा आई वारी देवल देवतिया कर लागा ऐसी कीरत चाली कूजा बांग निवाज मुसल्ला नील रूप बनवारी कर कर मिया सब नाजिया बोली अवर तुम्हारी जे तू मीर महीपत साहिब कुदरत कौन हमारी चारे कुंत सलाम करहेंगे कर कर सिफत तुम्हारी तीरत सिमरत पुन दान किशलाहा मिले दिहाड़ी नानक नाम मिले वड्याई मेका घड़ी संभाली बसंत हंडोल कर दूजा महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद काया नगर एक बालक वसिया हिन पल फिर ना रहाई अनक अपाव जतन कर थाके बारंबार परमाई मेरे ठाकुर बालक इकत कर आन सतगुर मिले ता पूरा पाईए पज राम नाम निशान रहाउ एहो मृतक मड़ा शरीर है सब जग जित राम नाम नहीं वसिया राम नाम गुर उदक चुआया फिर हरिया हो आ रसिया।

गुरमुख चलत दिखाया बाहर खोज मुए सब साकत हर गुरमति घर पाया दीना दीन दयाल भए हैं ज्यों कृष्ण बिदर घर आया मिले उस दामा पावनी तार सब किसे आगे दालद पंज।

रंग खीली एक रत्ती तिल ना कटाई जानकी उस्त है राम नामा दह दिस सुबा पाई निंदक साकत खाव ना सके तिल अपने घर लूकी लाई जन को जन मिल सुबा पावे गुण मह गुण परगासा मेरे ठाकुर के जन प्रीतम प्यारी जो हो दासन।

जल है समावे बसंत महला पंजवा घर कहला दो तुकिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुन साखी मन जप प्यार अजा मल।

कर नरेन ले मस्तक लाऊ कर कृपा देन रहाउ गनका उदरी हर कह तूत गज इंद्र त्यायो हर कियो मूख बिपर सदामे दालद पंज रे मन तू पी पज गोविंद बदक उदारे हो खम परहार कुबजा उदरी अंगुष्ट धार बिदर उदारे उदास्त पाई रे मन तू पी हर त्याय प्रहलाद रखी हर पैज आप बस्तर सीनत द्रौपदी रखी लाज जिन जिन सेव्या अंत बार रे मन सेव तू परह पार तन्नै सेव्या बाल बुद्ध त्रिलोचन गुरमिल भई सिद्ध बेणी कौ गुर कियो परगास रे मन तू पी होई दास।

भगत राख, तिनका गुण अवगुण ना बिचार्यो कोए, एह बिद देख मन लगा सेव, कबीर त्यायो एक रंग, नाम देव हर कियो बसह संग, रविदास त्याए प्रभ अनूप, गुरु नानक देव गोविंद रूप, बसंत महला पंजवां, अनक जन्म भ्रमे जोन माहे, हर सिमरन बिन नरक पाहे, भगत बिहूना खंड खंड, बिन बूझे जम देत दंड, गोविंद भजो हो मेरे सदा मीत, साच शब्द कर सदा प्रीत, रहाउ संतोख ना आवत कहूं काज, धूम बादर सब माया साज, पाप करम तव नह संगाई, विख का माता आवे जाई, हौ हौ करत बदे बेकार, मोह लोभ डूबो संसार, काम क्रोध मन वास किया, सुपने नाम ना हर लिया, कब ही राजा कब मंगन हार, दुख सुख बांधो संसार, मन उधरन का

अपार कर कृपा लड़ले हो लाई नानक दास प्रभ की सरनाई बसंत की वार महल पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम त्याए कै हो हरिया पहाई कर्म लखन तै पाई है एह रुत सुहाई वन त्रिण त्रे पवन मौलिया अमृत फल पाई मिल साधु सुख उपजै लथी सब छाई नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ ना ताई पंजे बदे महाबली कर सच्चा टोआ अपने चरण जपायन विच दयो खुड़ोआ रोग सोग सब मिट गए नित नवान रोआ दिन रहन नाम त्याईंदा फिर पाए ना मोआ जिस ते उपजिया नानका सोई फिर हुआ कितों उपजै कह रहे कह माहि समावे जी जंत सब खसम के कौन कीमत पावे कहन त्याईन सुन नित से भगत सहावे अगम अगोचर साहिबो दूसर लवे ना लावे सच पूरे गुर उपदेसिया नानक सुनावे बसंत बाणी भगतां की कबीर जी घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद मौली धरती मौलिया आकाश घट घट मौलिया।

संगही चोर कर्म सन लाग रहाउ, जागे सुख देव अर अकूर, हनुमंत जागे तर लंकूर, शंकर जागे चरण सेव, कल जागे नामा जय देव, जागत सोवत बहु प्रकार, गुरमुख जागे सोई सार, इस देही के अधिक काम, कह कबीर पज राम नाम, जोए खसम है जाया, पूत बाप खेलाया, बिन श्रवणा खीर पिलाया, देखो लोगा कल को पाओ, सुत मकलाई अपनी माओ, रहाओ, पगा बिन हुरिया मारता, बदले बिन खिर खिर हासता, निंद्रा बिन नर पैसो है, बिन बासन खीर बलो है, बिन अस्थन गहू लवेरी, पैंडे बिन बाट कनेरी, बिन सतगुर बाट न पाई, कहो कबीर समझाई, प्रहलाद पठाए पर्ण साल, संग सखा बहु लिए बाल, मोको कहां पढ़ाव से आल जाल, मेरी पटिया लिख दे हो श्री गोपाल, नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम, मेरो और पढ़न स्यो नहीं काम, रहाओ संडे मर के कहो जाए, प्रहलाद बलाए बेगताए, तू राम कहन की छोड़ बान, तुझ तुरत छडाऊ मेरो कहो मान, मोको कहां सताव हो बार बार, प्रभ जल थल गिर किए पहार, एक राम ना छोड़ो गुरहगार, मोको काल जार पावे मार डार, काड खड़ग को प्यो रिसाई, तुझ राखनहारु मोहे बताए, प्रभ थंब ते निकसे कै बिस्थार, हरनाक्ष छेदे हो

ना पार, प्रहलाद उधारे अनक बार, इस तन मन मधे मदन चोर, जिन ज्ञान रत्न हिर लीन मोर, मैं अनाथ प्रभ कहो काहे, को ना बेगूतो मैं को आहे, माधो दारण दुख सहयो न जाए, मेरो चपल बुद्ध स्यो कहां बसाए, रहाओ सनक सनंदन शिव सुकाद, नाभ कमल जाने ब्रह्माद, कब जन जोगी जटा तार, सब आपन अवसर चले सार, तू अथाह मोहे था नाही, प्रभ दीना नाथ दुख कहो काहे, मोरो जन्म मरण दुख आथ तीर, सुख सागर गुण रौ कबीर, नायक एक बन जारे पांच, वरद पचीसक संग काच, नौ बहिया दस गुण आहे, कसन बहतर लागी ताहे, मोहे ऐसे बनज स्यो नहीं काज, जेह घटै मूल नित बढ़ै ब्याज, रहाउ सात सूत मिल बन जकीन, कर्म पावनी संग लीन, तीन जगाती करत रार, चलो बनजारा हाथ चार, पूंजी हैरानी बनज टूट, दह दिस टांडो गयो फूट, कह कबीर मन सरसी काज, सहज समानो ता भरम पाज, बसंत हिंडोल कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, माता जूठी पिता पी जूठा, जूठे ही फल लागे, आवह जूठे जाहे पी जूठे, जूठे मरह अभागे,

खाया। गोबर जूठा चौका जूठा जूठी दीनी कारा, कह कबीर तेई नर सूचे साची परी बेचारा। रामानंद जी।

ना चेतना चले मन भयो पंग रहाउ। एक दिवस मन भई उमंग, कस चंदन चुआ बहु सुगंध, पूजन चाली ब्रह्म ठाए, सो ब्रह्म बतायो गुर मन ही माए।

कैसे संत जना राम नाम ना छाड़े, गंगा गया गोदावरी संसार के कामा, नारायण सो प्रसन्न होए ता सेवक नामा।

हों तार भी ना जानो मोको बाहां दे बीठला सहज अवल धूड़ मणि गाडी चालती पीछे तिनका लै कर हाकती जैसे पनकत थ्रू टिट हाकती सर तो मन चाली लाड

अपने भगत पर कर दया। बसंत बाणी रविदास जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तुझे सुजनता कछु नाही, पहरावा देखे ऊब जाए। गर्भवती

पाछे किसह पकार है पियो पियो साधु की जो लेहे ओट तेरे मिटह पाप सब कोट कोट कहर वदास जो जपे नाम तिस जात ना जन्म ना जोन काम बसंत कबीर जीओ एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुरा की जैसी तेरी चाल तेरी पूछत ऊपर चमक बाल इस कर्म है।

पहला घर पहला एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद अपने ठाकुर की हौ चेरी चरण गहे जग जीवन प्रभ के हौ मैं मारन बेरी रहाओ पूरन परम ज्योत परमेश्वर प्रीतम प्राण हमारी मोहन मोहे लिया मन मेरा समझस शब्द बिचारी मन मुखहीन होची मत झूठी मन तन पीर शरीरे जबकि राम रंगी लहराती राम जपत मन तीरे हौ मैं छोड़ पई बैरागन तब साची सुरत समानी अकुल निरंजन स्यों मन मानिया बिसरी लाज लुकानी पूर भविख नाही तुम जैसे मेरे प्रीतम प्राण आधारा हर कै नाम रत्ती सुहागन नानक राम पतारा सारंग मोहल्ला पहला हर बिन क्यों रही है दुख व्यापै जिहवा साधना फीकी रस बिन बिन प्रभ काल संता पै रहाउ जब लग दर्शन परसै प्रीतम तब लग भूख प्यासी दर्शन देखत ही मन मानिया जल रस कमल बिगासी ऊनम कनहर गरजै बरसै कोकिल मोर बैरागै तरवर बिरख बिहंग पुयंगम घर पेर तन सोहागै कुचिल करूप कुनार कुलखनी फिरका सहज ना जानिया हर रस रंग रसन नहीं तृप्ती दुर्मत दुख समानिया आए ना जावे ना दुख पावे ना दुख दर्द शरीरे नानक प्रभ ते सहज सुहेली प्रभ देखत ही मन तीरे सारंग मोहल्ला पहला दूर नाही मेरो प्रभ प्यारा सतगुर बचन मेरो मन मानिया हर पाए प्राण अधारा रहाउ इन विद हर मिलिया वर कामन तन सुहाग प्यारी जात बरन कुल सहसा चूका गुरमत शब्द बिचारी जिस मन मानै अभमान ना ताको हिंसा लोभ बसारी सहज रवै वर कामन पिरकी गुरमुख रंग सुवारी जारो ऐसी प्रीत कटंब संबंधी माया मूप सारी जिस अंतर प्रीत राम रस नाही दुबदा कर्म बेकारी अंतर रत्न पदार्थ हित को दुरै न लाल प्यारी नानक गुरमुख नाम अमोलक जुग जुग अंतर तारी सारंग महला चौथा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर के संत जना की हम धूर मिल सत संगत परम पद पाया आत्म राम रहया भरपूर रहाउ सतगुर संत मिले शांत पाईए किल विख दुख काटे सब दूर आत्म ज्योत पई परफूलत पुरख निरंजन देखिया हजूर वड्डे भाग सत संगत पाई हर हर नाम रहया भरपूर अठ सत तीरथ मज्जन किया सत संगत पग नाए धूर दुर्मत बिकार मलीन मत होची हिरदा कसुद्ध लागा मोह कूर बिन कर्मा क्यों संगत पाई हौ मैं व्याप रहया मन चूर हो दयाल कृपा कर हर जी मांगो सत संगत पग धूर नानक संत मिले हर पाई जन हर पेटिया राम हजूर सारंग महला चौथा गोबिंद चरणन को बलिहारी भवजन जगत न जाई तरना जप हर हर पार उतारी रहाउ हृदय प्रतीत बनी प्रभ केरी सेवा सुरत बिचारी हर दिन राम नाम जप हृदय।

खारी अंतर हर नाम सर्व धरनी तर साकत को दूर भया अहंकारी तृष्णा जलत न कबहू बूझ जुए बाजी हारी उठत बैठत हर गुण गावह गुर किंचित कृपा तहारी नानक जिनको नदर

गुरमुख मन मानिया तिनके काज सुवारे रहाउ। जो जन दीन भये गुरे आगे तिनके दुख निवारी। आन दिन भगत करह गुरे आगे गुर कै शब्द सुवारी। हिरदय नाम अमृत रस रसना रस गावह रस बीचारी। गुर प्रसाद अमृत रस चीनिया वे पावह मूख द्वारी। सतगुर पुरख अचल अचलह मत जिस दृढ़ता नाम अधारी। तिस आगे जियो देवो अपना हौ सतगुर कै बलिहारी। मनमुख ब्रह्म दूजै भाए लागी अंतर अज्ञान गुबारी। सतगुर दाता नदर ना आवे ना उरवार ना पारी। सर्वे कट कट रविया स्वामी सर्ब कला कल तहारी। नानक दासन दास कहते है कर कृपा ले हो उभारी। सारंग महला चौथा गोविंद की ऐसी कार कमाई। जो किछ करे सो सत कर मानो गुरमुख नाम रहो लिव लाई रहाओ। गोविंद प्रीत लगी अत मीठी अवर विसर सब जाए। अन दिन रहस भया मन मानिया ज्योति जोत मलाए। जब गुण गाए तब ही मन तृप्त शांत वसै मन आए। गुर कृपाल भये तब पाया हर चरणी चित लाए। मत प्रगास भये हर त्याया ज्ञान तत् लिव लाए। अंतर ज्योत प्रगटी मन मानिया हर सहज समाध लगाए। हृदय कपट नित कपट कमावह मुखो हर हर सुनाए। अंतर लोभ महागुबारा तोह कूटै दुख खाए। जब सो प्रसन्न भये प्रभ मेरे गुरमुख पर क्या लाए।

नाम मन मानी मेरा ही अरह सतगुर प्रीत लगाई मन हर हर कथा सुखानी रहाओ दीन दयाल हो जन ऊपर जन देव हो अकथ कहानी संत जना मिल हर रस पाया हर मन तन मीठ लगानी हर कै रंग रते बैरागी जिन गुरमत नाम पछानी पुरख है पुरख मिलया सुख।

हृदय हर हर पानी पंच जना गुरु वस गतियाणी तो उन मन नाम लगानी जन नानक हर कृपा तहारी।

राम नाम बिन थिर नहीं कोई, होर निफल सब विस्थार रहाओ। क्या लीजै क्या तजियै बौरे, जो दिसै सो चार, जिस बिख्या कहो तुम अपनी कर जानो। चाड़ चाड़ जाहो सिर पार, तिल तिल पल पल औद खुन काटै, बूझ ना सकै गवार। सो किछ करै जे साथ ना चालै, इहो साकत का आचार। संत जना कै

चल है झूठ छोड़ जाए पासार। नानक संत सदा थिर निश्चल जिन राम नाम आधार। सारहु महला चौथा कर तीजा धुपदा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद काहे पूत झगरत हो संग बाप। जिनके जने बडीरे तुम हो तिन स्यों झगरत पाप। रहाओ जिस धन का तुम गर्व करत हो सो धन किसह ना आप। खिन मह छोड़ जाए बिख्या रस तो लागे पछताप। जो तुमरे प्रभ होते स्वामी हर तिन के जापो जाप। अपदेश करत नानक जन तुमको जो सुनो तो जाए संताप। सार महला चौथा कर पंजवा दो पदे पड़ताल एक ओंकार। सतगुर प्रसाद जप मन जगन्नाथ जगदीशरो जग जीवनो मन मोहन स्यो प्रीत लागी। मैं हर हर हर टेक सब दिन सब रात। रहाओ हर की उपमा अनक अनक अनक गुण गावत। सुख नारद ब्रह्मादक तब गुण स्वामी गणन ना जात। तू हर स्वामी तू आपे ही जान है अपनी भांत। हर कै निकट निकट हर निकट ही बसते ते हर के जन साधु हर पगात।

जप मान नरहरे नरहर स्वामी हर सगल देव देवा श्री राम राम नामा हर प्रीतम मोरा रहाउ जित ग्रह गुण गावते हर के गुण गावते राम गुण गावते तित ग्रह वाजे पंच शब्द वड भाग मथुरा तिन जन के सब पाप गए सब दुख गए सब रोग गए काम क्रोध लोभ मोह अभिमान गए तिन जन के हर मार कड्डे पंच चोरा हर राम बोलो हर साधु हर के जन साधु जगदीश जपो मन बचन कर्म हर हर अराधु हर के जन साधु हर राम बोल सब पाप गवाधु नित नित जागरण करो सदा सदा आनंद जप जगदीश्वरा।

मेरा प्रीतम जन संतो मोहे मार्ग दिखलावे, तिस जन के हो मल मल धुआं पाऊ। हर जन को हर मिलिया, हर श्रद्धा ते मिलिया, गुरमुख हर मिलिया। मेरा मन तन आनंद भये, मैं देखिया हर राउ। जन नानक को कृपा पई, हर की कृपा पई, जगदीश्वर कृपा पई। मैं अनदिन सद सद सदा, हर जपिया हर नाउ। सारंग महला चौथा, जप मन निरभउ, सत सत सदा सत, निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी संभव।

दर्शन कहो कोट कोट ते तीस सिद्ध जति जोगी तट तीर्थ पर भवन करत रहत निराहारी किन जन की सेवा थाए पई जिनको कृपाल होवत बनवारी हर के हो संत भले ते उत्तम भगत भले

सब सृष्ट का प्रभु मेरे मन हर बोल हर पुरख अविनाशी रहाउ। हर का नाम अमृत हर हर हरि सो पिए जिस राम प्यासी। हर आप दयाल दया कर मेले जिस सतगुरु सो जन हर हर अमृत नाम चखासी। जो जन सेव है सद सदा मेरा हर हरि तिनका सब दुख भरम पहु जासी। जन नानक नाम नए ता जीवै ज्यों चात्रक जल पिए त्रिपतासी। सारंग महला चौथा जप मन श्री राम राम रमत राम सत सत राम। बोलो पैया सद राम राम राम रव रहया सर्वगे रहाउ। राम आपे आप आपे सब करता राम आपे आप आप सबत जगे। जिसे आप कृपा करे मेरा राम राम राम राय। सो जन राम नाम लिव लागे राम नाम की उपमा देखो हर संत हो। जो भगत जना की पात राखै बिच कल युग अगे। जन नानक का अंग किया मेरे राम राय। दुश्मन दुख गए सब भगे सारंग महला पंजवा चौपदे घर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर मूर्त कहो बल जाओ। अंतर प्यास चात्रक ज्यों जल की सफल दर्शन कद पाओ। रहाओ अनाथा को नाथ सर्व प्रत पालक भगत वच्छल हर नाओ। जा तो कोई न राखे प्राणी तिस तू देहे असराओ।

मित नहीं पाईए सब तेरो खेल दिखाओ। साधन का संग साध स्यों गोसत हर साधन स्यों लिवलाओ। जन नानक पाया है गुरमत हर देहो दर्स मन चाओ। सारंग महला पंजवा हर जियो अंतर जामी जान। करत बुराई मनुख ते छपाई साखी भूत पवान रहाओ। वैष्णो नाम करत खट करमा अंतर लोभ जुठान। संत सभा की निंदा करते डूबे सब अज्ञान। करह सोम पाक हिरह पर दर्भ।

करहे सब वर्ता जो सपरी दम्फान प्रभु पुलाए उजड़ पाए निफल सब कर्मान सो ज्ञानी सो वैष्णव पढ़िया जिस करी कृपा भगवान उन सतगुर सेव परम पद पाया उदरिया सगल विस्वान क्या हम कथ है किस कथ नहीं जान है प्रभ भावै तिवै बलान साध संगत की

सतगुर बचन लहू रहाउ। क्वार कन्या जैसे संग सहेरी, प्रिय बचन उपहास कहो। जो सुरजन ग्रह पीतर आयो, तब मुख काज लजो। ज्यो कनको कुठारी चढ़ो, कबरो होत फिरो। जब ते सुध पए है बारह, तब ते थान थिरो। जो दिन रैन तौ लो बजो, मूर्त घरी पलो। बजाव नहारो ऊठ सधारियो, तब फिर बाज ना पयो। जैसे कुंभ उदक पूरे आने हो, तब ओह भिन्न दृष्टो। कहो नानक कुंभ जले मह डारियो, अंबे अंब मिलो। सारंग महला पंजवा, अब पूछे क्या कहा। लैनो नाम अमृत रस नीको।

ठाकुर तहां नगर सुख आनंद रहाऊ। जहां बीसरै ठाकुर प्यारू तहां दुख सब आपद। जह गुण गाए आनंद मंगल रूप तहां सदा सुख संपद। जहां श्रवण हर कथा ना सुनिए तह महाप्यान उदयांद। जहां कीर्तन साध संगत रस तह सगन बास फलानंद। बिन सिमरन कोट बरख जीवे सगली औद बिरथानंद। एक निमख गोविंद भजन कर तो सदा सदा जीवानंद। सरन सरन सरन प्रभु पाव दीजे साध संगत किरपानंद। नानक पूर रहो है सर्व में सगल गुणा बिद जानंद। सारंग महला पंजवां अब मोहे राम पुरु सौ पाई। जो जो सरन पर्यो करना निद ते भवह तराई रहाओ। सुख सोयो अर सहज सुमायो सहसा गुरह गवाई। जो चाहत सोई हर कियो मन बाचत फल पाई। हृदय जपो नेत्र ध्यान लावो श्रवणी कथा सुनाई। करनी चलो मार्ग ठाकुर कह रसना हर गुण गाई। देखियो दृष्ट सर्व मंगल रूप उल्टी संत कराई। पायो लाल अमोल नाम हर छोड़ ना कतु।

काजर मह परया बहोर बहोर फिर चारे काटे पेड़ दाल पर ठांडो खाए खाए मुशकार है गिरो जाए रसातल परयो सिति सिति सिर पार है निर्वैर संग वैर रचाए पहुंच ना सके ग्वार है कहो नानक संतन का राखा पार ब्रह्म निरंकार है सारंग महला पंजवा अवर सब भूले भ्रमत ना जानिया एक सदाखर जाके हृदय वसिया किन बेद है तत पछानिया रहाउ परविरत मार्ग जेता किश होई है तेता लोग पचारा जौ नौ हृदय नहीं परगासा तौ नौ अन्न अंधारा जैसी धरती साधे बहु बिद बिन बीजै नहीं जामे राम नाम बिन मुक्त ना हुई है टुटे नाही अभमान नीर बलोवै अत चरम पावे नैनू कैसे रिसै बिन गुर पेटे मुक्त ना काहू मिलत नहीं जगदीसै खोजत खोजत एह बिचारियु सर्व सुखा हर नामा कहो नानक तिस पयो परापत जा कह लेख मथामा सार महला पंजवा अन दिन राम के गुण कही है।

वेदनाई दर्शन प्यास प्रिय प्रीत मनोहर मन ना रह बहु विद उमकाई रहाऊ चितवन चितवो प्रिय प्रीत बैरागी कद पावो हर दरसाई जतन करो एहो मन नहीं धीर को है रे संत मलाई जप तप संयम पुन सब होम तिस अर्पों सब सुख जाई एक निमक प्रिय दर्शन खावे इस संतन कै बल जाई करो निहोरा बहुत बेनती सेवो दिन रहनाई मान अवमान हो सगल त्यागो जो प्रिय बात सुनाई देख चरित्र पई हो बिस्मन गुर सतगुर पुरख मलाई प्रभ रंग दयाल मोहे ग्रह मह पाया जन नानक तपत बुझाई सारी महला पंजवा रे मूड़े तू क्यों सिमरत अब नाही नरक कोर मह उर्द तप करता निमख निमख गुण गाही रहाउ अनक जन्म भ्रम तो ही आयु मानस जन्म दुलपाही गर्भ जोन छोड़ जो निकस्यो तो लागो अनठाही करह बुराई ठगाई दिन रहन निफल कर्म कमाही कण नाही तुहो गाहन लागे ताए ताए दुख पाही मिथ्या संग कूड़ लपटायो उर्ज पर्यो कुसमाही धर्म राय जब पकरस बबरे तो काल मुखा उठ जाही सो मिलिया जो प्रभु मलाया जिस मस्तक लेख लिखाही कहो नानक तिन जन बलिहारी जो अलिप रहे मन माही सारंग महला पंजवा क्यों जीवन प्रीतम बिन माई जाके बिसरत होत मृत का ग्रह

आसन को उत्तम सैन जन नाई ऊचते ऊच नाम देहो समदर्शी रविदास ठाकुर बन आई जियो पिंड तन तन साधन का एहो मन संतरे नाई संत प्रताप परम सब नासे नानक मिले गुसाई सारंग महला पंजवा मनोरथ पूरे सतगुरे आप सगल पदार्थ सिमरन जाके आठ पहर मेरे मन जाप रहाओ अमृत नाम स्वामी तेरा जो पीवे तिस ही त्रिपतास जन्म जन्म के किल बिख नास है आगे दरगाह हुए खलास शरण तुम्हारी आयो करते पार ब्रह्म पूर्ण अभनास कर कृपा तेरे चरण त्यावो नानक मन तन दर्स प्यास सार महला पंजवा कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन कहां लुभाइए।

यह अघावन पान को अकाल मूर्त है साध संतन की था हरने की ध्यान को वाणी मंत्र महापुरखन की मन है उतारन मान को खोज लहियो नानक सुख थाना हर नामा विश्राम को सारंग महला पंजवा मन सदा मंगल गोविंद गाय रोग सोग तेरे मिट है सगल अग निमख ही है हर नाम त्याई रहाओ छोड़ सियानप बहो चतराई साधु सरनी जाए पाए जो होए कृपाल दीन दुख भंजन जमते होए धर्म राय एक सबिन नाही को दूजा आनना बियो लवे लाए मात पिता पाई नानक को सुख दाता हर प्राण साए सार महला पंजवा हर जन सगल उधारी संग के पये पनीत पवित्र मन जन्म जन्म के दुखारे रहाव मार्ग चले तिन्नी सुख पाया जिन स्यो गोष्ट से तरे बूढ़त कोर अंध कूप मह ते साधु संग पार परे जिनके भाग बड़े हैं भाई तिन साधु संग मुख जोरे तिनकी धूर बांचै नित नानक प्रभ मेरा कृपा करे सार महला पंजवा हर जन राम राम राम त्याय एक पलख सुख साध समागम कोट बैकुंठ है पाए रहाऊ दलाब दे जप होत पनीता जम की त्रास निवारे महा पतत के पातक उतर है हर नामा उर तार है जो जो सुने राम जस निर्मल ताका जन्म मरण दुख नासा कहो नानक पाई है वड भागी मन तन हुए बिगासा।

मान करो अब मान बोलो भूल चूक तेरी प्रिय क्रिया रहाओ निकट सुनो हर पेखो नाही परम परम दुख परिया होए कृपाल गुर लाहे पार दो मिलो लाल मन हरिया एक निमख जे बिसरे स्वामी जानो कोट दिन सलाख बरिया साध संगत की पीर जो पाई तौ नानक हर संग मिरिया सारंग महला पंजवा अब क्या सोचो सोच बिसारी करना सा सोई कर रहिया दे नाओ बलिहारी रहाओ चहो बिस फूल रही बिखिया बिख गुरमंत्र मूख गरुड़ारी हाथ दे राख्यो कर अपना जो जल कमला अलपारी हो नाही किस मैं क्या हुसा सब तुम ही कल तारी नानक भाग परयो हर पाछे राख संत सदकारी सारंग महला पंजवा अब मोहे सर्व उपाव बिरकाते कर्म कारण समरथ स्वामी।

हर एकसते मेरी गाते रहाओ। देखे नाना रूप बहुरंगा, अन नाही तुम भांते। देहे आधार सर्ब को ठाकुर, जी प्राण सुख दाते। प्रमतो प्रमतो हार जो परयो, तव गुर मिल चरण पराते। कहो नानक मैं सर्ब सुख पाया, ए सुख बिहानी राते। सार महला पंजवा, अब मोहे लभ दियो है हर टेका। गुर दयाल पये सुखदाई, अंधलै मानक देखा रहाऊ। काटे अज्ञान तिमर निर्मलिया, बुद्ध विगास विवेका। ज्यों जल तरंग फेन जल हुई है, सेवक ठाकुर पये एका। जह ते उठ्यो तह ही आयो, सब ही एकै एका। नानक दृष्ट आयो सर्ब ठाई, प्राण पति हर समका। सारंग महला पंजवा, मेरा मन एकै ही प्रिय मांगै। पेख आयो सर्ब थान देश, प्रिय रोम ना समसर लागै। रहाओ मैं नीरे अनक भोजन बहु बिंजन, तिन स्यों दृष्ट ना करै रुचांगै। हर रस चाहै प्रिय प्रिय मुख तेरै, जो अल कमला लो भांगै। गुण निधान मन मोहन लालन, सुखदाई सर्वांगै। गुर नानक प्रभ पाहे पठायो, मिलहु सखा गल लागै।

दर्शन देख पए मन आनंद गुर कृपा ते छूटा रहाउ। बिखम थान बहुत बहुत तरिया अनक राख सुरूपता बिखम गार कर पहुंचे नाही संत सानथ पए लूटा। बहुत खजाने मेरे पाले परिया अमोल लाल अखूटा। जन नानक प्रभ कृपा तारी तौ मन में हर रस कूटा। सारंग महला पंजवा अब मेरो ठाकर स्यो मन लीना। प्राण दान गुर पूरे दिया उर्जायो ज्यों जल मीना रहाओ। राम क्रोध लोभ मद मत सर एह अर्प सगल दान कीना। मंत्र दरडाए हर औखद गुर दियो तौ मिलियो सगल प्रबीना। ग्रह तेरा तू ठाकुर मेरा गुर हौ खोई प्रभ दीना। कहो नानक मैं सहज घर पाया हर भगत भंडार खजीना। सारंग महला पंजवा मोहन सब जी तेरे तू तार है सुटह संघार निमुख कृपा ते कोट ब्रह्मांड उदार है रहाओ। करह अरदास बहुत बेनंती निमुख निमुख समार है। हो कृपाल दीन दुख भंजन हाथ दे निस्तार है। क्या ए पूपत बपरे कही है कहो ए किसनो मार है। राख राख राख सुख दाते सब नानक जगत तुम्हार है। सारग महला पंजवा अब मोहे तन पायो हर नामा पए अचिंत त्रिशन सब बुझी है। एहो लिखियो लेख मथामा रहाओ खोजत खो

दुख सहमा गोबिंद भजन के निर्भय व्यापारी हर रास नानक राम नामा सार महला पंजवा मेरा मन मिष्ट लगे प्रिय बोला गुरबाह पकड़ प्रभ सेवा लाए सद दयाल हर ढोला रहाओ प्रभ तू ठाकुर सर्व प्रित पालक मोहे कलत्तर सहत सब गोला मान तान सब तू है तू है एक नाम तेरा मैं बोला जे तख्त बसाल है तो दास तुम्हारे कास बढ़ाव है के तक बोला जन नानक के प्रभ पुरख बधाते मेरे ठाकुर अगह अतोला सार महला पंजवा रसना राम कहत गुण सोहं एक निमख पाए समावे देख चरित मन मोहं रहाओ जिस सुनिए मन हुए रहस्यत हृदय मान दुख जोहं सुख पायो दुख दूर परायो बाण आई प्रभ तोहं किल विख गए मन निर्मल होई है गुर काटे माया द्रोहं कहो नानक मैं सो प्रभ पाया करन कारण समरथोहं सारं महला पंजवा नैनहुं देखियो चलत तमाशा सब हूं दूर सब हूं ते नेरे अगम अगम घट।

और जुतियाया सुबराथे नैन त्रिपतासे देख दरसावा गुर कर धारे मेरे माथे कहो नानक मैं अतुल सुख।

पूल पूल बेख खाई रहाओ, प्रभ सुंदर चतुर अनूप बधाते, तिस स्यों रुच नहीं राई, मोहन स्यों बावर मन मोहयो, झूठ ठगौरी पाई, भयो दयाल कृपाल दुख हरता, संतन स्यों बन आई, सगल निदान करै मह पाई, कहो नानक जोत समाई, सारंग महला पंजवा, वंग प्रिय प्रीत चीत पहलरिया, जो तौ बचन दियो मेरे सतगुर, तौ मैं साज सिंगरिया रहाओ, हम भूले हैं तुम सदा अभूला, हम पतत तुम पतत उधरिया, हम नीच बिरख तुम मैलागर, लाज संग संग बसरिया, तुम गंभीर तीर उपकारी, हम

कार्य सब सवरे हं रोग सगल ही खया कोट पराध खिन मह खो पई है गुर मिल हर हर कहया पंच दास गुर वसगत कीने मन निश्चल निर्भया आए ना जावे ना कत ही डोले फिर नानक राजया सार मोहल्ला पंजवा प्रभ मेरो केते उत सदा सहाई मन मोहन मेरे जी को प्यारो कमन कहां गुण।

की न्याई, जैसे मात पिताई, तिस बिन निमख नहीं रह सकी, बिसरना कब हूं जाई। कहो नानक मिल संत संगत ते, मगन पए लिवलाई। सारंग महला पंजवा, अपना मीत स्वामी गाइए, आसना अवर काहू की कीजै, सुखदाता प्रभ त्याई रहाओ, सुख मंगल कल्याण जिसह कर, तिस ही सरनी पाइए। किसह त्याग मनुख जे सेव हो, तो लाज लोन होए जाइए। एक ओट पकरी ठाकुर की, गुर मेल मत बुद्ध पाइए, गुण निधान नानक प्रभ मिलिया, सगल चुकी मोहताई है। सारंग महला पंजवा, ओट सतानी प्रभ जियो मेरे, दृष्ट ना लियावो अवर काहू को, मान महत प्रभ।

सूझै प्रभ बिन, कहूं को किस पह जासी, ज्यों जान हो त्यों राखो ठाकुर, सब किस तुम ही पासी, हाथ दे राखे प्रभ अपने, सद जीवन अपनासी, कहो नानक मन आनंद भया है, काटी जम की फासी, सारंग महला पंजवा, मेरो मन जत कत तुझ है सुमारे, हम बारक दीन पिता प्रभ मेरे, ज्यों जान है त्यों पारे रहा, जब भूखो तब भोजन मांगे, अघाए सुख सघारे, तब अरोग जब तुम संग बसतो, छुटकत होए रवारे, कमन बसेरो दास दासन को, थापियो थापन हारे, नाम न बिसरे तब जीवन पाईए, बिनती नानक एह सारे, सारंग महला पंजवां, मन ते पै पौ दूर परायो, लाल ब्याल गुलाल लाडले, सहज सहज गुण गायो रहाव, गुर बचनात कमात कृपाते, बहुर न कतहूं तायो, रहत उपाद समाद सुख आसन, भगत वच्छल ग्रह पायो, नाद बनोद कोड आनंदा, सहजे सहज सुमायो, करना आप करावने आपे, कहो नानक आप आपायो, सार महला पंजवां, अमृत नाम मन है आधारो, जिन दिया तिस कह कुर्बान, गुरपूरे नमस्कारो रहाओ, बूझी तृष्णा सहज सुहेला, काम क्रोध बिख जारो, आए ना जाए बसै एह ठाहर, जह आसन निरंकारो, एक प्रगट एक गुप्ता, एक तुंदुकारो, आद मद अंत प्रभ सोई, कहो नानक साच बीचारो, सारंग महला पंजवां, बिन प्रभ रहन ना जाए करी, सर्ब सुख ताहू कै पूरन, जां कै सुख है हरि रहाओ, मंगल रूप प्राण जीवन तन, सिमरत आनंद कना, वड समरथ सदा सद संगे, गुण रसना कमन पना, थान पवित्रा मान पवित्रा, पवित्र सुनन कहन हारी, कहो नानक ते पवन पवित्रा, जा मह संत तुम्हारी, सारंग महला पंजवां, रसना जपती तू ही, मात गर्भ तुम ही प्रतपालक, मृत मंडल एक तू

आस हमारी सारंग महला पंजवा झूठो माया को मदमान त्रोह मोह दूर कर बपरे संग गोपाल लह जान रहाव मिथ्या राज जोबन अर उमरे मीर मलक अर खान मिथ्या कापर सुगंध चतुराई मिथ्या भोजन पान दीन बंदरो दास दासरो संत है की सारान मांगन मांगो हुए अचिंता मिल नानक के हर प्राण सारंग महला पंजवां।

जह पारी तिन स्यों राच माच हित लायो जो काम नहीं गावारी हौ नाही नाही किश मेरा ना हमरो बस चारी करन करावन नानक के प्रभ संतन संग उधारी सार महला पंजवा मोहनी मोहत रह ना होरी साधक सिद्ध सगल की प्यारी टुटे ना काहू तोरी रहाओ खट शास्त्र उचरत रसनागर तीर्थ गवन ना थोरी पूजा चक्कर बर्त नेम तपिया ऊहा गैल ना छोरी अंध कूप मह पतत होत जग संत हो करहो परम गत मोरी साध संगत नानक पयो मुक्ता दर्शन पेखत पूरी सारी महला पंज।

ते हरेउ ऊहा ले तरेउ जैसे बासा मास जेत चाकली देवनहार बसारेउ अंदले ज्यो सफरी उदर पर है बह हाटली साध बकार बकार झूठ रस

बुधारे ठाकुर अंतर जाम आपे पात राखी सेवक की आप की ओ बंधान आद जगाद सेवक की राखे नानक को प्रभ जान। सारंग महला पंजवा तू मेरे मीत सखा हर प्राण मन तन जियो पिंड सब तुमरा

अंतर जामी जान, जिन संतन जानिया तू ठाकुर ते आए परवान। जन का संग पाइए वड भागी, नानक संतन कह कुर्बान। सारू महला पंजवा, करहो गत दयाल संतो मोरी। तुम समरथ कारण करना, टूटी तुम ही जोरी रहाओ। जन्म जन्म के बिखई तुम तारे, समत संग तुम्हारे पाई। अनक जोन भ्रमते प्रभ बिसरत, सास सास हर गाई। जो जो संग मिले साधु कै, ते ते पतत पनीता। कहो नानक जाके वड भागा, तिन जन्म पदार्थ जीता। सारंग महला पंजवा, ठाकुर बिनती करन जन आयो। सर्ब सुख आनंद सहज रस, सुनत तुहारो नायो रहाओ। कृपा निधान सुख के सागर, जस सब मैं जा को छायो।

रहाओ। समझ अचेत चेत मन मेरे, कथी संतन अकथ कहानी। लाभ लहो हर हृदय अराध हो, छुटकै आवन जानी। उदम सकत सियाणप तुमरे, देहे ता नाम बखानी। से भगत भगत से लागे, नानक जो प्रभु पहानी। सारंग महला पंजवा, तनवंत नाम के बनजारी। सांझी करहो नाम तन खाट हो, गुर का शब्द विचारे रहाओ। छोड़ हो कपट होए निर्वैरा, सो प्रभु संग निहारी। सच तन बन जो हो, सच तन संचो हो, कबहू ना आव हो हारे। खात खर्चत किसन खुटत नाही, अगंत भरे पंडारी। कहो नानक सोबा संग जाव हो, पार ब्रह्म कै द्वारी। सारंग महला पंजवा, प्रभ जी मोहे कमन अनाथ बेचारा। कमन मून ते मनुख करिया।

सर्व प्रत पालक सर्व कटा आधारा कोई न जाने तुमरी गत मित आप है एक पसारा साध नाव बठावो नानक भव सागर पार उतारा सारंग महला पंजवा आवे राम सरन बड भागी एक सबिन किस होर न जाने अवर अपाव त्यागी रहाउ मन बच क्रम अराध हर हर साध संग सुख पाया आनंद बनोद कथ कथा रस साचे सहज समाया कर कृपा जो अपना कीनो ताकि उत्तम बाणी साध संग नानक निस्तरी है जो राते प्रभ निर्वाणी सारंग महला पंजवा जाते साधु सरन गही शांत सहज मन भयो परगासा बिरथा कछ न रही रहाओ हो कृपाल नाम देहो अपना बिनती एह कही आन व्यवहार बिसरे प्रभ सिमरत पायो लाभ सही जहते उपजेओ तही समानो साई बस्त आही कहो नानक परम गुरु खोयो ज्योति ज्योत समही सारंग महला पंजवा रसना राम को जस गाओ आन स्वाद बिसार सगले भलो नाम सुआओ रहाओ चरण कमल बसाए हृदय एक स्यों लिवलाओ साध संगत होहे निर्मल बहुड़ जोन ना आओ जियो प्राण आधार तेरा तून थावे थाओ सास सास समाल हर हर नानक सद बल जाओ सारंग महला पंजवा बैकुंठ गोविंद चरण नित त्याओ मुक्त पदार्थ साधु संगत अमृत हर का नाओ रहाओ उत्तम कथा सुनीजै श्रवणी माया करो भगवान आवत जात दो पाख पूरन पाइय सुख विश्राम सोदत सोदत तत बिचार्यो भगत श्रेष्ठ पूरी कहो नानक एक राम नाम बिन अवर सगल बिद उरी सारंग महला पंजवा साचे सत गुरु दा तारा दर्शन देख सगल दुख नास्त है चरण कमल बलिहारा रहाओ सत परमेश्वर सत साध जन निचल हर का नाऊ भगत भावनी पार ब्रह्म की अविनाशी गुण गाओ अगम अगोचर मित नहीं पाई सगल घटा आधार नानक वाहो आहो कहो ताको जा का अंत ना पार सारंग महला पंजवा गुर के चरण बसे मन मेरा पूर रहे ओ ठाकुर सब थाई निकट बसे सब नेरे रहाओ बंधन तोर राम निवलाई संत संग बन आई जन्म पदार्थ भयो पनीता इच्छा सगल पुजाई जाको कृपा करहु प्रभ मेरे सो हर का जस गावे आठ पैर गोविंद गुण गावे जन नानक सद बल जावे सारंग महला पंजवा जीवन तो गनिए हर पेखा करहु कृपा प्रीतम मन मोहन फोर परम की रेखा रहाओ कहत सुनत किश शांत ना उपजत बिन बसास क्या सेखा प्रभु त्याग आन जो चाहत ता कै मुख लागे का लेखा जा कै रास सर्व सुख स्वामी आन न मानत भेखा नानक दर्श मगन मन मोहयो पूरन अर्थ बेसेखा सारंग महला पंजवा सिमरन राम को एक नाम कलमल दगद होहे खिन अंतर कोट दान इशनान रहाओ आन जंजार वृथा श्रम कालत बिन हर फोकट ज्ञान जन्म मरण संकट ते छूटै जगदीश भजन सुख ध्यान तेरी शरण पूर्ण सुख सागर कर कृपा देव दान सिमर सिमर नानक प्रभ जीवै बिन सजाए अभमान सारंग महला पंजवा तूरत सोई जे तुर को लागै
सोई तुरंदर सोई बसुंदर हर एक प्रेम रस पागे रहाओ बलबंच करे ना जाने लाभ है सो धूरत नहीं मूड़ा स्वार्थ त्याग असारथ रचियो नह सिमरै प्रभ रूड़ा सोई चतुर सियाणा पंडित सो सूरा सो दाना साध संग जिन हर हर जपियो नानक सो परवाना सारंग महला पंजवां हर हर संत जना की जीवन बिखै रस भोग अमृत सुख सागर राम नाम रस पीवन रहाओ संचन राम नाम धन रतना मन तन भीतर सीवन हर रंग रांग पय मन लाला राम नाम रस खीवन ज्यों मीना जल स्यों उरजानो राम नाम संग लीवन नानक संत चातरक की न्याई हर बूंद पान सुख थीवन सारंग महला पंजवा हर के नाम हीन बेताल जेता करन करावन तेता सब बंधन जंजाल रहाओ बिन प्रभ सेव करते अन सेवा बिरथा काटे काल जब जम आए संघारे प्राणी तब तुमरो कौन हवाल राख ले हो दास अपने को सदा सदा किरपाल सुख निदान नानक प्रभ मेरा साध संग धन माल सारंग महला पंजवां मन तन राम को व्यवहार प्रेम भगत गुण गावत गीते पोहत नह संसार रहाओ श्रवणी कीर्तन सिमरन स्वामी एहो साध को आचार चरण कमल अस्थित हृदय अंतर पूजा प्राण को आधार प्रभ दीन दयाल सुनोह बेनंती कृपा अपनी तार नाम निदान उच्चरो नित रसना नानक सद बलिहार सारंग महला पंजवा हर के नाम हीन मत थोरी सिमरत नाहे श्री तर ठाकुर मिलत अंध दुख घोरी रहाओ हर के नाम स्यों प्रीत न लागी अनक भेख बहु जोरी टूटत बार न लागे तां को ज्यो गागर जल फोरी कर कृपा भगत रस दीजे मन खचत प्रेम रस खोरी नानक दास तेरी सरनाई प्रभ बिन्यान न होरी सारंग महला पंजवां चितवो वा अवसर मन माहे हुए अकत्तर मिलहो संत साजन गुण गोविंद नित गाहे रहाओ बिन

तरनाही जप तप संयम कर्म सुख साधन तोलना कछु लाहे चरण कमल नानक मन बेदेहो चरण है संग समाहे सारंग महला पंजवा मेरा प्रभु संगे अंतर जामी आग्या कुशल पाशै खेम सुखा सिमरत नाम स्वामी रहाओ साजन मीत सखा हर मेरे गुण गोपाल हर राया बिसरना जाई निमख हृदय ते पूरा गुरु मलाया कर कृपा राखे दास अपने जी जंत वस जाके एका लिव पूर्ण परमेश्वर पौ नहीं नानक ताके सारंग महला पंजवा जाके राम को बल होए सगल मनोरथ पू

तिस सोए उद्म करूं दर्शन पेखन कहो कर्म प्राप्त होए। गुर प्रसादी दृष्ट निहारो दूसर नाही कोए, दान दे नानक अपने को चरण जीवा संत तोए। सारंग महला पंजवां जीवत राम के गुण गाए, करहु कृपा गोपाल बीठले बिसरना कब ही जाए रहाओ। मन तन धन सब तुम।

ताप संगत कै बल बल जाई बहुड़ ना जन्मा ताए नानक दास तेरी सरनाई ज्यों भावै तिवै चलाए सारंग महला पंजवा मन रे नाम को सुख सार आन काम विकार माया सगल दी सह शार रहाओ ग्रह अंध कूप पतत प्राणी नरक घोर गुबार अनक जोनी भ्रमत हारे हो भ्रमत बारंबार पतत पावन भगत बच्छल दीन कृपा तार कर जोड़ नानक दान मांगे साध संग उधार सार महला पंजवा विराजित राम को प्रताप आद बियाद उपाद सब नासी।

मन तन आत्म त्राप काम क्रोध लोभ मद मत्सर साधु कै संग खाप भगत वचल तै काटन हारे नानक के माई बाप सारंग महला पंजवां आतुर नाम बिन संसार त्रिपत न होवत कुकरी आसा इत लागो बिठिया चार रहाओ पाए ठगौरी आप पलायो जन्मत बारो बार हर का सिमरन निमख ना सिमरियो जम कंकर करत खुआर हो कृपाल दीन दुख पंजन तेरिया संत है कीरा वार नानक दास दर्स प्रभ जाचे मन तन को आधार सारंग महला पंजवां मैला हर के नाम बिन जियो तिन प्रभ साचे आप भुलाया बिखै ठगौरी पियो रहाओ कोट जन्म भ्रम तो बहु भांति थित नहीं कतहु पाई पूरा सतगुर सहज ना भेटिया साकत आवै जाई राख ले हो प्रभ समृत दाते तुम प्रभ अगम अपार नानक दास तेरी सरनाई पव जल उतरियो पार सारंग महला पंजवां रमण को राम के गुण बाद साध संग त्याई परमेश्वर अमृत जाके स्वाद रहाओ सिमरत एक अचुत अबनासी बिनसे माया माद सहज आनंद अनहद तुल बाणी बहुर ना पये बिखाद सनकादक ब्रह्मादक गावत गावत सुख प्रहलाद पीवत अमेओ मनोहर हर रस जप नानक हर बिस्माद सारंग महला पंजवां कीने पाप के बहु कोट दिन सरैणी थकत नाही कतह नाही छोट रहाव महाबज्जर बिख ब्यादी सिर उठाई पोट उगर गन्या खिनह पीतर जमह ग्रासे चोट पशु परेत उष्ट गर्धव अनक जोनी लेट भज साध संग गोविंद नानक कछ ना लागै फेट सारंग महला पंजवां अंधे खावह बिसु के गताक नैन श्रवन शरीर सब हुट्यो सास गयो तत घाट रहाओ अनाथ रिझान उदर लै पुख है माया गईया हाट किल बिख करत करत पछताव है कभू ना साक है शांत निंदक जमदूती आए संघारेओ देव है मूड ऊपर मटाक नानक आपन कटारी आपस को लाई माने अपना की नो फाट सारंग महला पंजवां टूटी निंदक की अद बीच जन का राखा आप स्वामी बेमुख को आए पहुंची मीच रहाव उसका कहया कोई ना सुनी कहीं ना बैसन पावे इहां दुख आगे नरक पुंचे बहु जोनी परमावे प्रगट भया खंडी ब्रह्मणी कीता अपना पाया नानक शरण निरपहु करते की आनंद मंगल गुण गाया सारंग महला पंजवां तृष्णा चलत बहु प्रकार पूर्ण होत न कतहु बात है अंत प्रतिहार रहाओ सांत सूख ना सहज उपजे एह इस व्यवहार आप पर का कछ ना जाने काम करो दहजार संसार सागर दुख ब्यापियो दास ले तार चरण कमल सरनाए नानक सद सदा बलिहार सारंग महला पंजवां रे पापी तै कवन की मत लीन निमख करी ना सिमर स्वामी जियो पिंड जिन दीन रहाओ खात पीवत सवंत सुखिया नाम सिमरत कीन गर्भ उदर बिललाट करता तहां होवत दीन महामाद बिकार भांदा अनक जोन परमीन गोविंद बिसरे कमन दुख गनी है सुख नानक हर पद कीन सारंग महला पंजवां माई रे चरन है उठ गही दर्शन पेख मेरा मन मोहयो दुर्मत जात बही रहाओ
अगह अगाध ऊच अबनासी कीमत जात न कही जल थल पेख पेख मन बिगस्यो पूर रहयो सब मही दीन दयाल प्रीतम मन मोहन मिल साध कीनो सही सिमर सिमर जीवत हर नानक जम की पीर ना पही सारंग महला पंजवा मायरी मन मेरो मतवारो पेख दयाल आनंद सुख पूरन हर रस रपयो खमारू रहाओ निर्मल पये उजल जस गावत बहोर न होत कारू चरण कमल सियो डोरी राखी भेटियो पुरख अपारू कर गहलीने सरबस दीने दीपक भयो उजारू नानक नाम रसक बैरागी कुलह समूहा तारू सारी महला पंजवा मायरी आन सिमर मर जाहे त्याग गोविंद जीयन को दाता माया संग लपटाहे रहाओ नाम बसार चलह अन मार्ग नरक कोर मह पाहे अनक सजाई गणत नायावै गर्भ गर्भ परमाहे से तनवंते से पतवंते हर की सरन समाहे गुर प्रसाद नानक जग दीतेओ बहुर न आवह जाहे सारंग महला पंजवा हर काटी कुटलता कुठार ब्रह्म बन दहन भये खिन पीतर राम नाम परहार रहाओ काम क्रोध निंदा परहरिय काढे साधु कै संग मार जन्म पदार्थ गुरमुख जीतिया बहुर न जुए हार आठ पहर कब के गुण गावे पूर्ण शब्द विचार नानक दासन दास जन तेरा पुनः पुनः नमस्कार सारंग महला पंजवा पोथी परमेश्वर का थान साध संग गावे गुण गोविंद पूर्ण ब्रह्म ज्ञान रहाओ साधक सिद्ध सगल मुन लोचह बिरले लागे ध्यान जिसै कृपाल हुए मेरा स्वामी पूर्णता को काम जा कै हृदय वसै पै पंजन तिस जानै सगल जहान खिन पल बिसर नहीं मेरे करते एहो नानक मांगै दान सारी महला पंजवा बूठा सर्ब थाई मेह आनंद मंगल गाओ हर जस पूर्ण प्रगट्यो नेह रहाओ चार कुंट दह दिस जल निद ऊन थाओ न के कृपा निद गोविंद पूर्ण जी दान सब देव सत सत हर सत स्वामी सत साध संगेव सत तेज अन जिन प्रतीत उपजी नानक नह परमेव सारी महला पंजवा।

रहाउ। कर मस्तक धार्यो मेरे माथे, साध संग गुण गाए, तुमरी कृपा ते सब फल पाए, रसक राम नाम त्याए, अब चलनी मतराई सतगुर, कबहू डोलत नाही, गुर नानक जब भये दयारा, सर्व सुखा निद पाही। सारंग महला पंजवां, निभे नाम की सच खेप, लाभ हर गुण गाए नित तन, बिखे माहे अलेप रहाव। जी जंत सगल संतोखे, अपना प्रभ त्याए, रत्न जन्म अपार जीतेओ,

मन मोहिउ अचर्जता के स्वाद रहाउ। मात पिता बंदप है सोई मन हर को अहलाद। साध संग गाए गुन गोविंद बिन से ओ सब परमाद। डोरी लपट रही चरण संग ब्रह्म पै सगले खाद। एक आधार नानक जन किया बहुर ना जोन परमाद। सारंग महला पंजवा माई री माती चरण समूह एक बिन हो।

अपार जल थल महियल पूर रहो सर्वनाथ अपार हर नाम अमृत पियो नानक पान रस सब खार सारंग महला पंजवा ताते करन पलाह करे महा विकार मोह मद मातो सिमरत नाहे हरे रहाओ साध संग जपते नारायण तिनके दोख जरे सफल देह तन ओए जन्मे प्रभ कै संग रले चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध सब ऊपर साध भले नानक दास धूर जन बांचै उदरह लाग पले सारंग महला पंजवा हर के नाम के जन कांखी मन तन बचन एही सुख चाहत प्रभ दर्श देखे कब आखी रहाओ तू बेअंत पार ब्रह्म स्वामी गत तेरी जाए न लाखी चरण कमल प्रीत मन बेदया कर सर्बस अंतर राखी वेद प्राण सिमरत साधु जन एह बाणी रसना भाखी जप राम नाम नानक निस्तरी है होर दुतिया बिरथी साखी सारंग महला पंजवा माखी राम की तू माखी जह दुर्गंध तहां तू बैसह महा बिख्या मद चाखी रहाव कितह स्थान तू टिकन ना पावह एह विद देखी आखी संतां बिनतै कोई ना छाडिया संत परे गोविंद की पाखी जी जंत सगले तै मोहे बिन संतां किने ना लाखी नानक दास हर कीर्तन राता शब्द सुरत सच साखी सारंग महला पंजवा मायरी काटी जम की फास हर हर जपत सर्ब सुख पाए बीचे ग्रस्त उदास रहाओ कर कृपा लीने कर अपने उपजी दर्श प्यास संत संग मिल हर गुण गाए बिनसी दुतिया आस महाध्यान अतवी ते काडे मार्ग संत कहियो देखत दर्श पाप सब नास्ते हर नानक रतन लहियो सारंग महला पंजवा मायरी अरे ओ प्रेम की खोर दर्शन रुचत प्यास मन सुंदर सकत ना कोई तोर रहाव प्राण मान पत पित सुत बंधप हर सर्बस धन मोर त्रिग शरीर अस्त बिष्टा क्रिम बिन हर जानत होर भयो कृपाल दीन दुख भंजन परा पूर्बला जोर नानक सरन कृपा निध सागर बिन से आन निहोर सारंग महला पंजवा नीकी राम की धुन सोए चरण कमल अनूप स्वामी जपत साधु होए रहाओ चितवता गोपाल दर्शन कलमला कडत होए जन्म मरण विकार अंकुर हर काट छाडे खोए परा पूर्व जिसह लिखिया बिरला पाए कोए रमण गुण गोपाल करते नानका सच जोए सारंग महला पंजवा हर के नाम की मत सार हर बसार जो आन राच है मिथन सब विस्थार रहाओ साध संगम भज स्वामी पाप होवत खार चरनार बिंद बसाए हृदय बहुर जन्म ना मार कर अनुग्रह राख लीने एक नाम आधार दिन रहन सिमरत सदा नानक मुख उज्जल दरबार सारंग महला पंजवा मानी तू राम कै दर मानी साध संग मिल हर गुण गाए बिनसी सब अवमानी रहाओ तारे अनुग्रह अपनी कर लीनी गुरमुख पूर ज्ञानी सर्ब सूख आनंद कनेरे ठाकुर दर्श त्यानी निकट वर्तन सा सदा सुहागन दह दिस साई जानी प्रिय रंग रंग रती नारायण नानक तिस कुर्बानी सारंग महला पंजवा त्वा चरण आसरो ईस तुम्हें पछानू साक तुम्हें संग राखनहार तुम्हें जगदीश रहाओ तू हमरो हम तुमरे कहिए एत उत

बेअंत अपरंपर स्वामी गुर कृपा कोई लाख है। बिन बकने बिन कहन कहावन अंतर जामी जान जा को मेल लए प्रभ नानक से जन दरगाह माने। सारंग महला पंजवा चौपदे घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर भज आन कर्म बेकार मान मोह ना बुझत तृष्णा काल ग्रस संसार रहाव खात पीवत हस्त सोवत औद बिती आसार नरक उदर परमंत जल तो जमह कीनी सार पर द्रोह करत बिकार निंदा पाप रत कर चार बिना सतगुरु बूझ नाही तम मोह महा अंधार बिकठ गौरी खाए मूठो चेतना सिरजनहार गोविंद गुप्त होए रहो नियारो मातंग मत अहंकार कर कृपा प्रभ संत राखे चरण कमल आधार कर जोर नानक सरने आयो गोपाल पुरख अपार सारंग महला पंजवा कर छेवां पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद शुभ बचन बोल गुण अमोल किंकरी बेकार देखरी बिचार गुर शब्द त्याए महल पाए हर संग रंग करती।

सर्बरी प्रीत प्यार प्रभ सदारी दयार काए आन आन रुचिया हर संग संग खचिया जो साध संग पाए कहो नानक हर त्याए अब रहे जमह मेल सारंग महला पंजवा कंचना बहु दत करा भूम दान अर्प धरा मन अनक सोच पवित्र करत नाही रे नाम तुल मन चरण कमल लागे रहाओ चार वेद जेहव भने दस अष्ट खष्ट सर्वन सुने नहीं तुल गोविंद नाम तुने मन चरण कमल लागे वर्त संद सोच चार क्रिया कुंट निराहार अपरस करत पाक सार निवली कर्म बहु विस्तार धूप दीप करते हर नाम तुल ना लागे राम दयार सुन दीन बेनती देहो दर्श नैन पेखो जन नानक नाम मिष्ट लागे सारंग महला पंजवा राम राम राम जाप रमत राम सहाई रहाओ संतन कै चरण लागे काम क्रोध लोभ त्यागे गुरु गोपाल भये कृपाल लभदे अपनी पाई बिनसे भ्रम मोह अंध टूटे माया के बंद पूर्ण सर्वत्र ठाकुर नह को बैराई स्वामी सो प्रसन्न भये जन्म मरण दुख गए संतन कै चरण लाग नानक गुण गाई सारंग महला पंजवा हर हरे हर मुखो बोल हर हरे मन तारे रहाओ श्रवण सुनन भगत करन अनक पातक पुनः चरण।

कलमल दुख जारी कहत मुक्त सुनत मुक्त रहत जन्म रहते राम राम सार भूत नानक तत बिचारे सारंग महला पंजवां नाम भगत मांग।

हर जन की रेन बांछ दैन हार स्वामी सर्ब कुशल सुख विश्राम आनंदा आनंद नाम जम की कछ नाही त्रास सिमर अंतर जामी एक सरन गोविंद चरण संसार सगल ताप।

टूटा जो साध संग पग रौ रहाउ दृष्टौ कस संग न जाए मान त्याग मोहा एक हर प्रीत लाए मिल साध संग सोहा पायो है गुण निदान सगले आस पूरी नानक मन आनंद पए गुर बिकम गार तोरी सारंग महला पंजवा मन बेरा गैगी खोजती दरसार रहाओ साधु संतन सेवकै प्रयोही अरै त्यायो।

नौ परी चुनातकार सुंदर अनग पाव करत फिरत बिन गोपाल तुहे रहाओ तीन पौने लपटाए रही काच कर्म ना जात सही उनमत अंध तंद रचत जैसे महासागर होहे उदरे हर संत दास काट दीनी जम की फास पतत पावन नाम जाको सिमर नानक ओहे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सारंग महला नौवां हर बिन तेरो को ना सहाय का की मात पिता सुत बनता को काहू को पाई रहाओ तन धरनी अर संपत सगरी जो मान्यो अपनाई तन छूटै कछ संग ना चालै कहां ताहे लपटाई दीन दयाल सदा दुख भंजन तांस्यो रुचना बढ़ाई नानक कहत जगत सब मिथ्या ज्यो सुपना रह नाई सारन महला नौवां कहां मन बिखिया स्यों लपटाही या यग मह को रहन ना पावे।

सह ज्यो बादर की शाही ताज अभमान सरन संतन गहो मुक्त हो हे शिन माही जन नानक भगवंत भजन बिन सुख सुपने पी नाही सारंग महला नौवा कहा नर अपनो जन्म गुआवे माया मद भिख्या रस रचियो राम शरण नहीं आवे रहाव एह संसार सगल है सुपनो देख कहां लोभावे।

जन नानक सो जन मुक्ता राम भजन चित लावे सारंग महला नौवा मन कर कबहू ना हर गुण गायो दिखिया सकत रहो निस बासुर कीनो अपनो पायो रहाओ गुर उपदेश सुनियो नह कानन पर दारा लपटायो पर निंदा कारण बहु तावत समझियो नह समझायो कहां कहूं मैं अपनी करनी जिह विद जन्म गवायो कह नानक सब औगन मोह मह राख लेहो सरनायो राग सारंग अष्टपदियां महला पहला।

राखिया ऐसी गुरमत पाई सनक सनाद ब्रह्माद इंद्रादिक भगत रते बन आई नानक हर बिन करी न जीवा हर का नाम बढ़ाई सारंग महला पहला हर बिन क्यों तीरै मन मेरा कोट कल्प के दुख बनासन साच दृढ़ाए निबेरा रहाओ क्रोध नवार जले हो ममता प्रेम सदा नौरंगी अनुभव बिसर गए प्रभ जाचिया हर निर्माल संगी चंचल मत त्याग भव भंजन पाया एक शब्द लिव लागी हर रस चाख त्रिखा निवारी हर मेल लय बड भागी अपरत सिंच पये सुपर सर गुरमत साच निहाला मन रत नाम रते नेह केवल आद जुगाद दयाला मोहन मोहे लिया मन मोरा बड़े भाग लिव लागी साच विचार किल विख दुख काटे मन निर्मल अनरागी गहर गंभीर सागर रतनागर अवर नहीं अन पूजा शब्द विचार परम पहु पंजन अवर न जानिया दूजा मनुआ मार निर्मल पद चीनिया हर रस रते अदखाई एक सबिन मैं अवर न जाना सतगुर बूझ बुझाई अगम अगोचर अनाथ अजोनी गुरमत एको जानिया सुपार भरे नाही चित डोले मन ही ते मन मानिया गुर प्रसादी अकथो कथिया कहो कहावे सोई नानक दीन दयाल हमारे अवर ना जानिया कोई सारंग महला तीजा अष्टपदियां कर पहला एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद मन मेरे हर कै नाम बढ़ाई हर बिन अवर ना जाना कोई हर कै नाम मुक्त गत पाई रहाओ शब्द पौ भंजन जम काल निखंजन हर सेती लिवलाई हर सुख दाता गुरमुख जाता सहजे रहे आसमाई भगता का भोजन हर नाम निरंजन पहनन भगत बढ़ाई निज कर वासा सदा हर सेवन हर दार शोभा पाई मनमुख बुद्ध काची मनुआ डोले अकथ न कथै कहानी गुरमत निश्चल हर मन वसिया अमृत साची बानी मन के तरंग शब्द निवारे रसना सहज सुपाई सतगुर मिल रही है सद अपने जिन हर से ती लिवलाई मन शब्द मरे ता मुक्तो होवे हर चरणी चित लाई हर सर सागर सदा जल निर्मल नावे सहज सुपाई शब्द विचार सदा रंग राती हम मैं तृष्णा मारी अंतर नेह केवल हर रविया सब आत्म राम मरारी सेवक सेव रहे सच राते जो तेरे मन पानी दुबदा महल ना पावे जग झूठी गुण अवगण ना पछाणी आपे मेल लए अकथ कथिया सच शब्द सच बाणी नानक साचे सच समाणी हर का नाम बखाणी सारंग महला तीजा मन मेरे हर का नाम अत मीठा जन्म जन्म के किल विख पौ भंजन गुरमुख एको डीठा रहाओ कोट कुटंतर के पाप बनासन हर साचा मन पाया हर बिन अवरना सूजै दूजा सतगुर एक बुझाया प्रेम पदार्थ जिन घट वसिया सहजे रहे सुमाई शब्द रते से रंग चलूले राते सहज सुपाई रसना शब्द विचार रस राती लाल पई रंग लाई राम नाम ने केवल जानिया मन तृप्तिया शांत आई पंडित पढ़ पढ़ मोनी सब थाके ब्रह्म भेख थके भेख तारी गुर प्रसाद निरंजन पाया साचै शब्द विचारी आवा गौण निवार सच राती साच शब्द मन पाया सतगुर सेव सदा सुख पाई है
जिन विच्चों आप गुआया। साचा शब्द सहज तुन उपजै, मन साचा लिव लाई। अगम अगोचर नाम निरंजन, गुरमुख मन वसाई। एक समय सब जगतो वरतै, विरला एक पछाण है। शब्द मरे ता सब किस सूजै, अन दिन एको जान। जिसनो नदर करे सोई जन बूजै, होर कहना कथन ना जाई। नानक नाम रते सदा बैरागी, एक शब्द लिव लाई। सारंग महला तीजा, मन मेरे हर की अकथ कहानी। हर नदर करे सोई जन पाए, गुरमुख विरलै जानी रहाओ। हर गहर गंभीर गुणी गहीर, गुर कै शब्द पछानिया। बहु विध कर्म करह पाए दूजे, बिन शब्द बौरानिया। हर नाम नावै सोई जन निर्मल, फिर मैला मूल ना होई। नाम बिना सब जग है मैला, दूजे परम पथ खोई। क्या दृढ़ा क्या संग्रह त्यागी, मैं ता बूझ ना पाई। हो दयाल कृपा कर हर जियो, नामो होए सखाई। सच्चा सच दाता कर्म विधाता, जिस भावै तिस नाए लाए। गुरु द्वारे सोई बूझे, जिस

आए मूख द्वारा जिन दर सूझै से कदे ना बगाड़ै सतगुर बूझ बुझाई सत संयम करनी किरत कमावै आवण जान रहाई से दर साचै साच कमावै जिन गुरमुख साच आधारा मन मुख दूजै परम भुलाए ना बूझै विचारा आपे गुरमुख आपे देवै आपे कर कर वेखै नानक से जर थाए पए है जिनकी पत पावे लिखे सारंग महला पंजवां।

करन करावन अपाए समावन सगल सत्र पत बीठा रहाउ। राणा राउ राज भय रंका उन झूठे कहन कहायो। हमरा राजन सदा सलामत ताको सगल घटा जस गायो। उपमा सुनहो राजन की संतोह कहत जेत पहुंचा। बेशमार वद साहदा तारा ऊचे ही ते ऊचा। पमन परोयो सगल अकारा पावक काष्ट संगे। नीर तरन कर राखे एकत कोई ना किसे ही संगे। काट काट कथा राजन की चाल कर कर तुझह उमाहा। जी जंत सब पाछे करया प्रथमे रिजक समाहा। जो किछ करना सो आपे करना मसलत काहू दीनी। अनक जतन कर करह दिखाए साची साखी चीनी। हर भगता कर राखे अपनी दीनी नाम बडाई। जिन जिन करी अवग्या जन की ते तै दिए रुड़ाई। मुक्त भए साध संगत कर तिनके अवगन सब पर हरिया। तिनको देख भए कृपाला तिन भव सागर तरिया। हम नाने नीच तुमे बड साहिब कुदरत कौन बीचारा। मन तन शीतल गुरदर्श देखे नानक नाम आधारा। सारंग महला पंजवा अष्टपदी घर छेवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद अगम अगाध सुनो जन कथा। पार ब्रह्म की अचर्ज सभा रहाओ। सदा सदा सतगुर नमस्कार गुर कृपा ते गुण गाए अपार। मन भीतर होवे परगास ज्ञान अंजन अज्ञान बनास। मित नाही जाका विस्थार सोभा ताकी अपर अपार। अनक रंग जाके गने ना जाहे सोग हरख दोहू मैं नाहे। अनक ब्रह्मे जाके वेद तुन करह अनक महेश बैस ध्यान तरह। अनक पुरख अंसा अवतार अनक इंदर उभे दरबार। अनक पवन पावक अरनीर अनक रतन सागर दाद खीर। अनक सूर ससियर नख्यात अनक देवी देवा बहुपात। अनक बसुदा अनक काम तेन अनक पार जात अनक मुख बेन। अनक आकाश अनक पाताल अनक मुखी जपिया गोपाल। अनक शास्त्र सिमरत पुराण अनक जुगत होवत बखियान। अनक सरोते सुनह निदान सर्व जी पूर्ण भगवान। अनक धर्म अनक कुमेर अनक वर्ण अनक कनक सुमेर। अनक सेख नवतन नाम ले पार ब्रह्म का अंत ना ते। अनक पुरिया अनक तह खंड अनक रूप रंग ब्रह्मांड। अनक बना अनक फल मूल आपह सूक्ष्म आपह असथूल। अनक जुगाद दिनस अर रात अनक परलो अनक उत्पात। अनक जी जाके ग्रह माहे रमत राम पूर्ण सर्व ठाए। अनक माया जाकी लखी ना जाए अनक कला खेले हर राय। अनक तुनत ललत संगीत अनक गुपत प्रगटे तहचीत। सब ते ऊच भगत जा कै संग आठ पहर गुण गावह रंग। अनक अनाहद आनंद चुनकार वा रस का काश अंत न पार। सत पुरख सत स्थान ऊच ते ऊच निर्मल निर्वाण। अपना किया जन है आप आपे घट घट रहे हो बे आप। कृपा निदान नानक दयाल जिन जपया नानक ते पहे निहाल। सारंग संत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सब देखिए अनपह का दाता कट कट पूर्ण है अनपाता। कट कट पूर्ण कर बिस्थीरन जल तरंग स्यो रचन किया। अब रस माने भोग कटाने आनना बिया कोथिया। हर रंगी इक रंगी ठाकुर संत संग प्रभ जाता। नानक दर्श लीना ज्यों जल मीना सब देखिए अनपह का दाता।
कौन उपमा देवो कमन बढ़ाई, पूर्ण पूर रहो सब ठाई, पूर्ण मन मोहन कट कट सोहन, जब खिंचे तब शाई, क्यों ना अराध हो मिलकर साधु हो, करी मोहतक बेला आई, अर्थ दर्ब सब जो किस दिसै, संग ना कछु हो जाई, कहो नानक हर हर अराध हो, कवन उपमा देओ कवन बढ़ाई, पूछो संत मेरो ठाकुर कैसा, हियो अरापो देहो संदेसा प्रभ जीओ कैसा, कह मोहन परवेसा, अंग अंग सुखदाई पूर्ण ब्रह्माई, थान थान अंतर देसा, बंधन ते मुक्ता कट कट जुगता, कह ना सको हर जैसा, देख चरित नानक मन मोहयो, पूछे दीन मेरो ठाकुर कैसा, कर कृपा अपने पह आया, तन सोरदा जेह चरण बसाया, चरण बसाया संत संगाया, अज्ञान अंधेर गुआया, भया प्रगास हृदय उलास, प्रभ लोड़ींदा पाया, दुख नाठा सुख घर मह बूठा, महा आनंद सहजाया, कहो नानक मैं पूरा पाया, कर कृपा अपने पह आया, सारंग की वार महला चौथा, राय महमे हसने की धुन, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सलोक महला दूजा, गुर कुंजी पाहु निवल, मन कोठा तन छत, नानक गुरबिन मन का ताक न उगड़ै, अवरना कुंजी हाथ, महला पहला, ना पी जय रागी ना दी वेद, ना पी जय सुरती ज्ञानी जो, ना पी जय सोगी की तैरोज, ना पी जय रूपी माली रंग, ना पी जय तीत पवै नंग, ना पी जय दाती की तै पुन, ना पी जय बाहर बैठिया सुन, ना पी जय भेड़ मरह भेड़ सूर, ना पी जय केते होए तूड़, लेखा लिखिया मन कै पाई, नानक पी जय साचै नाई, महला पहला, नव शे खटका करे विचार, निस दिन उचरै पार अठार, तिन पी अंत न पाया तोहे, नाम बिहून मुक्त क्यों होए, नाब वस्त ब्रह्म अंत ना जानिया, गुरमुख नानक नाम पछाणिया, पौड़ी आपे आप निरंजना, जिने आप उपाया, आपे खेल रचायोन, सब जगत सबाया, त्रै गुण आप सिरजियन, माया मोह वधाया, गुर प्रसादी उबरे, जिन पाणा पाया, नानक सच वरतदा, सब सच समाया, सलोक महला दूजा, आप उपाए नानका, आपे रखै वेक, मंदा किसनो आखिया, जा सबना साहिब एक, सबना साहिब एक है, वेखै धंदै लाए, किसै थोड़ा किसै अगला, खाली कोई नाही, आवह नंगे जाहि नंगे, विचे करह वथार, नानक हुक्म ना जानिया, अग्गे काई कार, महला पहला, जिन सथाप जिया को भेजै, जिन सथाप लै जावे, आपे थाप उथापै।

एत पावस जे को कह कहाए पौड़ी गुरमुख चलतर चायुन गुण प्रगति आया गुरबाणी सद उच्चरै हर मन वसाया सकत गई भ्रम कटिया शिव जोत जगाया जिनकै पूतै पुन है गुरपुरख मलाया नानक सहजे मिल रहे हर नाम सुमाया सलोक महला दूजा सा चले बन जा रिया लिखिया देवै नाल लिखे उपर हुक्म होए लइयै वस्त सुमाल वस्त लई बनजारी वखर बद्दा पाए के इलाहा लै चले इक चले मूल गवाए थोड़ा किन ना मंगियो किस कहिया साबास नदर तिन्ना को नानका जे साबत लाए रास महला पहला जुड़ जुड़ विछड़े विछड़ जुड़े जीव जीव मोए मोए जीवे केतियां के बाप केतियां के बेटे केते गुर केले हुए आगे पाछे गणत ना आवे क्या जाति क्या हुण हुए सब करना किरत कर लिखिए कर कर करता करे करे मन मुख मरिए गुरमुख तरिए नानक नदरी नदर करे पौड़ी मनमुख दूजा परम है दूजा लोभाया कूड़ कपट कमावंदे कूड़ो आलाया पुत्र कलत्र मोह हेत है सब दुख सबाया जमदर बद्दे मारी है परम है परमाया मनमुख जन्म गवाया नानक हर पाया सलोक महला दूजा जिन वडे आई तेरे नाम की तेरते मन माहे नानक अमृत एक है दूजा अमृत नाहे नानक अमृत मने माहे पाइये गुर प्रसाद तिन्नी पीता रंग सिउ जिनको लिखिया आद महला दूजा कीता क्या सलाहिए करे सोए सलाहे नानक एकी बाहरा दूजा दाता नाहे करता सो सलाहिए जिन कीता आकार दाता सो सलाहिए जे सब सह दे आधार नानक आप सदीव है पूरा जिस भंडार वड्डा कर सलाहिए अंत ना पारावार पौड़ी हर का नाम निदान है सेवे है सुख पाई नाम निरंजन उच्चरा पत सिओ कर जाई गुरमुख बाणी नाम है नाम हृदय वसाई मत पंखे रू वस हुए सत गुरु त्याई नानक आप दयाल हुए नामे लिवलाई सलोक महला दूजा किस सिओ कैसा

आए तले आवह नानका सदे उठी जाए। महला दूजा सिफत जिना को बख्शी है से पोते दार कुंजी जिन को दितिया तिना मिले पंडार। जह पंडारी हूं गुण निकल है ते की यह परवान नदर तिना को नानका नाम जिन्ना निशान पौड़ी। नाम निरंजन निर्मला सुनिया सुख होई सुन सुन मन वसाई है बूझे जन कोई। बहदिया उठदिया ना विसरे साचा सच सोई भगतां को नाम आधार है नामे सुख होई। नानक मन पन रव रहिया गुरमुख हर सोई। श्लोक महला पहला नानक तुलिया है।

की गिरही का सत दान राजे चुड़ी नियाम की पढ़िया सच ध्यान पानी चेतना धूपे मुख पीता तिख जाए पानी पिता जगत का फिर पानी सब खाए पौड़ी नाए सुनिए सब सिद्ध है रिद पिछे आवे नाए सुनिए नौ निद मिले मन चिंदिया पावे नाए सुनिए संतोख हुए कबला चरण ते आवे नाए सुनिए सहजी उपजे सहजी सुख पावे गुरमति ना उपाइये नानक गुण गावे सलोक महला पहला दुख विच जम्मन दुख मरन दुख वर्तन संसार दुख दुख अगे आखिए पढ़ पढ़ करहे पुकार दुख किया पंडा खुलिया सुख ना निकले ओ कोई दुख विच जियो जलाया दुखिया चलिया रोए नानक सिफती रत्या मन तन हरिया होए दुख किया अग्नि मारी है ई दुख दारू होए महला पहला नानक दुनिया पास रंग पशु हूं पास खे पशु पास कमावनी पी पास परिया दे जा जियो विचों कड़िए पशु परिया जाए अगे लेखे मंगे होर दसूनी पाए पौड़ी नाए सुनिए सुच संयमो जम नेड़ ना आवे नाए सुनिए घट चानना अनेर गुआवे नाए सुनिए आप बुझिए लाहा ना पावे नाए सुनिए पाप कटिए निर्मल सच पावे नानक नाए सुनिए मुख उजले नाउ गुरमुख त्यावे सलोक महला पहला कर नारायण सभा नाल पूज करे रखे नवाल कुन्नू चन्नन फुल चढ़ाए पैरी पै पै बहुत मनाए माणुआ मंग मंग पहने खाए अंधी कमी अंध सजाए।

सबे बुद्धि सुध सब सब तीर्थ सब थान सब पातशाहियां अमर सब सब खुशियां सब खान सबे

हुक्म चलाए अपने करमी वह कलाम नानक सच्चा सच नाए सच सभा दीबान पौड़ी नाए मने है सुख उपजे नामे गत होई नाए मने है पत पाई है हिरदय हर सोई नाए मने है पव जल लंघी है फिर बिघन ना होई नाए मने है पंथ प्रगटा नामे सब लोई नानक सतगुर मिले है नाओ मनी है जिन दे वै सोई। श्लोक महला पहला। पुरिया खंडा सिर करे इक पैर ते आए पौन मार मन जप करे सिर मुंडी तले दे किस ऊपर ओह टिक टिकै किसनो जोर करे किसनो कहिए नानका किसनो करता दे हुक्म रहाए अपने।

वार सब कारण करता करी देखै वारू वार जे चुपै जे मंगे दात करे दातार एक दाता सब मंगते फिर देखै आकार नानक ए मैं जानी जीवै देवन हार पौड़ी नाए मन्ने सुरत उपजे नामे मत होई नाए मन्ने गुण उच्चरै नामे सुख सोई नाए मन्ने भ्रम कटिए फिर दुख न होई नाए मन्ने सालाहिए पापा मत धोई नानक पूरे गुर ते नाओ मन्निए जिन देवै सोई सलोक महला पहला शास्त्र वेद पुराण पढ़मता ऊ कारणता अजानता जा बूझै ता सूझै सोई नानक आखै कूक ना होई महला पहला जा हो तेरा ता सब किश मेरा हो नाही तू होवै आपे सकता आपे सुरता शक्ति जगत परोवै आपे भेजे आपे सदे रचना रच रच वेखै नानक सच्चा सच्ची नाही सच पवै धुर लेखै पौड़ी नाम निरंजन अलख है क्यों लखया जाई नाम निरंजन नाल है क्यों पाईऐ पाई नाम निरंजन वरतदा रविया सब ठाई गुर पूरे ते पाईऐ हिरदै दे दिखाई नानक नदरी कर्म होए गुर मिलिऐ पाई सलोक महला पहला कल होई कुत्ते मुही खाज हुआ मुरदार कूड़ बोल बोल भौंकना चूका धर्म बीचार जिन जी वंदिया पत नहीं मोया मंदी सोए लिखिया होए नानका करता करे सो होए महला पहला रन्ना हुईया बोधिया पुरस होए सयाद सील संयम सोच पन्नी खाना खाज आहाज शर्म गया घर अपने पत उठ चली नाल नानक सच्चा एक है और ना सच्चा पाल पौड़ी बाहर भस्म लेपन करे अंतर गोबारी खिंता झोड़ी बहु भेक करे दुर्मत अहंकारी साहिब शब्द ना ऊचरे माया मोह पसारी अंतर लालच भरम है भरमै गावारी नानक नाम ना चेतई जुए बाजी हारी सलोक महला पहला लख सिउ प्रीत होवे लख जीवन क्या खुशियां क्या चाओ विछड़िया विस होए विछोड़ा एक घड़ी मह जाए जे सो वरिया मिठा खाजे पी फिर कौड़ा खाए मिठा खादा चित न आवे कौड़तन ताए जाए मिठा कौड़ा धोवे रोग नानक अंतव गुत्ते भोग चक चक चखना झगड़ा चाख चक चक जाहे चखै तिन पास महला पहला कापड़ काठ रंगाया रंग तर गच कीते बागे बाग साध सहज कर मन खेलाया तै सह पासो कहन कहाया मिठा करके कौड़ा खाया तिन कौड़ै तन रोग जमाया जे फिर मिठा पेड़ै पाए तौ कौड़तन चूकस माए नानक गुरमुख पावै सोए जिसनों प्राप्त लिखिया हुए पौड़ी जिनकै हिरदै मैल कपट है बाहर तो आया कूड़ कपट कमावन दे कूड़ प्रगति आया अंदर हुए सो निकलै नह छपै छपाया कूड़ै लालच लगिया फिर जूनी पाया नानक जो बीजै सो खावना करतै लिख पाया सलोक महला दूजा कथा कहानी बेदी आनी पाप पुन बीचार दे दे लैना लै लै देना नरक सुर्ग अवतार उत्तम मध्यम जाति जिनसी परम पवै संसार अमृत बाणी तत्व खानी ज्ञान ध्यान विच आई गुरमुख आखी गुरमुख जाती सुरती कर्म त्याई हुक्म साज हुक्मै विच रखै हुक्मै अंदर वेखै नानक अगो होमै तुटै तां को लिखिया लिखै महला पहला वेद पुकारे पुन पाप सुर्ग नरक का बीयो
जो बीजै सो उगवै खांदा जानै जीओ ज्ञान सलाहे वड्डा कर सचो सच्चा नाऊ सच बीजै सच उगवै दरगाह पाइए थाऊ वेद व्यापारी ज्ञान रास करमी पल्ले होए नानक रासी बाहरा लद न चलिया कोई पौड़ी निम बिरख बहु संची है अमृत रस पाया बिसियर मंत्र वसाई है बहु दूध पी आया मनमुख अभिन न भिजई पत्थर नवाया बिख मह अमृत सिंची है बिख का फल पाया नानक संगत मेल हर सब बिख लह जाया। सलोक महला पहला। मरण ना मूर्त पुछया पुछी थित ना वार इकनी।

खेती जिनकी उजड़े खलवाड़े क्या थाव सच्चे शर्म बाहरे अग्गे लह ना दाद अकल एह ना आखिए अकल गवाइए बाद अकली साहिब सेविए अकली पाइए मान अकली पढ़के बुझिए अकली की चैदान नानक आखे राहु एहो होर गल्ला शैतान महला दूजा जैसा करे कहावे तैसा ऐसी बनी जरूरत होवे लिंग चिंग न होवे ऐसी कहिए सूरत जो उस इच्छे सो फल पाए ता नानक कहिए मूरत पौड़ी सतगुरे अमृत बिरख है अमृत रस फलिया जिस प्राप्त सो लह गुर शब्दी मिलिया सतगुर कै भाण जो चले हर सेती रलिया जम काल जोहे ना सकई कत चानन बलिया नानक बख्श मलायन फिर गर्भ ना गलिया सलोक महला पहला सच वर्त संतोख तीरथ ज्ञान ध्यान इशनान दया देवता खिमा जप माली ते मानस प्रधान जुगत धोती सुरत चौंका तिलक करनी होए पाओ भोजन नानका बिरला ता कोई कोए महला तीजा नौमी नेम सच जे करे काम क्रोध तृष्णा उच्चरे दसवीं दसे द्वार जे ठाके एकादशी एक कर जाने द्वादशी पंच वसगत कर राखे तो नानक मन माने ऐसा वर्त रही जय पांडे होर बहुत सिख क्या दीजे पौड़ी भूपतरा जे रंग राए संच है बिख माया कर कर हेत बधाए दे पर गर्भ चुराया पुत्र कलत्र ना वसह बहु प्रीत लगाया वेख दिया ही माया तो गई पछतह पछताया जमदर बदे मारी है नानक हर पाया सलोक महला पहला ज्ञान विहूणा गावे गीत भुखे मुला करे मसीत मखट्टू होए कै कन पढ़ाए अकर करे होर जात गुआए।

पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके जे संतर भव थके भेख तारी दूजे पाए नाओ कदे ना पाइन दुख लागा अत पारी मूर्ख अंधे त्रै गुण सेव माया कै व्योहारी अंदर कपट उधर भरन कै ताई पाठ पढ़ गवारी सतगुर सेवे सो सुख पाए जिन हूं मैं विचो मारी नानक पढ़ना गुणना एक नाओ है बूझै को बीचारी महला तीजा नांगे आवना नांगे जाना हर हुक्म पाया।

सहजे हर रस पीजे, नानक सुखदाता सदा सलायो, रसना राम रवीजे। पौड़ी गढ़ काया शिंगार बहु भांत बनाई, रंग परंग कतीफिया पहरह धर्माई, लाल सफेद दुलीचिया बहु सभा बनाई।

जिन पूर्व लिखिया कराम पौड़ी लेखा पढ़िया हर नाम फिर लेख ना होई पुछ ना सकै कोई हर दर सद ढोई जम काल मिलै दे भेट सेवक नित होई पूरे गुरते महल पाया पत प्रगट लोई नानक अनहद धुनी दर वज दे मिलिया हर सोई सलोक महला तीजा गुर का कहया जे करे सुखी हूं सुख सार गुर की करनी पौ कटी है नानक पावे पार महला तीजा सच पराणा ना थी है नाम ना मैला होए गुर कै भाणे जे चले बहुड़ ना आवन होए नानक नाम वसारे है आवन जाना दुए पौड़ी मंगत जन जाचे दान हर देहु सुभाए हर दर्शन की प्यास है दर्शन तृप्ताए खिन पल घड़ी ना जीवऊ बिन देखे मरा माए सतगुर नाल दिखालिया रल रहिया सब थाए सुत्या आप उठाल दे नानक लिव लाए सलोक महला तीजा मनमुख बोल ना जाननी ओना अंदर काम क्रोध अहंकार।

हैं, आपे श्रेष्ठ उपायन आप करे विचार। नानक किसनो आखी है सब वर्तै आप सत्यार। महला तीजा हर गुरमुख तिनी आराध्या, जिन कर्म प्राप्त होए नानक हो बलिहारी तिन को। जिन हर मन बसिया सोए पौड़ी, आस करे सब लोक बहु जीवन जानिया। नित जीवन को चित गढ़ मंडप सवारिया, वलवंच कर अपाव माया हेरे आणिया। जमकाल निहाले सास आव घटै बेतालिया, नानक गुर सरनाई उबरे हर गुर रखवालिया। सलोक महला तीजा पढ़ पढ़ पंडित वाद बखान दे माया मोह सवाए। दूजे पाए नाम वसारिया मन मूरख मिले सजाए। जिन कीते तिसै ना सेवनी देंदा रिजिक समाए। जम का पाहा गलहो ना कटी है फिर आवह जाए। जिनको पूर्व लिखिया सतगुर मिलिया तिन आए। अन दिन नाम त्याए ले नानक सच समाए। महला तीजा सच वणंज है सच सेवन दे, जे गुरमुख पैरी पाए। नानक गुर कै पाण जे चल है सहजे सच समाए। पौड़ी आसा विच अत दुख घणा मन मुख चित लाया, गुरमुख भये निरास परम सुख पाया। विचे ग्रह उदास अलिपत लिव लाया, उन्ना सोग वजोग ना व्यापई हर भाणा पाया। नानक हर सीती सदा रव रहे तुर लये मलाया। सलोक महला तीजा पराई अमान क्यों रखी है, दित्ती ही सुख होए। गुर का शब्द गुर थै टिकै होर थै प्रगट ना होए। अन्ने बस माणिक पया घर घर वेचण जाए, ऊना परख ना आवई अड ना पल्ले पाए। जे आप परख ना आवई ता पारखियां थाव लयो परखाए। जे ओस नाल चित लाए ता वत लहै नौ नित पल्ले पाए। धर हुंदै धन जग भुखा मोआ, बिन सतगुर सोजी ना होए। शब्द सीतल मन तन वसै कितै सोग वजोग ना कोए। वस्त पराई आप गर्भ करे मूर्ख आप गणाए। नानक बिन बूझे किनै ना पायो फिर आवै जाए। महला तीजा मन आनंद भया मिलिया हर प्रीतम, सरसे सज्जन संत प्यारे। जो तुर मिले ना विचड़ है कबहू, जे आप मेले करतारे। अंतर शब्द रविया गुर पाया सगले दुख नवारे। हर सुख दाता सदा सलाही अंतर रखा उरतारे। मन मुख तिन की बखीली के करे, जे सच्चा शब्द सवारे। उन्ना दी आप पात रख सी मेरा प्यारा, शरणागत पए गुरुद्वारे। नानक गुरमुख से सुहेले पए मुख उजल दरबारे। पौड़ी स्त्री पुरख है बहु प्रीत मिल मोह वधाया, पुत्र कलत्र नित वेख है विकसै मोह माया। देश परदेश धन चराए आन मोहे पाया, अंत होवै वैर विरोध को सकै ना छडाया। नानक बिन नावै त्रिग मोह जित लग दुख पाया। सलोक महला तीजा गुरमुख अमृत नाम है जित खादै सब भुख जाए। तृष्णा मूल ना हो गई नाम वसै मन आए। बिन नावै जे होर खाना तित रोग लगै तन धाए। नानक रस कस शब्द सलाहना आपे लय मलाए। महला तीजा जिया अंदर जियो शब्द है जित सह मिलावा होए। बिन शब्द जग अनेर है शब्दे प्रगट होए। पंडित मोनी पर पढ़ थके भेख थके तन धोए। बिन शब्द किनै ना पायो दुखिए चले रोए। नानक नदरी पाई है कर्म प्राप्त होए। पौड़ी स्त्री पुरख है अत नेहो बह मंद पकाया, दिसदा सब किस चल सी मेरे प्रभ पाया। क्यों रही है थिर जग
को कढ़ो उपाया, गुर पूरे की चाकरी थिर कंध सबाया, नानक बख्श मलायन हर नाम समाया। सलोक महला तीजा, माया मोहे वसारिया, गुर का भउ हेत अपार, लोभ लहर सुध मत गई, सच न लगै प्यार। गुरमुख जिन्ना शब्द मन वसै, दरगाह मूख द्वार, नानक आपे मेल लए, आपे बख्शन हार। महला चौथा, नानक जिस बिन घड़ी ना जीवना, विसरे सरै ना बिंद, किस स्यों क्यों मन रूसी है, जिसे हमारी चिंद। महला चौथा, सामने आया चिम चिमा, हर गुरमुख नाम त्याय, दुख भुख काड़ा सब चुकाए सी, मीह गुठा शहबर लाए। सब तरत पई हरियावली, अन जमया बोहल लाए, हर अचिंत बुलावै कृपा कर, हर आपे पावै थाए। हर तसै त्याव संत जन हो, जो अंते लए छदाए, हर कीरत भगत आनंद है, सदा सुख वसै मन आए। जिन्ना गुरमुख नाम अरादया, तिन्ना दुख भुख लह जाए, जन नानक तृपतै गाए गुण, हर दर्शन देहो सुभाए। पौड़ी, गुर पूरे की दात, नित देवै चढ़ै सवाइया, तुस देवै आप दयाल, ना छपै छपाइया, हिरदै कवल परगास, उन मन लिव लाइया, जे को करे उस दी रीस, सिर छाई पाइया। नानक अपड़ कोई ना सकई, पूरे सतगुर की वडियाइया। सलोक महला तीजा, अमर वे परवाहो है, तिस नाल सियाणप ना चलई, ना हुज्जत करनी जाए, आप छोड़ सरनाए पवे, मन लए रजाए। गुरमुख जम डंड ना लगई, हौ मैं विचों जाए, नानक सेवक सोई आखी है, जे सच रह लिवलाए। महला तीजा, दात जोत सब

फेरी। नानक आप कराहे करता, जो तिस पावै साई गल चंगेरी। पौड़ी महला पंजवां, सच खाना सच पहनना, सच नाम आधार। गुरपूरै मेलाया प्रभ देवन हार, भाग पूरा तिन जागया जपया निरंकार। साधु संगत लग्या तरिया संसार, नानक सिफत सलाह कर।

मन भिखिया बन जाए, भूलो रे ठगमूरी खाए रहाओ। जैसे मीन पानी में रहे, काल जाल की सुध नहीं लहे। जेहबा स्वादी लीलत लोह, ऐसे कनक कामनी बांध्यो मोह। ज्यों मद माखी संचय अपार, मद लीनो मुख दीनी शार। गौ

निज रूप दर्शन निमुख त्राप त्रई मोचन परसत मुकत करत ग्रह कूप रहाउ मेरी बांदी भगत छिडावै।

अन्न पावनी भगत नहीं उपजे, भूखे दान ना दीना रहाउ, काम ना बिसरयो, क्रोध ना बिसरयो, लोभ ना छूटयो देवा, पर निंदा मुख ते नहीं छूटी, निफल पई सब सेवा, बाट पार घर मूस बिरानो, पेट भरे अपराधी, जेहे परलोक जाए अपकीरत, सोई अविद्या साधी, हिंसा तो मन ते नहीं छूटी, जी दया नहीं पाली, परमानंद साध संगत मेल, कथा पनीत ना चाली, छाड़ मन हर बेमुखन को संग, सारंग महला पंजवां सूरदास, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर के संग बसे हर लोक, तन मन अर्प सर्बस सब अर्प्यो, आनंद सहज तुन चोक रहाओ, दर्शन पेक पय निर्भिखे, पाए है सगले थोक, आन बस्त स्यो काज न कछु है, सुंदर बदन अलोक, श्याम सुंदर ताजे आन जो चाहत,

आदि हर बिन कौन सहाई मन का मात पिता भाई सुत बनता हित लागो सब पन का रहाउ आगे कौ किस तुलहा बंद हो क्या परवासा धन का कहां बसासा इस भांडे का इतना कलागे ठन का सगल धर्म पुन फल पाव हो तूर बांच हो सब जन का कह कभी

देहि नानक रुत सहावी साई बिन नामै रुत केही मलार मोहल्ला पहला करो बिनो गुरे अपने प्रीतम हर वर आन मलावे सुन कन कोर शीतल मन मोरा लाल रत्ती गुण गावे बरस कना मेरा मन पीना अमृत बूंद सुहानी ही अरे गुरमोही मन हर रस लीना रहाओ सहज सुखी वर कामन प्यारी जिस गुरबचनी मन मानिया हर वर नार पई सोहागन मन तन प्रेम सुखानिया अवगण त्याग पई बैरागन अस्थिर वर सोहाग हरी सोग बजोग तिस कदे ना व्यापै हर प्रभ अपनी कृपा करी आवन जान नहीं मन निहचल पूरे गुर की ओट गही नानक राम नाम जप गुरमुख धन सुहागण सच सही मलार महला पहला साची सुरत नाम नहीं तृपते हम मैं करत गुआया पर धन पर नारी रत निंदा दिख खाई दुख पाया शब्द चीन भय कपट ना छूटे मन मुख माया माया अज गर भार लदे अत भारी मर जन्मे जन्म गवाया मन भावै शब्द सुहाया प्रम प्रम जोन भेख बहु कीने गुर राखे सच पाया रहाउ तीरथ तेज निवार ना नाते हर का नाम ना पाया रतन पदार्थ पर हर त्यागया जात को तत ही आया बिस्टा कीट पय उत ही ते उत ही माहे समाया अधिक स्वाद रोग अधिकाई बिन गुर सहज ना पाया सेवा सुरत रहस गुण गावा गुरमुख ज्ञान बीचारा खोजी उपजै बादी बिनसै हौ बल बल गुर करतारा हम नीच होते हीन मत झूठे तू शब्द सवार नहारा।

पुर तारा मलार मोहल्ला पहला जिन धन पिर का साधना जानिया सा बिलख बदन कुमलानी पई नरासी कर्म की फासी बिन गुर भरम पुलानी बस कना मेरा पिर घर आया बल जावा गुरे अपने प्रीतम जिन हर प्रभयान मलाया रहाव नौ तन प्रीत सदा ठाकुर सियों अन दिन भगत सुहावी मुक्त भये गुरदर्श दिखाया जुग जुग भगत सुभावी हम थारे त्रे पवन जग तुमरा तू मेरा हो तेरा सतगुर मिलया निरंजन पाया बहुर ना भवजन फेरा अपने पिर हर देख वगासी तो धन साच सिंगारू अकुल निरंजन सिउ सच साची गुरमत नाम अधारू मुक्त पई बंधन गुर खोले शब्द सुरत पत पा।

पार पीतर अमृत सोई जन पावे जिस गुर का शब्द रतन आचार रहाव दुख सुख दो सम कर जाने बुरा भला संसार शुद्ध बुद्ध सुरत नाम हर पाईए सत संगत गुर प्यार एहन सलाहा हर नाम प्रापत गुरदाता देवन हार गुरमुख सिख सोई जन पाए जिसनो नदर करे करतार काया महल मंदर घर हर का तिस मह राखी जोत अपार नानक गुरमुख महल बलाईऐ हर मेले मेलन हार मलार महला पहला घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पवन पानी जाने जात काया अग्न करे ने

सब शाम रात परम दै दिसह थां देहे ना नाउ ना हुए जात उतै देहो एथै सब रात साध कर समद।

असमान साहिब समृत तेरे तान जल थल डूंगर देखा तीर थान थनंतर साहिब वीर जिन तन साज दिए नाल खंब हाथ तृष्णा उडने की डंज नदर करे ता बंदा तीर ज्यों बखाले त्यों वेखा वीर ना एहो तन जाएगा ना जाहेंगे खंब पौने पानी अग्नि कासन बंद नानक कर्म होवै जपिए कर गुर पीर सच समावै एहो शरीर मलार महला तीजा चौपदी कर पहला

वंदे त्रिपतास्ते सत्य नाम समवाहि आनंदेन हर रव्या हृदय अंतर सहज समाध लगाहि सतगुर शब्दी इहो मन भेदिया हृदय साची बाणी मेरा प्रभ अलख न जाई लखिया गुरमुख अकत कहानी आपे दया करे सुखदाता जपिए सारंग पाणी आवन जाना बहुड़ ना होवे गुरमुख सहज ते आया मन ही ते मन मिलिया स्वामी मन ही मन समाया साचे ही सच साच पतीजै।

अंतर वस्या अलाख्य पेवा गुरमुख होए लखाई। नानक जिस भावै तिसे आपे देवै भावै तिवै चलाई। मलार महला तीजा तो तुके सतगुर ते पावै घर दर महल सोथान। गुर शब्दी चूकै अभमान जिनको ललाट लिखिया धुर नाम। अन दिन नाम सदा सदा त्यावह साची दरगाह पावह मान रहाऊ। मन की बिद सतगुर ते जाने अन दिन लागै सद हर स्यो ध्यान। गुर शब्द रते सदा बैरागी हर दरगाह साची पावह मान। इहो मन खेलै हुक्म का बांधा एक खिन मह दह दिस फिर आवै। जाय आपे नदर करे हर प्रभ साचा ता इहो मन गुरमुख तत्काल वस आवै। इस मन की बिद मन हूं जानै बूझै शब्द विचार। नानक नाम त्याए सदा तू भव सागर जित पावह पार। मलार महला तीजा जियो पिंड प्राण सब तिसके घट घट रहे समाई। एक सबिन मैं अवर ना जाना सतगुरु दिया बुझाई। मन मेरे नाम रहो लिवलाई अदृष्ट अगोचर अपरंपर करता। गुर कै शब्द हर त्याई।

नानक कवन बिद करे क्या कोए, सोई मुकत जाको कृपा होए। अन दिन हर गुण गावे सोए, शास्त्र वेद की फिर कूक ना होए। मलार महला तीजा प्रम प्रम जोन मनमुख परमाई, जम काल मारे नित पत गुआई। सतगुर सेवा जम की कान चुकाई, हर प्रभ मिलिया महल घर पाई। प्राणी गुरमुख नाम त्याए, जन्म पदार्थ दुबदा खोया। कौडी बदले जाए रहाउ, कर कृपा गुरमुख लगे प्यार। अंतर भगत हर हर उरतार, भवजल शब्द लंघावन हार। दर साचै दिसै सचियार, बहु कर्म करे सतगुर नहीं पाया। बिन गुर परम भूले बहु माया, हउ मैं ममता बहु मोह वधाया। दूजै पाए मनमुख दुख पाया, आपे करता अगम अथाहा। गुर शब्दी जपिय सच लाहा, हाजर हजूर हर वे परवाहा। नानक गुरमुख नाम समाहा, मलार महला तीजा। जीवन मुक्त गुरमति लागे, हर की भगत अन दिन सद जागे। सतगुर सेव है आप गवाए, हौ तिन जन के सद लागो पाए। हौ जीवा सदा हर के गुण गाई, गुर का शब्द मा

मन मुख मोहे मुग्ध गवार, अन दिन धंधा करत विहाय, मर मर जम्मह मिले सजाय, गुरमुख राम नाम लिव लाई, कूड़ै लालच ना लपटाई, जो किछ होवै सहज सुभाई।

तीर्थ आठ साठ मज्जन नहाई, सत संगत की धूर परी उड़ नेतनी, सब दुर्मत मैल गवाई रहाओ। जाहर नवी तपै भगीरथ आनी, केदार थाप्यो महसाई, कांसी कृष्ण चरावत गाऊ, मिल हर

कीने तितने सिर कार लखावै हर जन को हर दीन वडाई हर जन हर कारै लावै सतगुर हर हर नाम जरडावै हर बोलो हो गुर के सिख मेरे भाई हर भौजल जगत तरावै रहाउ जो गुर को जन पूजे सेवे सो जन मेरे हर प्रभ पावै हर की सेवा सतगुर पूजो हो कर कृपा आप तरावै परम भूले अज्ञानी अंधले भ्रम भ्रम फूल तरावै निर्जियो पूज है मड़ा सरीव है सब बिरथी काल गवावै ब्रह्म बिंदे सो सतगुर कही है हर हर कथा सुनावै तिस गुर को साधन भोजन पाठ पटंबर बहु विध सतकर मुख संचो हो तिस पुन की फिर टोट न आवै सतगुर देव प्रतख हर मूरत जो अमृत बचन सुनावै नानक भाग भले तिस जन के जो हर चरनी चित लावै मलार महला चौथा जिनकै हियरै बस्यो मेरा सतगुर ते संत भले पल भांत तिन देखे मेरा मन बिगसै हौ तिनकै सद बल जांत ज्ञानी हर बोलो दिन रात तिनकी तृष्णा भूख सब उतरी जो गुरमत राम रस खांत रहाव हर के दास साध सखा जन जिन मिलिया लह जाए प्रांत ज्यों जल दुध पिन पिन काढ़े।

खीर आधार बारिक जब होता, बिन खीर रहन ना जाई, सार संभाल माता मुख नीर, तब ओह तृप्त अघाई। हम बारिक पिता प्रभ दाता, भूलह बारिक अनक लख बरिया, अनठौर नाही जह जाता रहाउ। चंचल मत बारिक बपुरे की, सर्प अग्न कर मेलै, मात पिता कंठ लाए राखै, आनंद सहज तब खेलै। जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, तिस बारिक भूख कैसी। नव निध नाम निदान ग्रह तेरै, मन बांचै सो लैसी। पिता कृपाल आग्या एह कीनी, बारिक मुख

देखे। ग्रह मंगल सोहलावी रहाउ, मनुआ लाए सवारे थाना, पूछो संतां जाए, खोजत खोजत मैं पाहन मिलियो, भगत करो निव पाए, जब प्रे

गुर कार्य हमरे पूरे, कहो नानक वर मिलिया सुख दाता, छोड़ ना जाई दूरे। मलार महला पंजवां, राज ते कीट, कीट ते सुरपत, कर दोख जठर कौ भरते, कृपा निध छोड़ आन को पूज है, आत्म घाती हरते, हर बिसरत ते दुख दुख मरते, अनक बार ब्रह्म है बहु जोनी, टेक न काहू तरते रहाउ, त्याग स्वामी आन को चितवत, मूड़ मुग्ध खल खरते, कागर नाव लंग है कत सागर, बिरथा कथत हम तरते, सेव ब्रंच असुर सुर जेते, काल अगन मह जरते, नानक सरन चरण कमलन की, तुम ना दार हो प्रभ करते। राग मलार

नानक मेरो बनियो सुहागो पत शोभा भले अचारी मलार महला पंजवा प्रीतम साचा नाम त्याय दुख दर्द बिनसै भव सागर गुर की मूर्त हृदय बसाए रहाउ दुश्मन हत्ते दुखी सब व्यापे हर सरनाई आया राखन हारे हाथ दे राख्यो नाम पदार्थ पाया कर कृपा किलवे।

प्यारे प्रेम भगत अपनो नाम दीजै दयाल अनुग्रह तारे रहाउ सिमरो चरण तुहारे प्रीतम हृदय तुहारी आसा संत जना पह करो बेनती मन दर्शन की प्यासा विसरत मरण जीवन हर मिलते जन को दर्शन दीजै नाम आधार जीवन धन नानक प्रभ मेरे कृपा की जय मलार महला पंजवा अब अपने प्रीतम स्यों बन आई राजा राम रमत सुख पायो बरस मेघ सुखदाई रहाउ एक पल बिसरत नहीं सुख सागर नाम नमै निद पाई उदौत भयो पूर्ण भावी को टेटे संत सहाई सुख उपजे दुख सगल बनासे पार ब्रह्म लिवलाई तरयो संसार कठन भय सागर।

मेरे आनंद मंगल सुख पाया रहाउ। मिटे कलेश त्रिशन सब पूजी, पार ब्रह्म मन त्याया, साध संग जन्म मरण निवारी, बहुर न कतहु ताया, मन तन नाम निरंजन रातहु, चरण कमल लेव लाया, अंगीकार कियो प्रभ अपने, नानक दास शरणाया, मलार महला पंजवा, बिसरत क्यों जीवे ओए जीवन, चितह उलास आस मिलवे की, चरण कमल रस पीवन रहाउ, जिनको

मर जाही। मन तन रव रहया जगदीश्वर, देखत सदा हजूरे। नानक रव रहयो सब अंतर, सर्ब रहया परपूरे। मलार महला पंजवां।

कुल जख किन्नर नर सागर उत्तरे पारी जो जो भजन करे साधु संग ताके दुख बदारे काम क्रोध महा बिख्या रस इनते भय नरारे दीन दयाल जप

गही अचुत अबनासी किलबिख काढे है शांत काल कलेश मिटे दास नानक बहुर ना जोनी मात मलार महला पंजवा बहु विद माया मोह हिरानू कोट मधे को बिरला सेवक पूर्ण भगत चिरानू रहाउ इत उत डोल डोल श्रम पायो तन तन होत बिरानू।

अंतर्जामी सब मह वर्तै तां भौ कैसा पहाई संग सहाई छोड़ ना जाई प्रभ दिसै सबनी ठाई अनाथानाथ दीन दुख भंजन।

कै आप सदा सदा मन तिसनु जाप दृष्ट धार राखे सब जंत गुण गावहु नित नित भगवंत एको करता आपे आप हर के भगत जाने प्रताप नावे की पैज रखदा आया नानक बोले तिसका बुलाया मलार महला पंजवा गुर सरनाई सगल निदान साची दरगाह पाईए मान प्रम पौ दुख दर्द सब जाई साध संग सद हर गुण गाई मन मेरे गुर पूरा सलाही नाम निदान जपो दिन राती मन चिंदे फल पाई रहाउ सतगुर जे वडे अवर ना कोई गुर पार ब्रह्म परमेश्वर सो

आव सगर किए नह दुख सा कहलाहे। पज सरन साधु नानका मिल गुण गोबिंद गाहे। मलार महला पंजवा प्रिय की सोब सहावनी नीकी। हा हा हू हू गंधर्व अपसरा आनंद मंगल रस गावनी नीकी। रहाउ तुनत ललत गुनगह अनक भांत बहु विध रूप दिखावनी नीकी। गिर तार जल तल भवन भरपुर घट घट लालन शामनी नीकी। साध संग रामैया रस।

रहाउ। दर्श सफलियो दर्श पेखियो, गए किल बिख गए, मन निर्मल उजियारी, विषम विषम विषम भई, अग कोट हरते नाम लई, गुर चरण मस्तक डार पही, प्रभ एक तू ही एक तू ही, भगत टेक तुहारी, जन नानक शरण द्वारी, मलार महला पंजवां, बरस सरस आ गया, होहे आनंद सगल भाग रहाउ। संत संगी मन परफड़ै, मिल मेघ धर सुहाग, कन घोर प्रीत मोर, चित चातरक बूंद ओर, ऐसो हर संगी मन मोह, त्याग माया तोह, मिल संत

फिर भावै प्रेम सखाई तिस बिन घड़ी नहीं जग जीवा ऐसी प्यास तसाई रहाओ सरवर कमल किरण अकासी दिगसै सहज सुपाई प्रीतम प्रीत।

ताई कनहर कोर दसो दिस बरसे बिन जल प्यास न जाई मीन नवास उपजे जल ही ते सुख दुख पुरब कमाई खिन तिल रह न सकै पल जल बिन मरन जीवन तिस ताई तन वांडी पिर देस नवासी सच्चे गुर पह शब्द पठाई गुण संग्रह प्रभ हृदय नवासी भगत रत्ती हर खाई प्रियो प्रियो करै सबै है जेती गुर भावै प्रियो पाई प्रियो नाले सद ही सच संगे नदरी मेल मलाई सब मह जियो जियो है सोई घट घट रहे आसमाई गुर प्रसाद कर ही परगासिया सहजे सहज समाई अपना काज सुवारो आपे सुख दाते गोसाई गुर प्रसाद कर ही फिर पाया तो नानक तप्त बुझाई मलार मोहल्ला पहला जागत जाग रह गुर सेवा बिन हर मैं को नाही अनक जतन कर रहन ना पावे आच काच धर पाही इस तन धन का कहो गर्भ कैसा बिन सतबार न लागे बबरे हौ मैं गर्भ खपे जागे ऐसा रहाउ जय जगदीश प्रभु रखवारी राखे परखे सोई जेती है तेती तुझ ही ते तुम सारे अवर ना कोई जी

बचनी इथिया गुरमत जारी मन तन हेम भय सच पाया हर की भगत निरारी जेती है तेती तुद जाचे तू सर्ब जिया दयाला तुमरी सरन परे पत राखो साच मिले गोपाला बांधी तंद अंध नहीं सूजे बद्धक कर्म कमावे सतगुर मिले ता सूजस बूजस सच मन ज्ञान समावे निर्गुण दे साच बिन काची मैं पूछूं गुरे अपना नानक सो प्रभ प्रभु दिखावे बिन साचे जग सुपना मलार महला पहला चात्रक मीन जल ही ते सुख पावे सारंग शब्द सुहा।

मैं तन थाकी सच मत हृदय समाई, रूखी बिरखी ऊडो भूखा पीवा नाम सुपहाई। लोचन तार ललता बिललाती, दर्शन प्यास रजाई। प्रिया बिन श्रृंगार करी तेता तन तापै, कापर अंग ना सुहाई। अपने प्यारे बिन एक खिन रह ना सको, बिन मिले नींद ना पाई। फिर नजीक ना बूझै बकड़ी, सतगुरु दिया दिखाई। सहज मिलिया तब ही सुख पाया, तृष्णा शब्द बुझाई। कहो नानक तुझ ते मन मानिया, कीमत कहन ना जाई। मलार महला पहला।

रहाउ। सतगुर शब्दी पादर जान, गुर कै तकिए साचै तान। नाम संभाल सरूड़ी बाण, थै पावै दर लहस प्राण। ऊडा बैसा एक लिवतार, गुर कै शब्द नाम आधार। ना जल डूंगर ना ऊंची तार, निज कर वासा कह मागना चालन हार। जित कर वसे है तू है बिद जान है, बीजो महल ना जापे। सतगुर बाजो समझ ना होवी, सब जग दबिया छापे। करन पलाव कर बिललातो, बिन गुर नाम ना जापे। पल पंकच मह नाम छडाई, जे गुर शब्द सिंहापे। एक मूर्ख अंधे मुग्ध गुआर, एक सतगुर कै

संसा जाय। सतगुर ते हर बुझिऐ गर्भ जोनी नह पाय। गुर प्रसादी जीवत मरै मर जीवै शब्द कमाय। मुक्त द्वारा

अचार करै विवेक बुद्ध पाई, पुरखै पुरख मलाई। धातुर बाजी संसार अचेत है, चलै मूल गवाई। लाहा हर सत संगत पाई, करमी पल्लै पाई। सतगुर विण किने ना पाया, मन वेखो हृदय विचार। वड भागी गुर पाया, भव जले उतरे पार। हर नामा हर टेक है, हर हर नाम आधार। कृपा करो गुर मेलो हर जियो, पावो मोख द्वार। मस्तक ललाट लिखिया धुर ठाकुर, मेटना ना जाय। नानक से जन पूर्ण होए, जिन हर भाणा पाए। मल्हार महला तीजा, वेद बाणी जग वर्तदा। त्रै गुण करे बीचार, बिन नावै जम डांड सह। मर जन्मै वारु वार, सतगुर भेटे।

हर हर नाम त्याई रहाउ। हरे अपने भाणै सिष्ट उपाई, हरे आपे दे आधार। हरे अपने भाणै मन निर्मल किया, हर स्यों लागा प्यार। हर कै भाणै सतगुर भेटिया, सब जन्म सवारन हार। वाह वाह बाणी सत है, गुरमुख बूझै कोई। वाह वाह कर प्रभ सलाही है, तिस जे वड़े अवर ना कोई। आपे बख्शे मेल लई,

निज कर होवै वास, जम काल सिरों ना उतरै अंतर कपट विनास। हर नावै नु सब को प्रताप दा, विण भागा पाया ना जाए। नजर करे गुर भेटिया, हर नाम वसै मन आए। नानक नामे ही पत उपजै, हर स्यों रहा समाए। मलार महला ती

कमल परगास तित काट नामै नाम निवास हऊ मैं भगत करे सब कोई ना मन पीजै ना सुख होए कह कह कहण आप जनाई बिरथी भगत सब जन्म गवाए से भगत सतगुर मन पाए अन दिन नाम रहे लिवलाए सद ही नाम वेख हजूर गुर कै शब्द रहया भरपूर आपे बख्शे दे प्यार हम मैं रूप।

पतत पावन भगत वत्सल कृपा सिंध स्वामिया संत संगे भजन संगे रौ सदा अंतर जामिया कोट जन्म परमंत जोनी ते नाम सिमरत तारी नानक दर्श प्यास हर जियो आप लेहो संहारी हर चरण कमल मन

बिनवंत नानक शरण तिनकी, जिन्नी हर हर त्याया वार मलार की महला पहला, राणे कैलाश तथा मालदे की धुन, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सलोक महला तीजा, गुर मिले मन रहसी है, जो उठे परम शिंगार, सब दिसे हरियावली सर भरे सुभर ताल, अंदर रचे सच रंग ज्यो मंजीठे लाल, कमल विकसे सच मन गुर कै शब्द निहाल, मनमुख दूजी तरफ है वेखो नदर निहाल, थाही पाथे मिर्ग ज्यो सिर दिसे जम काल, खुदिया तृष्णा निंदा बुरी काम क्रोध विकराल, इनी अखी नदर ना आवई जिचर शब्द ना करे विचार, तुद भावै संतोखी।

सब सुख साचो नाम पौड़ी आपी ने आप साज आप पछाणिया अंबर धरत विछोड़ चंदोआ ताणिया बिन थम्मा गगन रहाए शब्द निशाणिया सूरज चंद उपाए जोत समाणिया तीए रात दिनंत चोज वडाणिया तीर्थ धर्म विचार नावन कुर्बाणिया तुद सारे अवर ना कोई के आख वखाणिया सच्चा तख्त निवास।

पौड़ी तू सच्चा सच्यार जिन सच वरताया बैठा ताड़ी लाए कवल छपाया ब्रह्म वड्डा कहाई अंत ना पाया ना तिस बाप ना माए किन तू जाया ना तिस रूप ना रेख वर्ण सवाया ना तिस भुख प्यास रज्जा ताया गुरमह आप समोए शब्द वरताया सच्चे ही पति आए सच समाया। श्लोक महला पहला वैद बुलाया वैद की

राम राजा आया दैंता मारे ताए हुक्म सबाया ईश महेश्वर सेव तिन्नी अंत न पाया सच्ची कीमत पाए तख्त रचाया दुनिया तंदै लाए।

सखी संत चित करे हो नानक चूर मरह दोहागनी जिन अवरी लागा ने हो महला दूजा सामने आया है सखी जल हर बर सुनहार नानक सुख समन सोहागनी जिन सह नाल प्यार पौड़ी आपे सिंह पवाए मल्ला खाड़ा रचिया लथे पड़तू पाए गुरमुख मचिया मनमुख मारे पछाड़ मूर्ख कचिया आप भिड़ै मारे आप आप कारज रचिया सबना खसम एक है गुरमुख जानिए हुक्मी लिखै सिर लेख विण कलम मसवाणिए सत संगत मेलाप जितै हर गुण सदा वखाणिए नानक सच्चा शब्द सलाही सच पछाणिए।

वरसै लाए झड़ी नानक पाण चले कंत कै सो माणी सदा रली महला तीजा क्या उठ उठ देखो बपणी किस मेघ गै हक किस नाही जिन इहो मेघ पठाया किस राखो मन माहे तिसनो मन वसाए सी जाको नदर करे नानक नदरी बाहरी सब करन पलाहा करे पौड़ी सो हर सदा सरेवी है जिस करत न लागे वार आडाने आकाश कर खिन मह ढाहे उसारन हार आपे जगत उपाय कै कुदरत करे विचार।

नित त्याई है सदा सदा सुख होए। नानक अमृत सदे वरसदा गुरमुख देवै हर सोए महला तीजा कलमल होई मे।

शह बरलाय अन तन उपजै बहु घणा कीमत कहण ना जाय। नानक नाम सलाहे तू सबना जिया देंदा रिजक संबाहे। जित खादै सुख उपजै

जहदू जी तरफ है, कूड़ मिले ना मिलिया जाय, आपे जोड़ बछोड़े आपे कुदरत दे दिखाई, मोह सोग वजोग है पूर्व लिखिया कमाई, हों बलिहारी तिन को जो हर चरनी रहे लिवलाई, ज्यो जल मह कमल अलिपत है ऐसी बणत बनाई, से सुखिये सदा सोहणे जिन विचो आप गवाई, तिन सोग वजोग कदे नहीं जो हर कै अंक समाई, सलोक महला तीजा नानक सो सलाही है, जिस वस सब किश होए तिसै सरे विहो प्राणी हो, तिस बिन अवर ना कोई, गुरमुख हर प्रभ मन वसै ता सदा सदा सुख होए, सहसा मूल ना हो वई।

वरसै कृपा तार नानक गुरमुख नजरी आया हर आत्म राम मरार पौड़ी अतुल क्यों तोलिए बिन तोले पाया ना जाए गुर कै शब्द विचारिए गुण मह रह समाए अपना आप आप तोलसी आपे मिले मलाई तिसकी कीमत ना पवे कहना किशु ना जाए हौ बलिहारी गुरे अपने जिन सच्ची बूझ दित्ती बुझाई जगत मुस्से अमृत लुटिए मनमुख बूझ ना पाई विण नावे नाल ना चलसी जासी जन्म गवाई गुरमती जागे तिन्नी घर रखिया दूतां का किस ना वसाई सलोक महला तीजा बबीहा ना बिललाए ना तरसाए एहो मन खसम का हुक्म मन नानक हुक्म मन्या ते खोतरै चढ़ै चवगल वन महला।

तनी तू सब किसे आपे आप दूजे किस जानी मानस कूड़ा गर्भ सच्ची तुद मणि आवा गौण रचाए उपाई।

मन मुख मोहे गवार, जो भुला मंझ वणी कटे पाप असंख, नावे एक कणी। सलोक महला तीजा, बबीहा खसमे का महल ना जानही, महल देख अरदास पाई, अपने पाणे बहुता बोले, बोलिया थाई ना पाई।

या गुणवंती मैल पाया अवगुणवंती दूर अंतर तेरा हर वसै गुरमुख सदा हजूर कूक पुकार ना होवे नदरी नदर निहाल नानक नाम रते सहजे मेले शब्द गुरु कै काल महला तीजा बाबीहा बेनती करे कर कृपा देहो जी दान जल बिन प्यास ना उतरै छुटक जाहे मेरे प्राण तू सुखदाता बेअंत है गुणदाता निधान नानक।

त्रै गुण सर्ब जंजाल है, नाम ना धरे प्यार। गुण छोड़े औगण कमाम दे, दरगाह होए खुआर। जुए जन्म तिन्नी हारिया, कित आए संसार। सच्चा शब्द मन मारिया, अहनस नाम प्यार। जिन्नी पुरखी उर तारिया, सच्चा अलख अपार। तू गुणदाता निदान है, असी अवगण यार। जिस बख्शे सो पाए सी, गुर शब्दी विचार। श्लोक महला पंजवां, रात ना विहावी।

पुरकै सहज सुपाय मेघ वर्ष दया कर गुड़ी शह पर लाई बबी हे कूक पकार रह गई।

सच समाया सलोक महला तीजा सावन सरसी कामणी गुर शब्दी विचार नानक सदा सुहागणी गुर कहित अपार महला तीजा सावन दजै गुण बाहरी जिस दूजै पाए प्यार नानक पिर की सार न जाने सब शिंगार खुआर पौड़ी सच्चा अलख अपे हठ ना पतीजई एक गाव है राग परिया राग ना पीजई एक नच नच पूरे ताल भगत ना कीजई एक अन ना खाहे मूरख तिना क्या कीजई तृष्णा हुई बहुत किवै ना तीजई कर्म बदै कैलो खप मरी जई लाहा नाम संसार अमृत पीजई हर भगती असनेह गुरमुख कीजई सलोक महला तीजा गुरमुख मलार।

मन तन सच्चा सच मन सच्चे सच्ची सोए अंदर सच्ची भगत है सहजे ही पत होए। कलयुग में घोर अंधार है मनमुख राह न कोय सेवड भागी नानका जिन गुरमुख प्रगट होए। महला तीजा इंद वरसै कर दया लोका मन उपजै चाऊ जिसकै हुक्म इंद वरसदा तिसकै सद बलिहारै जाऊ। गुरमुख शब्द संभाली है सच्चे के गुण गाऊ नानक नाम रते जन निर्मले सहजे सच समाऊ। पौड़ी पूरा सतगुर सेव पूरा पाया पूरा कर्म त्याए पूरा शब्द मन वसाया पूरा ज्ञान ध्यान मैल चुकाया हर सर तीर्थ जान मनुआ नाया।

खसम मिट्टी फिर पानी अद गुल्ला चिड़ी का चुगन गैन चढ़ी बिल लाई खसम भावे वोहा चंगी जे

सुख पाया गुरमति विचार इक नानू तुद इवें भावदा माया नाल प्यार गुर कै शब्द सलाई है अंतर प्रेम प्यार विण प्रीति भगत ना हो गई विण सतगुर ना लगे प्यार तू प्रभ सब तुद सेव दे इक ढाडी करे पुकार देह दान संतोखिया सच्चा नाम मिले आधार सलोक महला पहला राती काल घटै दिन काल सिज्जै काया होए पराल वर्तन वर्त्या सर्ब जंजाल भुलिया चुक गया तपताल अंधा चख चख पया चेर पिछै रूवह लिया वह फेर बिन बूझे

मुआ प्यार प्रीत मुई मुआ वैर वादी वन गया रूप विनसिया दुखी देह रुली कित्थों आया कह गया केहो ना सीओ केहो सी मनमुख गल्ला गोईया कीता चाओ रली नानक सच्चे नाम बिन सिर खुर पत पाटी पौड़ी अमृत नाम सदा सुख दाता अंते होए सखाई बाज गुरु जगत बहु।

सच पछाणिए, लिखिया पल्ले पाए सो सच जानिए, हुक्मी हुए नबेड़ गया जानिए, भौजल तारन हार शब्द पछाणिए, चोर जार जुआर पीड़े कहानिए, निंदक लाए तबार मिले हड़वाणिए, गुरमुख सच समाए सो दरगाह जानिए।

तीर्थ का नाव चौधरी कूड़ी पूरे थाव नानक गुरमुख जानिए कल का इहो नियाव महला पहला हरना बाजा तै सिकदारा इना पढ़िया नाव फांदी लगी जात पहाइन अग्गै नाही थाव सो पढ़िया।

प्राण पौड़ी पड़िया नाम सलाह और बुद्धि मिथ्या बिन सच्चे वापार जन्म बिरथया अंत ना पारावार ना किन्ही पाया सब जग गर्भ गवार तिन सच ना पाया चले नाम वसार तावन तत्या।

तोयो कन कमाद कपाह, तोयो त्रिभवन गन्ना, तुआ आखै हो बो बिदहच्छा, तुए बहुत बेकारा, इते रस छोड़ हुए सन्यास।

आप खाम पूजै हिकमत खुदाया मानतवाना तू कुदरती आया सग नानक दे बान मस्ताना नित चढ़ै सवाया आतस दुनिया।

तुद फिर दूजा को नहीं, तू रहे आसमाई, तेरी गत मित तू है जानदा, तुद कीमत पाई, तू अलख अगोचर अगम है, गुरमत देखाई, अंतर अज्ञान दुख भरम है, गुर ज्ञान गवाई, जिस कृपा करह तिस मेल लह, सो नाम ते आई, तू करता पुरख अगम है, रव्या सब ठाई, जित तू लाए सच्चिया तित को लगे, नानक गुण गाई, शुद्ध

गोपालराय अकुल निरंजन भगत दान दीजै जाचह संत जन रहाउ जाचै घर दिग दिसै सराय क्या वैकुंठ भवन चित्र साला सप्त लोक समान पूरी अले जाचै घर लक्ष्मी कुवारी चंद सूरज दीवड़े कौतक काल बपड़ा कोटवाल सो करा सिरी सो ऐसा राजा श्री नरहरि जाचै घर कलाल ब्रह्मा चतुर्मुख डांवड़ा जिन विश्व संसार राची ले जाचै घर ईश्वर बावला जगत गुरु तत सारखा ज्ञान पाखी ले

जाचै भस्मती सुऐसा राजा त्रिभुवनपति जाचै कारे कूर्मा पाल सहसरफनी बासक सेज वालुआ अठारह पार बनास्पति मालनी सिनवै करोड़ी मेघ माला पानी हारिया नख परसेव जाचै सुरसरी सप्त समुंद जाचै घड़खली एते जी जाचै वर्तनी सो ऐसा राजा त्रिभुवन धनी जाचै कर निकटवर्ती अर्जन ध्रुव प्रहलाद अम्बरीक नारद निजै सिद्ध बुद्ध गण गंधर्व बानवै हेला एते जी जाचै है करी।

कथा जप मन राम नाम परगास हर के संत मिल प्रीत लगानी विचे ग्रह उदास रहाओ हम हर हृदय जपियो नाम नर हर प्रभु कृपा करी कृपास अन दिन अंत भया मन बिगसिया उदम भय मिलन की आस हम हर स्वामी प्रीत लगाई जितने सास लिए हम ग्रास किल बिख दहन भय खिन अंतर टूट गए माया के फास क्या हम किर्म क्या कर्म कमाव है मूर्ख मुग्ध रखे प्रवतास अवगने आरे पाथर पहारे सत संगत मिल तरे तरास जेती सृष्ट करी जगदीशर ते सब ऊच हम नीच बिख्यास हमरे अवगुण संग गुर मेटे जन नानक मेल लिए प्रभ पास कानड़ा महला चौथा मेरा मन राम नाम जपियो गुरवाक हर हर कृपा करी जगदीशर दुर्मत दूजा पाओ गयो सब चाक रहाओ नाना रूप रंग हर केरे कट कट राम रवियो गुपलाक हर के संत मिले हर प्रगटे उगर गए बिख्या के ताक संत जना की बहुत बहु शोभा जिन उर तारियो हर रस कर साक हर के संत मिले हर मिलिया जैसे गऊ देख बछराक हर के संत जना मह हर हर ते जने उत्तम जनक जनाक तिन हर हृदय बास बसानी छूट गई मुश्की मुश्काक तुमरे जन तुम ही प्रभ किए हर राख ले हो आपन अपनाक जन नानक के सखा हर पाई मात पिता बंदप हर साक कानड़ा महला चौथा मेरे मन हर हर राम नाम जप चीत हर हर वस्त माया गढ़ वेड़ी गुर कै शब्द लियो गढ़ जीत रहाओ मिथ्या भरम भरम बहु ब्रह्मया

परे बिख बिखिया सतगुर काढ लिए दे हाथ रहाव स्वामी अपै निरंजन नरहर तुम राख ले हो हम पापी पात काम क्रोध बिखिया लोभ लुभते काष्ट लोहो तरे संग साथ तुम वड पुरख वड अगम अगोचर

कानड़ा महला चौथा पाज रामो मन राम जिस रूप नरेख वडाम सत संगत मिल पाज राम बड हो भाग मथाम रहाउ जित ग्रह मंदर हर होत जास

फूल सगल तरादु कानड़ा महला चौथा हर जस गावो भगवान जस गावत पाप लहान मत गुरमत सुन जस कान हर हो किरपान रहाओ तेरे जन ध्याव है एक मन एक चित ते साधु सुख पाव है जप हर हर नाम निदान उस्तत करह प्रभ तेरिया मिल साधु साध जना गुर सत गुरु भगवान जिनकै हृदय तू स्वामी ते सुख फल पाव है ते तरे भव सिंध ते भगत हर जान तिन सेवा हम लाए हरे हम लाए हरे जन नानक के हर तू तू तू तू तू भगवान कानड़ा महला पंजवा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद गाइया गुण गोपाल कृपा निद दुख बदारन सुखदाते सतगुर जा को भेटत होए सगल सिद्ध रहाओ सिमरत नाम मनह साधारै होट पराधी खिन महतारै जा को चीत आवै गुर अपना ताको दुख नहीं तिल सुपना जा को सतगुर अपना राखै सो जन हर रस रसना चाखै कहो नानक गुर कीनी मया हलत पलत मुख उजल भया कानड़ा महला पंजवा अरादो तुझे स्वामी अपने उठत बैठत सोवत जागत सास सास सास हर जपने।

रसन अनक बार कर बंदन संतन उहां चरण गोविंद जी के बस न रहाओ अनक भांत कर द्वार न पावो होए कृपाल ता हर हर त्यागो कोट कर्म कर दे न सोदा साध संगत मेहमान प्रबोधा त्रिशन्ना बूजी बहु रंग माया नाम लैत सर्व सुख पाया पार ब्रह्म जब

तैल संतन की संग साधु का हर नामा जप परम गते रहाओ पूजा चरना ठाकुर सरना सोई कुशल जो प्रभ जियो करना सफल होत एह दुर्लभ देही जां कौ सतगुर मया करे ही अज्ञान भरम बिनसै दुख डेरा जां कै हृदय बसह गुर पैरा साध संग रंग प्रभ त्याया कहु नानक तिन पूरा पाया कानड़ा महला पंजवा भगत भगतन हूं बन आई तन मन गलत भय ठाकुर स्यों।

तेरो जन हर जस सुनत उमायो रहाओ मनह प्रगास पेख प्रभ की शोभा जत कत पेखो आहयो सब ते परे परे ते उच्चा गहर गंभीर अथाहयो ओत पोत मिलियो भगतन को जन स्यो परदा लाहयो गुर प्रसाद गावे गुण नानक सहज समाद समाहयो कानड़ा महला पंजवा संतन पह आप उदाहरण आयो रहाओ दर्शन भेत होत पुनीता हर हर मंत्र दृढ़ायो काटे रोग पय मन निर्मल हर हर औखद खायो आस्थित पय बसे सुख थाना बहुर न कतहु तहायो संत प्रसाद तरे कुल लोगा नानक लिपत नाम आयो कानड़ा महला पंजवा बिसर गई सब तात पराई जब ते साथ संगत मोहे पाई रहाओ ना को बैरी नहीं बिगाना सगल संग हम को बन आई जो प्रभ कीनो सो भल मान्यो एह समत साधु ते पाई सब मह रव रहया प्रभ एक है पेख पेख नानक बिगसाई कानड़ा महला पंजवा ठाकुर जियो तुहारो परना मान महत तुम्हारे ऊपर तुमरी ओट तुम्हारी सरना रहाओ तुमरी आस भरोसा तुमरा तुमरा नाम हृदय लै धरना तुमरो बल तुम संग सुहेले।

आन दा सुख सहज मूरत तिस आन नाही भांत सिमरत एक बार हर हर मिट कोट कसमल जात गुण रमंत दुख नास है रिद पयंत शांत अमृता रस पियो रसना नानक।

तो परम राख लीजे काट बेरी रहाओ बूढ़त संसार सागर उदरे हर सिमर रतनागर शीतला हर नाम तेरा पूर्णो ठाकुर प्रभ मेरा दीन दर्द निवार तारन हर कृपा निद पतत उदारन कोट जन्म दुख कर पायो सुखी नानक गुरु नाम दरडायो कानड़ा महला पंजवा ताने ओह प्रीत चरण संग लागी कोट जाप ताप सुख पाए आए मिले पूर्ण बड भागी रहाओ मोहे अनाथ दास जन तेरा अवर ओट सगली मोहे त्यागी भोर भरम काटे प्रभ सिमरत ज्ञान अंजन मिल सोवत जागी तू अथाह अत बड़ो स्वामी कृपा सिंध पूर्ण रत लागी नानक जाचक हर हर नाम मांगे मस्त ज्ञान धरियो प्रभ पागी कानड़ा महला पंजवा उचल कठोर कपट कामी ज्यों जान है त्यों तार स्वामी रहाओ तू समरथ सरन जोग तू राख है अपनी कल तार जाप ताप नेम सुच संयम नाही इन विदे छुटकार गर्त घोर अंध ते काड हो प्रभ नानक नदर निहार कानड़ा महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद नारायण नरपत नमस्कार है ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तारे रहाओ कवन कवन कमन गुण कहिए।

रहाउ कट कट पूर रहे सुख सागर पै भंजन मेरे प्राण मनह प्रगास भयो भ्रम लास्यो मंत्र दियो गुर कान करत रहे करतग है करना मैं अंतर जामी ज्ञान आख पहर नानक जस गावे मांगन कहो हर दान कानड़ा महला पंजवा कहन कहावन कहो कई केत ऐसो जन बिरलो है सेवक जो

सब भला ही है रे, हार नहीं सब जीतै, सोग नाही सदा हर की है रे, छोड़ नाही किस लेतै, कहो नानक जन हर हर हर है, कत आवै कत रमतै, कानड़ा महला पंजवां, कि एको प्रीतम बिसर ना जाए, तन मन गलत भय तिह संगे।

तू गहे रहे अटकाए अनक भांत की एकै जाली ताकी गंठ नहीं छोराए फिरत फिरत नानक दास आयो।

अरबिंद खोजत खोजत रतन पायो बिसरी सब चिंद रहाओ चरण कमल हृदय धार उतरिया दुख मंद राज धन परवार मेरा सर्ब सो गोविंद साध संगम लाभ पायो नानक फिर ना मरंद कानड़ा महला पंजवा घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रभ पूजो नाम अराध गुर सतगुर चरणी लाग हर पाव हो मन आगाद जग जीतो हो गुर कृपाद रहाओ अनक पूजा मैं बहु विद खोजी सा पूजा जे हर पवास माटी की एह पुत्री जोरी क्या एह कर्म कमास प्रभ बहा पकर जिस मार्ग पावहु सो तुद जंत मलास अवर ओट मैं कोई ना सूजै एक हर की ओट मैं आस क्या दीन करे अरदास जो सब घट प्रभु निवास प्रभ चरणन की मन प्यास जन नानक दास कहियत है तुमरा हौ बल बल सद बल जास।

टुलेरे दर्शन प्यास बहुत मन मेरे मिल नानक देव जगत गुर केरे कानला महला पंजवा ऐसी कौन विदे दर्शन परसना रहाऊ आस प्यास सफल मूरत उमंग ही ओ तरसना।

कीत हस्त पूर्ण सब संगा रहाउ वर्त नेम तीर्थ सहत गंगा जल हेवत भूख अरनंगा पूजा चार करत मेलंगा चक्कर कर्म तिलक खाटंगा दर्शन भेटे बिन सतसंगा हटन ग्रह अत रहत बटंगा हौ रोग व्यापै चुकै ना पंगा काम क्रोध अत त्रिशन जरंगा सो मुक्त नानक जिस सतगुर चंगा कानड़ा महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद देख बूझ गई गई मिल साध जना पंच भागे।

नानक हात रूखो भोजन भूम सैन सखी प्रिय संग सूख बेहात कालड़ा महला पंजवा अहं तोरो मुख जोरो।

मना हर जाप जो संत वेद कहत पंथ गाखरु मोह मगन अहंताप रहाउ जो राते माते संग बपरी माया मोह संताप नाम जपत सो जन उदरह जिसह उदार हो आप बिन सजाए मोह पै परमा नानक संत प्रताप।

जात जीव बलिहार मान मोही पंच दोही उर्ज निकट बसेओ ताकी सरन साधुआ दूत संग निवार रहाओ कोट जन्म जोन भ्रम्यो हार परयो द्वार कृपा गोविंद पई मिलो नाम आधार दलभ जन्म सफल नानक पाव अवतार पार कानड़ा महला पंजवा घर ग्यारवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सहज सुभाए अपने आए कछु न जानो कछु दिखाए प्रभ मिलियो सुख बाले भोले रहाओ संजोग मलाए साध संगाए कतहु न जाए करह बसाए गुण निधान प्रगट्यो एह चोलै चरण लुभाए आनत जाए थान थनाए सर्ब समाए रसक रसक नानक गुण बोलै कानड़ा महला पंजवा गोविंद ठाकुर मिलन दुराई परमत रूप अगम अगोचर रहियो सर्ब समाई रहाओ कहन भवन नाही पायो पायो अनक उकत चतराई जतन जतन अनक उपावरी तौ मिलियो जो किरपाई प्रभु दयार किरपार किरपा निध जन नानक संतरे नाई।

अरबिंद सासन निसभोर रहाउ लाए प्रीत कीन आपन टूटत नहीं जोर प्राण मन धन सर्वसु हर गुण निजे सुख मोर ईत ऊत राम पूरन निरखत रिद खोर संत सरन तरन नानक बिन से ओ दुख कोर।

तान मांगौ धन लक्ष्मी सुत दे मुकत जुगत भुगत पूरन परमानंद परम निदान पै पाए भगत निहाल नानक सदा सदा कुर्बान कानड़ा महला पंजवा करत करत चर्च चर्च चर्चरी जोग ध्यान भेख ज्ञान फिरत फिरत धरत धरत धरचरी रहाउ अहं अहं अह अवर मूड़ मूड़ मूड़ बवरई।

मृत निकट निकट सदा ही हर हरे हरे पाज कहत नानक सुनो रे मूड़ बिन भजन भजन भजन अहला जन्म गई कानड़ा अष्टपदियां।

वह सुख पावे। सतगुरु सेव समावे गुर हाउ, भगत जना की खिन खिन लोचा। नाम जपत सुख पावे गु, अनरस साध गए सब नीकर। बिन नावे किस ना सखावे गु, गुरमत हर हर मीठा लागा। गुर मीठे बचन कढावे गु, सतगुर बाणी पुरख पुरखोतम। बाणी स्यों चित लावे गु, गुरबाणी सुनत मेरा मन द्रव्या। मन पीना निज कर आवे गु, तैं अनहत धुनी बाजह नित बाजे। नीचर धार चवावे गु, राम नाम इक तिल तिल गावे। मन गुरमत नाम समावे गु, नाम सुनह नामो मन पावे। नामे ही तृपतावे गु, कनक कनक पहरे बहु कंगना। कापर पांत बनावे गु, नाम बिना सब फीक फिकाने। जन्म मरे फिर आवे गु, माया पटल पटल है पारी। कर घूमन घेर कलावे गु, पाप बकार मनूर सब पारी। दिख दुत्तर तरयो ना जावे गु, पौ बैराग भया है बोहित। गुर खेवट शब्द तरावे गु, राम नाम हर पेटी है। हर राम नाम समावे गु, अज्ञान लाए सवालिया।

हर हर नाम तुरावे गु जो जो जपै सोई गत पावे ज्यो ध्रुव प्रहलाद समावे गु रहाउ कृपा कृपा कृपा कर हर जियो कर कृपा नाम लगावे गु कर कृपा सतगुरु मलावहु मिल सतगुरु नाम त्यावे गु जन्म जन्म की हम मल लागी मिल संगत मल लह जावे गु ज्यो लोहा तरियो संग कास्ट लग शब्द गुरु हर पावे गु संगत संत मिल हो सत संगत मिल संगत हर रस आवे गु बिन संगत कर्म करे अभमानी कड पानी कीकड़ पावे गु भगत जना के हर रखवारी जन हर रस मीठ लगावे गु खिन खिन नाम दे वडियाई सतगुर उपदेश समावे गु भगत जना को सदा निव रही है जन निवह ता फल गुण पावे गु जो निंदा दुष्ट करह भगता की हरनाक्ष ज्यो पच जावे गु ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा तप तापन पूज करावे गु जो जो भगत होए सो पूज हो परमन परम चुकावे गु जात निजात देख मत परम हो सुख जनक पगी लग त्यावे गु जूठन जूठ पई सिर ऊपर खिन मनुआ तिल ना डलावे गु जनक जनक बैठे सिंघासन नौ मुनि धूर लै लावे गु नानक कृपा कृपा कर ठाकुर मैं दासन दास करावे गु कानड़ा महला चौथा मन गुरमत रस गुण गावे गु जिहवा एक होए लख कोटि कोट त्यावे गु रहाउ सहस फनी जप्यो सेख नागे हर जपत्या अंत न पावे गु तू अथाह अत अगम अगम है मत गुरमत मन ठहरावे गु जिन तू जप्यो तेई जन नीके हर जपत्यो कौ सुख पावे गु बिदरदासी सुत शोक शोहरा कृष्ण अंक गल लावे गु जल ते ओपत पई है कासत कासत अंग तरावे गु राम जना हर आप सुवारी अपना बिरद रखावे गु हम पाथर लोहो लोहो बड पाथर गुर संगत नाव तरावे गु ज्यो सत संगत तरयो जुलाहो संत जना मन पावे गु खरे खरोए बैठते उठत मार्ग पंथ त्यावे गु सतगुर बचन बचन है सतगुर पाधर मुक्त जनावे गु सासन सास सास बल पाई है निह सासन नाम त्यावे गु गुर प्रसादी हम मैं बूझे तौ गुरमत नाम समावे गु सतगुर दाता जी जीअन को भागहीन नहीं पावे गु फिर एह वेला हाथ न आवे पर तापै पछतावे गु जे को भला लोड़ै भले अपना गुरु आगै टह टह पावे गु नानक दया दया कर ठाकुर मैं सतगुर भस्म लगावे गु।

जय तल कुंडे गुर अंकस शब्द दरड़ावै गु रहाउ चल तो चले चले दह दह दिस गुर राखै हर लिव लावै गु सतगुर शब्द दे हृद अंतर मुख अमृत नाम चवावै गु बिसियर बिसु परे है पूरन गुर गरुड़ शब्द मुख पावै गु माया पोयंग तिस नेड़ ना आवै बिख चार चार लिव लावै गु स्वान लोभ नगर मह सबला गुर खिन मह मार कढावै गु सत संतोख धर्म आन राखी हर नगरी हर गुण गावै गु पंकज मोह निगरत है प्राणी गुर निगरत काड कढावै गु त्राहे त्राहे शरण जन आई गुर हाथी दे निकलावै गु सुपनंतर संसार सब बाजी।

आई, जतन माया के काम न आई, राम ते आए सब फल पाए, तन तन ते बड़ भागिया, सतसंग जागे नाम लागे, एक स्यों लिव लागिया, तज मान मोह बिकार साधु, लग तरहु तिन कै पाए, बिनवंत नानक शरण स्वामी, बड़ भाग दर्शन पाए, मिल साधु नित भजह नारायण, रसक रसक स्वामी गुण गायन, गुण गाए जीवह हर अमयो पीवह, जन्म मरना भागे, सतसंग पाईऐ हर त्याईऐ, बहुड़ दुख ना लागे, कर दया दाते पुरख बधाते, संत सेव कमायन, बिनवंत नानक जन तूर बांचह, हर दर्स सहज समायन, सगले जंत भजो गोपालै, जप तप संयम पूरन कालै, नित भजो स्वामी अंतर जामी, सफल जन्म सुबाया, गोविंद गाइयै नित त्याइयै, प्रवान सोई आया, जप ताप संयम हर हर निरंजन, गोविंद धन संग चालै, बिनवंत नानक कर दया दीजै, हर रत्न बंध हो पालै, मंगल चार चोज अनंदा, कर किरपा मिले परमानंदा, प्रभ मिले स्वामी सुखा गामी।

आपे वर्तै सब जगत किया बनजारा सब ज्योत तेरी ज्योति विच करते सब सच तेरा पासारा सब त्यावह तुद सफल से गावह गुरमति हर निरंकारा सब चवहु मुख हो जगन्नाथ जगन्नाथ जग जीवनो जित भवजन पार उतारा सलोक महला चौथा हमरी जेहबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाह हम क्यों कर जप है इयाणिया हर तुम वड अगम।

हर करहो कृपा जग जीवना, गुर सतगुर मेल दयाल, गुर सेवा हर हम पाईया, हर हुआ हर कृपाल, सब आसा मनसा विसरी, मन चूका आल जंजाल, गुर तुठे नाम दरडाया, हम किए शब्द निहाल, जन नानक अतुट धन पाया, हर नामा हर धन माल पौड़ी, हर तुम वड वड्डे वड्डे वड ऊचे, सब ऊपर वड्डे वडौना, जो त्यावे है हर अपरंपर हर हर, हर त्याए हरे ते होना, जो गावे है सुने है तेरा जस स्वामी, तिन काटे पाप कटोना, तुम जैसे हर पुरख जाने मत गुरमत, मुख वड वड भाग वडोना, सब त्याव हो आद सते, जुगाद सते, प्रतख सते।

हर यज्ञ में आगो चर यज्ञ में हर हर मिलिया आए अचिंत हर आपे घट घट वरतदा हर आपे आप बेअंत हर आपे सब रस भोगदा हर आपे कवला कंत हर आपे भिख्या पाएदा सब सिष्ट उपाई जी जंत हर देव दान दयाल प्रभ हर मांग है हर जन संत जन नानक के प्रभ आए मिल हम गाव है हर गुण शंत महला चौथा हर कव सज्जन नाम हर मैं मन तन नाम शरीर सब आसा गुरमुख पूरिया जन नानक सुन हर धीर पौड़ी हरि उत्तम हरिया नाम है हर पुरख निरंजन मौला जो जप दे हर हर दिन सरात तिन सेवे चरण नित कौला नित सार संभाले सब जी जंत हर वसै निकट सब जौला सो बूझै जिस आप बुझाए सी जिस सतगुरु पुरख प्रभ सौला सब गाव हो गुण गोविंद हरे गोविंद हरे गुण गावत गुणी समौला सलोक महला चौथा सुत्या हर प्रभ चेत मन हर सहज समाध समाए जन नानक हर हर चाओ मन गुर तुठा मेले माए महला चौथा हर इकस सेती पिरहड़ी हर इको मेरा चित जन नानक एक आधार हर प्रभ इकस ते गत पत पौड़ी पंचे शब्द वजे मत गुरमत वडभागी अनहद वजिया आनंद मूल राम सब देखिया गुर शब्दी गोविंद गजिया आदि जगाद वेस हर एको मत गुरमत हर प्रभ भजिया हर देव दान दयाल प्रभ जन राखो हर प्रभ लज्जिया सब धन कहो गुर सत गुरु गुर सत गुरु जित मिल हर पड़दा कज्जिया सलोक महला चौथा भगत सरोवर उछलै सुभार भरे वहन जिन्ना सतगुर मन्निया जन नानक वड भाग लहन महला चौथा हर हर नाम असंख हर हर के गुण कथन ना जाहे हर हर अगम अगाद हर जन कित बिद मिलह मलाहे हर हर जस जपत जपंत जन एक तिल नहीं कीमत पाए जन नानक हर अगम प्रभ हर मेल लै हो लड़ लाए पौड़ी हर अगम अगोचर अगम हर क्यों कर हर दर्शन पिखा किस वखर हुए सो वर्णिया तिस रूप ना रिखा जिस बजाए आप बजाए दे सोई जन दिखा सत संगत सत गुर चत साल है जित हर गुण सिखा तन तन सो रसना तन कर तन सो पहधा सत गुरु जित मेरा हर लेखा लिखा सलोक महला चौथा हर हर नाम अमृत है हर जपिए सतगुर पाई हर हर नाम पवित्र है हर जपत सुनत दुख जाय हर नाम तिन्नी आराध्या जिन मस्तक लिखिया तुर पाए हर दरगाह जन पैनाइयन जिन हर मन वसिया आए जन नानक ते मुख उजले जिन हर सुनिया मन पाए महला चौथा हर हर नाम निदान है गुरमुख पाया जाय जिन तुर मस्तक लिखिया तिन सत गुर मिलिया आए तन मन शीतल होया शांत वसी मन आए नानक हर हर चौंदिया सब दालद।

नाम उपजे तृष्णा भुख सब जाए नानक नामे रतिया नामो पल्ले पाई पौड़ी तुद आपे जगते पाए कै तुद आपे वसगत कीता एक मनमुख कर हरायन एक ना मेल गुरु तिना जीता हर उत्तम हर प्रभ नाम है गुरबचन सुभागै लीता दुख दालद सबो लह गया जा नाउ गुरु हर दीता सब सेव हो मोहनो मन मोहनो जग मोहनो जिन जगत अपाए सबो वस कीता श्लोक महला चौथा मन अंतर हो मैं रोग है भ्रम पूले मन मुख दुर्जना नानक रोग बंजाए मिल सतगुर साधु सज्जना महला चौथा मन तन ताम संगारवा।

तारे तुमरे तू बड पुरख पिता मेरा माया रहाउ हर के नाम असंख अगम है अगम अगम हर राया गुणी ज्ञानी सुरत बहु कीनी एक तिल नहीं कीमत पाया गोविंद गुण गोविंद सद गाव है गुण गोविंद अंत ना पाया तू अमित अतोल अपरंपर स्वामी बहु जपिया थाहा ना पाया पुस्तत करह तुमरी जन माधो गुण गाव है हर राया तुम जल निद हम मीने तुमरे तेरा अंत ना कतहु पाया जन को कृपा करहो मधुसूदन हर देव हो नाम जपाया मैं मूर्ख अंधले नाम टेक है जन नानक गुरमुख पाया कल्याण महला चौथा हर जन गुण गावत हसिया हर हर भगत बनी मत गुरमत तुर मस्तक प्रभ लिखिया रहाउ गुर के पग सिमरो दिन राति मन हर हर हर बसिया हर हर हर कीरत जग सारी कस चंदन जस कसिया हर जन हर हर हर लिव लाई सब साकत खोज पया ज्यो किरत संजोग चल्यो नर निंदक पग नागन शोहे जलिया जन के तुम हर राखे स्वामी तुम जुग जुग जन रखिया कहां भया दैत करी बखीली सब कर कर झर परिया जेते जी जंत प्रभ किए सब काले मुख ग्रसिया हर जन हर हर हर प्रभ राखी जन नानक सरन पया कल्याण महला चौथा मेरे मन जप जप जगन्नाथे गुर उपदेश हर नाम ते आयु सब किल बिख दुख लाथे रहाउ रसना एक जस गाए ना साकै बहु कीजै बहु रसनथे बार बार खिल पल सब गाव है गुण कह ना सकह प्रभ तुमंथे हम बहु प्रीत लगी प्रभ स्वामी हम लोचह प्रभ दिखंथे तुम बड़ दाते जी जीयन के तुम जान हो हम बिरथे कोई मार्ग पंथ बतावे प्रभ का कहो तिन कहो क्या दिन थे सब तन मन अर्पो अर्प अरापो कोई मिले प्रभ मिल थे हर के गुण बहुत बहुत बहु सुबा हम तुष कर कर बरन थे हमरी मत वसगत प्रभ तुम रह जन नानक के प्रभ समरथे कल्याण महला चौथा मेरे मन जप हर गुण अकत संथई धर्म अर्थ सब काम मोख है जन पीछे लग फिर थई रहाउ सो हर हर नाम त्यावै हर जन जिस बड़ भाग मथई जह दर्ग है प्रभ लेखा मांगै तह छूटै नाम त्याए थई हमरे दुख बहु जन्म जन्म के दुख हो मैं मैल लग थई गुरतार कृपा हर जल नवाई सब किल विख पाप गथई जन कै हृदय अंतर प्रभ स्वामी जन हर हर नाम पज थई जह अंती अवसर आए बनत है तह राखै नाम साथी जन तेरा जस गाव है हर हर प्रभ हर जपियो जगन थई जन नानक के प्रभ राखे स्वामी हम पाथर रख बुढ़ थई कल्याण महला चौथा हमरी चितवनी हर प्रभ जान और कोई निंद करे हर जन की प्रभता का कहे एक तिल नहीं मान रहाउ और सब त्याग सेवा कर अच्युत जो सब ते ऊच ठाकुर भगवान

कह यहाँ की भगत मेरा प्रभ मान हर के चोज वडान देख जान जो खोटा खरा एक निमख पछान ताते जान को आनंद भया है।

हम बारिक मुग्ध ज्ञान पिता समझावेंगे सुत खिन खिन भूल बिगार जगत पित पावेंगे जो हर स्वामी तुम देहो सोई हम पावेंगे मोहे दूजी नाहीं ठौर जिस पह हम जावेंगे जो हर पावे भगत

हल मकरंद चरण कमल सियो मन फेर फेर रीजै रहाओ आन जलास्यो काज न कछु है हर बूंद चातरक कौ दीजै बिन मिलवे नाही संतोखा।

परस रे परस परस गुण गाइए नानक तत तत स्यों मिलिए हीरे हीर बेधाइए कल्याण महला पंजवा मेरे लालन की शोभा साधन।

न सर्वन सुनिय अंग अंगे सुख प्राण रहाव। इते उत दह दिस रवयु मेर तिन है समान। जात कता तत पेखीय हर पुरख पत प्रधान। साध संग भ्रम भय मिटे कथे नानक ब्रह्म ज्ञान। कल्याण महला पंजवां गुण नाद धुन आनंद बेद। कथत सुनत मुन जना मिल संत मंडली रहाउ। ज्ञान ध्यान मान दान मन रसक रसन नाम जपत। एह पाप खंडली जोग जुगत ज्ञान भुगत। सुरत शब्द तत बेते जप तप अखंडली। ओत पोत मिल जोत नानक कछु दुख ना डंडली। कल्याण महला पंजवां कौन बिद ता की कहां करूं। धरत ध्यान ज्ञान शस्त्र गया अजर पद कैसे जरूं रहाउ। बिशन महेश सिद्ध मुन इंदरा कै दर सरन परु। काहू पहराज काहू पह सुरगा कोट मधे मुक्त कहूं। कहो नानक नाम रस पाई साधु चरण गहू। कल्याण महला पंजवां प्राण पत दयाल पुरख प्रभ सखे। गर्भ जून कल काल जाल दुख बनासना।

जुगत अलक सुख हर भगत लवै ना लावनो प्रभ दर्श लुभद दास नानक बहुड़ जोन ना धामनो कल्याण महला चौथा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद रामा राम रामो सुन मन भीजै हर हर नाम अमृत रस मीठा गुरमत सहजे पीजै रहाउ काष्ट मह ज्यो है बै संतर मत संयम काढ़ कढ़ीजै राम नाम है जोत सबाई तत गुरमत काढ़ लीजै नौ दरवाज नवे दर फीके रस अमृत दसवें चुईजै किरपा किरपा किरपा कर प्यारे गुर शब्दी हर रस पीजै काया नगर नगर है नीको विच सौदा हर रस कीजै रतन लाल अमोल अमोलक सतगुर सेवा लीजै सतगुर अगम अगम है ठाकुर।

लाल लाल है रंगन, मन रंगन कौ गुर दीजै। राम राम राम रंग राते, रस रसक घटक नित पीजै। वसुधा सप्त दीप है सागर, कड कंचन काड तरीजै। मेरे ठाकुर के जन इन्हो ना बांछ है, हर मांग है हर रस दीजै। साकत नर प्राणी सद भूखे, नित भूखन भूख करीजै। तावत ताए तावह प्रीत माया, लख कोसन को बिथ दीजै। हर हर हर हर हर जन उत्तम, क्या उपमा तिन दीजै। राम नाम तुल और ना उपमा, जन नानक कृपा करीजै। कल्याण महला चौथा, राम गुर पारस परस करीजै। हम निर्गुणी मनूर अत फीके, मिल सत गुर पारस की जय रहाओ। सुर्ग मुक्त बैकुंठ सब बंच है, नित आसा आस करीजै। हर दर्शन के जन मुक्त ना मांग है, मिल दर्शन तृप्त मन तीजै। माया मोह सबल है भारी, मोह कालक दाग लगीजै। मेरे ठाकुर के जन अलिपत है मुक्ते, ज्यों मरगाई पंक ना पीजै। चंदन वास पुयंगम वेड़ी, किव मिलिया चंदन लीजै। काड खड़ग गुर ज्ञान करारा, बिख छेद छेद रस पीजै। आन आन समदा बहु कीनी, पल बै संतर पसम करीजै। महा उगर पाप साकत लर कीने, मिल साधु लूकी दीजै। साधु साध साध जननी के, जिन अंतर नाम तरीजै। परस न परस भय साधु जन, जन हर भगवान दिखीजै। साकत सूत बहु गुर जी भरिया, क्यों कर तान तनीजै। तंत सूत किस निकसै नाही, साकत संग ना कीजै। सतगुर साध संगत है नीकी, मिल संगत राम रवीजै। अंतर रतन जवे हर मानक, गुर कृपा ते लीजै। मेरा ठाकुर वड्डा वड्डा है स्वामी।

साध जननी के मिल साधु हर रंग की जय रहाओ। जीव जंत सब जग है जेता मन डोलत डोल करी जय। कृपा कृपा कर साध मलावहु जग थमन को थम दीजै। बसदा तलै तलै सब ऊपर मिल साधु चरण रलीजै। अति उत्तम अति उत्तम हो वो सब सिष्ट चरण तल दीजै। गुरमुख जोत भली सिवनी की आन पानी सकत परीजै। मैन दंत निकसे गुर बचनी सार चब चब हर रस पीजै। राम नाम अनग्रह बहु किया गुरु साधु।

तोल राम नाम है गुरमत को पूजै ना तोलत लीजै तब गुण ब्रह्म ब्रह्म तू जान है जन नानक सरन परिजै तू जल निध मीन हम तेरे कर कृपा संग रखीजै कल्याण महला चौथा रामा राम रामो पूज करीजै मन तन अर्प धरो सब आगै रस गुरमत ज्ञान दृढ़ीजै रहाउ ब्रह्म नाम गुण साखत रोवर नित चुन चुन पूज करीजै आत्म देव देव है आत्म रस लागै पूज करीजै विवेक बुद्ध सब जग मह निर्मल बिचर बिचर रस पीजै गुर प्रसाद पदार्थ पाया सतगुर को एहो मन दीजै निर्मोलक अत हीरो नीको हीरे हीर बदीजै मन मोती साल है गुर शब्दी जित हीरा परख लीजै।

गुर सत सत कर मान तिस आगे काज तरी जय संतो सुनो सुनो जन पाई गुर काढ़ी बाहां को कीजै जे आत्म को सुख सुख नित लोड़ो ता सतगुर शरण पवीजै जे वड भाग होए अतनीका ता गुरमत नाम दृढ़ीजै सब माया मोह बिखम जग तरीय सहजे हर रस पीजै माया माया के जो अधकाई विच माया पचै पचीजै अज्ञान अंधेर महापंथ बिखड़ा अहंकार भार लग

तेरा नाम दारू अवर नासत करन हार अपार रहाउ पताल पुरियां एक पार हो वह लाख करोड़।

एक वार। प्रभाती महला पहला जय कारण वेद ब्रह्म उच्चरे शंकर छोड़ी माया जय कारण सिद्ध भये उदासी देवी मर्म ना पाया। बाबा मन साचा मुख साचा कहिए तरिय साचा होई

कहो ना कहो, जम की तलब ना होई, प्रभाती महला पहला, जां कै रूप नाही जात नाही, नाही मुख मासा, सतगुर मिले निरंजन पाया, तेरे नाम है।

शिव जोत कन्नो बुद्ध पाई सत गुरु रखवाला जाकै बरत नाही नेम नाही नाही बकबाई गत अवगत की चिंत नाही सत गुरु फुरमाई जाकै आस नाही निरास नाही चित सुत समझाई तंत को परम तंत मिलिया नानका बुद्ध पाई प्रभाती महला पहला ताका कहया दर परवान बिख अमृत दोहे सम कर जान क्या कही है सर्बे रहया समाय जो किछ वरतै सब तेरी रजाय रहाउ प्रगटी जोत चूका भवान सतगुरु दिया अमृत नाम।

मत मैल हरे सतगुर पाए पूरा नावण पशु परे तो देव करे रत्ता सच नाम तल हील सो गुर परमल कही है जाकी वास बनास पत सौर तास चरण लिव रही है गुरमुख जी प्राण उपज है गुरमुख शिव घर जाई है गुरमुख नानक सच समाई है गुरमुख निज पद पाई है प्रभाती महला पहला गुर प्रसादी विद्या विचार है पढ़ पढ़ पावे मान आपा मदे आप परगासिया।

रहाउ। पंच तस्कर तावत राखी, चूका मन अभमान, दिष्ट विकारी दुर्मत भागी, ऐसा ब्रह्म ज्ञान। जत सत चावल दया कणक कर, प्राप्त पाती तान, दूध कर्म संतोख कियो कर, ऐसा मांगो दान। हिमा तीर्ज कर गौ लवेरी, सहजे बछरा खीर पिए, सिफत शर्म का कपड़ा मांगो, हर गुण नानक रवत रह। प्रभाती महला पहला, आवत किने ना राखिया,

जाए। जो किछ करहै सोई पर होए बा, अवरना करना जाय रहाउ। जैसे हरहट की माला टिंड लगत है, एक सखनी होर फेर भरियत है। तैसो ही एहो खेल खसम का, ज्यों उसकी वडियाई। सुरती कै मार्ग चल कै उल्टी नदर पर गास्ती, मन विचार देख ब्रह्म ज्ञानी। कौन गिरही कौन उदासी, जिसकी आसा तिस ही सौंप कै एहो रहया निर्वाण। जिसते हो आसोई कर मानिया, नानक गिरही उदासी सो प्रवान। प्रभाती महला पहला, दिष्ट बिकारी बंधन बंद है, हौ तिस कै बल जाई। पाप पुन की सार ना जाने, भूला फिरै अजाई। बोलो सच नाम करता।

ता को समझावण जाइए जे को भूला होई आपे खेल करे सब करता ऐसा बूझे कोई नाओ प्रभात है शब्द ते आई है छोड़ हो दुनी परिता प्रणवत नानक दासन दासा जग हारिया तिन जीता। प्रभाती महला पहला मन माया मन ताया मन पंखी आकाश तस्कर शब्द निवारिया नगर बुठा साबास जा तू राख।

मन जोगी मन भोगिया मन मूर्ख गावार मन दाता मन मंगता मन सिर गुर करतार पंच मार सुख पाया ऐसा ब्रह्म विचार घट घट एक वखाणी है

जात जन्म नह पूछी है सच घर लेहो बताई सा जात सा पत है जेहे कर्म कमाए जन्म मरण दुख काटिए नानक छूट सुनाई प्रभाती महला।

दुख संभाले सुख दुख पुरब कमाई कर्महीन सच भीख्या मांगे नानक मिले वडाई प्रभाती महला पहला मस्त करूं मूर्ख जग कहिया।

जिसनो नजर करे सोई बिद जाने, मैं मैलो उजल सच सोए, उत्तम आख ना उच्चा होए, मनमुख खूल महा बिख खाए।

कहावे सोई। प्रभाती मोहल्ला पहला खाया मैल बधाया पेंद घर की हान बक बक वाद चलाया बिन नावे बिख जान। बाबा ऐसा बिकम जाल मन वासिया बिबल झाग सहज प्रगासिया रहाऊ। बिख खाना बिख बोलना बिख की कार कमाए जम दरबादी मारी है छूटस साच नाय। जिव आया तिव जाए सी किया लिख ले जाए। मन मुख मूल गवाया दरगाह मिले सजाए। जग खोटो सच निर्मलो

जर चरै अमर आनंद स्वरूप नानक जल को मीन सै थे पावै राखो प्रीत प्रभाती महला पहला गीत नाद हरक चतुराई।

शब्द समाहे प्रभाती महला तीजा गुरमुख हर जियो सदा त्याहु जब लग जी प्राण गुर शब्दी मन निर्मल हुआ चूका मन अभमान सफल जन्म तिस प्राणी केरा हर कै नाम समान मेरे मन गुर की सिख सुनी जै हर का नाम सदा सुख दाता सहजे हर रस पीजै रहाऊ मूल पछाणन तिन निज घर वासा सहजे ही सुख होई गुर कै शब्द कमल परगासिया हम मैं दुर्मत खोई सबना मह एको सच वरतै बिरला बूझै कोई गुरमति मन निर्मल हुआ अमृत तत्व खाने हर का नाम सदा मन वसिया विच मन ही मन माने सद बलिहारी गुरे अपने बिटो जित आत्म राम पछाने मानस जन्म सतगुरु ना सेविया बिरथा जन्म गवाया नदर करे ता सतगुर मेले सहजे सहज समाया नानक नाम मिले वडियाई पूरे भाग त्याया प्रभाती महला तीजा आपे भांत बनाए बहुरंगी।

तम हृदय अंतर पायो गुरमंत दियो हर कान रहाओ। आवहु संत मिलो मेरे पाई मिल हर हर नाम बखान। कित बिद क्यों पाइय प्रभ अपना मोको करहो उपदेश हर दान। सत संगत मह हर हर वसिया मिल संगत हर गुण जान। वड्डे भाग सत संगत पाई गुर सत गुर परस भगवान। गुण गाव है प्रभ अगम ठाकुर के गुण गाए रहे हैरान। जन नानक को गुर कृपा तारी हर नाम दियो खिन दान। प्रभाती महला चौथा उगवे सूर गुरमुख हर बोल है सब रैन संभाल है हर गाल। हमरे प्रभ हम लोच लगाई हम करह प्रभु हर पाल। मेरा मन साधु धूर रवाल हर हर नाम दरडायो गुर मीठा। गुर पग चार है हम बाल रहाओ साकत को दिन रैन अंधारी मोहे फाथे माया जाल। खिन पाल हर प्रभ हृदय ना वस्यो रिन बांधे बहु विदबाल। सत संगत मिल मत बुद्ध पाई हौ छूटे ममता जाल। हर नामा हर मीठ लगाना गुर किए शब्द निहाल। हम बारिक गुर अगम गुसाई गुर कर कृपा प्रतपाल। बिख पौ जल डुब दे काड लेहो प्रभ गुर नानक बाल गोपाल। प्रभाती महला चौथा एक खिन हर प्रभ कृपा तारी गुण गाए रस कर सीक। गावत सुनत दो पय मुक्ते जिन्ना गुरमुख खिन हर पीक। मेरा मन हर हर राम नाम रस पीक। गुरमुख नाम शीतल जल पाया हर हर नाम पिया रस चीक रहाओ। जिन हर हृदय प्रीत लगानी तिन्ना मस्तक उजल टीक। हर जन सोभा सब जग ऊपर जो विच उडवा सस कीक। जिन हर हृदय

बेपास पड़ताल महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जप मन हर हर नाम निदान हर दरगाह पावह मान जिन जपया ते पार प्राण रहाओ सुन मन हर हर नाम कर ध्यान सुन मन हर कीरत अठ

साध संगत में बसे गोपाल, गुर मिल आए तुमरे द्वार, जन नानक दर्शन देहु मरार, प्रभाते महला पंजवा, प्रभ की सेवा जन की शोभा, काम क्रोध मिटे तिस लोभा, नाम तेरा जन कै भंडार।

कै रंग तिन सुख पाया प्रभ कै संग जिस रस आया सोई जानै पेख पेख मन मह हैरानै सो सुखिया सब ते उत्तम होए जा कै हृदय वस्या प्रभ सोए सोई निश्चल आवै ना जाए अन दिन प्रभ के

सेवा, नानक उदर है जन की सेवा। प्रभाती महला पंजवा, गुण गावत मन हुए आनंद। आठ पहर सिमरो भगवंत, जाके सिमरन कल मल जाहे। तिस गुर की हम चरनी पाहे, समत देव हो।

अपना प्रभु ते आई है, आठ पहर पार ब्रह्म ते आई, सदा सदा गुण गाया, कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ, पार ब्रह्म गुर पाया, प्रभाती महला पंजवा, सिमरत नाम किल बिख सब नास्ती,

होई। सदा सदा प्रभ जी कै संग उतरी मैल नाम कै रंग चरण कमल सिंह लागो प्यार बिनसे काम क्रोध अहंकार प्रभ मिलन का मार्ग जाना पाए भगत हर

गुरपूरा पाइया वडभागी निर्मल पूर्ण रीत रहाउ पाया लाभ बजी वधाई संत प्रसाद हर

अहंकार नानक गुरमुख उतरह पार प्रभाती महला पंजवा गुर पूरा पूरी ताकी कला गुर का शब्द सदा।

वहां चरण पूजारी मुख उज्जल साचे दरबारी जिस मस्तक गुर तरिया हाथ कोट मदे को विरला दास जल थल मैयल पेख भरपूर नानक उदरस तिस जन की तूर प्रभाती महला पंजवा कुरबान जाई गुरपूरे अपने जिस प्रसाद हर हर जप जपने रहाउ अमृत बाणी सुनत निहाल बिनस गए बिखिया जंजाल साच शब्द स्यों लागी प्रीत हर प्रभ अपना आया चीत नाम जपत हुआ प्रगास गुर शब्दे की नारदय निवास गुर समरथ सदा दयाल हर जप जप नानक पय निहाल प्रभाती महला पंजवा।

मिल भया प्रगास, हर हर जपत पूर्ण भई आस, सर्ब कल्याण सुख मन बूठे, हर गुण गाए गुरु नानक तूठे, प्रभाती महला।

काम क्रोध अहंकार बिनसै लगै कै प्रीत रहाउ। नाम लागै दुख भागै शरण पालन जोग। सतगुर भेटै जम ना तेटै जिस तुर होवै संजोग। रैन दिन सत्याए हर हर तजहो मन के परम। साध संगत हर मिलै।

लोभ मोह बिन सजाए अहंताप रहाउ। आप त्याग संत चरण लाग मन पवित्र जाहे पाप। नानक बारक कछु ना जानै

फुल बंद ना पाया, सतगुर राखे नाम दिरडाया, ना मन मरे ना माया मरे, जिन किश किया सोई जाने, शब्द विचार भव सागर तरे, रहाउ माया संच राजे अहंकारी, माया साथ ना चले प्यारी, माया ममता है बहुरंगी, बिन नावे को साथ ना संगी।

नानक खोज लह जन कोई प्रभाती महला पहला माया मोहे सगल जग छाया कामन देख काम लुभाया सुत कंचन सिंह हेत बधाया सब किसे अपना एक राम पराया ऐसा जाप जपो जप माली दुख सुख पर हर भगत निराली रहाउ गुण निदान तेरा अंत ना पाया साच शब्द तुझ माहे समाया आवा गौण तुद आप रचाया से भगत जिन सच चित लाया ज्ञान ध्यान नरहर निर्बाणी बिन सतगुरु भेटे।

राम मन वसाई विषम बनोद रहे परमादी गुरमत मानिया एक लिव लागी देख नवारिया जल मह आगी सो बूझै होवै बड़ भागी।

हंग करन है खसम ना पावे साध बिन नावे होर कमावना फिक्का आवे साध दुष्टि सभा विगुती है बिकवाती जीवन बाद ए ब्रह्म भूले मरो ना कोई सतगुर सेव सदा सुख होई बिन सतगुर

सरनाई मन मुख मुगदे आगे चीते नाही दुख लागे पछताई आपे करे कराए करता जिन एह रचना रचिया हर अभमान ना जाई जियो अभमाने पै पचिया भुलण विच किया सब कोई करता आप ना भुले नानक सच नाम निस्तारा को गुर प्रसाद अकुले प्रभाती महला पहला आखना सुनना नाम आधार धंधा चुक गया बेकार ज्यों मनमुख दूजे पत

इस मन माया मोहे बनास, तुर हुक्म लिखिया ता कहिए कास, गुरमुख विरला चीनै कोई, नाम बिहु नाम मुक्त ना होई, ब्रह्म ब्रह्म डोले लख चौरासी, बिन गुर बूझे जम की फासी, एहो मनुआ खिन खिन ऊब पयाल, गुरमुख छूटै नाम समाल, आपे सदे ढिल ना होई, शब्द मरै सहला जीवै सोई, बिन गुर सूझ

हर जस कर्म धर्म पथ पूजा, काम क्रोध अग्नि मैं पूजा, हर रस चाखिया तो मन पीजा, प्रणवत नानक अवर ना दूजा, प्रभाती महला पहला, राम नाम जप अंतर पूजा, गुर शब्द विचार अवर नहीं दूजा, एको रव रहया सब ठाई, अवर ना दिसै किस पूज चढ़ाई, रहाउ मन तन आगे जीअड़ा तुझ पास, ज्यो पावै त्यो रखो अरदास, सच जिहवा हर रसन रसाई, गुरम

ना पाई। प्रभाती महला पहला, एक तोर बख्श लए गुरपूरे, सच्ची बणत बनाई। हर रंग राते सदा रंग साचा, दुख बिसरे पत पाई। झूठी दुर्मत की चतुराई, बिन सतबार न लागे काई। रहाओ मनमुख को दुख दर्द व्यापस, मनमुख दुख ना जाई। सुख दुख दाता गुरमुख जाता, मेल लए सरनाई। मनमुख ते अब भगत ना होवस, हौ मैं पचै दीवानी। इह मनुआ खिन ऊब पयाली, जब लग शब्द ना जाने। भूख प्यासा जग भया, तिप्त नहीं बिन सतगुर पाई। सहज सहज मिले सुख पाईए, दरगाह पैंदा जाई। दरगाह दाना बिना एक आपे, निर्मल गुर की बाणी। आपे सुरता सच विचारस, आपे बूझे पद निर्वाणी।

बचकाया। नाम रते तीर्थ से निर्मल दुख हो मैं मैल चुकाया। नानक तिनके चरण पखाले जिन्ना गुरमुख साचा पाया।

सच्ची भगत सच्चा हर मंदर प्रगटी साची सोए रहाव। हर मंदर हो शरीर है ज्ञान रतन प्रगट होए। मन मुख मूल ना जाननी मानस हर मंदर ना होए। हर मंदर हर जियो साजे।

जन निर्मल हर कै नाम समाई हर मंदिर हर का हाट है रखिया शब्द सवार तिस विच सौदा एक नाम गुरमुख लैन सवार हर मंदिर मह मन लोहट है मोहया दूजै पाई पारस भेटिया कंचन भया कीमत कही ना जाई हर मंदिर मह हर वसै सर्ब निरंतर सोई नानक गुरमुख वणजीऐ सच्चा सौदा होई प्रभाती महला तीजा पै पाए जागे से जन जागरण करह हउ मैं मैल उतार सदा जाग है कर अपना राख है पंच तस्कर का डह मार मन मेरे गुरमुख नाम ते आय जित मार्ग हर पाई है मन से ही कर्म कमाए रहाओ गुरमुख सहज तुन उपजै दुख हो मैं विचों जाय हर नामा हर मन वसै सहजे हर गुण गाय गुरमती मुख सोहणे हर राखिया उर तार ऐतै उतै सुख घणा जप हर हर उतरे पार हो मैं विच जागरण ना होवई हर भगत।

बिस्ता राती, मर जम्मह हुही खुआर। जिनको सतगुर पीटिया, तिन्ना विटोहो बल जाऊं। इनकी संगत मिल रहा, सच्चे सच समाऊं। पूरे भाग गुर पाई है, उपाय किते ना पाया जाई। सतगुर ते सहज उपजे, हों मैं शब्द जलाई। हर सरनाई भज मन मेरे, सब किछ करने जोग। नानक नाम ना विसरे, जो किछ करे सो होग। बेपास प्रभाती महला पंजवा अष्टपदियां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मात पिता भाई सुत बनता, चूगह चोग आनंद सिंह जुगता।

टेक एक सकी सिर छाह वद पुरख स्वामी रहाउ छल नागन स्यो मेरे टूटन होई गुर कहया एह झूठी तोही मुख मीठी खाई कौराय अमृत नाम मन रहया अघाई लोभ मोह स्यो गई विखोट गुर कृपाल मोहि कीनी छोट एह ठगवारी बहुत कर गाली हम गुर राख लिए कृपाली काम क्रोध स्यो ठाट न बनिया गुर उपदेश मोहे कानी सुनिया जह देखो तह महा चंडाल राख लिए अपने गुर गोपाल दस नारी मैं करी दुहागन गुर कहया ए रसै बिखागन इन संबंधी रसातल जाई हम गुर राखे हर लिबलाय अहम मेव स्यो मसलत छोड़ी गुर कहया एह मूरख होड़ी एह नी कार कर कहीं ना पाई हम गुर राख लिए लिवलाय इन लोगन स्यो हम पये बैराई एक ग्रह मह दोए ना खटाई आए प्रभ पह अंचर लाग करहु तपावस प्रभ सरबाग।

तेरा पाना, जो इव बूझै सो सहज समाना। कहत कबीर किल बिख गए खीना, मन भया जग जीवन नीना। प्रभाति अल्लाह एक मसीत बस्त है, अवर मुल्क किस केरा। हिंदू मूरत नाम निवासी, दोहो मह तत ना हेरा। अल्लाह राम जीवो तेरे नाई, तू कर मेहरामत साई रहाउ। दक्षण देश हरी का बासा, पश्चिम अल्लाह मकामा।

कहे निदाना, कहां उड़ीसे मज्जन किया, क्या मसीत सिर नाए, दिल में कपट निवाज गुजार, क्या हज का पै जाए, एते औरत मर्दा साजे, ए सब रूप तुम्हारे, कबीर पुंगरा राम अल्लाह का, सब गुर पीर हमारे, कहत कबीर सुनो नर नरवे, पर हो एक की सरना, केवल नाम जपो रे प्राणी, तब ही निश्चय तरना, प्रभाती अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे, लोगा परम ना पूलो पाई, खालक खलक खलक मह खालक, पूर रहो सब ठाई रहाउ, माटी एक अनेक भांत कर, साजी साजन हारे, ना कछ पोच माटी के भांडे, ना कछ पोच कुंभारे,

कही है सोई। अल्लह अलख न जाई लखिया गुर गुर दीना मीठा। कह कबीर मेरी शंका नासी सर्ब निरंजन दीठा। प्रभाती बेद कतेब कहो मत झूठे झूठा जो ना बिचारे। जो सब मह एक खुदाए कहत हो तो क्यों मुर्गी मारे। मुल्ला कहो न्याओ खुदाई तेरे मन का भरम ना जाई रहा। पकर जियो आनिया दे बिनासी माटी को बिस्मिल किया। ज्योत स्वरूप अनाहत लागी कहो हलाल क्या किया। क्या उजू पाक किया मुंह तोहया क्या मसीत सिर लाया। जो दिन में कपट नवाज गुजार हो क्या हज का बह जाया। तू ना पाक पाक नहीं सूझिया तिसका मर्म ना जानिया। कह कबीर पिस्त ते चूका दोजक स्यो मन मानिया। प्रभाती सुन संध्या तेरी देव देवाकर अदपत आद समाई। सिद्ध समाद अंत नहीं पाया लाग रहे सरनाई। लेहो आरती हो पुरख निरंजन सतगुर पूजो पहाई। ठाढ़ा ब्रह्मा निगम बीचार अलख ना लखिया जाई रहाओ। तत तेल नाम किया बाती दीपक दे उजियारा। ज्योत लाए जगदीश जगाया बूझे बूझनहारा। पंचे शब्द अनाहद बाजी संगे सारिंग पानी। कबीर दास तेरी आरती कीनी निरंकार निर्बाणी।

हुक्म है आपे निरपहु समत बीचारी जो जन जान भजह पुरखोत्तम ताकी अवगत बाणी नामा कह जग जीवन पाया हृदय अलख बिडाणी प्रभाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग ताका अंत ना जानिया सर्व निरंतर राम रहिया रव ऐसा रूप बखानिया गोविंद गाजय शब्द बाजय आनंद रूपी मेरो रामैया रहाउ बावन भीखू बन भीखे बास ते सुख लागेला सर्वे आद परमलाद काष्ट चंदन पहला तुम चे पारस हम चे लोहा संगे कंचन पहला तू दयाल रतन लाल नामा साच समायला प्रभाती अकुल पुरख एक चलते उपाया काट काट अंतर

बिखियन स्यों अत लुभान, मत नाहिन फेरी रहाउ, मानस को जन्म लीन, सिमरन नह निमुख कीन, दारा सुख पयो दीन, पगहों परी बेरी, नानक जन कह

पहला पढ़ पुस्तक संध्या बादं सिल पूजस बगल समाधं मुख झूठ बेभूखन सारं त्रैपाल तिहाल विचारं गल माला तिलक लाटं दोय धोती बस्तर कपाटं जो जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट निश्चय कर्मं कहो नानक निश्चौ त्यावै बिन सतगुर बाट ना पावै निःपलंग तस्य जन्म से जावद ब्रह्म ना बिंदते।

कारण करते वस है जिन काल रखी धार। योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ता ब्राह्मण है, क्षत्रिय शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृत है, सर्व शब्दं ता एक शब्दं

पुरुख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद कतंच माता कतंच पिता कतंच बनता विनोद सुत कतंच प्रात मीत हित बंधव कतंच मोह कटंबयते कतंच चपल मोहनी रूपं पेखंते त्यागं क्रोत रहंत संग भगवान सिमरन नानक लभदेह अचुत तन है किरगंत मात पिता स्नेह त्रिग स्नेह प्रात बांध वह त्रिग स्नेह बंता बलास सुत है त्रिग स्नेह गिरहार्थ कह साध संग स्नेह सत्यं सुखियं बसंत नानक है मिथ्यंत देहं खिणंत बलनं बरदंत जरुआ हित्यंत माया अत्यंत आसा अथित्य पवनं गनंत स्वासा पयान धर्मं पतंत मोह कूप दुर्लभ्य देहं तात आश्रयं नानक गोविंद गोविंद गोविंद गोपाल कृपा काच कोटं रचंत तोयं लेपनं रक्त चरमण है नमंता द्वारं पीत रहतं बाय रूपंग असथंभ नह गोविंद नामंग नह सिमरंत अज्ञानी जानंत अस्त्रिं दुर्लभ दे उदरंत साध सरन नानक हर हर हर हर हर हरे जपंत सुभंत त्वं अच्युत गुणज्ञं।

संत बदक परिहारेण लख्या आवदै अहो जस्या रखेण गोपाल है नानक रोम ना छेदयति बहु जतन करता बलवंत कारी सेवंत सूरा चतुर दिसह बिकम थान बसंत उच्चह नह सिमरंत मरण कदांचह होवंत आग्या भगवान पुरख है नानक कीती सास अकरखते शब्दं रतं हितं मया कीर्तं कली कर्म कृत्व मिटंत तत्रागत परम मोहं भगवान रमणं सर्वत्र थान्यं दृष्ट त्वं अमोघ दर्शनं बसंत साध रसना हर हर हर हरि नानक प्रियं जाप जपना कटंत रूपं कटंत दीपं कटंत राव सस्यर नखियतर गगनं कटंत बसदा गिर तर से खंडं कटंत ललना सुत प्रात ही तं कटंत

वरतंत बनासनं गोविंद भजन साध संगेन अस्त्रिं नानक भगवंत भजनासनं किरपंत हरियं मत तत ज्ञानं बख्शी देह बुधा कुशल थानं बसे अंतरिक्षं त्याग मानं शीतलंत हृदयं दृढ़ संत ज्ञानं रहंत जन्मं हर दर्श लीना बाजंत नानक शब्द बीना कहंत बेदा गुणंत गुनिया।

परवित माया संबंध न है, दयाल एक भगवान पुरख है, नानक सर्ब जी प्रतपालक है, अनित्य है वितंग अनित्य है चितंग।

एक जठरागन नह सिमरंत मलीन बुद्धि हं हे गोविंद करत माया नानक पतत उदारन साध संग मह गिरंत गिर पतत पतालंग जिलंत दे दीपिया बैसवांतर है बहंत अगाहा तोयं तरंगं दुखंत ग्रह चिंता जन्मं तामरन है अनक साधन ना सिद्ध्यते नानक अस्थंबं अस्थंबं अस्थंबं शब्द साध स्वजन है कोर दुखियं अनक हत्यं जन्म दारिद्रं महाबिख्यादं मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक काष्ट पसमं करोत अंधकार सिमरत प्रकाशं गुण रमंत अग खंडन है रिद बसंत भय भीत दूत है कर्म करत महा निर्मल है जन्म मरण अरहंत सरोता सुख समूह अमोग दर्शन है शरण जोगं संत प्रिय नानक सो भगवान खेमं करोत पाशं क्रोत अग्रणी वह निरासंग आस पूर्ण है निर्तन भयं तनवंत है रोगियं रोग खंडन है भगत्यं भगत दानं राम नाम गुण कीर्तन है पार ब्रह्म पुरख दाता है नानक गुर सेवा क्यं न लभ्यते अतरंग तरंग धारण है निरतनंग धन नाम नरहर है अनाथ नाथ गोविंद है बालहीन बल केशव है सर्वभूत दयाल अचुत दीन बांधव दामोदर है सर्वज्ञ पूर्ण पुरख भगवान है भगत वचल करुणामय घट घट बसंत वास देव है पार ब्रह्म परमेश्वर है जा चंत नानक कृपाल प्रसादं नह बिसरंत नारायण है नह समरथं नह सेवकं नह प्रीत परम पुरखोत्तमं ताव प्रसाद सिमरते नामं नानक कृपाल हर हर गुरं भरण पोखण करंत जिया विश्राम साधन देवंत दानं सिरजंत रतन जन्म चतुर चेतन है वर्तंत सुख आनंद प्रसाद है सिमरंत नानक हर हर हरि अनित्य है रचना निर्मोहते दानं परापूर्वेण पूचन्ते महीपते विपरीत बुद्धिं मार्त लोक है नानक चिरंकाल दुख भोगते।

संत ना त्रिप्यति सहनशील संतं सममित्रस्य दुर्जनः नानक भोजन अनक प्रकारेण निंदक आवद होए उपतिष्ठते तिरस्कार नह पवंत नह पवंत मान भंग नह सोबाहीन नह पवंत नह पोहंत संसार दुख नह गोविंद नाम जपंत मिल साध संग।

शब्द है गुण गोबिंद रमण कोट गुर शब्द कर चरमण है अरुणते अश्वरथ लाग है बुझंते प्रभ मार्ग है विचरते निर्भयं सत्र सेना तायंते गोपाल कीर्तन है जितते विश्व संसार है नानक वस्यं क्रोत पांच तस्कर है मृग तृष्णा गंधर्व नगरं द्रुम छाया रच दुर्मत है ततः कुटंब मोह मिथ्या सिमरंत नानक राम राम नाम है नच विद्या निदान निगमं नच गुणज्ञ है नाम कीर्तन है नच राग रतन

जीहि पणिज्यो उत्तम सलोक उदरण नैन नंदनी गुरमंत्रहीनस्य जो प्राणी तिरगंत जन्म प्रष्टन है कुकर है सुकर है गर्द बह काक है सर्पन है तुलखल है चरनार बिंद भजनं हृदयंग नाम धारण है कीर्तनं साध संगीन नानक नह दृष्टंत जम दूतन है नच दुर्लभंग धनंग रूपं नच दुर्लभंग स्वर्ग राजन है नच दुर्लभंग भोजनंग बिंजनंग नच दुर्लभंग स्वास अंबर है नच दुर्लभंग सुत मित्र प्रात बांधव नच दुर्लभंग बनता बिलास है नच दुर्लभ

जत कतह ततह दृष्टं स्वर्ग मर्त पयाल लोकह सर्वत्र रमण गोविंद है नानक लेप शेप ना लिप्यते विख्या पयंत अमृतं दृष्टां सखा सुवजन है दुखियं पयंत सुखियं तय पीतंगता निर्भय है थान विहून विश्राम नामं नानक कृपाल हर हर गुर है सर्वशील ममंग शीलं सर्व पावन मम पावन है सर्व कर्तव्य ममंग कर्ता नानक लेप छेप ना लिप्यते नह शीतलं चंदर देव है नह शीतलं बावन चंदन है नह शीतलं शीत रुतेन नानक शीतलं साध सुवजन है मंत्रं राम राम नामं ज्ञानं सर्वत्र पूर्ण है ज्ञानं सम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वैरण है दयालं सर्वत्र जिया पंच दुख विवर्जित है भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रहत है उपदेशं सम मित्र सत्र है भगवंत भगत भावनी पर निंदा नह स्रोत श्रवणं आप त्याग सगल रेणु कह खट लखियं पूर्णं पुरख नानक नाम साध सुवजन है अजापो गंत कांड मूलं।

रमण सील परमेश्वर है, करण कारण समर्थ है, दान देत प्रभु पूर्ण है, निराश आस करण सगल अर्थ आलिय, गुण निधान सिमरंत नानक सगल जाचंत जाच कह, दुर्गम स्थान सुगम महादुख सर्व सूखण है, दुर्वचन भेद भरम साकत पिसनं ता सुरजन है, अस्थितं सोग हरखं पै खीनं ता निर्भवै है, पै अत्मियं महानगर बासं धर्म लखियन प्रभमय, साध संगम राम राम रमणं शरण नानक हर हर दयाल चरणं, हे अजित सूर संग्रामं हत बलना बहुमर्दन है, गण गंधर्व देव मनुखियं पास पंखी बमोहन है, हर करण हारं नमस्कारं शरण नानक जगदीश्वर है, एकामं नरक विश्रामं बहुजोनी परमावन है, चित हरनं त्रैलोक गम्यं जप तप सील बदारन है, अल्प सुख अवित चंचल ऊच नीच समावन है।

कदंच करुणा न उपर्जते विखियंत जीवं वस्यं क्रोत नृत्यं क्रोत जथा मर्कट है अनक शासन ताड़ंत जमदूत है तब संगे अदमंग नर है दीन दुख भंजन दयाल प्रभ नानक सर्ब जी रखिया करोत हे लोबा लंपट संग सिर मोर है अनक लहरी कलोलते तावंत जिया बहु प्रकार अनक भांत बहु डोलते नच मित्रं नच इष्टं नच बांधो नच मात पिता तब लज्जिया अकरणं क्रोध अखाद्य है खाद्यं असाद्यं।

दृढ़ंत अनक माया बस्तीर नह आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगण है ब्रह्म प्यान उद्यान रमण महाबिकट असाध रोगण है वैद्यं पार ब्रह्म परमेश्वर राध नानक हर हर हरे हे प्राण नाथ गोविंद है कृपा निदान जगद गुरु हे संसार ताप हरण है करुणा में सब दुख हरु हे शरण जोग दयाल है दीना नाथ मया करु शरीर स्वस्थ खीन समय

दुत्तर है। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्म, हस्त काया रखिया परमेश्वर है। आत्म रखिया गोपाल स्वामी, तन चरण रखिया जगदीश्वर है। सर्ब रखिया गुरदयाल है, भय दुख विनाशन है। भगत वचल अनाथ नाथी।

सिमरणं सर्वत्र जीवन है लब्धिहं संत संगीन नानक श्वास मार्ग हर भगतन है मस्कं पगनंत सैलं कर्दमं तरंत पपील कह सागरं लगंत पिंगं तम प्रकाश अंध कह साध संगीन सिमरंत गोविंद शरण नानक हर हर हरि तिलकहीनंग जथा बिपरा अमरहीनंग जथारा।

स्याम आश्चर्य रूपं रहंत जन्मं नेत नेत कथंत बेदा ऊच मूच अपार्ग बिंद है बसंत सादृध्यं अच्युत बुजंत नानक बड़भागी है उद्यान बसनं संसारं संबंधी स्वान स्यान खर है विखम स्थान मन मोह मदनं महा असाद पंच तस्कर है कीत मोह पै भरम भ्रमणं अहं फांस तीक्षण कठन है पावक तो असाध कोरं अगम तीर नह लंघन है भज साध संग गोपाल नानक हर चरण सरण उदरहन कृपा कृपा क्रंत गोविंद गोपाल है सगलहं रोग खंडन है।

निमंत हुवंत मिथ्या चेतनं संत स्वजनः आचेत मूढ़ा ना जानंत कटंत सासा नित प्रति सिजंत महासुंदरी काया काल कन्या ग्रासती रचंत पुरख है कटंब लीला अनित आसा बिख्या बनोद परमहंत परमहंत बहु जन्म हारियु शरण नानक करुणामय हे देहबे हे रसगे मदर प्रिय त्वं सात हतं परम बादं वर्त इथ है सुध असरण है गोविंद दामोदर माधवी गर्भंत नारी मधुन मतं बलवंत बलात् कारण है चरण कमल नह पजंत त्रिण समान त्रिग जन्म नह हे पपील का ग्रस्ते गोविंद सिमरण त्वं तने नानक अनक बार नमो नमः त्रिणंगता मेरं सहकंगता हरियं बूडंगता तरियं ऊणंगता परियं अंधकार कोट सूर उजारं बिनवंत नानक हर गुर दयारं ब्राह्मण है संग उदरणं ब्रह्म कर्म जे पूर्ण है आत्मरतं संसार गहंते नर नानक निःफल है पर दर्भ हिरणं बहु विघ्न करणं।

पणंत नानक साध संगेन माया चित परमेण इष्ट मृतेख बांध वह लब्धे हं साध संगेन नानक सुख अस्थानं गोपाल भजनं मैला गर संगेन निम बिरख से चंदन है निकट बसंत।

गोविंद रमण साध संग मह सुमंतर साध बचना कोट दुख बनासन है हर चरण कमल त्यानंग नानक कुल समूह उदाहरण है सुंदर मंदर सैन है जेण मध्य है हर कीर्तन है मुक्ते रमन गोविंद है नानक लब्धिहंग बड भागण है हर लब्धो मित्र सुमितो विदारण कदे ना चित्तो जाका अस्थल तोल अमितो सोई नानक सखा जी संग कितो आप जसंग मटंत सत पुत्र है सिमत बिहर दै गुरमंत्रण है प्रीतम भगवान अच्युत।

नानक हर पूर्व लिखण है दसन बिहून पयंगं मंत्रं गारडी निवारं ब्याद उपाण संतं नानक लब्ध कर्मण है जात काथ रमणं सरणं सर्वत्र जियण है तत लगणं प्रेम नानक प्रसादं गुर दर्शन है चरणार बिंद मन भिद्यं सिद्धं सर्व कुशलन है गाथा गावंत नानक पभ्यं परापूर्वण है शुभ बचन रमणं गवणं साध संगेन उदरण है संसार सागरं नानक पुनरप जन्म न लभ्यते वेद पुराण शास्त्र विचारं एकंकार नाम उरतारं कुलह समूह सगल उदारं बडभागी नानक को तारं सिमरणं गोविंद नामं उदरणं कुल समूहण है लब्धं साध संगेन नानक बडभागी भेटंत दर्शन है सर्व दोख प्रंत्यागी सर्व धर्म दृढ़ंतरण है लब्धेन साध संगेन नानक मस्तक लिखियण है होयो है होवंतो हरण भरण संपूर्ण है।

कसो वरंगण है। रोग सोग बियोगं नानक सुख ना सुपन है। हुनहे महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हाथ कलम अगम मस्तक लेखावती। उर्ज रहे हो सब संग अनूप रूपावती। उस्तत कहन न जाए मुख तोहारिया। मोही देख दर्श नानक बलिहारिया। संत सभा में बैस के कीर्त मैं कहा। हरपी सब शिंगार एहो जियो सब देवा। आस प्यासी सेज सो कंत बछाई है। हर हां मस्तक होवे भाग तां साजन पाई है। सखी काजल हार तंबोल सबे किस साजिया। सोलह किए शिंगार के अंजन पाजिया। जे घर आवे कंत तां सब किछ पाई है। हर हां कंते बाज शिंगार सब बिरथा जाई है। जिस घर वसिया कंत सा वड भागणे। तिस बनिया हब शिंगार साई सुहागणे। हों सुती होए अचिंत मन आस पुराइया। हर हां जा घर आया कंत तां सब किछ पाइया। आसा इती आस के आस पुराइया। सतगुर भये दयाल तां पूरा पाई है। मैं तन अवगण बहुत के अवगण छाया। हरे हां सतगुर भये दयाल तां मन ठहराया। कहो नानक बेअंत बेअंत ते आया।

हर का नाम सतगुर ते पाया मेरा हाथ पदम आंगन सुख बासना सखी मोरे कंठ रतन पेख दुख नासना बासो संग गोपाल सगल सुख रास हर हर हां रिद सिद्ध नव निद बस है जिस सदा कर पार त्रय रावण जाहे सेई ता लाजी है नित प्रत हिरह पर दर्भ।

आवह सच तना सुपने उभी भई गहयो की ना अंचला सुंदर पुरख विराजत पेख मन बंचला।

सब जावै औखद नाम अपार अमोलक पीजई मिल मिल खावह संत सगल कौ दीजई जिसै प्राप्त हुए तिसै ही पावनी हर हां हां बलिहारी तिन जे हर रंग रावनी वैदां संदा संग इकट्ठा होया औख दे आए रास विच आप खलोया जो जो ओना कर्म सुकर्म होए।

प्रीत प्रेम तन खाच रहया बीच न राई होत चरण कमल मन बेदे हो बूजन सुरत संयोग सागर मेर उद्यान बन नवखंड बसदा परम मूसन प्रेम परम कै गनो एक कर करम मूसन मस कर प्रेम की रही जो अंबर छाए बीते बांदे कमल मह पवर रहे लपटाए जप तप संयम हरख सुख मान महत अर गर्भ मूसन निमखक प्रेम पर वार वार देओ सर्ब मूसन मर्म ना जाने मरत हित संसार प्रेम पिरम ना बेदेओ उर्जेओ मिथ व्यवहार कब दब जब जारी है बिसरत प्रेम बेहाल।

हम तज भलो सब कोए जिने ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सोए कबीर आई।

आई गुरु वो साकत बापरे जो हाथ है हाथ बिकाई कबीर साकत ऐसा है जैसे

पवन च फूलन हार, संतोह माखन खाया शास पिया संसार। कबीर माया डोलनी पवन वह हिवतार।

हजार हरवे हरवे तिर गए डूबे जिन सिर पार कबीर हाड जरे ज्यो ला करी केस जरे ज्यो कास इहो जग जरता देख कै भयो कबीर उदास कबीर गर्ब ना कीजिए चामल पेटे हाड है वरी उप

अजो सोना उस समुंदर में क्या जानू क्या होए, कबीर गर्व ना कीजिए देही देख सुरंग, आज काल तज जाओगे ज्यों कांचुरी पोयंग, कबीर लूटना है ता लूट ले, राम नाम है लूट।

कोई सांझा करे कबीर स्यों हर संग बनज करे कबीर एह चेतावनी मत सहसा रह जाए पाछे भोग जो भोगवे तिनको गुड़ लै खाए कबीर मैं जान्यो पढ़बो पलो पढ़बे स्यों पल जोग भगत ना छाडो।

थोड़ा जल माछुनी चीवर मेले ओ जाल ए टोग नैना सूत सह फिर कर समुंद संभाल कबीर समुंद ना छोड़ी है जो अत खारू होए पोखर पोखर ढूंढते भलो।

फैसलों की कुकर भली साकत की बुरी माए ओ नित सुन हर नाम जस ओ पाप बसाहन जाए कबीर हर

घर करह पीवह निर्मल नीर बिन हर भगत ना मुक्त होए त्यों कह रमे कबीर। कबीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर पाछे लागो हर फिरै कहत कबीर कबीर।

मातहर पूछे कौन है परा हमारे बार, कबीर ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर, क्या जानो किस हर किया भयो कबीर कबीर, कबीर सुपने हूँ बरड़ाए कै।

होर काया हांडी काठ की ना उह चढ़ वो होर कबीर ऐसी होए परी मन को भावत कीन मरने ते क्या डरपना जब हाथ सदोरा लीन कबीर रस को गांडो चूसिया गुण को मरिया रोए अवगुने आरे मानस है भलो ना कह है कोय कबीर गागर जल भरी आज काल जय है फूट गुर जो ना चेत है अपनो अदमहा।

कबीर मैया कंठ में चूकह सर्व जंजाल, कबीर ऐसा को नहीं मंदर दे जराए, पांचों लड़के मार के रह राम लियो लाए, कबीर ऐसा को नहीं।

दीपकार चेह चढ़ी सुन हो वीर मसान लोग सब आया चल गयो हम तुम काम निदान कबीर मन पंखी पयो उड उड दह दिस जाए जो जैसी संगत मिले।

जिन हर का नाम ना चेतेओ, बाद है जन्मे आए कबीर आसा करिए राम की, अवरै आस नरास नरक परह ते मानई।

क्या करे जो राम ना करे सहाय। जेह जेह डाली पग धरो सोई मुर मुर जाय। कबीर अवरह को उपदेश ते

हर जंत बचारा क्या करे चले बजावन हार। कबीर माए मुंडो ते गुरु की जाते परम।

आई सर्पन हुए कह अवतर जाए अपने खाई कबीर हर का सिमरन छाड़ के ओहो ईरा खै नार गद ही हुई कै अवतरे पार सह मन चार कबीर चतराई अत कणी

जा मुख कहिए राम देही किसकी बापुरी पवित्र होए गोग्राम कबीर सोई कुल भली जा कुल हर को दास जेहे कुल दास ना उपजै सो कुल ढाक पलास कबीर है गए बाहन सगन कन लाख तजा फहराहे या सुख ते भिख्या भली जो हर सिमरत दिन जाए कबीर सब जग हो फिरे मांडल कंध चढ़ाए।

आय जोत बिना जगदीश की जगत अलंगे जाय। बूढ़ा वंश कबीर का उपजियो पूत कमाल, हर का सिमरन छाड़ के कर ले आया माल। कबीर साधु को मिलने जाइए साथ न लीजे कोई, पाछे पाओ ना दीजिए आगे हुए सो होए। कबीर जग बांधो जे जेवरी ते मत बंधो कबीर, जय है आता लोन ज्यो सोन समान शरीर। कबीर हंस उड्यो तन गाड्यो

रहो हर खगुन गाय। कबीर चुगै चितारे पी चुगै चुग चुग चितारे, जैसे बचरह कूंज मन माया ममतारे। कबीर अंबर कन हर छाया।

त्यों जरा पहुंचो आए। लागी मंदिर द्वार ते अब क्या काढ़िया जाए। कबीर कारण सो पयो जो कीनो करतार। किस बिन दूसर को नहीं एक कैसे जनहार। कबीर फल लागे फलन पाकन लागे आम। जाए पहुंचे है खसम को जो बीच ना खाही काम। कबीर ठाकुर पूजह मोल ले मन हठ तीरथ जाए। देखा देखी स्वांग तार भूले पटका खाए। कबीर पाहन परमेश्वर किया पूजह सब संसार।

बार बाहर कंचन बारहा भीतर परी पंगार कबीर रोड़ा हुए रहो बात का ताजमान का अपमान ऐसा कोई दास हुए

ऊंच पवन कन कामनी शिखर तजा फहराय ताते भली मधु करी संत संग गुण गाय कबीर पाटन ते उजर भला राम।

मान मुनि मुनिवर गले मान सब है को खाए। कबीर साचा सतगुर मैं मिलया शब्द जो बाह आएक लागत ही पोए मिल गया परया कलेजे शेक। कबीर साचा सतगुर क्या कर है जो सिखा महचूक अंधे एक ना लागे ज्यो बांस बजाइए फूक। कबीर है गै बाहन सगन कन छत्रपति की नार ताश पतंत्र ना पूजे

आलस मोहा सरवर परा पी ना सके कोई नीर पाल बड़े तह पायो तू पर पर पियो कबीर कबीर पर बाते तारे खिसह।

शोध कह हर चरनी चित लाए, कबीर संत न छाडे संत जो कोटक मिन है असंत। मलयागर कोई अंगम बेदेव ता शीतलता नात जंत, कबीर मन शीतल भया पाया ब्रह्म ज्ञान। जिन ज्वाला जग जारिया सो जन के उदक समान, कबीर सारी सिर जनहार की जाने नाही कोई। कह जाने आपन तनी कह दास दीवानी होए, कबीर भली पई जो पौ परया दिशा गई सब भूल। उरा गर पान

पास चोट सहारे शब्द की तास गुरु मैं दास कबीर मुन्ना मनारे क्या चढ़ है साई ना बहरा होए जा कारण तू बांग दे दिल ही पीतर जोए सेख सबूरी बाहरा क्या हज काबे जाए कबीर जाकी दिल साबत नहीं ताको कहां खुदाए कबीर अल्लाह की कर बंदगी जेहे सिमर

कौन कबीर गुर लागा तब जानिए मिटै मोह तन ताप हरख सोग दाजै नहीं तब हरे आपह आप कबीर राम कहन मैं भेद है ता मह एक विचार सोई राम सबै कह सोई कौतकहार कबीर रामै राम कहो कहबे माहे बबेक एक अनेक कह मिल गया।

ते कार मरहत सारखे भूत बस है तिन माहे। कबीर गूंगा हुआ बावरा बहरा हुआ कान, पावहु ते पिंगल भया मारिया सतगुर बान। कबीर सतगुर सूर में बाहया बान जो एक, लागत ही पोए गिर परया परा करे जे शेक। कबीर निर्मल बूंद आकाश की पर गई भूम बेकार, बिन संगत इओ मानी होए गई पाठशार। कबीर निर्मल बूंद

जोर कर कहते हैं जो हलाल दफ्तर दई जब काड है होएगा कौन हवाल। कबीर जोर किया सो जुल्म है।

उस साचे देबान में पल्ला ना पकड़े कोई। कबीर धरती अर आकाश में दोए तू बरी आवद, हट दर्शन संसे परे हर चौरासी ही सिद्ध, कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं।

आस कबीर हर का सिमरण जो करे सो सुखिया संसार इतोत कतह ना डोलई जिस राखै सिर जनहार कबीर कहानी पीड़ते सतगुर लिए छडाए परा पूर्व ली भावनी प्रगट होई आए कबीर टाले टोले दिन गया ब्याज बढ़न हो जाए ना हर भजियो ना खत फटियो काल पहुंचो आए महला पंजवा कबीर कूकर भौंकना करंग पिछे उठ धाए करमी सतगुर पाया जिन्हों लिया छड़ाए महला पंजवा कबीर धरती साध की तस्कर बै सहगाए धरती भार ना ब्या

आए संगुक संगी बैसते तब पूछे धर्म राय नामा माया मोहया कहत लोचन मीत काहे शी पोषाय ले राम ना लावो चीत।

योगन करे काहे की कुशलात हाथ दीप कुए पर कबीर लागी प्रीत सुजान स्यो बरजै लोग अजान तां स्यो टूटी क्यों बने जाके जी परान कबीर कोठे मंडप हित कर

चितवे होए अपना चितवे आहर करे जो मेरे चित ना होए महला तीजा चिंता पे आप कराए सी अचिंत पे आपे दे नानक।

तरवर रूपी राम है, फल रूपी बैराग, छाया रूपी साद है, जिन तजया बाद विवाद, कबीर ऐसा बीज बोए, बारह मास फलंत, शीतल छाया गहर फल, पंखी केल करंत, कबीर दाता तरवर दया फल, उपकारी जीवंत, पंखी चले दसावरी, बिरखा सुफल फलंत, कबीर साधु संग प्राप्ति, लिखया हुए ललाट, मुक्त पदार्थ पाई है, ठाक ना अवकट काट, कबीर एक कड़ी आदि करी, आदि हूं ते आद, भगतन सेती गोसटे।

लोहिन कर रहो ले साजन घट माहे सब रस खेलो पीसो किसी लखावो नाही आठ जाम चौसठ करी तो निरखत रह जियो नीचे लोयन क्यों करो सब घट देखो पियो।

बामन गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाही। अर्ज उर्ज कह पच मुआ, चारों बेदोह माहे। हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुनी ना जाए। कह कबीर गुर भली बुझाई, कीती होए कह खाए। कबीर जो तुहे साध पिरम की, सीस काट कर गोए। खेलत खेलत हाल कर, जो किशो होए ता होए। कबीर जो तुहे साध पिरम की, पाके से ती खेल। काची सरसों पेल कै, ना खाल पई ना तेल। टूंडत ढोल है अंधगत, हर चीनत ना ही संत। कह नामा क्यों पाईए, बिन भगत हो भगवंत। हर सो हीरा छाड़ कै, करह आन की आस। हे नर दोजक जाहेंगे, सत पाख है रविदास। कबीर जो ग्रह करह ता धर्म कर।

चलनी जिंदू को समझाए जिंद वहटी मरनवार ले जासी परनाए आप।

किचर छत लंघाई है छप्पर टुटे मेह परिदा जंगल जंगल क्या पवे वन कंडा मोड़े वसी रब हाली है जंगल क्या टुंडे फरीदा इनी निकी जंगी है फल डूंगर पवे ओम अज फरीदा कूजड़ा सह कोहां थे ओम फरीदा राती वड़िया तुक तुक उठन पास किग तिना दा जीविया जिन्ना वडाणी आस फरीदा जे मैं होंदा वारिया मित्ता आड़िया हेड़ा जलै मजीठ ज्यों उपर अंगारा फरीदा लोड़ै दाख बजौरिया।

आए फरीदा शक्कर खंड नवात गुड़ माखियो मांझा दुध सबे वस्तु मिठिया रब ना पुजन तो।

कंत सिंह अंग मुड़े मुड़ जाए जाए पुछो दोहागनी तुम क्यों रैण विहाय सोहरे ढोई ना लह पेयह नाई थां फिर वातड़ी ना पुछई धन।

कितनी जोबन प्रीत बिन सुख गए कुमलाय फरीदा चिंत खटोला वाण दुख बिरह बिछावन लीप यो हमारा जीवना तू साहेब सच्चे वेख बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान फरीदा जित तन बिरो ना उपजे सो तन जान मसान फरीदा ए विस गंदला तरिया खंड लिवाड़ एक राहिंदे रह गई।

सम लेखा रब मगेसिया तू आहू के रे कम फरीदा दर दरवा जय जाय कै क्यों दिठो करियाल एहो न दोषा मारी है हम दोषा दा क्या हाल घड़िए घड़िए मारी है पहरी लह सजाय सोहेड़ा कड़ियाल ज्यों दुखी रहन विहाय।

प्रीदा कन मसल्ला सूफ गल गिल काती गुड़वात बाहर दिसै चानना दिल अंधियारी रात प्रीदा रत्ती रत ना निकलै जे तन चीरै कोय जो तन रत्ते रब स्यो तिन तन रत ना होय। महला तीजा एहो तन सबो रत है रत बिन तन ना होय जो सह रत्ते अपने तित तन लोभ रत ना होय पै पै तन खीण होय लोभ रत विचों जाय ज्यों बैसंतर तात सुध होय त्यों हर का पौ दुरमत मैल गवाय नानक ते जन सोहने जे रत्ते हर रंग लाय फरीदा सोई सरवर ढूंढ लहो जिथों लभी वत छप्पड़ ढूंढै क्या होवै चिक्कड़ डुबै हाथ फरीदा नंढी कंत ना रावियो वड्डी थी मुयास धन कुकेंदी गोर में तै सह ना मिलियास फरीदा सिर पलिया दाड़ी पली मुछा पी पलिया रे मन गहले बावले मान है क्या रलिया फरीदा कोठे तुकण के तड़ा फिर नींदड़े नेवार

मिट्टी पई अतोलवी कोई ना हो सी मेता परिदा मंडप माल ना लाई मरगस पानी चित धार साई जाए संभाल जिथे ही तो वंजना परिदा जिन्नी कमी नाहे गुण ते कमड़े वसार मत शर्मिंदा थी वही साई दे दरबार फरीदा साहिब दी कर चाकरी।

वत कुवारी ना थी है, कलर केरी छपड़ी आए उलथे हंज चिंजू बोड़न ना पीवे, उड्डन संधी डंज हंस उडर कुदर पया लोक बडारन जाए, गहला लोक ना जानदा हंस ना कुदरा खाए, चल चल गईया पंखिया जिन्नी वसाए तल, फरीदा सर भरिया पी चल से थके कवल अकल, फरीदा इट सराने भोए सवण।

अग्गै मूल ना आवसी दूजक संदी पाही महला पंजवा फरीदा खालक खलक मह खलक वसै रब माहे मंदा किसनों आखिया जा तिस बिन कोई नाहे फरीदा जे देह नाला कपया जे गल कपह चुख पवन ना इती मामले सहा ना इती दुख चबण चलन रतन से सुनियर बह गए हेड़े मुती ताहा से जानी चल गए फरीदा बुरे दा भला कर गुस्सा मन ना हंडाए देही रोग ना लगई पल्ले सब किश पाए फरीदा पंख परौहणी दुनी सुहावा बाग नौबत वजी सुबह स्यों चलन का कर साज फरीदा रात कथूरी वंडी है सुत्या मिले ना पाओ जिन्ना नैन निंदरावले तिन्ना मिलन को आओ फरीदा मैं जानिया दुख मुझको दुख सबाया जग ऊचे चढ़ के देखिया ता घर करे हा अग महला पंजवा फरीदा भूम रंगावली

जे जाना बग बपड़ा जन्म ना भेड़ी अंग क्या हंस क्या बगला जा को नदर धरी जे तिस भावे नानका कागो हंस करे सरवर पंखी हेकड़ो फाही वाल पचास इहो तन लहरी गड थिया सच्चे तेरी आस कमण सो अखर कमण गुण कमण सो मणिया मंत कमण सो वेसो हो करी जित बासे आवे कंत निमण सो अखर खमण गुण जिहबा मणिया मंत ए त्रै भैने वेस कर ता वासिया भी कंत मत हुंदी होए क्याणा ताण हुंदे होए नताणा अण हुंदे आप बंडाए को ऐसा भगत सदाए।

आप ही धारण धारी कुदरत है देखारी वर्ण चिन्ह नाही मुख नाम सारी जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसार एक जी ही क्या बखाने हां की बल बल बल बल सद बलिहार सर्व गुण निदानं कीमत ना ज्ञानं ध्यानं ऊचे ते ऊचो जा नीचे प्रभ तेरो थानं मन धन तेरो प्राणं एक सूत है जहानं कवन उपमा देओ बड़े ते बडानं जाने कौन तेरो पेओ अलख अपार देओ अकाल कला है प्रभ सर्व को तानं जन नानक भगत दार

कार अशल पूर्ण अबनासी हरखवंत आनंत रूप निर्मल बेगासी गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं पासी जाको होहि कृपाल सो जन प्रभ तुम्ह मलासी धन धन ते धन जन जे कृपाल हर हर पयो हर गुरु नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दोहों थे रहो सत सत हर सत सत सती सत पणिए दूसर आन ना अवर पुरख पौरा तन सुनिए अमृत हर को नाम लैत मन सब

जल तरना बिनत करूं अरदास सुनो जे ठाकुर पावे देहो दर्श मन चाऊ भगत एहो मन ठहरावे बलिओ चिराग अंधियार मह सब कल उदरी एक नाम धर्म प्रगत सगल हर पवन मह जन नानक गुर पार ब्रह्म।

चेत तन निर्मत दुर्लभ देहे सवार धरी खान पान सोदे सुख पुंचत संकट काट बिपत हरी मात पिता पाई अरबंदप गूजन की सब सूझ परी वर्तमान होवत दिन प्रतनित आवत निकट बिखम जरी।

नानक काट भ्रम भरी रे मन मूस बिला मह गर्भत करतब करत महा मुगना संपत दोल झोल संग झूलत माया मगन भ्रमत कुगना सुत बनता साजन सुख बंदप ता स्यो मोह बढ़ियो सो कना बोयो बीज अहं मम अंकुर बीतत औध करत अगना मृत मंजार पसार मुख निरखत पुंचत भुगत भूख भुखना सिमर गोपाल दयाल सत संगत नानक जग जानत सुख।

असव ना गज सिंघासन छिन मह त्यागत नांग सदारु सूर ना वीर ना मीर ना खानम संग ना को दृष्ट निहारु कोट ना ओट ना कोस ना छोटा करत विकार दू कर चारु मित्र ना पुत्र कलत्र साजन साख उल्टत जात बिरख की शारु दीन दयाल पुरख प्रभ पूरन छिन छिन सिमरहु अगम अपारु श्री पत नाथ सरन नानक जन हे भगवंत कृपा कर तारु प्राण मान दान मग जोहन हीत चीत दे ले ले पारी साजन सहन मीत सुत पाई

औध तन जारी कर्म धर्म संयम सोच नेमा चंचल संग सगल बेदहारी पास पंखी बिरख अस्थावर बहु विद जोन प्रम्यो अत पारी हिन पल चसा नाम नहीं सिमरियो दीना नाथ प्राण पत सारी खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कत खारी नानक संत चरण संग उदरे होर माया मगन चले सब डारी ब्रह्मादिक शिव संत मनीसर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंदर मुनिंदर खोजते गोरख तरन गगन आवत फुन तावत।

सगल कस जावत रे मन मूड सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत माया रंग बरंग करत ब्रह्म मोह कै कूप गुबार परयो है एता गब आकाश नाम आवत बिस्ता अस्त क्रिम उदर परयो है दह दिस ताए महा बिखिया को पर धन शीन अज्ञान हरयो है जोबन बीत जरा रोग ग्रस्यो जम दूतन दन मृत मरयो है अनक जोन संकट नरक पुंचत शासन दुख गर्त गर्यो है प्रेम भगत पुदर है से नानक कर कृपा संत आप करयो है गुण समूह फल सगल मनोरथ पूरन होई आस हमारी औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर सर्व रोग खंडन गुणकारी काम क्रोध मद मत सर तृष्णा बिनस जाहे हर नाम उचारी स्नान दान तापन सुच किरिया चरण कमल हृदय प्रवतारी साजन मीत सखा हर बंदप जी तान प्रभ प्राण अधारी ओट गही स्वामी समर्थ है नानक दास सदा बलिहारी आवद कट्यो ना जात प्रेम रस चरण कमल संग दामन बंध्यो ना जात विदे मन दर्श मग पावक जरयो ना जात रहयो जन धूर लग नीर ना साकस बोर चल है हर पंथ पग नानक रोग दोख अग मोह छिदे हर नाम खग उदम कर लागे बहु पांति विचरह अनक शास्त्र बहु खटुआ भस्म लगाए तीर्थ बहु भ्रमते सूखम देह बंद है बहु जटुआ बिन हर भजन सगल दुख पावत ज्यो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ पूजा चक्र करत सोम पाका अनक पांत थाट है कर थटुआ सवैये महले पहले के एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक मन पुरख त्याए बरदाता संत सहार सदा बिखियाता।

दुर्त निवारण शब्द सरे गावह गंभीर तीर मत सागर जोगी जंगम ध्यान धरे गावह इंद्राद भगत प्रहलादक आत्म रस जिन जानियो कब कल।

हर रस पूरन सर्व कला गावह सनकाद साध सदादिक मन गन गावह अशल चला गावह गुण धूम अटल मंडल वै भगत पाए रस जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो गावह कपलाद आदि जुगेश्वर अपरंपर अवतार वरु गावै जम दगन परसरमेश्वर कर कुठार रग तेज हरियो उदो अक्रूर बिदर गुण गावै सर्वात्म जिन जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो गावह गुण बरन चार खत दर्शन ब्रह्मादिक सिमरंत गुना गावह गुण शेष सहस जिह बारस आद अंत लिव लाग तुना गावह गुण महादेव बैरागी जिन ध्यान निरंतर जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो राज जोग मानियो बस्यो निर्वैर रिदंतर सृष्ट सगल उदरी नाम ले तरियो निरंतर गुण गावह सनकाद आद जनकाद जुगह लग धन धन गुर धन जन्म सकियत भलो जग पाताल पुरी जयकार धुन कब जन कल बखाणियो हर नाम रसक नानक गुर राज जोग तै मानियो सत जुग तै मानियो छलियो बल बावन पायो त्रेतै तै मानियो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मरार कंस किरतारत कियो उग्र सैन कौराज अपै भगत है जन दियो कल युग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अबचल अटल।

लोचन भगत बेन गुण रवे सहज आत्म रंग माने जोग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर ना जाने सुख देव प्रीख्यत गुण रवे गौतम रिख जस गायु कब कल सुजस नानक गुर नित नवतन जग छायु गुण गावे पायाल भगत नागाद पुयंगम महादेव गुण रवे सदा जोगी जा।

जिन हुक्म सब सृष्ट सवारी ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण समझाणियो जप कल सुजस नानक गुर सहज जोग जिन माणियो गुण गावह नवनाथ धन गुर साच समायु मां धाता गुण रवै जेन चक्रवै कहायु गुण गावै बल राऊ।

नानक मस्तक तुम धरियो जिन हथ ता धरियो मस्तक हथ सहज अमियो बुठो सज सुर नर गण मुन बोहे आगाज मारियो कंटक काल गर्ज धावत लियो बरज पंच भूत एक घर राख ली समझ जग जीतो गुरुद्वार खिल है समत सार रत उन्मन लिव राख निरंकार कहो कीर्त कल सहार सप्त दीप मझार लहना जगतर गुर परस मुरार जा की दृष्ट अमृत धार काल

है नाम परस जिन पायो सत प्रगट्यो रब लोए दर्शन परसे है गुरु कै अठ सठ मज्जन होए सच तीर्थ सच स्नान अर भोजन भाओ सच सदा सच पाखंत सो है सच पायो गुर शब्द सच नाम संगति बो है जिस सच संयम वर्त सच कब जन कल बखान दर्शन परसे है गुरु कै सच जन्म परवान हमें दृष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल सदा सुख मन वसे दुख संसार है खोवे गुर नव निद दरियाओ जन्म हम कालख धोवे सो कहो टल गुर सेविय अहन सहज सुपाई दर्श

संसारी जिन भगत भवजन तारी सिमरहो सोई नाम प्रधान तित नाम रसक नानक लहना थपियो जीन सर्व सिद्धि कावजन कल सुबुद्धि कीर्त जन।

पुब अर पश्चिम जय जय कार्य पंथ नरा हर नाम रसन गुरमुख बरदायु उल्ट गंग पश्चिम धरिया सोई नाम अशल भगत है भव तारन अमरदास गुर कौ फुरिया सिमरह सोई नाम जक अर किन्नर साधक सिद्ध समाध हरा सिमरह नखियतर अवर ध्रु मंडल नारदाद प्रहलाद वरा ससियर अरसूर नाम उलास है सैल लोजिन उदरिया सोई नाम अशल भगत है भव तारन अमरदास गुर कौ फुरिया सोई नाम सिवर नवनाथ निरंजन शिव सनकाद समुद्धरिया चौरासी सिद्ध बुद्ध जित राती अम्बरीक भवजन तरिया।

काम लागते तीस त्याव है, जति तपीसर मन वसया, सोई नाम सिमर गंगे पता मह, चरण चित अमृत रसया, तित नाम गुरु गंभीर गुरु मत, सत कर संगत उदरिया, सोई नाम अशल भगत है भव तारण, अमरदास गुर कौ फुरिया, नाम कित संसार किरण रब सुरतर साख है, उत्तर दक्षण पूब देश पश्चम जस भाख है, जन्म ता इहो सकियत जित नाम हर हृदय निवास है, सुर नर गण गंधर्व छे दर्शन आशास है, भलो प्रसिद्ध तेजो तनु कल जोड़ कर त्यायो, सोई नाम भगत भवजन हरन गुरे अमरदास तै पायो, नाम त्याव है देवत तीस अर साधक सिद्ध नर, नाम खंड ब्रह्मांड तारी जह नाम समाद्यो।

सुख पायो अमर गुर की तो जोग नाम नावन नाम रस खान अर भोजन नाम रस सदा चाहे मुख मिष्ट बाणी तन सतगुर सेवियो जिस पसाए गति अगम जानी कुल संभू समुद्धरे पायो नाम निवास सके अठ जन्म कल उचरै गुर परसेओ अमर परगास बारज कर दाहिणै सिद्ध सनमुख मुख।

अमर गुर इत रंग रातौ मस्तक निशान सचो कर्म काल जोड़ कर त्यायु परसे हो गुरु सतगुर तिलक सर्व इच्छ तिन पायु चरण ता पर सके अत चरण गुर अमल पवल रह हाथ ता पर सके अत हाथ लग है गुर अमर पै जी ता पर सके अत जी गुर अमर पणिज नैन ता पर सके अत नैन गुर अमर पखिजै श्रवण ता पर सके अत श्रवण गुर अमर सुनिजै सक्यात सो ही ओ जित ही बसै गुर अमरदास निज जगत पित सक्यात सो सिर

सुपन एक प्रताख एक एक समह लीनो तीस एक अर पांच सिद्ध पैंतीस ना खीनो इको जे लाख लखो अलख है एक एक कर वर्ण्यो गुरु अमरदास जाल पपण तू एक लोड़ है एक मन्यो जे मत गही जय देव जे मत नामे सम्मानी जे मत त्रिलोचन चित भगत कंबीर है जानी रुक मांगद करतूत राम जंप हो नित पाई अमरीक प्रहलाद सरन गोबिंद गत पाई तैं लोभ क्रोध तृष्णा तजे सो मत जल जानी जुगत गुरे अमरदास।

एक बिन दुगण जो तौ रह, जां समंतर मान वह लह, जाल पाप दार्थ इतड़े, गुरु अमरदास डिठे मिलह, सच नाम करतार, सो दृढ़ नानक संग रहियो, ताते अंगत लहना प्रगट, तास चरण है लिव रहियो, तित कुल गुर अमरदास आसा निवास, तास गुण कवण बखानो, जो गुण अलख अगम, तिन्ह गुण अंत ना जानो, बोहिथो विधाते निर्मयो, सब संगत कुल अधरन, गुर अमरदास कीरत कह, त्राहि त्राहि तो पासरन, आप नारायण कलातार, जग मह परवरियु, निरंकार आकार, ज्योत जग मंडल करियु, जह कहत है परपूर, शब्द दीपक दीपायो, जेहे सिख